आज का स्लोगन है, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना यह भी परमत है। किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना यह भी परमत है। आज का व्यक्त इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, संकल्प व स्वप्न में भी जब अपवित्रता का अंश मात्र न हो तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। इसी धारणा के लिए ही गायन है, प्राण जाए पर धर्म न जाए। ऐसी हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े तो खुशी खुशी से करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। धरत पड़िए, धर्म न छोड़िए, ये जो कहा गया है कि प्राण जाए तो भी धर्म न जाए, तो बाबा कहते हैं जब ऐसी धारणा हो तो उसमें कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े तो भी खुशी खुशी से करते, पीछे नहीं हटते। अच्छा,

ओम शांति। हम सभी का अंतिम लक्ष्य कर्मातीत होना है। कर्मातीत होने के लिए हमें सभी विकर्मों से अतीत होना पड़ता है, अर्थात सभी विकर्मों को नष्ट करना होता है। और जब हमारे विकर्म नष्ट होते रहते हैं तो उसकी एक सुंदर प्रत्यक्ष पहचान होती है कि अन्य विकर्म, सूक्ष्म विकर्म भी हमसे नहीं होते हैं। कर्मातीत होने के लिए हमें कर्म करते हुए भी ऐसे कर्म करने होते हैं मानो हम कुछ नहीं करते। इसको ही आत्मा की निर्लिप्त स्थिति भी कहा जाता है। वैसे हम जानते हैं आत्मा निर्लिप्त नहीं है, लेकिन कर्मों में वो लिप्त न हो, निष्काम हो जाए, ये स्थिति कर्मातीत होने के लिए परम आवश्यक है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम कुछ कर्म नहीं करेंगे। हम अपने सभी कर्म करते हुए कर्मों के आकर्षण और कर्मों के प्रभाव से परे रहेंगे। दूसरी चीज है, कर्मातीत होने के लिए हमें संपूर्ण पवित्र होना होता है, कर्मेंद्रियों को शीतल करना होता है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता है कि सभी आत्माएं हैं। अपने घर में बैठकर सारे संसार के मनुष्यों को आत्मा देखें कि सभी के मस्तक में ज्योति चमक रही हैं। ये सब देव कुल की आत्माएं हैं, ये सब भगवान के बच्चे महान आत्माएं हैं, ये विभिन्न धर्मों की आत्माएं सब चमकती हुई मूल रूप से पवित्र आत्माएं हैं। ये अभ्यास बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि विकर्मों को नष्ट करने के लिए तो हमें बहुत पावरफुल योग करना चाहिए। अगर पावरफुल योग हमारा नहीं होगा तो हमारे और कर्म भी विकर्म बनते रहेंगे, या हम साधारण कर्मों में रहते रहेंगे, या कुछ व्यर्थ कर्म हमसे होते रहेंगे, और इस तरह कर्मों का बंधन हमें निरंतर बांधता रहेगा। परंतु हमें कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त रखना है। एक बहुत अच्छी चीज हमें याद रखनी है, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य है सभी व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना। जो आत्मा व्यर्थ संकल्पों से और साधारण संकल्पों से पूरी तरह मुक्त हो जाती है, समझें कि वही कर्मातीत अवस्था की ओर तेजी से चल रही है। यों तो ज्ञान के बल से हम अपने सभी व्यर्थ को समाप्त करते हैं, परंतु दो चीजों की प्रैक्टिस विशेष रूप से हमें करनी है, और वही प्रैक्टिस आज सारा दिन भी हम करेंगे। पहली प्रैक्टिस है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो जब हम अपने इस स्वरूप में रहते हैं और साथ में बाबा हमारे साथ है, तो माया के विभिन्न संकल्प हमारे पास नहीं आते। ये बहुत बड़ा फायदा होता है इस स्वमान से। जितना हम इस स्वमान के नशे में और इसके स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, माया के विभिन्न तूफान और संकल्पों से हम मुक्त होते जाएंगे। और दूसरी बहुत बड़ी स्मृति जो बाबा ने हमें दिलाई है, तुम स्वराज्य अधिकारी हो। इसकी बहुत सुंदर प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा ब्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, राजा हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। बार बार अपने को ये गुड फीलिंग देनी है कि मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ। तो न मैं किसी संस्कार के अधीन हो सकती, न मन के अधीन, मन मेरे कंट्रोल में है। ये फीलिंग बढ़ाते चले, हे मन, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। अभी मेरा तुम्हें आदेश है कि तुम व्यर्थ की ओर न बह जाओ। हे मेरे संस्कारों, अब मैं तुम्हारा मालिक हूँ। तुम तो पवित्र संस्कारों से संपन्न हो, तुम तो बड़े डिवाइन हो, तुम तो सुखदाई हो, तुम तो सभी के कल्याणकारी हो। अब अपने उस स्वरूप को इमर्ज कर।
करो, तो ये दोनों प्रैक्टिस हम आज सारा दिन रखेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और स्वराज्य अधिकारी हूँ, साथ साथ अभ्यास करेंगे परम धाम से सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं, जैसे कि ऊपर से शक्तियों का फाउंटेन मुझ पर उतर रहा है। ओम शांति।

क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sanchar-saathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आपके मस्तिष्क में भर दी गई वह ढेर सारी जानकारी और सूचना शिक्षा नहीं है, जो जीवन के लिए अनुपयुक्त होने के कारण जीवन भर उसमें उत्पात मचाती रहती है। हम में जीवन निर्माण, मानवीयता निर्माण और चरित्र निर्माण करने वाले विचार होने चाहिए। यदि ऐसे 5 विचार भी आप आत्मसात कर लेते हैं, उन्हें अपना जीवन चरित्र बना लेते हैं, तो आप उस व्यक्ति से कहीं ज्यादा शिक्षित हैं जिसने पूरा पुस्तकालय कंठस्थ कर रखा हो। हमें उस शिक्षा की जरूरत है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण हो, मनोबल में वृद्धि हो, प्रज्ञा का विस्तार हो और जिसके बल पर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जाने क्यों और कैसे हम किताबी ज्ञान को, स्कूली पढ़ाई को ही शिक्षित होना मान बैठे हैं। अभिभावकों से लेकर शिक्षकों तक हर किसी का पूरा ध्यान स्कूली पढ़ाई की ओर ही हो गया है। कोई बालक यदि जीवन के ही विज्ञान से अनभिज्ञ बना रहता है, तो विज्ञान पढ़कर भी वह भला क्या कर लेगा। हम अपने बच्चों को इतिहास पढ़ने और उसे रटने के लिए तो कहते हैं, लेकिन हम उन्हें इतिहास रचने के लिए नहीं कहते। कोई बालक अपनी पहली, दूसरी या तीसरी भाषा के साथ क्या कर लेगा, यदि उसमें संवाद का कौशल, दूसरे तक अपनी बात स्पष्ट ढंग से पहुंचाने का कौशल विकसित नहीं हो सका। यहाँ हमारे भाव को गलत ना समझें। हम यह नहीं कहना चाहते कि किताबी ज्ञान व्यर्थ है। हम तो इस बात पर बल दे रहे हैं कि सिर्फ किताबी ज्ञान

मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

किताबी ज्ञान बालक के विकास का एक पक्ष तो है, लेकिन एकमात्र पक्ष नहीं है। वह जीवन में सहायक तो है, लेकिन यही एकमात्र जीवन नहीं है। जीवन कुछ और भी है। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाला अपने जीवन में भी सर्वोच्च रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। और यह भी जरूरी नहीं है कि सारे बैक बेंचर यानी कक्षा में पीछे बैठने वाले अपने जीवन में भी बैक बेंचर ही रहते हो। सचमुच हम अक्सर देखते हैं 98% अंक पाने वाला जीवन की औसत समझ लिए हुए अंततः उस 72% अंक पाने वाले के लिए काम कर रहा होता है, जिसमें जीवन की समग्र समझ होती है। संबंध ही जीवन का असली ताना बाना है। संवाद ही संबंधों की जीवन रेखा होती है। सफलता केवल नेतृत्व से जुड़ी होती है। या तो आप नेतृत्व कर रहे होते हैं, या फिर किसी के नेतृत्व का अनुसरण कर रहे होते हैं। जहां आप अपना समय लगाते हैं, आपका भविष्य भी वहीं से बनता है। इसीलिए संक्षेप में समय प्रबंधन का कौशल ही जीवन का कौशल है। आप या तो निर्भर करने योग्य होते हैं, या फिर किसी पर निर्भर होने योग्य, और यह आपकी उस छवि पर निर्भर करता है जो आपने खुद अपने लिए बना ली है। कटु सत्य यह है कि जीवन की इन अनिवार्यताओं में से कोई भी हमारे स्कूली या किताबी ज्ञान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो अभिभावकों से, शिक्षकों से और अन्य उन सभी से जिनके हाथ में बच्चों का भविष्य है, अनुरोध है कि कृपा करके बच्चों को किसी पाठ्यक्रम से न बांधे। बच्चों को हम जीवन के प्रति खुलने और खिलने दें, और निश्चय ही किताबी ज्ञान के प्रति भी। हम केवल उनके प्राप्तांकों को ही न देखते रहें, बल्कि हमें उनके जीवन को भी देखना होगा। शिक्षा के साथ समझ भी देनी होगी।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

किसी काम को जब रुचि से किया जाता है तो उस काम को करने में आनंद आता है, और अंततः जब वह पूरा हो जाता है तो आपको उपलब्धि की अनुभूति होती है। जो काम आपको ऐसी अनुभूति देता है उसे आप बार बार करना चाहते हैं। इसके विपरीत, काम को जब एक विवशता, एक बाध्यता के रूप में समझा व किया जाता है तो जो काम आप कर रहे होते हैं उससे आप जूझ रहे होते हैं, और आखिर जब वह पूरा हो जाता है तो आपको चलो जान छूटे का एहसास होता है। जो काम आपको जान छूटे का एहसास देता है, भविष्य में आप उससे बचना चाहते हैं। आप यदि उसे दोबारा भी कर रहे होते हैं तब भी उसे आधे अधूरे मन से, अरुचि व अनिच्छा से ही कर रहे होते हैं। जो लोग हर काम को रुचि से करते हैं वे जीवन में उपलब्धियों से भरे होते हैं, इसलिए वे जीवन के प्रति बहुत अभिलाषित रहते हैं। जो लोग हर काम को एक विवशता, एक बाध्यता के रूप में लेते हैं वे जीवन से थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, और इसलिए जीवन से छुटकारा पाने की इच्छा की हद तक चले जाते हैं। लोग अपने जीवन के दैनिक कामकाज करने में भी अरुचि व अनिच्छा वाले हो गए हैं। लोग खाना बनाने में भी अनिच्छुक हो गए हैं। क्या प्री कुक्ड फूड, फास्ट फूड, फ्रोजन फूड और रेडीमेड फूड ने आज हर रसोई में घुसपैठ नहीं कर ली है? लोग आराम से बैठकर भोजन का स्वाद लेने के भी अनिच्छुक होते जा रहे हैं। नाश्ता करना छोड़ देना और लंच के लिए समय न निकाल पाना क्या आम बात नहीं होती जा रही है? बच्चे स्कूल जाने के लिए अनिच्छुक नहीं हैं? जितने वयस्क लोग काम पर जाने में अनिच्छुक होते जा रहे हैं, सोमवार की सुबह पड़ने वाले दिल के दौरों की बढ़ती संख्या का क्या आप कोई और कारण बता सकते?

0: आप सुन रहे रेडियो मतलब मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन

जीवन से जुड़ी अनिवार्यताओं को यदि एक विवशता की तरह, एक बाध्यता की तरह देखा जाएगा और हर काम के पूरा हो जाने पर छुटकारा पाने के एहसास वाली लंबी सांस ली जाएगी, तो हम अपने जीवन की गुणवत्ता में विकास कैसे कर पाएंगे? देखिए, हम जो भी करें उसे उत्सव की तरह करें। उफ, तो मुझे यह करना ही पड़ेगा वाली प्रवृत्ति के बजाय मैं यह करना चाहता हूँ वाली प्रवृत्ति को अपनाएं। हमारा हर कार्य कुछ इस तरह से हो कि उसका आरंभ रुचि के साथ हो, करना आनंद के साथ हो और समापन उपलब्धि की अनुभूति के साथ हो। जो काम हमें करना ही है तो फिर उसे आनंद के साथ ही क्यों न किया जाए। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप ज्ञान प्राप्ति से पहले भी केवल कुएं से जल खींचते थे और लकड़ियां काटते थे, और ज्ञान प्राप्ति के बाद भी आप वही कर रहे हैं। आपके कार्य में तो मुझे कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। गुरु का उत्तर था, हाँ, मेरे कार्य में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जिस गुणवत्ता से मैं यह कार्य कर रहा हूँ उसमें परिवर्तन आ गया है। कन्फ्यूशियस ने ठीक ही कहा था, वह रोजगार चुने जिसमें आपकी रुचि है तो फिर आपको जीवन में एक भी दिन काम नहीं करना पड़ेगा। खुशी पाने का कोई रास्ता नहीं है, खुशी खुद ही वह रास्ता है। तो हमेशा हर कार्य को करने के लिए खुशी वाला रास्ता अपनाएं, खुशी के साथ हर कार्य करें, तो आपको जरूर उस कार्य की पूर्ति होने के बाद उपलब्धि की अनुभूति होगी। कुछ आपने पाया है यह आप महसूस कर पाएंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए मुस्कुराते।

मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है। रेडियो मधुबन

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आखिर सहज स्वास्थ्य में स्वागत न करें तो क्या आपका अस्पताल में स्वागत किया जाए? प्रायः लोग यही कहते हैं कि जब कोई आप अस्पताल जाते हैं तो कोई वहां स्वागत के लिए खड़ा नहीं रहता। अगर कोई ये कह भी दे कि आप आए अस्पताल, बहुत अच्छा लगा, फिर आते रहिए, तो फिर लोग बुरा मान जाते हैं कि भाई अस्पताल कोई ऐसी जगह है जो बार बार जाया जाए। जब हम अस्पताल को, यानी जब स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए हमें किसी ऐसे जगह जाना पड़ता है जहां पर हम रोगी होकर, दुखी होकर, चिंतित परेशान होकर या किसी प्रकार की व्याधि को लेकर जहां पहुंचना पड़ता है, वहां व्यक्ति जाना नहीं चाहता। ये बात बिल्कुल सही है कि हर एक व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, हर एक व्यक्ति रोग मुक्त, व्याधि मुक्त रहना चाहता है, किसी भी प्रकार के दुख दर्द से मुक्त रहना चाहता है। प्रायः दुख दर्द के लिए सबसे बड़ा कारण जो है हमारे शारीरिक बीमारियों के रूप में, शारीरिक व्याधियों के रूप में हमारे सामने आता है। और जब इन व्याधियों को ठीक करने के बारे में सोचा जाता है तो लोग यही समझते हैं कि अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे अब तो। ऐसे में जब कोई भी व्यक्ति अस्पताल जाना पसंद नहीं करता तो क्या हम अस्पताल न जाएं उसके लिए कुछ कर सकते हैं? ये सोचने वाली बातचीत है। आइए आज स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही विषयों पर चर्चा करते हैं और स्वास्थ्य जगत के ही एक्सपर्ट्स इस विषय पर हमें जवाब देंगे। जिन लोगों के पास हम स्वास्थ्य के लिए जाना चाहते हैं, बीमार होकर पहुंचना चाहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, ये आज समझते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं स्वास्थ्य जगत से एक ऐसे एक्सपर्ट जिनको स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव है। भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है और आज भी दे रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, पहले तो मैं यही चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्योंकि एक डॉक्टर हैं, अस्पताल आप चलाते हैं, अस्पताल में बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, तो प्रायः ये चीज कहना कि फिर आइएगा जब कोई आपके पास आकर इलाज करके जाता है या वो ऐसे ही आता है कोई राय मशवरे के लिए, आपका स्वागत है, आप पुनः मिलिएगा, फिर आइए, ये कहते ही व्यक्ति मन में सोचता है अस्पताल में क्यों बार बार आऊं, ये तो व्यक्ति मेरी मंगल कामना नहीं कर रहा है, ये बात समझी जाती है। आप एक स्वयं स्वास्थ्यकर्मी होने के नाते इस चीज को कैसे देखते हैं?
1: श्री भैया, मेरी पढ़ाई भले ही एलोपैथी में हुई है, मगर मैं प्राकृतिक चिकित्सा गोरखपुर में आरोग्य मंदिर में प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो यहां जो हम लोगों ने देखा कि पहले मरीज महीनों के लिए आता था, ठीक होता था और चला जाता था, और फिर वो हमसे चिट्ठी पत्री के माध्यम से, उस फोन के माध्यम से और तार के माध्यम से वो हमसे जुड़ा रहता था। जब इंटरनेट आ गया तो वो हमसे ईमेल के माध्यम से, और सोशल मीडिया आ गया तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के माध्यम से वो हमसे जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक चिकित्सालय में व्यक्ति बार बार आना चाहता है, वो ये चाहता है कि वो आए, अपने शरीर की सारी गंदगी को साफ करे और एक अच्छा स्वस्थ शरीर और एक स्वस्थ मन लेके बाहर चला जाए। हाँ, आप किसी अगर मॉडर्न अस्पताल जो एलोपैथी की प्रैक्टिस करता है उसमें अगर आप किसी भी विभाग में जाएंगे तो मरीज हमेशा ये कहता है, भगवान इस बार ले आए हो, ठीक करके बाहर निकाल दो कि वापस यहां चक्कर ना लगाना पड़े।

0: मॉडर्न मेडिसिन में सिर्फ एक ब्रांच है जहां पे जब पेशेंट बन के कोई आता है या उसके परिवार वाले उसको लेकर आते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं। और आप भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं, मगर जो ऑब्स्टेट्रिक ब्रांच है जिसमें बच्चा पैदा होता है उसमें परिवारजन जब अपने परिवार के सदस्यों को लेकर आते हैं, जब महिला खुद आती है, उसके हस्बैंड आते हैं, सास ससुर आते हैं, माँ बाप आते हैं, भाई बहन आते हैं, तो वो बड़े खुश होते हैं। और हम लोग एक छोटा सा टिक सेंटर भी चलाते हैं यहाँ आरोग्य मंदिर के अंदर, तो वहां हम ये देखते हैं कि बच्चा पैदा होना एक बहुत खुशी की बात हमारे समाज में मानी जाती है। और उस खुशी के लिए अगर कोई नई नई मैरिड लेडी है जो आती है अस्पताल में किसी पेशेंट को देखने के लिए, तो उसकी सास या उसकी जो बड़ी हैं घर की महिला, वो कहती हैं कि अरे इसने खुशी दे दी, तुम भी कब दोगी खुशी। तो ऑब्स्टेट्रिक्स को छोड़कर कोई और ब्रांच नहीं है जिसमें अस्पताल आके एक व्यक्ति खुश होता है। अस्पताल एक अच्छी जगह नहीं है, मगर मैं सबको ये बात बोलूंगा कि अस्पताल निराश नहीं करती है, आपकी जो निराशा है उसको आशा में बदलती है। तो अगर आप स्वस्थ हैं, और हम सहज स्वास्थ्य का कार्यक्रम इसीलिए कर रहे हैं कि आपको अस्पताल आने की जरूरत न पड़े, और एलोपैथिक अस्पताल लोग नहीं जाना चाहते हैं, मगर आयुर्वेदिक अस्पताल हुआ, नेचुरोपैथी का सेंटर हुआ, हमारे केरला में इतने सारे हेल्थ सेंटर्स हैं वहां लोग जाना चाहते हैं, हमारे देश में कितने सारे आश्रम हैं जहां मेडिटेशन होता है, लोगों का एक सादा भोजन दिया जाता है, वैसे सेंटर्स में अब लोग अपनी भाग दौड़ की जिंदगी से बचने के लिए जाना चाहते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि एलोपैथी सेंटर में लोग नहीं आना चाहते, मगर प्राकृतिक चिकित्सालय में बहुत से लोग अपने साल में एक हफ्ता या 2 साल में 2-3 हफ्ता बिताते हैं, जिससे शरीर और मन दोनों साफ होता है।
1: स्वास्थ्य लाभ लेना, अपने आप को स्वस्थ करने के लिए व्यक्ति जरूर आना चाहता है। जैसे आपने कहा, एलोपैथिक अस्पताल में लोग यही कहते हैं कि रोगी बनकर न जाना पड़े, कि एक बार अगर हम अस्पताल में रोगी बनकर गए तो जल्दी से जल्दी ठीक होकर वहां से जाया जाए, ये हर व्यक्ति की मंशा रहती है। अब स्वास्थ्य के बारे में आप ये बात कह रहे थे कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही ये है कि आपको अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़े, आप अस्पतालों से दूर रह सकें, स्वस्थ रह सकें, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। पिछले दिनों हम ये बातचीत कर रहे थे तो ये बात समझ में आ रही थी कि अनेक ऐसी बीमारियां उसका कारण हम स्वयं हैं, या हमारे खराब आदतें हैं, या हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारा आहार व्यवहार विहार, ये सब कुछ बदल जाने के कारण हम किसी न किसी प्रकार की व्याधि को स्वयं आमंत्रित कर लेते हैं। एक ऐसी ही आम सी चीज जो लोगों में देखने को मिलती है वो कब्ज की समस्या, जिसके ऊपर आपने विस्तार से बात कही। कब्ज कहते ही लोग कहते हैं कि भाई ये तो कई लोग सालों से इसका इलाज कर रहे होते हैं, कोई कुछ चूर्ण खा रहा होता है, कोई एंटासिड ले रहा है, कोई किसी प्रकार का फ्लूइड पी रहा है, कोशिशें बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अगर कब्ज ना हो, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? लोग सोचते हैं कि भाई क्या कोई नई चीज खाने को अपने भोजन में शामिल करने से क्या हम कब्ज से बच सकते हैं? तो इसके बचाव के उपाय क्या हैं, पहले हम इस चीज को समझें, फिर मैं ये भी प्रश्न पूछूंगा आपसे कि जिनको कब्ज है वो इससे निजात कैसे पाएंगे।
0: श्री भैया, सहज स्वास्थ्य का कार्यक्रम स्वास्थ्य को सहज बनाना है, और जो भी हमारे श्रोतागण हैं उन्हें अस्पतालों से दूर रखना है। कब्ज की बीमारी में सबसे बड़ी बात जो कही जाती है कि यदि हम चाहते हैं कि कब्ज न हो, तो इसका विचार हमें शौचालय में नहीं भोजनालय में करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। और यदि हम अपना भोजन संभाल लें तो कब्ज छोड़िए, कोई भी बीमारी हमको नहीं छू सकती। आज एक पेशेंट को मैंने आरोग्य मंदिर में देखा, उन्होंने कहा कि हमको 2 महीना पहले डायबिटीज आ गई थी, डॉक्टर ने दवा शुरू करने को कहा, मैंने बाजार में बना हुआ भोजन छोड़ दिया, मैंने अन्न की मात्रा आधा कर दी, मैंने फलों की मात्रा बढ़ा ली, मेरा डायबिटीज ठीक हो गया। डायबिटीज की बात इसलिए क्योंकि उनको मालूम नहीं था उनको डायबिटीज है, वो कब्ज के रूप में उनको मिला कि मेरा पेट नहीं साफ हो रहा, पेट नहीं साफ हो रहा है। तो भोजन पर अगर स्वादिष्ट होने के बारे में हम सिर्फ यही सोचते रहें कि भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, तो हम बीमार पड़ते चले जाएंगे। हमको ये सोचना पड़ेगा कि भोजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ हितकर भी होना चाहिए। और कब्ज की अगर बात करें तो कब्ज निवारक भोजन होना चाहिए। आपको अपना भोजनालय ठीक करना है, और हमारे समाज में तो उसको माँ अन्नपूर्णा का मंदिर कहा गया है। आप कितने भी बड़े सेंटर्स में चले जाइए, मंदिरों में चले जाइए, भोजनालय का नाम माता अन्नपूर्णा पे रखा गया है वहां पे। अगर हम कब्ज कारक भोजन जो है उसको कब्ज निवारक भोजन से बदल लें तो हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको सलाद और फलों की मात्रा, कच्चे फलों की मात्रा अपने भोजन में बढ़ानी है। आपका कब्ज बहुत कठिन और बहुत पुराना हो सकता है, मगर खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर, पालक, पत्ता गोभी को कच्चा इस्तेमाल करिए। आप कब्ज से डरिए मत, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो वो आपको और परेशान करेगा। और इसको रोज खाइए। आप ये मत सोचिए कि आपने एक दिन ये भोजन किया ये परेशान कर रहा, नहीं, आप इसको रोज खाइए। और अगर आप अपने भोजन में हाई फाइबर डाइट को बढ़ा देंगे और जो चीजें आंतों में चिपकती हैं, जैसे मैदा हुआ, कोई भी प्रोसेस्ड फूड हुआ, बहुत चीनी वाला सामान हुआ, इसको अगर आप रोक देंगे तो आपका कब्ज बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कब्ज के इलाज में अब मानसिक इलाज की भी बात की जाती है। वो ये कहा जाता है, आपको मोशन हो या ना हो, आप कृपा करके सुबेरे एक तय समय पे बाथरूम जरूर जाइए। अगर आप बाथरूम जाएंगे तो आपका बॉडी, जो आपका रिदम है, उसको ये मालूम चलेगा कि अरे भाई अब तो मुझे साफ होना है। अगर आप बहुत ज्यादा तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, चाय, कॉफी का प्रयोग कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसे छोड़िए, क्योंकि अगर आप उसे छोड़ देंगे तो आपकी आंतें जो उसकी वजह से चल रही हैं, उसकी वजह से चलायमान हो रही हैं, वो अपनी ताकत वापस धीरे धीरे पाने लगेंगी। आपको पानी पीना पड़ेगा। मैं जो भी स्कूल जा रहे बच्चे या जो भी श्रोता हमारे सुन रहे हैं, आप 2 गिलास सुषुम पानी, नॉर्मल वाटर नहीं तो हल्का गुनगुना पानी पी के आप बाथरूम जाइए। अगर आप जाएंगे तभी आप अपने पेट को साफ कर पाएंगे। आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा नींबू मिला लें, एक चुटकी नमक डाल लें, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी आंतों को चलाना शुरू करेंगी। और इसका उपयोग आप कर सकते हैं अपने घर में, सुषुम पानी नींबू के साथ एक सही समय, और हाई फाइबर डाइट जो है उसको लेकर हम अपनी आंतों को ठीक कर सकते हैं। भोजन भी बहुत जरूरी है, भोजन का समय भी बहुत जरूरी है।
1: मैं यही एक प्रश्न पूछना चाहता था डॉक्टर साहब। बहुत बार लोग जब कब्ज का इलाज जब सोचते हैं तो लोग सोचते हैं कि हाँ, भोजन पर ध्यान देना है, सलाद खाना है, फलों की मात्रा खानी चाहिए, चाहे जो हम सब्जियां खा रहे हैं उसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि भाई ये तो ठीक है कि भाई ये खाना चाहिए, तो फिर कई लोग

0: तो प्लीज शाम के भोजन को बंद कर दीजिए, और रात का भोजन जो आप कर रहे हैं वो 8 बजे के पहले लेना शुरू करिए। भोजन का समय बहुत जरूरी है। आप दोपहर के और शाम के भोजन के साथ सलाद खा सकते हैं, आप सवेरे के नाश्ते के साथ फल खा सकते हैं। आपको बहुत भूख लगती है तो आप शाम को कुछ बना हुआ प्रोसेस्ड फूड, उसकी जगह आप कोई एक फल खा सकते हैं। आपको अपने जो सबसे ज्यादा नुकसान हम लोग को कर रहा है वो हमेशा भोजन करना कर रहा है। हमारी आंतें जो हैं वो हल्का हल्का हमेशा थोड़ा बहुत चलती रहती हैं, मगर हम कर क्या रहे हैं? हम घर से गुजरे तो कुछ खा लिया। भारती, अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो अरे 11:30 बज गया, जरा कुछ मंगा लिया जाए पीने को। अरे कुछ पीने को मंगा रहे, उसके साथ कुछ खाने को भी मंगा लेना। किसी का आज अगर हमारे साथ में काम कर रहा व्यक्ति है, उसका कोई जन्मदिन या कोई सालगिरह हुई, चलो अरे नाश्ते का इंतजाम है आज उन्होंने किया है। हम किसी के घर जब मिलने जाते हैं तो हमारी भारतीय परंपरा के हिसाब से आप क्या पियेंगे, चाय या कॉफी, क्या नाश्ता करेंगे, हम खिलाते जरूर हैं। मैं लोगों को बोलता हूं कि अगर आपको कब्ज है, आप किसी के घर गए, आपने वहां कुछ खा लिया, तो कृपा करके अपने रात के भोजन को छोड़ दी, अपनी आंतों को थोड़ा आराम दीजिए, अपनी आंतों को और ना बोलना सीखिए। यदि आपका पेट आप नहीं पचा पा रहे हैं, आपको परेशानी है, तो दूसरे के पास अगर आप जा रहे हैं तो वहां भोजन मत करिए। बहुत सारे हम लोग ने पुराने उसमें बोला है कि बेल एकमात्र ऐसा फल है जो कॉन्स्टिपेशन ठीक करता है, पपीता बहुत अच्छा फल है जो कॉन्स्टिपेशन ठीक करता है, सेब, अमरूद, ये सारे फल हैं जो बहुत अच्छे से आपके पेट को साफ करते हैं। नारियल पानी पीने, आप पानी नहीं पीना चाहते, नारियल पानी पी लीजिए, पानी में नींबू मिला के पी लीजिए। आपको कुछ स्वाद चाहिए तो थोड़ा सा नींबू मिला लीजिए उसमें, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं आपके लिए। हम कॉन्स्टिपेशन भैया बहुत सारे लोगों को बहुत एक्सट्रीम गर्मी में और बहुत एक्सट्रीम ठंडक में भी होता है। बहुत एक्सट्रीम गर्मी का मौसम होता है तो हमारा पसीना ज्यादा निकलता है, तो हमारे पूरे शरीर से पानी सोख लिया जाता है, हमारी आंतों से भी पानी सोख लिया जाता है, तो जो मल है वो कड़ा हो जाता है। यही चीज एक्सट्रीम ठंडक में भी मानिए कि आदमी ठंड के मारे पानी ही नहीं पीता है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो प्लीज मैं बहुत सारे लोगों को यही कहता हूं कि आप कृपा करके पानी जरूर पीजिए। बहुत सारे लोग जो कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, अगर वो ठीक से पानी पी लेंगे तो ही उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। हम घरेलू नुस्खे, पानी पीना, सलाद खाना, फल खाने पे विचार न करके चलो डॉक्टर के यहाँ चला जाए, या जिसी चूरन का प्रचार है, अरे यार ये चूरन खा लिया जाए, अरे लैक्सेटिव पी लिया जाए, अरे एनिमा लगवा लिया जाए, हम इसी सब में परेशान हैं। अस्पताल में अगर आप चाहते हैं कि आपको न जाना पड़े तो अपने भोजनालय को सुधार लीजिए, सही भोजन कर लीजिए, तो आपको किसी भी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: जब आप ये बात कहते हैं कि अगर मैं अपने भोजनालय में सुधार ले आऊंगा तो फिर मुझे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सलाद की बात की, फलों की बात, आपने ये कहा कि हर दिन के भोजन पर हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम 40 साल के उम्र से नीचे हैं तो हम अपने भोजन पर क्या कर सकते हैं, कितने बार हम खा सकते हैं, और 40 के ऊपर की उम्र अगर हमारी है, 40 और 40 के ऊपर हैं, तो फिर हम सिर्फ 3 वक्त भोजन करें और उसमें भी भोजन का समय शाम का सबसे जो रात्रि भोजन है वो रात को 8 बजे से पहले कर लिया जाए। ये आपने बात कही भोजन से पहले सलाद खाना और सुबह के नाश्ते में फ्रूट खाने के बारे में आपने बात कही। मैं इस प्रश्न को इसलिए पूछ रहा हूं कि बहुत सारे लोग आज भारतीय जनमानस में ये चीज कही जाती है, अरे सलाद विलाद तो ये तो सब विदेशी लोगों की है, ये हमारे यहाँ का सिस्टम नहीं है। और जो लोग खाना शुरू भी करते हैं तो उनको अक्सर टोक दिया जाता है, ये क्या नई नई चीजें ले आते हैं, हमारे यहाँ का ये सिस्टम नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं।

0: तो इस पर भी सही तरीके से समझ होनी चाहिए कि सलाद भोजन का हिस्सा है, सलाद खाना, कच्ची सब्जियां खाना, इस पर पारंपरिक रूप से हम क्या राय रखते हैं?
1: या तो भोजन सुधार लीजिए या व्यायाम करिए, दोनों चीज या आप इसका विचार करेंगे। अगर आप अच्छा भोजन कर रहे हैं तो अच्छा व्यायाम करना पड़ेगा, और अच्छा भोजन का मतलब है बहुत स्वाद वाला भोजन, तला भुना भोजन, उसमें अच्छा व्यायाम की जरूरत पड़ेगी। आप अगर आप फल सलाद ये सारी चीजें खा रहे हैं तो आपका शरीर कम व्यायाम में भी काम कर लेगा। व्यायाम बहुत जरूरी है। कब्ज के मरीजों को भी ये कहा जाता है कि आप जरूर वॉकिंग करिए, योगा करिए, आप जो पेट पे ऐसे आसन जो पेट दबाते हैं आपका, उनका प्रयोग करिए, उससे आपके जो आंतें हैं वो दबेंगी, चलायमान होंगी और आपका पेट साफ होगा। मिट्टी की पट्टी देना, हमारा पेट की गर्म ठंडी सेक देना, इससे भी आदमी को आराम मिलता है। तो हमारे पूरे आप अगर जो भोजन को देखिए, और एक बड़ी सीधी बात है, हम भगवान को अपने परिवार का अंग मानते हैं, हम भगवान को भी फल खिला रहे हैं, हम भगवान को भी भोजन करा रहे हैं, हम प्याज और लहसुन छोड़कर भगवान को सब कुछ खिला रहे हैं। तो जब हम प्रभु को सब कुछ खिला रहे हैं तो हमें खुद खाना चाहिए। आज जैसा भोजन हो गया है उसमें फाइबर की कमी बहुत ज्यादा हो गई है। और आप खुद देखिए भैया, हम लोग ने पिछले अपने टॉपिक्स में बात किया है, पिछले सहज स्वास्थ्य के एपिसोडों में बात की है कि वापस से मोटे अनाज की बात हो रही है। वापस हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हमें अब जौ, बाजरा, कोदो ये सब खाने की बात की है, नाचनी, रागी, ये सब खाने की बात की है। तो अच्छा, कोई भी ये चीज नई नहीं है, एकदम नई नहीं, हम नॉर्मल नहीं रह पा रहे हैं, इसीलिए हमें इसको भोजन में अपने जोड़ना पड़ रहा है। नहीं, हमारी मात्रा कम थी। आप किसी भी शादी ब्याह में जाइए भैया, सबसे पहले प्लेट प्लेट के बगल में सलाद रखा रहता है, और ये हमेशा रखा रह रहा है, हमेशा रखा जा रहा है। तो ये हमारे भोजन का अंग है, ये हमारे भोजन का पार्ट है। तो सलाद को भोजन के साथ और नाश्ते के साथ फल खाने की प्रथा तो बहुत पुरानी है, और ये अच्छी भी है। इतना करने से हमें हाई फाइबर मिल रहा है, बहुत सारे मिनरल्स मिल रहे हैं, विटामिन्स मिल रहे हैं, हमारे अच्छा सुपाच्य कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, अच्छा प्रोटीन मिल रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं।
0: आपने बहुत सुंदर बात कही कि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है कि और हम ये करते आ रहे हैं। आज क्योंकि हम समस्या के कारण इनको जब चिकित्सकों की राय से इन चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि पहले हम चीज़ें करते थे, बीच में हमने छोड़ दिया, आज हम बीमार हो रहे हैं, इसकी वजह से हमें वापस करने की ज़रूरत है। भारत के गांवों में हम प्रायः ये चीज देखते हैं कि लोग रोटी के साथ ककड़ी या फिर किसी प्रकार की कच्ची सब्जी, टमाटर, मूली इत्यादि का प्रयोग करते आ रहे हैं और उन चीजों को लोग ऐसे ही कच्चा खा लेते थे, खेतों से धुलाई करके उधर ही खाने की परंपरा भी थी। फलों की मात्रा के बारे में भी हम ये बात समझते हैं कि भारत में इतने ज्यादा सीजनल फ्रूट्स हैं कि हर मौसम के फल फूल इतने ज्यादा हैं और लोग हमेशा से उनका सेवन करते आए हैं। आज उन चीजों से दूर होते होते आज हम अपने स्वास्थ्य को भी खोते हुए नजर आ रहे हैं, कब्ज जैसी बीमारियों के हम शिकार हो रहे हैं। प्रश्न और भी है मगर समय कहता है कि यहाँ रुकना होगा, मगर आज आपने बताया कि कैसे कब्ज को ठीक करने के लिए हमें स्वयं अपने भोजनालय से शुरुआत करनी है, अपनी आयु के अनुसार भी हमें भोजन पर ध्यान देना है, भोजन में कच्चे फल और सॉरी भोजन में कच्चे सब्जियों और पके हुए फलों को खाने के समय के बारे में भी आपने जानकारी दी। हर दिन ये हमारे भोजन का हिस्सा होना चाहिए ये भी समझ में आया, और भोजन करने का समय क्या होना चाहिए ये भी बात समझ में आ रही है कि सूर्यास्त से पहले पहले भोजन कर लिया जाए, रात को कम से कम 8 बजे से पहले तो भोजन हो ही जाना चाहिए, ये आज के एपिसोड से बातें समझने और सीखने को मिली हैं। आप हमारे श्रोता मित्रों के लिए इतना मार्गदर्शन दे रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी श्रोता मित्र इसका लाभ लेंगे और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे। आज आप हम सब के लिए इन जानकारियों के साथ पहुंचे, के लिए सभी श्रोताओं की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य में करना क्या है, अगर आपके घर में आप स्वयं या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कब्ज से या पेट न साफ होने के कारण चिंतित या परेशान है, तो उसकी मदद करने के लिए शुरुआत आज से ही करनी है। घर में कच्ची सब्जियों की मात्रा को बढ़ाएं, कच्ची सब्जियां खाना शुरू करें, पके हुए फल खाना शुरू करें, अपने भोजनालय से इस समस्या का निवारण कर सकते हैं, और ये बिल्कुल आपके अपने हाथ में है। आज के सहज स्वास्थ्य में इतना ही दोस्तों, फिर मुलाकात होगी, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे।
1: रेडियो मधुबन,
2: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारी। जागरण किसे कहते हैं? जब हम खुद ये जान ले कि हम क्या हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का पूरा सफ़र सोते हुए ही गुजर गया, और जब हमने ये जाना कि अरे हम कौन हैं, तो ऐसा लगता है कि खुद को ही नहीं पहचान पा रहे, खुद से ही खुद का तारुफ कराने की कोशिश करते हैं। ये पूरी श्रृंखला जो हमारी चल रही है उसमें इन दिनों हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की। कई सारे मुद्दे आए, कई सारी बातें आई, कई सारी मिथ्स जो डिप्रेशन से जुड़ी हुई थी वो दूर हुई, लेकिन आज जो मुद्दा हम लेकर आ रहे हैं वो है जब हम या आप विक्टिम्स हो जाते हैं किसी भी हादसे का। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल, जाने माने साइकोथेरेपिस्ट। डॉक्टर गिरीश, अ वेरी वार्म वेलकम।
3: नमस्कार।
2: नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी, आपका स्वागत।
4: ओम शांति।
2: ओम शांति। डॉक्टर पटेल, शुरुआत करते हैं उस मुद्दे से कि अगर एक बड़ा हादसा हो जाए, चाहे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए या फिर कोई आग लग जाए या कुछ इस तरह का इंसिडेंस हो जाए जिसमें पब्लिक आउटक्राई भी है, मैं उस जो पूरा हादसा हुआ है उसका एक विक्टिम हूँ, चाहे मुझे फिजिकली कोई हार्म नहीं हुआ है, फिजिकली हार्म हो जाए, हैंडीकैप हो जाऊँ तब भी प्रॉब्लम है, लेकिन एक इमोशनल स्कार, एक डिप्रेशन सीप इन कर जाता है, बार बार बार बार वो चीज़ याद आती है और उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, तब क्या किया जाए?
3: मैं समझता हूँ इस प्रकार की जो इवेंट्स है उसका कारण एक तो बहुत बड़ा फियर या तो शॉक, क्योंकि मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नहीं फिर भी वो शॉक रहेगा और वो शॉक बार बार बार वो एक जीवन का ऑब्सेशन भी बन सकता है। जो फोबियाज डेवलप होते हैं कई प्रकार के, वो फोबिया इसी प्रकार से डेवलप होते हैं। जैसे ऐसे हादसे है तो हो सकता है कोई व्यक्ति को बड़े आवाज का फोबिया हो जाए, थोड़ा भी कहीं क्रैकर्स भी जैसे दिवाली में फूट रहे हैं तो वो एक्सट्रीम उसको फियर हो जाएगा।
2: तो जब तक वो फिजिकल था तब तक तो मैं फाइट आउट करता रहा, सब लोगों ने कहा, लेकिन जैसे वो नॉर्मल हुई लाइफ, जो इमोशनल स्कार्स थे वो भूल के मैं भी अपने आप को खुद मेहनत करता रहा, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन सीप इन कर जाता है। उस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं?
3: उस डिप्रेशन में मैं सोचता हूँ कि रिवेंज बहुत बड़ी बात है। जैसे हादसों में एक तो हुआ वो फोबिया, वो एक डिफरेंट इश्यू है, उसको भी हमें डिस्कस करना चाहिए, और एक बात है कि जो रिवेंज की एटीट्यूड आती है कि वैसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए, या कई बार टेररिस्ट अटैक्स होते हैं तो देन ऑल्सो नो यू फील लाइक टेकिंग अ रिवेंज। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि वो भी टेररिस्ट बन गए, तो उस इश्यू को एक अच्छे से अच्छा काउंसिलर उस बात को समझ करके, उनके जो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसे अंडरस्टैंड करके एटीट्यूड को चेंज करना सिखा सकता है।
2: कितना काउंसलिंग जरूरी हो जाता है इन हादसों में, इन
3: सबको जरूरी है वास्तव में। बोले ऊपर से हम कहे भी कि आवश्यक नहीं है, मैं तो नॉर्मल हूँ, लेकिन हर एक विक्टिम को वास्तव में थोड़ा एक दो घंटा तो काउंसलिंग होना ही चाहिए ताकि हम ठीक से उसे अंडरस्टैंड कर सके और उस अनुसार सही राय दी जाए।
2: बिल्कुल सिस्टर शिवानी, मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये क्वेश्चन कंटिन्यूस हैमर करता रहता है। ऐसे में भारतीय स्पिरिचुअलिटी, अगर हमारी अपनी सोच को हम देखें कि कार्मिक डेप्थ है, स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली रियली हेल्प्स, काउंसलिंग ऑफ कोर्स हैज टू बी देयर, बट ये जो विक्टिमाइजेशन की बात है जहाँ ऐसे में बिल्कुल सब मेरे साथ क्यों, मैं अच्छा बना था सब कुछ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, कंटिन्यूस ये सवाल सिर्फ लोगों से ही नहीं अपने आप से पूछता रहता है वो आदमी। फिर
4: सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण ही शायद वो बन जाता है, या वो दुख में जाने का कारण ही वो बन जाता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। और ना जनरली लोग कहते हैं मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैं तो सारी जीवन अच्छा ही चल रहा था, तो मेरे साथ फिर बुरा क्यों हुआ। अगर हम लॉ ऑफ कर्मा को भी लें तो यही हमें सिखाया गया कि आप जैसा करेंगे वैसा आपके साथ होगा। तो हम कहते हैं लेकिन मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, या थोड़ा बहुत किसी को दुख दिया, लेकिन इतना बुरा किसी के साथ नहीं किया है कभी जो मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। तो वहाँ कर्म फिलोसफी या कर्म का ज्ञान पता होते हुए भी उसको समझ जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कर्म फिलोसफी सिर्फ एक जीवन पर आधारित नहीं है। एक जीवन पर वो तब तक आधारित थी जब मैं एक शरीर, तब मेरे लिए जीवन क्या है, जिस क्षण में पैदा हुई अब तब से लेकर अब तक मैंने क्या अच्छा किया क्या गलत किया, तो आई यूज टू सेट माई पैरामीटर, मैंने कुछ गलत नहीं किया. लेकिन जब ये समझ में आ गया कि ये शरीर नहीं, ये तो एक कॉस्ट्यूम है, मैं एक आत्मा हूँ जिसने इस शरीर को धारण किया है, तो अब एक सेकेंड के लिए डिटैच हो जाइए, यू नो, टेक योर सेल्फ सेपरेट, कि मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर मैंने धारण किया है. मुझ आत्मा की एज कितनी है?
2: वो तो है ही.
4: इस शरीर की एज 35 है, मुझे पता है. तो देन आई से आई हैव डन गुड फॉर 35 ईयर्स, लेकिन मैं आत्मा हूँ. अब मेरी एज कितनी है और मैंने इस एज में कितना अच्छा किया और कितना गलत किया, दिस हाउ विल आई अंडरस्टैंड. जैसे आपने कहा आत्मा अजर अमर, तो आत्मा क्या कर रही है? इट्स इटर्नल एनर्जी, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है. तो वो एक कॉस्ट्यूम लेती है, टाइम पूरा हुआ, वो भी कब टाइम पूरा हुआ, उस कॉस्ट्यूम को छोड़ा, तो कॉस्ट्यूम को छोड़ते ही वो कहाँ जाएगी? वो एक दूसरा कॉस्ट्यूम लेती है. लेकिन जब दूसरा कॉस्ट्यूम लिया, इस कॉस्ट्यूम में जो जो डीलिंग्स की थी, सपोज आज आपने पिंक कलर की साड़ी पहनी है एंड आज आप मेरे से 100 रुपीज़ ले लेती हैं, तो मैंने आपको 100 रुपीज़ दिए, आप लेकर चले गए, ठीक है. कल आप ब्लू साड़ी पहनकर आती हैं और आप कहें नहीं मैंने तो पिंक साड़ी जब पहनी थी तब आपको 100 रुपीज़ दिए थे, तो वो बात वहीं की वहीं फिनिश हुई. अब मुझे वापस नहीं करने, तो दैट्स नॉट लॉजिकली राइट. आई सेड आपकी साड़ी ने पैसे नहीं लिए थे, आपने पैसे लिए थे. सो इट डजंट मैटर कि आपने कौन सी आज साड़ी पहनी है, यू स्टिल हैव टू रिटर्न my 100 rupees to me.
2: Soul ke depths.
4: Yes. So now when I understand that I am a soul, I understand ki is costume mein shayad maine kisi ke saath kuch galat nahi kiya. Lekin maine bahut sare costumes aur pehle dharan kiye the. Un costumes mein maine kya kya kiya? I don't remember. To aaj mere saath jo kuch ho raha hai, when we understand karma, it's karma of the soul, not karma of the body. To soul ki age ये एज नहीं है. सोल की एज बहुत सारी लाइव्स पहले जा रही है और बहुत सारी लाइव्स में बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ हमने किया है. तो वो सब का डीलिंग कंप्लीट करना, या जिसको हम कहें कार्मिक अकाउंट सेटल होना, वो होना ही है.
2: सो फाइनली आई थिंक इट कम्स डाउन टू एक्सेप्टेंस, सिस्टर शिवानी की, एक्सेप्ट कर लें कि ये कार्मिक डेप्ट है, इसमें कुछ नहीं कर सकते.
4: एक्सेप्ट लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ, यू नो, इट इज नॉट अ फोर. एक होता है कि जबरदस्ती एक्सेप्ट कर लो. इट्स लाइक अगर आपको मुझे वापस करने हैं वो 100 रुपए, आप कहो ठीक है जी जबरदस्ती, मतलब मैं स्वीकार करूँ. जबरदस्ती नहीं है, आपने लिया था. सो इट इज एन अंडरस्टैंडिंग, आपने लिया था, आपको देना है. अगर हम जबरदस्ती एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे वो नहीं होगा.
2: लेकिन फिर अगर मुझे याद ही नहीं कि मैंने लिया था या नहीं, तो मैं एक्सेप्ट कैसे करूं?
4: लेकिन समझ जाना पड़ेगा कि हर चीज एक नियम से चल रही है. हु इज इट अदरवाइज हु डिसाइडेड दैट आई शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट, यू नो, दैट इंसिडेंट? देयर इज नोबडी एल्स. और अगर जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं. वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा, यू नो, ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है. एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है. और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है, तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस. तो परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म. एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी. उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं.
2: Okay.
4: अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ.
3: और ना कनुप्रिया जी, इसमें एक मनोवैज्ञानिक पहलुओं को भी सोचा जाए, और शायद सरल भी हो सकता है. ये सत्य है कि मेरे साथ ये हादसा हुआ, लेकिन औरों को और भी प्रॉब्लम हुए हैं. अगर औरों के जीवन को आप देखो पूरे, तो उतनी ही मैग्नीट्यूड के भी, किसी को कैंसर हो गया, किसी की माँ बचपन में गुजर गई, तो वह देखेंगे तो सच उतने बड़े.
2: डॉक्टर पटेल, लेकिन बात ये होती है कि जब इसमें आ जाते हैं, जब हम उस दौर से गुजर रहे होते हैं, तब हम दूसरे जो हमारे से भी बुरी हालत में, उन्हें भी देख रहे होते हैं.
3: वो गलत है ना?
2: हाँ, लेकिन होता यही है, मतलब
3: इसलिए कि वाई मी एटीट्यूड कभी नहीं कहो.
2: हाँ,
3: यह सोचो, उल्टा तब समय भी दो और ये प्रैक्टिकली सोचो कि भी औरों के भी सामने सचमुच प्रॉब्लम्स हुए. इसमें एक बहुत अच्छी कहानी है जो इंटरेस्टिंग भी होगी. कहते कि एक बार एक व्यक्ति को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ और वो भगवान के पास गया और भगवान को कहा कि मुझे बहुत प्रॉब्लम है, भगवान मैं कितना बदनसीब हूँ, हाँ वाई मी, मुझे ही देखो, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है ना, उसकी गठड़ी बहुत बड़ी थी। फिर भगवान ने कहा कि भी तुझे देखना है कि भी औरों को भी कितने प्रॉब्लम है, कहा हाँ बिल्कुल मुझे देखना है। तो परमात्मा ने सबकी दिखाई गठड़ी, हाँ उसके पिता की गठड़ी दिखाई, उसके चाचा की दिखाई, नेबर की दिखाई, तो जाके उसने खोल के देखा तो उनकी गठड़ी तो और भी बड़ी थी, उनके प्रॉब्लम्स तो और भी बड़े थे। नेबर का बेटा है ड्रग्स लेने लगा था, बहुत सीरियस प्रॉब्लम था, हाँ किसी के साथ वो फेथ टूट गया था, किसी का अफेयर था दूसरे के साथ, तो उसको तो और बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो सब वह देखा तो उसको लगा हाश नहीं, मेरे प्रॉब्लम तो कम है, फिर वो जाने लगा। हाँ अंत और भी इंटरेस्टिंग है इसका, बस थोड़ा सा स्पिरिचुअल है। वो जाने लगा तो भगवान ने कहा जा रहा है? उसने कहा हाँ जा रहा हूँ, अभी मुझे तसल्ली हो गई, मेरी गठड़ी तो छोटी है। फिर से पूछा जा रहा है? कहते हैं हाँ हाँ जा रहा हूँ, अभी तो मैं एकदम सेटिस्फाइड हूँ। फिर पूछा गठड़ी? तो कहा जा रहा हूँ। अरे बुद्धू देख, और सब तो गठड़ी छोड़ के गए यहाँ पर, तू क्यों लेके जा रहा है? तो उसे ट्यूबलाइट हो गया, अरे तो सब मुझे छोड़ के जाना है,
2: लेकिन एक और बड़ी गठरी लेकर आऊंगा जब मैं वापस लौटूंगा।
3: तो दे दो परमात्मा को, हाँ अपने प्रॉब्लम है, एक तो राइट सोचो, साइकोलॉजिकली भी सोचो, स्पिरिचुअली भी सोचो, फिर अल्टीमेटली अपने प्रॉब्लम से भगवान को सौंप दो।
2: बहुत सुंदर ये
4: लगता है। स्पिरिचुअली भी इसको अब साइंटिफिकली प्रूफ कर दिया गया है, क्योंकि जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, पहले हिप्नोटिज्म हम सुनते थे, लेकिन हिप्नोटाइज वो इस जीवन में ही करते थे, यू नो आपकी कोई भी प्रॉब्लम को वो आपको हिप्नोटाइज करके सबकॉन्शियस माइंड से वो बातें निकालते थे कि आपके बचपन में या कुछ क्या हादसा ऐसा हुआ था जिसका ट्रॉमा आप अभी तक एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और अब जो साइंस ने और प्रगति की है, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है, आप हिप्नोटाइज कर रहे हैं, आत्मा है तो आत्मा की कोई एज नहीं है, अगर आप उसको 10 साल पीछे लेके जा सकते हैं, आप उसको 50 साल भी पीछे लेके जा सकते हैं, तो आप उसको 200 साल पीछे भी लेके जा सकते हैं, बात सिर्फ कितना पीछे जाने की है। तो आज कई लोग जो अपनी प्रॉब्लम्स लेके, मेरे को लगता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं, तो हिप्नोसिस में यही पता चलता है कि उसकी जड़ कहीं ना कहीं थी, कोई चीज भी आपके साथ अभी ऐसी नहीं हो रही है जिसका कनेक्शन कहीं पीछे जुड़ा हुआ नहीं था, और जैसे ही उन लोगों को वो कनेक्शन दिखाई देता है वो फ्री हो जाते हैं, बिकॉज दे जस्ट नीड अ लॉजिक कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है।
2: That's what I'm saying. Answer.
4: Once they get the answer, it's very easy to accept. सारे जितने केस स्टडीज ये हुई हैं और इस पे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी पब्लिश हुई है, जैसे ही उसको रियलाइज हुआ अच्छा ये हुआ, उसका रिजल्ट ये है, जस्ट गेट्स ओके। तो अब हमें वी डोंट नेसेसरी हैव टू गो थ्रू दैट पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वी नो देयर वाज अ पास्ट लाइफ एंड वी नो दिस इज समथिंग बिकॉज ऑफ दैट, सो इट्स जस्ट इजी टू एक्सेप्ट।
2: बट देन अभी आपने ये भी कहा कि थॉट जो है अब, क्योंकि एक बार हम विक्टिम हो गए, हम उस डिप्रेशन में चले गए हैं, नाउ द थॉट दैट हाउ टू कम आउट ऑफ इट, यू नो नाउ दैट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज नाउ द टाइम इज लाइक व्हाट टू डू नेक्स्ट, you know how to come out of it. So matlab ek therapist ke nate bhi kya aap kaise kahenge ki wo bahar nikle, and of course agar hum spiritually bhi dekhe to wo thought ko kis tarah se mold karna hai ki hum bahar nikal sake.
3: Aise hadson mein ek to badle ki bhavna nirman hoti hai turant, aur bhal wo ye main nahi keh raha hu ki bhi nahi honi chahiye, kyunki aapke sath badi samasya hui hai to naturally man ke andar wo vichar chalenge, परंतु उसके पीछे एक रीजनेबल टाइम दो। कई बार मैंने देखा है सारा जीवन वहीं चला जाता है, 24 घंटे बस यही सोचते हैं कि भी कैसे मुझे न्याय मिले, है ना, कैसे कोर्ट के चक्कर लगा रहे हो, भल करिए परंतु ये सोचिए कि जीवन में और भी बहुत कुछ है।
2: ऑब्सेशन बन जाता है,
3: ये ऑब्सेशन नहीं बनना चाहिए कि भी और चीजें मुझे करनी है, मेरी जो टैलेंट्स है उसको निखारना है, जीवन में आगे बढ़ना है, यह बात भी साथ साथ में होनी चाहिए। और एक जो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं कि इसे फ्यूचर में प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करो, क्योंकि तभी बिकॉज यू हैव सफर्ड।
2: नहीं पर ये जो जब हम इस हादसे की बात करते हैं इसमें तो हम फ्यूचर में नहीं प्रिवेंट कर पाएंगे, लेकिन जो इंसिडेंट आप बात कर रहे हैं, जैसे हम एक्चुअली जो मेजर यू नो डिप्रेशन से गुजरते हैं वो है चाइल्ड अब्यूज और रेप विक्टिम्स जो हैं, कि रेप विक्टिम अगर आप है वो इंडिविजुअल हो जाते हैं।
3: यू आर राइट, रेप विक्टिम की बात ठीक नहीं, यहाँ पर भी मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल टेररिस्ट अटैक्स है, कि नहीं वहां इफ आई एम अ विक्टिम से, फिर मैं अपनी लाइफ को डेडिकेट करूँ कुछ तरीके से, ताकि नहीं लोगों को ट्रेनिंग में दे सकता हूँ कि भी कैसे बचना है और कुछ, है ना भाई, टेररिस्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी कुछ एफर्ट की जाए. ब्रह्मा कुमारीज तिहार जेल में भी जाकर के उन्होंने कई मेडिटेशन के प्रोग्राम्स किए हैं. भले हमारे पास एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक नहीं कि कितना परिवर्तन आया होगा, परंतु अगर 10% भी परिवर्तन आया है तो वो बहुत बड़ी वर्थवाइल चीज है. ब्रह्मा कुमारीज ने डाकुओं में भी चेंज लाए उसके लिए एफर्ट किए. डाकू पंचम सिंह की जो बहुत अच्छी तरह से सुनाते हैं, करीब 2 घंटे तक मेरा उनके साथ डिस्कशन हुआ था. तो कहते थे इम्पॉसिबल था कि अगर ये बहनें वहां नहीं आती तो मेरे में बदले की भावना थी. जैसे मैं छूटता रिवेंज लेता, लेकिन इसकी मेरे माइंड के ऊपर इफेक्ट हुई. तो ऐसी कुछ एक्टिविटी हम कर सकते हैं जिससे वो प्रिवेंट हो
2: और कहीं ना कहीं इंस्पायर होके, यू नो, इंस्पिरेशन जो है. और कहा यह जाता है कि जो खासकर मुजरिमों के लिए कहा जाए कि जो इतने प्लानर्स होते हैं, अगर वो पॉजिटिविटी में चले जाएं, सो दे कैन एक्चुअली बिकम सच गुड लीडर्स
4: एंड प्लानर्स. दे हैव द क्वालिटी,
2: यस, यू नो. तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिविटी में आ जाए. अगेन विक्टिम्स के बारे में अगर हम बात करें, खासकर रेप विक्टिम एक ऐसा विक्टिम है जिसके बारे में, जिसको जो जिस दौर से गुजरता है उस पूरे हादसे के बाद, वो एक बहुत लंबा वक्फा होता है. बहुत लंबे टाइम तक उस पूरे इंसिडेंट से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है. साइकोलॉजिकली ऑल्सो अगर हम देखते हैं तो वो बाहर कैसे निकल सकती है या कैसे निकलना चाहिए, और हाउ स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प हर कार्मिक. उसका ये सवाल कि मेरे साथ क्या हुआ, तो चलिए कार्मिक डेप्थ था. अब व्हाट नेक्स्ट, देयर हैज टू बी अ नेक्स्ट, देयर हैज टू बी अ टुमारो. सो हाउ इज इट दैट शी कैन कम आउट ऑफ इट.
3: या पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि इट्स एक्सट्रीम स्ट्रेस. कहीं डॉक्टर राहे ने एक पूरा स्केल तैयार किया है, उसमें बहुत सारे प्रश्न है और ये सारे प्रश्नों के पॉइंट्स भी दिए गए कि भी इसको कितनी स्ट्रेस होगी, जिसमें 100 points दिए हैं कि नियर रिलेटिव की डेथ हो जाए तो दैट इज 100 point. नो मैरिज इज 50 point, क्योंकि दैट इज ऑल्सो स्ट्रेसफुल. तो मैं कई बार सोचता हूँ कि जो रेप विक्टिम्स की बात है, इट कैन बी इवन 10,000 points, विच इज एक्सट्रीमली सीवियर. लेकिन फिर भी देखा है कि ऐसे सिचुएशन में हर एक का रिएक्शन डिफरेंट होता है. भी कहीं तो डिप्रेस्ड फील करते, दे कमिट सुइसाइड इवन, नो. सम कीप दैट रिवेंज थ्रू आउट देयर लाइफ. कहीं तो डरने लगते हैं, ऑलवेज दे हैव अ फियर. और भी कुछ लोग है, ऑल दैट इज रेयर, कि ऐसे भी है कि भी जिन्होंने इसको अपना एक सोशल वर्क बना लिया, कि भी और भी जो इस प्रकार के विक्टिम्स है उनको जाके मिले, उनको काउंसिलिंग दी, अपना अनुभव सुनाया, हाउ टू कम आउट.
2: डॉक्टर साहब, यहाँ एक सवाल बहुत से दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि ये जो विक्टिम है, क्या ये कभी इस ट्रॉमा से बाहर पूरी तरह से आ सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है कि ये जो इमोशनल स्कार है लाइफ का इतना बड़ा, इसे पूरी तरह से बाहर आया जा सकता है? विल दे एवर बी एबल टू लीड अ नॉर्मल लाइफ?
3: नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑल्सो एग्री, क्योंकि नहीं कई बार कहना सहज है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल यू कैन.
2: दैट्स व्हाट,
3: एंड इवन इफ यू कैन कम आउट टू 90% से, है ना, 80%, 90% भी आप बाहर आ गए और अपनी लाइफ को नॉर्मल बना दिया, देन दैट इज ऑल्सो इफेक्टिव.
2: सिस्टर शिवानी, काउंसलिंग, स्पिरिचुअलिटी, द होल एस्पेक्ट ऑफ नोइंग माई सेल्फ, विल इट हेल्प?
4: लॉट्स, लॉट्स.
2: कैन आई कम आउट 100%?
4: बिकॉज आई थिंक इस चीज़ में इससे ज़्यादा और कोई चीज़ हेल्प शायद नहीं कर सकती है, क्योंकि कोई और काउंसलिंग बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी इसमें, क्योंकि द पेन इज़ टू मच, यू नो. बट नाउ मे बी ज़्यादातर इस तरह के मन में क्या चलता होगा, अपने आप से नफरत भी हो जाती है, यू नो. दूसरे से तो होती है, लेकिन अपने अंदर लगता है कि मेरे अंदर कुछ, यू नो, अपने आप से नफरत जो होती है ना, वो ज़्यादा ट्रॉमेटाइज करती है दूसरे से, क्योंकि दूसरा शायद अब आपकी आंखों के सामने नहीं है, लेकिन खुद को देख देख के आपको अपने आप से प्रॉब्लम होने लगती है और लगता है मेरे अंदर कुछ कमी थी जिसने इस तरह का घटना.
2: Yeah,
4: you are continuously bringing it in front of you. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द अंडरस्टैंडिंग कि नथिंग वॉज रॉन्ग विद मी, यू नो आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन. ये किसी और की कमजोरी थी, मेरी कमजोरी नहीं थी. वो सबसे पहले, क्योंकि बहुत लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है जब ये हो कि ये मेरी कमजोरी थी, मेरी कोई गलती थी. तो सबसे पहले वो अंडरस्टैंडिंग कि ये मेरी कमजोरी नहीं थी, दिस वॉज समबडी एल्सेज वीकनेस. और दूसरा, ओके आई इट मे साउंड ईजी बट इट इज़ द ओनली थिंग विच मेक्स सेंस इज आई हैव गॉन थ्रू समथिंग. एक दर्द है, अब मैं इस दर्द को कितना टाइम यू नो लेकर चलना चाहती हूँ. एक दिन, दो दिन, दस साल या पूरी जीवन, यू नो दैट्स इन माई हैंड, डेफिनेटली वो मेरे हाथ में है. तो कहीं ना कहीं अगर अपनी लाइफ में अपने आप को एक अलग डायरेक्शन में ले जाएं, यू नो अपने आप को किसी चीज़ में ऑक्यूपाई कर लें. और इसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कि आप नॉर्मल रहें. जितना आप नॉर्मल रहते हैं चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं. जितना आप सिंपथाइज करने की कोशिश करते हैं या बार बार उस इंसिडेंट को यू नो रीलिव करते हैं या उसको डिस्कस करते हैं, वो बार बार जागृत होता जाता है. बिकॉज हियर द ओनली थिंग दैट विल हेल्प इज फॉरगेट एंड फॉरगिव. Nothing else.
5: Yeah, the anger, you know.
4: Nothing
5: See,
4: else
5: when
4: will
5: the self-pity
4: help.
5: comes, the anger also comes.
4: Absolutely. Yes. So तो आपको forget करना पड़ेगा, लेकिन भूलना easy नहीं है जब तक आप क्षमा नहीं कर सकेंगे. अब अगर logically कोई सोचे तो कहे ऐसे व्यक्ति को हम क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे हम अपने आप को दर्द पहुंचाते रहेंगे. तो we will have to, you know, let go of that person because that person is still here. You know, physically नहीं है, लेकिन मैंने उसको hold करके रखा हुआ है अपने mind में. I will have to pick that person out from here and throw him out forcefully. बार बार वो thought जितनी बार भी मेरे सामने फिर आती है, no, that pain was for that one day, not again. लेकिन बार बार करने से I am inflicting that pain on myself. You know, so वो उस process से गुजरने के लिए. और दूसरा, किसी भी हादसे में, चाहे ये या कोई accident या handicap, मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान बहुत ज़्यादा help करता है. क्योंकि एक है कि मुझे कुछ हो गया है और एक है मेरे शरीर को कुछ हो गया है. Two things टोटली डिफरेंट.
5: मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता,
4: मुझे कुछ नहीं हो
5: ये
4: सकता.
5: एहसास
4: मुझे वो ही हो सकता जो मैं खुद को दूंगा, और वो है दर्द. शरीर का अंग खराब हो सकता है, लेकिन वो मेरे शरीर का, यू नो द मिनट आई से मेरा शरीर, इट बिकम्स जैसे किसी और को हुआ है. यू नो, और जब किसी और को होता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती है. लेकिन मुझे हुआ है, मुझे हुआ है, बार बार मुझे हुआ है, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ पेन. तो वो पेन हम अपने आप को देते हैं. जो एक्सीडेंट था उसने मेरे शरीर को तकलीफ दी, दर्द हम खुद को देते हैं. तो वो जब अपने आप को हम सेपरेट कर देते हैं विद अंडरस्टैंडिंग, इट्स जस्ट ईजियर टू अंडरस्टैंड.
3: और यहाँ पर जो मैंने अनुभव किया है कि रिलीजियस टीचिंग्स आर ऑल्सो वेरी पावरफुल ना. वो उदाहरण याद आता है कि जो प्रिस्ट और उनके बेटों को उड़ीसा में ना सभी पूरा जिंदा जला दिया गया.
4: वेरी गुड केस
3: ना. तो एक साल के बाद उनकी पत्नी का एक इंटरव्यू आया था. उनको पूछा कि भी आपको कैसा लग रहा है वैसा हुआ, तो बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि जिस दिन यह हादसा हुआ उसी दिन मैंने उनको माफ कर दिया था. एंड नो लॉ विल टेक इट्स ओन एक्शन. उन्होंने ये भी कहा कि भाई लॉ के अनुसार सजा मिलेगी, लेकिन मैंने तो उनको माफ कर दिया.
5: क्योंकि
3: तो ये पावर साइकोलॉजी में नहीं हो सकती है ना. कुछ भी करो मनोविज्ञान या नहीं कर सकते. आध्यात्मिक जो उनकी बिलीफ सिस्टम थी उसके कारण यह पावर आई.
5: एंड ब्यूटीफुल एक्चुअली. फॉरगिव करना, माफ करने से मैं अपने आप के लिए ही शांति कहीं ना कहीं तलाश.
4: क्योंकि सबसे पहले मैं अपने आप को माफ करती हूं. सी एनीथिंग यू गिविंग टू द अदर पर्सन वो आपके लिए है. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. तो दूसरा, हम दूसरे को क्या माफ करेंगे. लेकिन खुद को जब कर देते हैं तो वी बिकम वेरी लाइट इनसाइड. एंड दिस एग्जांपल इज बिकॉज दैट लेडी इज लीडिंग अ ब्यूटीफुल लाइफ. जबकि उनके साथ जो हादसा हुआ, इट्स डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट. तो इट वाज जस्ट फॉरगिवनेस.
3: और भूलने के लिए भी माफ करना. अल्टीमेटली व्यक्ति भूलना चाहता है.
4: जब क्षमा करते हैं तभी भूल सकते हैं.
3: वो रिपीटेशन स्टॉप होगा और भूल.
5: दैट्स व्हाट यू सेड, फॉरगिव एंड देन फॉरगेट.
4: फॉरगेट करना नहीं पड़ेगा ना, वो भूल जाएगा.
5: हाँ.
4: हम लोग जनरली कहते हैं मैं भूल गया ना. अगर आपने ये तो बहुत बड़ी छोटी बातों में भी आपने मुझे ये कहा, मैं भूल गया जी, मैं भूल गया. अंदर फॉरगिव नहीं किया तो तब तक भूल नहीं सकते. फॉरगिव किया तो वो याद ही नहीं आएगा. और नहीं तो 10 साल बाद भी याद आएगा, आपका एक एक कड़वा बोल याद आएगा. तो इट्स नॉट फॉरगिवन, सो इट्स नॉट फॉरगॉटन.
5: बिल्कुल. डॉक्टर गिरीश पटेल, एफएसएस शिवानी, बहुत सार्थक हमारी बातचीत रही. ये एक्चुअली मुद्दे ऐसे नहीं हैं जिन्हें हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, इस पर अभी आगे अगली कड़ी में भी ज़रूर बातचीत करेंगे। कुछ और विक्टिमाइजेशन की बात जो है, कुछ और विक्टिम्स ऐसे हैं जो सारी ज़िंदगी निकाल देते हैं और वो तो कह भी नहीं पाते, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है वो चाइल्ड अब्यूज़ होता है, लेकिन वो हम अगली कड़ी में पहुँचेंगे। आज जो बातचीत रही अल्टीमेटली यही सामने आई बात की, फॉरगिव एंड देन यू ऑलवेज फॉरगेट, यू नो, एंड समवेयर जो ये बड़े हादसे हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है उसमें कार्मिक डेप्ट उसमें हमारे हाथ में नहीं है, एक्सेप्टेंस हमारे हाथ में है कि ये होना था, हो गया, कोई बात नहीं, अब आगे ज़िंदगी है। डॉक्टर गिरीश पटेल, सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच। डिप्रेशन से जुड़ी और भी बातें हैं जो आपके दिमाग में होंगी, जो आपको सता रही होंगी और शायद आप हमारे साथ उन्हें शेयर करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप हमें फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं या ईमेल द्वारा भी हमें भेज सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। विक्टिम्स हम में से हर कोई कभी ना कभी हुआ है, क्या विक्टिम्स बनके हम अपनी सारी ज़िंदगी इसी तरह से गुजार देंगे या फिर फॉरगिव एंड फॉरगेट यानी कि माफ़ करना और फिर भूल जाना इस पद्धति को अपनाएंगे, सोचिए। और अगली कड़ी में कुछ और ऐसी ही बातें, कुछ और ऐसे ही मुद्दे लेकर आपसे मुलाकात करेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने दोषों पर ध्यान देने की बजाय अपनी अच्छाइयों को पहचाने और उन्हें विकसित करें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि वो जो सारे कंसर्ट में जो पार्टिसिपेंट थे वो पूरी तरह अंधे थे, चाहे वो गीत गायक क्यों ना हो, बजाने वाले क्यों ना हो, दे वर ऑल पीपल हु वर नॉट एबल टू सी। एक डेढ़ घंटे का जब मैं ये प्रोग्राम सुना मुझे इतना अच्छा लगा बिकॉज इट वॉज सच अ वंडरफुल कलरफुल शो बाई दोज पीपल हु हैव नेवर सीन कलर इन देयर लाइफ। उसी तरह जीवन एक बहुत सुंदर गीत है, उसको गाना बजाना आना चाहिए। अगर हम उन गायक की तरह गीत नहीं गा सकते हैं, अगर हम लता मंगेशकर की तरह गीत नहीं गा सकते, नथिंग टू वरी, लेकिन हमारे शब्द तो मीठे हो सकते हैं ना, हमारे शब्द तो सुखदायी हो सकते हैं ना। इसलिए मुझे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मैंने एक स्लोगन पढ़ा जिसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ ये बोलना, पहले सुनना, और वो है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच कर बोलो। क्योंकि हमारे शब्द जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है। सभी बोलेंगे, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच कर बोलो। ठीक है।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तब सुधार का पहला कदम उठाते हैं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

0: राम राम, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। 8:27 रेडियो मधुबन की घड़ी पर 12 अगस्त 2026 है वेंसडे और मैं हूँ आरजे शुभा। लेकर के आई हूँ कार्यक्रम नई किरण। आज के दिन विशेष में शक संवत 1948 श्रावण कृष्ण अमावस्या बुधवार विक्रम संवत 2083 है। अंग्रेजी तारीख है 12 अगस्त सन 2026। सूर्य दक्षिणायन उत्तर गोल वर्षा ऋतु है। राहुकाल दोपहर 12:00 के 00 मिनट यानी कि 12 बजे से दोपहर 1:30 तक है। अमावस्या तिथि रात्रि 11:06 तक। उपरांत प्रतिपदा तिथि का आरंभ है। पुष्य नक्षत्र प्रातः 7:59 तक। उपरांत अश्लेषा नक्षत्र का आरंभ है। व्यतिपात योग दोपहर 3:26 तक। उपरांत वरियान योग का आरंभ है। चतुष्पाद करण दोपहर 12:27 तक। उपरांत नागव करण का आरंभ है। चंद्रमा दिन रात कर्क राशि पर संचार करेगा। सूर्य उदय का समय प्रातः 5:48। सूर्य अस्त का समय शाम को 7:03 पर। चंद्र उदय का समय नहीं है क्योंकि अमावस्या है। चंद्रास्त का समय है शाम को 6:51 पर। सूर्य और चंद्रमा की राशियां। सूर्यदेव कर्क राशि में स्थित है, चंद्रदेव भी कर्क राशि में स्थित है। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे पंचांग के साथ और राष्ट्रशा के 1948 21 गते 27 है। श्रावण बुधवार है आज और इस्लामी हिजरी है 1448। 28 सफर बुध नस्त्रा है आज के दिन। हरियाली अमावस्या है आज। विक्रम साराभाई जी के आज के दिन जयंती है। विश्व हाथी दिवस भी आज है तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी आज के दिन है। तो इस मोड़ पर आइए, एक हमारे श्रोता मित्र जुड़ना चाहते हैं, उनसे करते हैं हम। हेलो, नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आपका।
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्ते भूरलाल जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया हो। आज हरियाली अमावस्या है, बरसात का रिमझिम रिमझिम बरसात चल रही है हमारे इधर। तो आपके इधर कैसे है?
0: यह थोड़ी बहुत जस्ट ड्रिजलिंग आप कह सकते हैं, एक बूंद बरसती है फिर बंद हो जाती है, ऐसा है। लेकिन खुशनुमा माहौल है, खुशनुमा मौसम है जी।
1: बढ़िया, गणेश जी का गाना हो जाना चाहिए। गणेश जी गजानन जी का गाना थोड़ा मिला सर
0: जी? गजानन जी के गाने भी चलाएंगे। और
1: नमस्कार, और आपको
0: नमस्ते, प्रणाम प्रणाम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे हमारे भूरी लाल जी। और जैसे कि आज हरियाली अमावस्या भी है और इसके साथ साथ इसका बहुत महत्व बताया जाता है हिंदू धर्म के अनुसार। जिस तिथि में चंद्रमा और सूर्य साथ रहते हैं वही अमावस्या तिथि है, इसे अमावासी भी कहते हैं। और इसके साथ सीनी वाली या फिर दर्श नाम भी इसे प्राप्त है। हरियाली अमावस्या में आज कर्क राशि पर सूर्य और चंद्र दोनों हैं। इसके साथ साथ आज हाथी दिवस भी है। हर साल 12 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है। हाथी धरती पर पाया जाने वाला सबसे विशाल प्राणी है। हाथी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया के हाथियों के प्रति जागरूकता और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए है। एलिफेंट की इंट्रोडक्शन फाउंडेशन द्वारा साल 2011 में इसकी पहल की गई थी कि ऑफिशियली 12 अगस्त 2012 को इसे मनाने की घोषणा हुई थी। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अभियान 1972 में हाथियों को सर्वोच्च दर्ज दिया गया है। भारत में हाथियों की गिनती आखिरी बार 2017 में हुई थी। उस वक्त भारत में हाथियों की कुल संख्या 30,000 थी, पर जैसे जैसे साल आगे बढ़ता रहा है संख्या में कमी आती रही है, जिस और ध्यान देने की ज़रूरत है। और मुख्य कारण मुझे लगता है कि ह्यूमन और जानवरों का कन्फ्लिक्ट जो होता है, दोनों में बैलेंस नहीं रह पाता है, क्योंकि हम उनके ज़मीन पर जाकर बस जाते हैं तो उन्हें खाने पीने को फिर नहीं मिलता है। तो थाईलैंड के संगठन एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन ने कनाडा की फिल्म निर्माता पेट्रिशिया सिम्स के साथ मिलकर हाथी दिवस मनाने की पहल की थी। और एशियाई हाथियों की वैश्विक आबादी का 60% से अधिक भारत में है। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई आज के हाथी दिवस के साथ। यहाँ पर लेते हैं एक अल्पविराम, मिलते हैं अल्पविराम के उस पर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: पुनः आप सभी का स्वागत है। सुन रहे हैं आप रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। कार्यक्रम है नई किरण और आज हरियाली अमावस्या है। हर साल हरियाली अमावस्या 12 अगस्त को ही पड़ रही है। इसी दिन सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है आज के दिन, लेकिन ये भारत में असर नहीं होगा, क्योंकि भारत में दृश्यमान इसलिए नहीं होगा, इस ग्रहण का असर भी भारत पर नहीं पड़ेगा। हरियाली अमावस्या का मुहूर्त 12 अगस्त को अर्धरात्रि 1:52 पर शुरू हुआ है। तिथि का समापन रात्रि 11:06 पर रहेगा। भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल नहीं माना जाएगा, लेकिन सूर्य ग्रहण का असर सभी राशियों पर पड़ेगा। अमावस्या के दिन पितृदोष और गृह दोष से जुड़े उपाय करते हैं हरियाली अमावस्या पर। हरियाली अमावस्या पर सूर्य ग्रहण का सूतक नहीं लगेगा और इस दिन लोग दान पुण्य करते हैं। इस दिन घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए भगवान शिव का पूजन करते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती में स्नान करते हैं। और ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये ब्रिटेन, स्पेन, आइसलैंड, ग्रीनलैंड आदि जगह पर दिखाई देगा। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस विश्व भर में अधिकतर युवा विलासिता और सुख सुविधा को देखते हुए, कंफर्ट को देखते हुए अपने देश की ज़मीन को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, जिसे राष्ट्र निर्माण में दिक्कतें आ रही हैं। युवा किसी भी राष्ट्र की शक्ति होते हैं और विशेषकर भारत जैसे महान राष्ट्र की ऊर्जा तो युवाओं में ही निहित है। ऐसे में अगर युवाओं का भारी संख्या में प्रवासन होता है तो इससे न केवल उस राष्ट्र की अक्षमता प्रदर्शित होती है, अपने नौजवानों को पर्याप्त साधन नहीं दे सकता, लेकिन इसे देश के विकास का सशक्त आधार भी समाप्त हो जाता है। वर्तमान सदी में युवा वर्ग मानव सभ्यता के ऐसे मुकाम पर खड़ा है जब मानव विकास गति का जो रथ है जेट विमान की गति से भाग रहा है। ये तीव्र विकास गति जहां अनेकों उपलब्धियां, सुविधाएं और चमत्कार लेकर आ रही है, वहीं पर युवा वर्ग के लिए तीव्र गति से भागने की क्षमता भी पा लेने की चुनौती है, क्योंकि यदि युवा वर्ग इतना क्षमतावान है कि वो तेजी से परिवर्तन को समझ सके, तो उसे अपना सके, नई खोजें और नई तकनीकों का जानकारी भी प्राप्त कर अपनी कार्यशैली परिवर्तित कर सके, तो ही वो अपने जीवन को सम्मानजनक एवं सुविधा संपन्न बना सकता है और विश्व स्तर पर अपने अस्तित्व को बनाए रख सकता है। जैसे आजकल AI को अच्छे से समझ करके जेन जी है या युवा है, इसे यूज़ करते हैं अपने कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, और भारत को कहा जाता है युवाओं का देश। ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी आज के दिन विशेष के साथ। आज विक्रम साराभाई जी, इनकी जयंती है। जन्म इनका 12 अगस्त 1919 में हुआ था। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है इन्हें, और इनका पूरा नाम डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई था। इन्होंने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां पर पहुंचाया और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर देश की उपस्थिति दर्ज करा दी। विक्रम साराभाई ने अन्य क्षेत्र में भी सम्मान रूप से पुरोगामी योगदान दिया है। वो अंत तक वस्त्र, औषधीय, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे थे। डॉक्टर साराभाई एक रचनात्मक वैज्ञानिक, एक सफल और भविष्य दृष्टा उद्योगपति, सर्वोच्च स्तर के प्रवर्तक और एक महान संस्थान निर्माता और एक भिन्न प्रकार के शिक्षाविद, कला के पारखी, सामाजिक परिवर्तन के उद्यमी, एक अग्रणी प्रबंधन शिक्षक तथा और भी बहुत कुछ थे। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना उनकी महान उपलब्धियों में से एक है। तो आइए इस मोड़ पर एक हमारे रेडियो मित्र हमसे बात करना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो नमस्ते, रेडियो पर आपका स्वागत है।
3: दीदी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, सूर्यदय बोलता हूँ, जटाना से, कैसे हो दीदी?
2: जी बढ़िया सुरेश भाई, आप कैसे हैं?
3: बस अच्छे, मैंने सोचा आज तो संडे भी नहीं है, शनिवार भी नहीं, आज गुड।
2: आज रमेश जी कुछ अन्य सेवाओं के कारण बाहर गए हुए हैं।
3: कोई बात नहीं, तो मैंने सोचा आज तो शनिवार नहीं है, दीदी आए तो पता नहीं क्या, तो बाद में पता चला गया, चलो आज तो दीदी शायद हमारे रमेश भाई नहीं, इसलिए
2: जी
3: आपकी जो आप बातें कर रहे हैं बहुत अच्छी बातें हो रही है जी।
2: जी जी,
3: और अपने जो बताया युवा दिन के बारे में, तो आज विश्व युवा दिन भी है और युवाओं की तो बात करें तो दीदी कि जो अभी काम हो रहा है तो युवाओं बहुत जोरों से आज काम कर रहे हैं सभी जगह पे। मैं बताऊं तो हमारे गांव में भी कई सारी जो वो योजनाएं चल रही हैं अभी हमारे बाजार में, तो गटर लाइन की चल बात हो रही है, लाइन वो लगा रहे हैं और पानी की भी नए बदल रहे हैं, और वो सभी युवा नहीं करते थे क्योंकि आज देखो पहले तो क्या था कि बहुत बुजुर्ग करते थे, लेकिन आज तो युवाओं के हाथ में सब कुछ लिया है वहीवट यानी के, तो युवा ने सारी जोर से सब काम कर रहे हैं। हमारे भी बाजार में बहुत पुरानी जो गटर लाइन थी तो आज नया लाइन लगा रहे हैं और जोर शोर से काम चल रहा है, रात को पूरी पूरी रात तक काम चलता है
2: जी।
3: और जैसे बोले ऐसे जड़ती काम कर रहे हैं युवा लोग, तो युवा लोग तो अच्छे काम कर रहे हैं सभी जगह पे। देखो आज कोई ऑफिस में है, कोई गांव में है, कोई शहर में, कोई भी काम हो तो युवा आगे आके देश के लिए चाहे जो कुछ भी हो तो कर सकते हैं, कर सकते हैं।
2: राइट राइट,
3: बहुत अच्छा लगा दीदी आज युवा देश का दिन है, और विक्रम साराभाई की जो बात की तो वो भी एक हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी वो जनक कहलाता है।
2: बिल्कुल,
3: तो डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्मदिन है, तो आपको शुभकामनाएं, बहुत
2: धन्यवाद, पूरे देश को शुभकामनाएं,
3: शुभकामनाएं।
2: ऐसे महान व्यक्तित्व देश में कई बार ही होता है, कभी कभी
3: जी। आज बुधवार है तो चलो सभी हमारे गणपति जी की कृपा बने रहे, हमारे कई सारे मित्र है, हमारे बुरेलाल जी है, हमारे बुरा राम जी को भी हमारा राम राम है, हमारे यहाँ कंचन भाई है, दयाराम भाई है, हमारे सुभाष भाई है, सब को नमस्ते दीदी, और गणपति का गाना जरूर सुना देना।
2: बिल्कुल सुनाएंगे जी, आपका दिन भी शुभ हो, मंगल में हो, नमस्ते, धन्यवाद कॉल करने के लिए। ये थे हमारे सुरेश भाई दर्जी फ्रॉम जुटाना से, और विक्रम साराभाई को भी वो याद कर रहे थे, कहा कि हमारे इसरो के वो जनक हैं, बिल्कुल हमारे स्पेस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक ही माने जाते हैं वो, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर भी विक्रम साराभाई रह चुके हैं, और उन्होंने अहमदाबाद में स्थित अन्य उद्योगपतियों के साथ मिलकर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर साराभाई द्वारा स्थापित बहुत सारे संस्थान हैं, सुविख्यात संस्थान इंडिया में हैं, जैसे PRL अहमदाबाद है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है, और इसके साथ साथ कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद है, और IIM भी उन्होंने स्थापित किया है, फिर दर्पण अकादमी फॉर फार्मिंग आर्ट्स ये भी उनके द्वारा स्थापित किया हुआ है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम है, और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद है, कल्पकम में भी फास्टर ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर भी उन जो FBTR ये भी उनके द्वारा स्थापित किया हुआ है। तो इस प्रकार से बहुत सारे संस्था की स्थापन भी उन्होंने किया जो डेडिकेटेड है परमाणु ऊर्जा के लिए और रिसर्च के लिए। तो ऐसे विक्रम साराभाई जी को हम शत शत नमन करते हैं उनकी जयंती पर। इन्होंने शरीर त्याग किया था 1971 में 30 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम में। इस मोड पर एक और हमारे रेडियो मित्र जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो नमस्ते, आपका स्वागत है रेडियो मधुबन पर।
4: हेलो
2: जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग,
4: भूरा राम बोल रहा हूँ।
2: जी भूरा राम जी, कैसे हैं आप?
4: बस ठीक है। आप कौन? ऊषा बहन जी बोल रहे हैं?
2: नहीं, मेरा नाम शुभा है।
4: हाँ?
2: मेरा नाम शुभा है, शुभ वाला शुभा।
4: अच्छा, चलो फिर बात में आपका प्रोग्राम सुन रहा था। मैं ऊषा बहन जी बोल रहा हूँ,
2: उषा बहन 10 बजे आएंगे, लाइव करेंगे आज 10 बजे, ठीक है?
4: अच्छा।
2: जी, आपकी तबीयत ठीक है? जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए भूरा राम जी।
4: ओके सर,
2: आपका दिन शुभ हो। तो ये थे हमारे भूरा राम जी। आइए यहाँ पर लेते हैं कल विराम, सुनते हैं एक और भजन, फिर वापस आएंगे भजन के उस पार। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर ये है कार्यक्रम नई किरण और मैं हूँ आरजे शुभा, और आज है बुधवार। बिल्कुल, और नई किरण प्रोग्राम पर मैं आई हूँ आज। गुड मॉर्निंग अबू नहीं है आज, रमेश जी बाहर कुछ सेवार्थ गए हैं, तो आप सुनेंगे बहुत जल्द उनको कुछ दिनों के बाद।

0: हेलो, मेरा नाम दीपक है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुन रहे हैं आप। आइए चलते हैं अबुरुड रेलवे स्टेशन की ओर, जानते हैं आने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारियाँ। वंदे भारत एक्सप्रेस 9:05 पर पहुंचने वाली है। 1, 2, 4, 6 संख्या वाली गाड़ी अबुरुड रेलवे स्टेशन पर, संभावित प्लेटफॉर्म क्रमांक है 2। गाड़ी संख्या है 20694। जोधपुर एक्सप्रेस 9:10 पर पहुंचेगी। वहीं पर जम्मू तभी साबरमती एक्सप्रेस 1922 9:45 पर पहुंचेगी। जोधपुर बेंगलुरु एक्सप्रेस 1:06:33 10:10 पर पहुंचने वाली है। जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 20496 10:30 पर पहुंचेगी। और वहीं पर मुजफ्फरपुर से बीकानेर तक जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, मिराज से बीकानेर तक जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 20476 11:05 पर पहुंचने वाली है। संभावित प्लेटफॉर्म 1 है। और 1942 दौलतपुर से गांधीनगर तक जाने वाली एक्सप्रेस 9 मामूली देरी से चलती हुई 11:39 पर संभावित प्लेटफॉर्म 2 पर आएगी। साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस 1422 11:40 पर पहुंचेगी ऑन टाइम, संभावित प्लेटफॉर्म 1। और वहीं पर प्रयागराज से गांधी धाम तक जाने वाली स्पेशल ट्रेन ऑन डिमांड 04111 12:03 पर 1:02 देरी से चलती हुई अबुरुड रेलवे स्टेशन पर, संभावित प्लेटफॉर्म 2 पर पहुंचने वाली है। योगा एक्सप्रेस 19032 12:41 पर 1:51 देरी से चलती हुई, संभावित प्लेटफॉर्म 2 पर आने वाली है। और गांधीनगर दौलतपुर एक्सप्रेस 19411 12:55 पर अबुरुड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। और वहीं पर गाड़ी संख्या है 20823 पूरी अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, संभावित प्लेटफॉर्म 1 पर 1:45 पर पहुंचने वाली है। साबरमती जम्मू तवी एक्सप्रेस 19223 2:10 पर पहुंचेगी। योगा एक्सप्रेस 19031 3:00 पहुंचेगी। और जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस 1421 4:05 पर पहुंचेगी अबुरुड रेलवे स्टेशन पर। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे रेलवे इन्फॉर्मेशन के साथ। यहाँ पर एक भजन वाला ब्रेक, उसके बाद अब सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से समाचार प्रभात। रेडियो मधुबन 107.8 FM। गुड मॉर्निंग, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरज़ू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्योहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए, बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देशभर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
3: दिल्ली में माई भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
0: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया, जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
4: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह अनुष्ठान सुबह 3:30 से 5 के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
7: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बेछोरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
8: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोकझोंक, और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोकसत्ता की पहली सुर्खी है, पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है, संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है, मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट। जबकि अमर उजाला की सुर्खी है, एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है, टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा, हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है, कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Urban.in on internet, even Russia, even everywhere.
1: Tum kabhi hai khabar, mujhko bhi hai pata ho raha.
2: Radio Madhuban हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है. सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ.
3: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 एफएम पर. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.
4: आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम. सुन रहे हैं आप, 12 अगस्त 2026 वेंसडे है, बुधवार, और 9:23 रेडियो मधुबन की घड़ी पर, और ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से आपने समाचार प्रभात भी सुना. दोस्तों, कहते हैं कि मौसम का मिजाज भी कुछ कुछ हमारे मूड जैसा ही होता है. कभी धूप, कभी बादल, और कभी ठंडी ठंडी हवाओं की सौगात. तो आइए जानते हैं आज हमारे आसपास मौसम का हाल कैसा रहने वाला है. क्या आज बारिश दस्तक देगी, तापमान कितना रहेगा, और हवाओं का क्या रहेगा मिजाज. सुनते हैं वेदर रिपोर्ट. सबसे पहले चलते हैं हम जयपुर की ओर. 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है. वर्षा की संभावना रात्रि के समय 55% तक है, और दिन के समय भी 55% तक है. 1.5 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है. आज तूफान की संभावना 52% तक है, यानी कि जोरदार बारिश होने की संभावना 52% तक है. वहीं पर उदयपुर में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री, अधिकतम 29 डिग्री तक जा सकता है, और यहां पर वर्षा की संभावना 90% तक है सुबह के समय, और रात्रि के समय 96% तक है. 6 घंटा बारिश होने की संभावना है आज. कुल मिलाकर के 11.6 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है उदयपुर में. आबूड में 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान आबू रोड में 26 डिग्री तक जा सकता है. 30 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम 26 डिग्री तक जा सकता है, और यहाँ पर बारिश होने की संभावना दिन के समय है 97% और रात्रि के समय 83% तक है. लेकिन 1.5 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है रात्रि के समय, और दिन के समय बारिश होने की संभावना लगभग 14.9 मिलीमीटर की है. माउंट आबू की बात करें तो यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम 19 डिग्री तक जा सकता है. बारिश होने की संभावना दिन के समय 96% तक है, और रात्रि के समय है 66% तक. कुल मिला के 7 घंटा बारिश होने की संभावना है माउंट आबू में. पाली जिले में 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है. जोरदार बारिश होने की संभावना सिर्फ 98% तक है, लेकिन वर्षा की संभावना 90% से ज़्यादा है, और यहाँ पर भी चेतावनी है तूफान की संभावना.

0: प्रतिशत तक है। जोरदार बारिश होने की संभावना नहीं है, 1 घंटे की बारिश होने की संभावना है सूरत में आज। मेहसाना में 30 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 26 डिग्री तक जा सकते हैं। बारिश होने की भी सिर्फ 1 घंटे, 1 घंटे दिन में और 1 घंटे रात्रि में ऐसा संभावना दिख रहा है। बात करें अगर राजकोट के बारे में, 26 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम 36 डिग्री तक जा सकता है और यहाँ पर वर्षा की संभावना बहुत ही कम है। गांधीनगर अहमदाबाद में 26 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक जा सकता है। बारिश होने की संभावना फिलहाल 58% तक संभावना है। जोरदार बारिश होने की संभावना फिलहाल ज़्यादा नहीं है। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे गांधीनगर, अहमदाबाद और राजस्थान के कुछ अंचलों के बारे में। देश के अन्य क्षेत्रों के बारे में भी जानेंगे, लेकिन इस मोड़ पर एक हमारे श्रोता मित्र हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आपका।
1: जी नमस्कार।
0: जी नमस्ते मदन भाई, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया से बढ़िया हूँ, और बस अभी आज जल्दी फोन कर दिया मैंने। और
0: शुक्रिया शुक्रिया आपका।
1: जी जी, और आपको नमस्कार है, और नमित किरण को और सभी शो को सुबह से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगे। और ओम शांति। और हमारे
0: आपने नाश्ता किया?
1: बहुत अच्छा।
0: हाँ नाश्ता किया?
1: नहीं किया।
0: तो नहीं करेंगे क्या?
1: नहीं किया हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात की आपने, और मैं आपकी नाश्ता कर ऐसा लगा कि मैंने खा लिया, आपने कहा, और
0: नाश्ता करके जाइएगा क्योंकि एनर्जी चाहिए ना काम करने के लिए।
1: जी जी जी, और मैं क्या जल्दी में रहता हूँ ना,
0: और तो कभी कभी पोहा साथ में ले जाइए। पोहा में बस पानी डालो, चीनी डालो या गुड़ डालो तो, और उसे खा लो।
1: जी जी, हाँ सुन रहा हूँ
0: जी। कच्चे पोहे को आप जस्ट पानी डालो, गुड़ डालो और खा लो, वो भी कर सकते हो। पानी में एक बार निकाल दीजिए तो उसके कचरे निकल जाता है सारा, जो भी धूल मिट्टी हो थोड़ा बहुत, और उसके बाद उसमें गुड़ डाल दीजिए, वो सॉफ्ट हो जाता है और उसको खा लीजिए।
1: जी जी जी जी जी जी जी, आपने बहुत अच्छी बात की। मुझे जिंदगी के अंदर 3-4 चीज का बहुत, खाने का और सबको खाते हुए उसको छोड़ने का और नाना और मत गाना, ये 3 चीज और अच्छी बातें विचार करना और अच्छी सुन के बहुत खुश होना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। खाते हुए भी अच्छा लगता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही सबको हेल्प करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और खुद का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है।
1: जी जी, अब यहाँ भी सावन महीना लगने वाला है कल से
0: जी,
1: और आज पूरी कल बाजार के अंदर दशमा की बहनों के और सब मूर्तियाँ ले रही थी, और हम उनको शुभकामना करते हैं
0: जी,
1: और दशा माँ की सेवा करती रहिए और अच्छा वातावरण बनाते रहिए। हम यही चाहते हैं बहनों को और भाइयों को।
0: बहुत बहुत धन्यवाद ये बात शेयर करने के लिए।
1: नमस्कार करते हैं और श्रावण महीने का एक पहले गीत गा देते हैं। सावन का महीना पावन का किशोर, दिया रर झूमे ये बीती बनमाना तिनोर। ओ
0: क्या बात क्या बात।
1: का महीना पवन का किशोर, दिया रर झूमे ये जीवन माना तिनोर। राम गजब भाई सुरवैया, नैया संभालो हुई भैया, भैया के आगे चलना कौन जोर। नमस्कार दीदी जी, ओम शांति। और आज जिनका भी जन्मदिन है उनको भी नमस्कार, और
0: जी मधुबन को और रेडियो। बहुत बहुत धन्यवाद मदन भाई आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू दीदी जी,
0: ओम शांति, नमस्ते। तो ये थे हमारे मदन भाई, जिन्होंने मेहसाना से कॉल किया था, और सबको खिलाना फिलाना उनको अच्छा लगता है, लेकिन कई बार खुद देखे भूल जाते हैं हम। तो नाश्ता करना अगर बना नहीं पाते हैं हम कुछ, सुबह फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर हम पोहा ले सकते हैं, या फिर मुरमुरे भी हम ले सकते हैं, और जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें मिला के खा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो गुड़ मिला सकते हैं, थोड़ा दही मिला सकते हैं। ये नुस्खे मैं क्यों दे रही हूँ, आप आशियाना में ज़रूर सुनेंगे उषा जी के साथ आज लाइव में, बट ये बात निकली तो मैंने आपसे शेयर कर दिया ये टिप्स। आइए चलते हैं राजधानी दिल्ली की ओर, जानते हैं वहां पर मौसम का क्या

हालचाल है। राजधानी दिल्ली में 29 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, क्षमा करें 29 डिग्री सेल्सियस वर्तमान टेम्परेचर है और न्यूनतम तापमान हम कह सकते हैं इसको, और 36 डिग्री तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना है। और यहाँ पर वर्षा की संभावना बहुत ही कम है आज के दिन रात्रि के समय। दिन के समय थोड़ा बहुत बारिश होने की संभावना है राजधानी दिल्ली में। कोलकाता के बारे में बात करें, 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक जा सकता है। वर्षा की संभावना 100% तक है कोलकाता में रात्रि के समय भी और दिन के समय भी। लगभग 4 घंटा रात्रि के समय और दिन के समय 6 घंटा बारिश होने की संभावना है। बेंगलुरु के बारे में बात करें तो यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक जा सकता है। और बेंगलुरु में बारिश होने की संभावना बहुत ही कम है आज के दिन। मुंबई में 27 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम 30 डिग्री तक जा सकता है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर, बारिश होने की संभावना बिल्कुल 80% से ज़्यादा है। चेन्नई में 27 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक जा सकता है। 65% तक बारिश होने की संभावना है। आइए हम जिला सिरोही की ओर भी चलते हैं। 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है। वर्तमान टेम्परेचर 28 डिग्री तक है। 33 डिग्री तक अधिकतम तापमान जाने की संभावना है। वर्षा की संभावना 64% तक दिन के समय है और रात्रि के समय 66% तक संभावनाएँ हैं। रात्रि में 1 घंटे और दिन के समय 3 घंटे लगभग बारिश होने की संभावना है सिरोही ज़िले में। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे वेदर रिपोर्ट के साथ। तो आसमान में बादलों की हलचल हो या फिर सूरज की तेज किरणें, मौसम का असर हमारी पूरी दिनचर्या पर पड़ ही जाता है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुन रहे थे हम वेदर रिपोर्ट नई किरण पर।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: भाव स्वभाव और संभावनाओं का अनूठा संगम, ये है नई किरण।
1: पुनः आप सभी का स्वागत है नई किरण इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आइए हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे क्षेत्र से जुड़ी कुछ सूचनाएं और खबरों के बारे में बात करते हैं। बात करें अगर मेडिकल काउंसलिंग के लिए, तो ट्यूटोरियल्स जारी किए गए हैं और ये है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने स्टूडेंट्स के लिए वीडियो ट्यूटोरियल्स जारी किए हैं। नीट यूजी की ऑल इंडिया 15% कोटा MBBS BDS काउंसलिंग में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों को इससे सुविधा मिलेगी। राउंड एक के लिए 12 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। वहीं पर सिरोही में RDSS के कार्य को लेकर शहर के रिको GSS पर बुधवार को सुबह आज 8:30 बजे से 10:30 बजे तक बिजली बंद रहेगी। मांडवा रिको सारणेश्वर जी और फिर आदर्श नगर शंकरपुरी कॉलोनी, महेश नगर, तारा नगर, शास्त्री नगर और नयावास, सैनिकवास और मेघवालवास, खोका, खेजड़ा, अमर नगर में कटौती रहेगी। सिरोही जिले में युवाओं, विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए 14 अगस्त से नशा मुक्त सिरोही एवं बाल संरक्षण जागरूकता अभियान शुरू होगा। अभियान का मकसद बाल अधिकारों, बाल संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। कलेक्टर रोहिताशु सिंह तोमर जी ने बताया, हर सप्ताह शुक्रवार को विशेष कार्यक्रम नियमित रूप से होंगे। कुछ अन्य सूचनाओं आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इससे पहले एक हमारे रेडियो मित्र हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आपका। हेलो,
2: हेलो
1: जी, आपका शुभ नाम। फिल वक्त उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई है, तो आज अबू रोड में सदर थाना पुलिस ने जिला स्पेशल टीम की मदद से नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी से डोडा पोस्त बरामद किया है। तलाशी में गाड़ी से जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। और वहीं पर हर सप्ताह दैनिक भास्कर का अंडरकवर रिपोर्टर आम आदमी बनकर करेगा सिस्टम का एक्सपोज। घुमंतु परिवार का बिना नोटिस दिए हटा दिया केबिन, इस प्रकार से बातें सामने आई हैं। तो ये जानकारी भी हम आपको दैनिक भास्कर के जरिए पहुंचा रहे हैं। आरावली की वादियों में विराजे हैं आंबेश्वर महादेव। सिरोही की एक तस्वीर आज आप दैनिक भास्कर में देख सकते हैं। सिरोही की ये जो तस्वीर है, शहर से करीब 10 किलोमीटर स्थित आंबेश्वर महादेव मंदिर की है, जो पहाड़ियों के बीच स्थित है। शिव को रिझाने और पितरों को मोक्ष वाला दिन है, और भगवान शिव को प्रसन्न करने तथा पितरों को मोक्ष प्राप्त करने वाले पवित्र श्रावण मास की हरियाली अमावस्या आज मना रहे हैं। इस मोड़ पर एक हमारे श्रोता मित्र जुड़ना चाहते हैं। हेलो, मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है अब तक? फिर लगता उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी ये जानकारी सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आप आशियाना में कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।

किसान खरीफ फसलों का बीमा दो नहीं सिर्फ 0.30% प्रीमियम पर करा सकेंगे और मौसम की अनिश्चितताओं और प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के नुकसान से बचाव को लेकर के जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ा बदलाव किया है। क्षेत्र के किसान 2% की जगह मात्र 0.30% प्रीमियम पर बीमा सुरक्षा का लाभ ले सकते हैं। बैठक में कृषि के संयुक्त निदेशक डॉक्टर हेमराज मीणा जी ने दैनिक भास्कर को बताया, किसानों के लिए राहत की जानकारी देते हुए खरीफ 2026 में किसानों को पूर्व निर्धारित 2% के स्थान पर मात्र 0.30% प्रीमियम पर बीमा सुरक्षा का लाभ मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार के इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026 को लेकर के ये कवायद तेज कर दी गई है और इसके साथ साथ कृषि विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई और इसमें योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, जैसे अगर अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो सिरोही के प्रतिनिधि किशोर कुमार 8058857104, शिवगंज के राकेश कुमार गर्ग 8107276916 पर आप इन्हें कॉल कर सकते हैं और वहीं पर वीरेंद्र कुमार जी जिनको आप कॉल कर सकते हैं, पिंडवाड़ा के हैं, 9983567674 पर। और इसके साथ साथ देलदर के विशाल जी से बात कर सकते हैं 9828115575 पर और आबू रोड के भरत कुमार 9680013919। फिर से आबू रोड के भरत कुमार जिनका नंबर है 9680013919, वो फसल का जो बीमा है इसके बारे में आप इन्हें अधिक जानकारी इनसे प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि 16 अगस्त से करवाया जा सकता है फसलों का बीमा। और इसके साथ साथ विज्ञान मेला 2026 में विद्यार्थियों ने दिखाया नवाचार आधारित मॉडल जावाल में अनादरा में पोसिंतरा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शांताबेन शंकरलाल पुरोहित में तिरंगा रैली हुई। रैली में 330 छात्र छात्राएं स्कूल स्टाफ और ग्रामीण शामिल हुए। और वहीं पर आबू रोड में श्रीमती चंद्रावल गुप्ता महिला शिक्षक परीक्षण महाविद्यालय में मंगलवार को हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। क्षमा चाहेंगे, महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में मंगलवार को हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई है। पोसालिया में भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को तिरंगा रैली निकाली गई है। और वहीं पर हर घर तिरंगा अभियान तथा राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में 2 दिन 11 और 12 अगस्त तिरंगा प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है।

और वहीं पर कांबेश्वर सड़क पर बड़गांव स्थित सदगुरु आश्रम में आनंद महोत्सव के तहत श्रावण मासीय चतुर्मास और संत सम्मेलन के 12वें दिन कार्यक्रम हुआ। शुरुआत शिष्य संपत विदुर के श्रीमुख से संतवाणी के साथ हुई है। राष्ट्र स्वाभिमान जागरण सप्ताह पिंडवाड़ा राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा में मंगलवार को राष्ट्र स्वाभिमान जागरण सप्ताह के तहत व्याख्यान हुआ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आलपा में प्रेरणादायी और सामाजिक सरोकार का कार्यक्रम हुआ। स्कूल के सेवानिवृत्त अध्यापक विशनलाल वर्मा जी ने 101 जरूरतमंद छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग बांटा। और वहीं पर माउंट आबू में वेदारम संस्कार का आयोजन 23 को होगा। आबू रोड में श्री हरि संस्कार शिक्षण सेवा केंद्र द्वारा संचालित जयपुर आयुर्वेद हॉस्पिटल एवं महावीर इंटरनेशनल आबू रोड के संयुक्त तत्वावधान में स्वास्थ्य सेवा अभियान के तहत 6ठे चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर में 63 मरीजों का उपचार किया गया। हरियाली अमावस्या के दौरान भूतगांव में भूतेश्वर महादेव जी का मेला भरेगा और शिवलिंग पर सजाएंगे चांदी का मुकुट।

उद्योग संघ संस्थान और ऑयल एंड दाल मिल संस्था 14 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालेगी। और ये बात है शिवगंज के। और शिक्षक नहीं, नाराज ग्रामीणों ने नून स्कूल पर लगाया ताला। 15 दिन में पद भरने के लिए आश्वासन देने पर शांत हुए। कालंद्री में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल नून में शिक्षकों की कमी से नाराज ग्रामीणों और अभिभावकों ने बच्चों को कक्षाओं से बाहर निकालकर विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया था। बारिश में गिरे सड़क किनारे पिलर, भटाना पापटी सड़क कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। और वहीं पर हाईवे ब्रिज के नीचे एक एक फीट के गड्ढे सिरोही में। पालडी एम से ये सड़क निकलती है और इसमें मोरेली रोड नेशनल हाईवे ब्रिज के नीचे एक एक फीट के गड्ढे पड़े हैं। सिरोही में नई धनारी गांव के हीरा नगरवास में पिछले 10 दिनों से रोड लाइट बंद होने से गलियों में शाम ढलते ही अंधेरा छा जाता है, जिसे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं पर भास्कर ग्राउंड रिपोर्ट में 14 महीने लेट जिला अस्पताल, 80% काम पूरा हो गया। और ड्राइंग में बदलाव और स्टील मंजूरी से अटका निर्माण। बिजली कटौती 15 तक बंद नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे जीएसएस पर परेशान ग्रामीणों ने शिवगंज उपखंड क्षेत्र के पालडी एम जीएसएस पर बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने धरना दिया। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे आसपास के सूचनाओं के साथ, खबरों के साथ। अभी 9:53 रेडियो मधुबन की घड़ी पर आप सभी का दिन अच्छा हो, मंगलमय हो। शुभकामनाओं के साथ साथ जिनके आज के दिन जन्मदिवस है उन सभी को रेडियो मधुबन के ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हैप्पी बर्थडे है और आपके लिए हैप्पी बर्थडे वाला ये गाना। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे 10 बजे आशियाना उषा जी के साथ, लाइव प्रोग्राम रहेगा। आप कॉल कर सकते हैं 94 14 15 14 15 इस नंबर पर।

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM।

किलोर श्रोताओ कदी आओ ला रेडियो मधुबन में, श्रोताओ कदी आओ ला। तो सावन महीने की शुरुआत गुजरात में आज से शुरू हो चुके हैं और राजस्थान में आज 15 दिन हो गया है। तो सावन महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है आज क्या है वो आप सभी को पता है। चलिए चंद पंक्तियों से शुरुआत करते हैं। हरियाली अमावस्या आई, खुशियों की सौगात लाई, पेड़ लगाए धरती सजाए, प्रकृति ने फिर मुस्कान सजाई, हर आंगन में हरियाली हो, हर मन में खुशहाली हो, प्रकृति से प्रेम करें हम सब, यही जीवन की सच्ची लाली हो। तो हरियाली अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा घणी सा। ईश्वर कभी भी किसी की इच्छा को अधूरा नहीं छोड़ता, कैसे जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, नुस्खे तो आपको बहुत ही अच्छे देने वाले हूँ। और ये मौसम के अनुसार, ठीक है अभी मौसम बारिश का है तो इस अनुसार ही आपको नुस्खे देंगे। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें करेंगे, हरियाली अमावस्या कैसे मनाई जाती है ज़रूर हम इसमें चर्चा करेंगे। और रेसिपी में आप क्या खाना पसंद करते हैं। आज के दिन, आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि बहुत बड़ा त्यौहार है राजस्थान में हरियाली अमावस्या। तो विशेष करके आज के दिन क्या बनाया जाता है वो रेसिपी मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ। और आज का प्रश्न भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे अशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

आशना कार्यक्रम में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, धरती माँ का मान बढ़ाओ, हरियाली से सजे संसार, यही हो अमावस्या का उपहार। तो आप सभी को पुनः हरियाली अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का सुंदर सा विचार है कि भगवान हमेशा हर एक के संकल्प को पूरा करता है, किसी के भी संकल्प को अधूरा नहीं छोड़ता है। अगर सच्ची लगन है हमारी तो कैसे। तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी कि गज और असुर के संयोग से एक असुर का जन्म हुआ। उसका मुख गज जैसा होने के कारण उसे गजासुर कहा जाने लगा। गजासुर शिव जी का बड़ा ही भक्त था और शिव जी के बिना अपनी कल्पना ही नहीं करता था। उसकी भक्ति से भोले भंडारी गजासुर पर प्रसन्न हो गए, वरदान मांगने को कहा। गजासुर ने कहा, प्रभु आपके आराधना में कीट पक्षियों द्वारा होने वाले विघ्न से मुझे मुक्ति चाहिए, इसलिए मेरे शरीर से हमेशा तेज अग्नि निकलती रहे, जिससे कोई पास न आए और मैं निर्विघ्न आपकी आराधना करता रहूं। महादेव ने गजासुरों को उसका मन चाहा वरदान दे दिया। गजासुर फिर से शिव जी की साधना में लीन हो गया। हजारों साल के घोर तप से शिव जी फिर प्रकट हुए और कहा, तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने मन चाहा वरदान दिया था, मैं फिर से प्रसन्न हूं, बोलो वत्स अब क्या मांगते हो। गजासुर कुछ इच्छा लेकर तो तप कर नहीं रहा था, उसे तो शिव आराधना के सिवा और कोई काम पसंद ही नहीं था, लेकिन प्रभु ने कहा कि वरदान मांगो तो वह सोचने लगा। गजासुर ने कहा, वैसे तो मैंने कुछ भी इच्छा रख करके तप नहीं किया, लेकिन आप कुछ देना चाहते हैं तो आप कैलाश छोड़कर मेरे उदर मने पेट में ही निवास करिए। बोले भंडारी गजासुर के पेट में समा गए। माता पार्वती ने उन्हें खोजना शुरू किया, लेकिन वे कहीं मिले नहीं। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण करके शिव जी का पता लगाने को कहा। श्री हरि ने कहा, बहन आप दुखी न हो, भोले भंडारी से कोई कुछ भी मांग ले वो दे देते हैं, वरदान स्वरूप वह गजासुर के उदर में वास कर रहे हैं। श्री हरि ने एक लीला की, उन्होंने नंदी बेल को नृत्य का प्रशिक्षण दिया और फिर उसे खूब सजाने के बाद गजासुर के सामने जाकर के नाचने को कहा। श्री हरि स्वयं एक ग्वाले के रूप में आए और बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन पर नंदी ने ऐसा सुंदर नृत्य किया कि गजासुर बहुत ही प्रसन्न हो गया। उसने एक ग्वाला वेशधारी श्री हरि से कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इतने साल की साधना से मुझ में वैराग्य आ गया था, तुम दोनों ने मेरा मनोरंजन किया है, कोई वरदान मांग लो। श्री हरि ने कहा, आप तो परम शिव भक्त है, शिव जी की कृपा से ऐसी कोई चीज नहीं जो आप हमें न दे सको, किंतु मांगते हुए संकोच होता है कि कहीं आप मना न कर दे। श्री हरि की तारीफ से गजासुर स्वयं को ईश्वर तुल्य ही समझने लगा था। उसने कहा, तुम मुझे साक्षात शिव समझ सकते हो, मेरे लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं, तुम्हें मन चाहा वरदान देने का वचन देता हूँ। श्री हरि ने फिर कहा, आप अपने वचन से पीछे तो नहीं हटेंगे। गजासुर ने धर्म को साक्षी रखकर हामी भरी तो श्री हरि ने उससे शिव जी को अपने उदर से मुक्त करने का वरदान मांगा। गजासुर वचनबद्ध था, वह समझ गया कि उसके पेट में बसे भोलेनाथ का रहस्य जानने वाला यह रहस्य ये कोई साधारण ग्वाला नहीं है, जरूर स्वयं भगवान विष्णु आए हैं। उसने शिव जी को मुक्त किया और महादेव से एक आखिरी वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु आपको उदर में लेने के पीछे किसी का अहित करने का नशा मतलब या मंशा नहीं थी, मैं तो बस इतना चाहता था कि आपके साथ मुझे भी स्मरण किया जाए, शरीर से आपका त्याग करने के बाद जीवन का कोई मोल ही नहीं रहा, इसलिए प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि मेरे शरीर का कोई अंश हमेशा आपके साथ पूजित हो। तो भोलेनाथ ने उसे वह वरदान दे दिया। श्री हरि ने कहा, गजासुर तुम्हारी शिव भक्ति अद्भुत है, शिव आराधना में लगे रहो, समय

0: आने पर तुम्हें ऐसा सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब गणेश जी का शीश धड़ से अलग हुआ तो गजासुर के शीश को ही श्री हरि काट लाए और गणपति के धड़ से जोड़कर जीवित किया था। इस तरह वह शिव जी के प्रिय पुत्र के रूप में प्रथम आराध्य हो गए। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि भगवान कभी भी किसी के संकल्प को अधूरा नहीं छोड़ते, उन संकल्पों को पूरा करने की ज़रूर कोशिश करते हैं। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार और हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं, बात करेंगे। हेलो
1: हेलो, नमस्कार, ओम शांति। हमारी प्यारी बहन उषा जी, मैं दयाराम भाई बोल रहा हूँ राजस्थान रामपुरा से।
0: हाँ जी दयाराम जी, नमस्ते, कैसे हो आप?

0: जी आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है, और आएंगे और सवाल का जवाब भी देंगे और विषय में भी बात करेंगे जरूर।
0: जी जी बहुत बहुत आभार आपका दयाराम जी। हाँ जी, तो ये थे दयाराम जी लाखनी से, और अभी वर्तमान में आप रामपुरा रह रहे हैं। तो चलिए अगली कड़ी में मिलते हैं, तब तक के लिए सुनते हैं एक गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना मैं आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय देने वाली हूँ। जी हाँ, बारिश के मौसम में अक्सर क्या होता है, मच्छर, चींटी, कीड़े मकोड़े और दूसरे जीव जंतु ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और कहीं काट भी देते हैं, तो इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे बचेंगे, और अगर काट देते हैं तो इनका उपाय भी आप जानेंगे। तो क्या है, अगर इस तरह के जीव जंतु काट लेवे तो काटे हुए स्थान पर आप साबुन और साफ पानी से धो लीजिए, ठीक है, ताकि वो बार बार खुजली नहीं चलेगी, उसका विष का प्रभाव नहीं पड़ेगा हमारे शरीर पर, ठीक है। तो काटे हुए स्थान पर आप मतलब साबुन से धो लीजिए, साबुन लगाकर साफ पानी से धो लीजिए। दूसरा उपाय है कि सूजन या खुजली हो तो ठंडी पट्टी 10-15 मिनट के लिए लगाइएगा। सूजन या फिर खुजली हो तो ठंडी पट्टी 10-15 मिनट के लिए लगा के रखनी है। फिर तीसरा उपाय है, खुजली वाली जगह को खुजलाने से बचना है, वरना संक्रमण हो सकता है। इसलिए ऐसे नहीं कि हम नाखून से खुजाते रहें, क्योंकि नाखून से जब हम खुजलाते हैं ना तो कितनी बार घाव पड़ जाता है और हल्का सा ब्लड भी बाहर आ जाता है। इसलिए खुजलाना नहीं है, नहीं तो संक्रमण की समस्या हो सकती है। ज़्यादा ही खुजली चल रही है तो आप कपड़ा हाथ में लेकर कपड़े से घुमाइए, ठीक है, उससे खुजली चलाइए। और उपाय आप कर लीजिए, साबुन लगा दीजिए, साफ पानी से धो लीजिए, तो खुजली भी नहीं चलेगी। और वो कहते ना कि बिना पहचान के कोई तेज रसायन, मिट्टी, पेट्रोल, केरोसिन या कोई ऐसे जो शरीर को नुकसान करे, इन चीज़ों का लेप नहीं करना है, अगर हमें समझ नहीं है तो, ठीक है। अगर समझ है तब तो कोई बात नहीं, कितनी बार समझ नहीं होती और हमें इस तरह के अखतरे करने जाते हैं, फिर वो लेने का देना पड़ जाता है। इसलिए तेज रसायन, मिट्टी, पेट्रोल, केरोसिन, इन चीज़ों का लेप नहीं करना है, अगर हमें इसकी समझ नहीं है तो। और बचाव के लिए इतना कहना चाहूँगी आपको, इन सभी से, कीटनाशक चीज़ों से, इन जीव जंतुओं से, कीटाणुओं से बचना हो तो घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना है, खास करके गमले, कूलर और पुराने बर्तनों में तो बिल्कुल भी पानी जमा नहीं होने देना है। शाम के समय पूरे कपड़े पहनिए और मच्छरदानी और रिपेलेंट का आप इस्तेमाल करें, ठीक है। बारिश में जूते पहनने से पहले जूते और कपड़े अच्छी तरह जांच ले, कितनी बार क्या है जीव जंतु जूते के अंदर बैठे रहते हैं, हम जल्दबाजी में जूते बिना चेक किए ही पहन लेते हैं, फिर वो जीव जंतु हमें काट लेते हैं। इसलिए पहनने से पहले थोड़े से जूते चप्पल को झटक लीजिए, चप्पल में से तो फिर भी दिखाई देता है लेकिन जूते में से तो जीव जंतु नहीं दिखाई देता है, तो उनको झटक करके फिर पहनिए ताकि जीव जंतु बाहर आ जाए, ठीक है। और ये तो हुए घरेलू उपाय, और खास सावधानी तब रखनी है जब तेज सूजन, बेहोशी, बहुत तेज दर्द, फैलते हुए सूजन या शरीर पर गंभीर एलर्जी जैसे लक्षण हो, तो उस समय घरेलू उपायों पर निर्भर नहीं रहना है और तुरंत ही चिकित्सालय जाना है, ठीक है। बाकी छोटी मोटी बीमारियों में घरेलू उपाय कर सकते हैं। तो ये हुआ आज के घरेलू उपाय, और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, कौन कौन से राज्य में हरियाली अमावस्या मनाई जाती है, और अन्य दूसरे राज्यों में हरियाली अमावस्या को किस नाम से मनाया जाता है, वो नाम आपको सुनाना है। तो प्रश्न एक है, जवाब दो है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर एक अल्पविराम लेकर के पुनः रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बादल बरसे, हाँ जी नमस्ते, मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है। बादल बरसे धरती महके, पत्तों पर मोती आए, हरियाली के इस मौसम में खुशियों के फूल खिलाए। एक पेड़ लगाकर हम भी प्रकृति का श्रृंगार करें, हरियाली अमावस्या पर धरती माँ से प्यार करें, धरती माँ से प्यार करें। पुनः आप सभी को हरियाली अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: हाँ जी, स्वागत आपका। कौन बोल रहे हैं?
1: हरियाली हरियाली अमावस्या ज्यादा राजस्थान में उसका महत्व ज्यादा है
0: जी। आप क्या करते हैं आज के दिन खास, क्या करते हैं दयाराम भाई?
1: आज तो अपने दीवा से भी बोलता है
0: जी। जी,
1: के लिए आपने वृक्ष का किया वो बहुत अच्छा किया है। वृक्ष रोपण के लिए वो धरती की शोभा है और जरूरी है। आज प्रकृति विनाश हो रही है, उसके लिए तो बारिश कम हो रही है
0: जी।
1: भक्ति के साथ साथ प्रकृति का श्रृंगार है, ये वृक्ष भी है, हमारा कहना वही है, दूसरा तो आप कह सकते
0: जी। लेकिन आज आप कैसे मनाते, इस त्योहार को कैसे मनाते, ये बताइए। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे, आज हरियाली अमावस्या है तो कैसे क्या करते हैं, क्योंकि राजस्थान में तो बहुत ही महत्व है इसका। हाँ जी,
1: गुजरात में भी कोई
0: गुजरात में आज से सावन की शुरुआत है, कैसा लग रहा है आपको?
1: हाँ, अच्छे होती है, दरेक जगह होती है, गुजरात में अच्छे होती है
0: जी।
1: शिव जी का महत्व, लेकिन हम मनाते मारवाड़ी सावन
0: जी,
1: क्योंकि हम की राजस्थान के रहने वाली है
0: जी। जी,
1: इसके लिए हम वो अभिषेक वो उस पूनम से करता है, उस पूनम तक बड़े तक।
0: अच्छा अच्छा जी जी। और आज का प्रश्न है, ये हरियाली अमावस्या कौन कौन से राज्यों में मनाई जाती है और दूसरे राज्यों में इसको किस नाम से जाना जाता है?
1: वो तो मालूम नहीं, लेकिन राजस्थान में ज्यादा उसका महत्व है।
0: अच्छा,
1: हाँ, बहनों भी बहुत उसका उपरण करती है, बहन गुजरात में कम है, उसको गुजरात में दीवा से ही बोलता है
0: जी। जी जी,
1: हरियाली अमावस्या हम समझते है
0: जी। जी जी, ठीक है दयाराम जी, बहुत बहुत आभार आपका।
1: ठीक है,
0: हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे दयाराम जी इकबालगढ़ से, आपने भी बताया है कि सावन की शुरुआत हो चुकी है और अभिषेक वगैरह बहुत होता है गुजरात में, बिल्कुल सही कहा आपने। अब आप भी जुड़ सकते हैं आशियाना कार्यक्रम में और अपनी बात को बता सकते हैं। आशियाना कार्यक्रम सीधा प्रसारण है, जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, आपका स्वागत है। और आज हम त्यौहार पर ही बात करेंगे, आज हरियाली अमावस्या है। कुछ समय से आपको मैं चंद पंक्तियाँ भी सुना रही हूँ, तो उधर भी आप जा सकते हैं पंक्तियों की तरफ भी। हिंट तो मैं दे चुकी हूँ, लेकिन हाँ मनाते थोड़ा अलग तरीके से है, वो भी आपको बताएंगे। हेलो,
2: नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, सूरज भाई।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, हम बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए, आप कैसे हो?
2: बस हम भी बहुत अच्छे हैं, और आज आए हैं आप, बहुत अच्छा लगा दीदी, कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। और हमारे सभी मित्रों को भी मैं बोलना चाहूँगा कि आज कार्यक्रम लाइव चल रहा है, मैं बात कर रहा हूँ दीदी से, तो आप भी जरूर जुड़िए। थोड़ा दिनों से दीदी हाजिर नहीं थे, लेकिन फिर भी हम तो कार्यक्रम हरदम सुनते ही रहते थे
0: जी। तो
2: चलो आज आए दीदी, आपका बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
0: थैंक यू।
2: और अच्छे दिन है, आज अमावस्या है, लेकिन हमारे तो दीदी क्या बताओ, तो हमारे तो यहाँ गुजरात में थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी महिलाएं जाती हैं, महादेव मंदिर में जाती है, बुद्ध शिव जी के मंदिर में जाके, जो पीपल के होते पीपल के बहुत पूजा करते हैं, पीपल के जो आसपास की जो पूजा करते हैं
0: जी,
2: और बस प्रार्थना करते हैं कि भाई सबको अच्छा रखे। और कितने के पीपल का जो पूजा करने से कई सारे पुण्य का पुण्य मिलते हैं, भगवान
0: जी,
2: का
0: जी,
2: वास होता है,
0: ऐसे कहते हैं पीपल के अंदर सभी देवताओं का वास होता है।
2: हाँ, देवताओं का वास होता है, और ये पीपल ऐसा एक पेड़ है जैसे कि हमको तो ज्यादा नहीं, हम एक दो घंटे वहाँ बैठेंगे तो हमारी जो ऊर्जा है और भी बढ़ जाती है। कई सारी
0: बिल्कुल, क्योंकि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है।
2: हाँ, ऑक्सीजन देता है, इसीलिए इसके कई सारे हमारी बीमारियों से भी हम बच पाते हैं वहाँ
0: जी।
2: तो चलो आज अच्छा है दिन दीदी, यहाँ तो हमारे तो महिलाएं जाती है, हम भी जाते हैं पीपल की पूजा करते हैं
0: जी।
2: ज्यादातर हमारे यहाँ कम होता है, जैसे राजस्थान में ज्यादा हरियाली है, मछका हमारे थोड़ा कम होता है इधर
0: जी।
2: पीपल की पूजा तो हर महिलाएं करती है अच्छे दिन
0: जी।
2: तो बस सभी हमारे मित्रों को नमस्ते दीदी।
0: गुजरात में सावन की शुरुआत हो चुकी है, तो कैसे आपने इसका आघात किया है? कहते ना कि वही शुरुआत होती तो अच्छी होती है, तो आगाज कैसे किया? हाँ जी,
2: हाँ कल तो क्या है, कल दीदी कल कहते हैं कल पहला दिन है अमोस का, जो सावन महीना का, आज तो अमोस है
0: जी।
2: कल से हमारे मंदिरों में ज्यादातर भीड़ लगेगी
0: जी, हर सोमवार है ना?
2: नहीं, हर रोज, पूरे महीने तक।
0: पूरा महीना तो रहता ही है, सोमवार का एक अलग ही महत्व रहता है।
2: सोमवार का ज्यादा होता है दीदी, और सोमवार को कई जगह पे मेला भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है, आसपास गांव में भी मेला होता है, और शिव जी पूजा करते हैं। तो मैं बताऊँ दीदी, ये जो कल से जो भीड़ होगी मंदिरों में, बहुत भीड़ होगी, लेकिन जब भी महीना पूरा हो जाता है तो दूसरे दिन कोई बिल्कुल कम लोग दिखते हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भाई भगवान तो हर रोज मंदिर में होता है, एक महीने तक ऐसा नहीं थोड़ा कि एक महीना ही भगवान होता है।
0: हा, हा, हा।
2: लेकिन पूजा तो हर रोज करनी ही चाहिए, ऐसा नहीं कि सावन महीने नहीं करे
0: जी।
2: तो सावन महीने में ज्यादा भीड़ रहती है दीदी, और कल से हमारा यहाँ सावन महीना छठ शुरू हो जाएगा आज अमोस से
0: जी।
2: तो कल से सभी मंदिरों में भीड़ रहेगी, और भोले बाबा का सभी पूजन पाठ करेंगे
0: जी जी जी। और आज के प्रश्न का जवाब देंगे या फिर ओफेर देंगे?
2: बाद में दूंगा दीदी।
0: जी जी, ठीक है, चलिए। और परिवार में सभी अच्छे?
2: हाँ सभी अच्छे हैं, बहुत अच्छे सभी। हमारे सभी मित्रों को मैंने भी बात कर ली है, हमारे मित्र हमारे गोराराम जी बोल रहे थे कि सूरज जी ने हर रोज कॉल करता था दीदी, हमारा फोन नहीं उठाती थी। मैं बोला कि भाई दीदी आते थे लेकिन जो लाइन में नहीं आते थे, लेकिन आज आप जरूर बात कीजिए। सूरीराज जी के मैंने बोला आज आपका दीदी कॉल उठाएंगे, आज से बात भी करेंगे।
0: जी जी, आज आप कर सकते हैं, जरूर फोन उठाएंगे जी। बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से। तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में बहुत ही सुंदर बातें चल रही हैं, हरियाली अमावस्या है, और प्रश्न भी आज का यही है कि हरियाली अमावस्या कौन कौन से राज्यों में मनाई जाते हैं, और अन्य राज्यों में इसको किस नाम से जाना जाता है, हरियाली अमावस्या को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के हैं 94-14-15-14-15। और देखिए, हरियाली अमावस्या, वो सावन आता है, सावन कहते ना कि सावन आता है तो अपने आप ही अंदर से निकलता है कि बस सावन आया है तो हरियाली चारों ओर छा ही जाएगी, क्योंकि बारिश अच्छी होगी, सभी एक उम्मीद तो रखते हैं, और होती भी है सावन महीने में बारिश भी, और हरियाली भी चारों ओर छा जाती है। तो आज अमावस्या का दिन है, आज खास दिन है पूरे सावन महीने में। वैसे अभी हरियाली तीज भी आ रही है, उसके बारे में तो उस दिन ही बात करेंगे। हेलो,
3: हेलो शवेन जी।
0: हाँ जी कंचन भाई, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप?
3: हम अच्छे हैं, ठीक है, आप कैसे हैं?
0: जी हम भी बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत आशियाना कार्यक्रम में।
3: काफी दिनों के बाद आप आए तो बहुत अच्छा लगा, हमें भी, हमें सुन तो रहे थे प्रोग्राम आशियाना, लेकिन रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, आज रूबरू बात कर रहे थे, और सब कुशल मंगल बहन।
0: हाँ जी हाँ जी, सब कुशल मंगल।
3: माता जी की तबीयत कैसी?
0: जी जी ठीक है।
3: श्रावण मास शुरू हो गया है आज से, अमावस्या बहन जी, आपने बात जो बताई, रिमझिम बारिश अभी चल रही है, मैं दुकान पे ही हूँ, इसमें जाने का था लेकिन अभी बारिश चालू हो गई तो बाद में जाएंगे। तो बात
0: जी जी, आज तो
3: और आज अमावस्या है हमारे, जो कल से श्रावण मास गुजरात में तो शुरू होगा
0: जी।
3: तो आज जो दशा माँ का व्रत
0: जी,
3: तो
0: शुरू हो जाएगा,
3: तो आज स्थापन किया है हमारे घर में भी, हमारी बहू जो सुबोध के घर से वो बोलती थी दो तीन दिनों से कि भाई मेरे को ये स्थापन करना है, तो हमने भी सहयोग दिया, सभी को सब कुछ ला दिया
0: जी,
3: और आज स्थापन किया है
0: जी।
3: ऐसा बोलते
0: जी जी,
3: हम भी थे
0: जी,
3: अभी अभी साढ़े नौ बजे आए।
0: अच्छा,
3: और सुरेश भाई का कॉल आया कि भी बहन जी आ गए।
0: अच्छा जी जी जी,
3: हरियाली अमावस तो हमारे तो यहाँ जो हमारे गांव में तो ये खास करके ये सही ये करते मनाते जी, लेकिन ये जो मैंने बताया ना कि आज के दशा माता व्रत चालू हो
0: जी
3: हुआ है, तो ये सब हमारे गांव में
0: जी जी जी। सावन महीने का बहुत है गुजरात में, पूरे सावन महीने का तो बहुत ही ज्यादा महत्व है, ऐसे बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं जी।
3: हमारे भी उपवास चालू कर देंगे,
0: भक्ति बढ़ जाती है जी,
3: तभी उपवास करेंगे, भजन कीर्तन का प्रोग्राम हमारे ज्ञान आश्रम गुरु जी का आश्रम है, ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर है, तो वहाँ सब रात को 9 बजे से 11 बजे तक भजन कीर्तन का, महिलाएं आएंगी, गुरु स्वर्ग भी आएगा, तो ये पूरा चलेगा
0: जी।
3: बिली पत्र चढ़ाने का है जो ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर है, तो दो दो भाइयों का बारी पे एक ही है
0: जी,
3: आज लाएंगे तो कल सुबह में चढ़ेंगे
0: बिल्कुल
3: बिली पत्र
0: जी जी जी।
3: तो ऐसा आयोजन किया है, और जो कल चढ़ेंगे ना उसका प्रसाद भी होगा रात को भजन कीर्तन का में पास जो प्रसाद करते हैं ना इसको, इसका दोनों भाइयों का प्रसाद भी होगा
0: जी
3: कल। तो ऐसा आयोजन हम हर साल करते हैं,
0: बहुत बढ़िया जी,
3: ऐसा है। और बताया है सवाल का जवाब तो मैं दूंगा
0: जी, ठीक है
3: जी। दोस्तों को आपको आज हरियाली अमावस्या को
0: बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, और आइए यहाँ पर अब हम एक गीत सुनेंगे, उसके बाद इस त्योहार की बात करेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: ना केवल पूजा में फूल चढ़ाए, ना केवल पूजा में फूल चढ़ाए, आइए एक पौधा भी लगाए। हरियाली अमावस्या तभी सफल होगी जब धरती को हम हरा भरा बनाए। तो आप सभी को पुनः हरियाली अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आज चर्चा भी इसी पर हो रही है कि हरियाली अमावस्या पर हम खास क्या करते हैं। प्रश्न भी आज का यही है कि हरियाली अमावस्या कौन कौन से राज्यों में मनाई जाती है और अन्य राज्य में इसको किस नाम से जाना जाता है। तो आप विषय में भी जुड़ सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं आज के प्रश्न का। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। और आज के खास दिन जो हरियाली अमावस्या है उसको आप मना सकते हैं, कैसे मनाते हैं वह आप बता सकते हैं। और आशियाना कार्यक्रम सीधा प्रसारण है तो आप जुड़ने की कोशिश जरूर करिएगा। हमारे बहुत सारे श्रोता बंधुओं का शिकायत रही होगी कि फ़ोन करते हैं उठाते नहीं हैं, लेकिन जब हम उपस्थिति नहीं थे तो कैसे फ़ोन उठाते। इसलिए सभी से हम फिर भी क्षमा चाहते हैं कि आपको तकलीफ पड़ी, लेकिन आज आप फ़ोन कर सकते हैं, हम उठाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और बाकी देखिए हरियाली अमावस्या के तो भाई खास महत्व यही है, हमारे भारत देश में तो हर त्यौहार हर दिन के हम सभी वैल्यू करते हैं। तो जब इस तरह का त्यौहार आता है तो आप समझ सकते हैं कि इसका हम ज़्यादा ही महत्व देते हैं और बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए अक्सर कहते हैं कि भारतवासी हमेशा खुश रहते हैं। दूसरे देशों में तो देखिए हम आए दिन सुनने को मिलता है वो डिप्रेशन में ही रहते हैं, वो ये कितनी बातें सुनने को मिलती है, लेकिन भारत देश में हल्की सी उदासी आती उससे पहले ही त्यौहार आ जाता है, फिर खुशियाँ चारों ओर छा जाती है। तो अच्छी बात है ना, जैसे अभी सावन महीना लगा है, हर सोमवार का महत्व, हर सोमवार को देखो चहल पहल मंदिरों में और भजन कीर्तन घर घर में। तो हर दिन को हर त्यौहार को आनंदमय बना देते हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। तभी तो हम त्यौहारों का इंतज़ार करते हैं, अरे फलाना त्यौहार आ रहा है, उदासी आई उसके पहले वो गायब हो जाती है, टिकने ही नहीं देते हम सभी। और अच्छी बात है, क्यों टिकने देना है ना, उदास क्यों रहना है, हमेशा खुश रहना है। तो खुश तभी रह पाएंगे जब हम पॉजिटिव रहेंगे। तो चलिए, वैसे तो इस दिन को देखे मैं खास खास मेन पॉइंट आपको बता देती हूँ कि हरियाली अमावस्या पर खास करके हम वृक्षारोपण भी करते हैं, प्रकृति की सेवा करते हैं, शिव पूजा तो बहुत सारी करते हैं, दान पुण्य पितरों के लिए तर्पण भी करते हैं। इस तरह ये विशेष दिन हो जाता है और इसका विशेष महत्व हो जाता है। अब चलिए थोड़ा सा और हम अपने नागरिकों की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे आम पब्लिक क्या करते हैं। हेलो, पहले तो हम अपने श्रोता बंधु से बात करेंगे।
1: जय माता जी, जय श्री हरि।
0: हाँ जी, जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत आपका सुरेश भाई रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
1: हरियाली अमावस्या की देश देश शुभकामनाएं।
0: जी आपको भी।
1: और रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वाले सभी मेरे मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन पितृ अमावस्या और हरियाली अमावस्या की देश सारी शुभकामनाएं, मंगल कामना।
0: जी, और आज के दिन को खास कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं स्पेशल?
1: एक्चुअल में देखिए, मैं अभी रामेश्वर महादेव के मंदिर में हूँ। यहाँ लोग पीपल को मतलब पितरों की पूजा वगैरह कर रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, तिल जो सब अर्पण कर रहे हैं।
0: जी,
1: क्योंकि आज का दिन माना जाता है कि पितरों के लिए पितरों की पूजा करना उत्तम है।
0: जी,
1: और देखिए हमारे राजस्थान में कई जगह ऐसे भी है जो हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानते हैं, कहीं पे पितृ अमावस्या भी कहते हैं, और कहीं पे भी तो मतलब गवर्नमेंट हॉलीडे भी होता है हरियाली अमावस्या का।
0: जी,
1: आज का दिन तो वैसे देखिए साल भर में एक बार आता है, और श्रावण मास में जो अमावस्या पड़ती है वही पितृ अमावस्या या हरियाली अमावस्या कहलाती है। तो आज का दिन बहुत बहुत उत्तम दिन है।
0: जी,
1: बस मतलब कहते हैं कि आज के दिन जो पितरों को पूजा अर्पण करते हैं ना, तो उनको क्या मतलब कहा गया शास्त्रों में कि तर्पण उनकी आत्मा को तर्पण प्राप्त होता है, तृप्ति हो जाती है
0: जी।
1: और बाकी तो सभी हमारे दोस्त जानते ही है, और बस तो और आप आ गए तो बाहर आ गई।
0: अच्छा
1: आप कान लग गए आप याना में, और क्या चाहिए हमको, अमावस्या के दिन आगमन हुआ है, हरियाली अमावस्या के दिन आगमन हुआ, रेडियो मधुबन सूखा सूखा तो हरा भरा हो गया हरियाली अमावस्या के दिन।
0: थैंक यू,
1: क्योंकि आशियाना आशियाना के बंदा बिना तो जीवन नहीं है ना
0: जी, घर परिवार में तो रहना ही पड़ता है।
1: और वो भी है प्लस देखिए आशियाना ऐसा शब्द है कि देखिए खाना खाए सिवाय आदमी रह सकता है क्या,
0: नहीं रह सकता, इसलिए आशियाना का मतलब ही है कि रहने का स्थान, उसी को घर परिवार कहते हैं।
1: और घर परिवार में तो आना ही पड़ेगा ना, कहाँ जाओगे, कितने दिन चुपके बैठोगे
0: जी। बिल्कुल
1: नहीं आओगे तो फिर आपके जो परिवार वाले वो आपको ढूंढने आ जाएंगे,
0: तभी वो कहावत है ना, लौट के बुद्धू घर को आए।
1: हाँ मतलब
0: कहीं पर भी जाओ घर के बिना तो आनंद है ही नहीं,
1: शांति मिलती नहीं है ना?
0: नहीं मिलती है, सही है।
1: कहीं पे भी कितने दूर घूमने जाते हैं फिर बोल घर आए तो बोलते शांति मिली है,
0: शांति मिली, सही है। जी
1: और बाकी कैसे
0: जी
1: हो?
0: बाकी बढ़िया बढ़िया, आप सभी अच्छे?
1: बढ़िया।
0: हाँ जी,
1: आज का क्या है वो तो
0: आज का जीवन? आज का प्रश्न है हरियाली अमावस्या पूरे भारत देश में कहाँ कहाँ मनाई जाती है और अन्य राज्य में इसको किस नाम से जाना जाता है।
1: देखिए वैसे तो हरियाली अमावस्या तो राजस्थान में मनाई जाती है
0: जी,
1: अन्य राज्यों में पितृ अमावस्या हरियाली अमावस्या ये मतलब राजस्थान में हरियाली अमावस्या कहते हैं, कई फिर पितृ अमावस्या भी कहते हैं, ये अलग अलग कहा जाता
0: है। अच्छा ठीक है सुरेश भाई, बहुत बहुत आभार आपका।
1: कहीं से दक्षा माता के उपवास भी चालू होते हैं तो दक्षा माता अमावस्या भी कहते हैं।
0: अच्छा
1: ठीक है, चलो जय माता
0: जी, बहुत बहुत आभार, जय श्री हरि। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, और आप भी जुड़ सकते हैं, आशियाना कार्यक्रम सीधा प्रसारण है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही है, प्रैक्टिकल बातें, क्योंकि आज के त्यौहार को हम मनाने जा रहे हैं, है ना, सुबह से शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि हमारे श्रोता बंधु सभी कह रहे हैं कि आज पितरों को भी तर्पण करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। हेलो
2: हेलो, नमस्ते दीदी, मैं सुरेश भाई धानेरा से।
0: नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो आप, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
2: बिल्कुल बिल्कुल अच्छे है, और अच्छी अच्छी बातें हो रही है, तो बहुत अच्छा के रेडियो मधुबन का एक हमारा आशियाना घर जैसा परिवार बना लिया है अपने दिल में दोस्तों ने, तो ये भी बहुत अच्छी बात है।
0: जी जी बिल्कुल
2: जी जी जी,
0: पूरा एक परिवार ही है।
2: सही सही, मैं आपकी और दोस्तों की मैं ध्यान से बात सुन रहा था, तो वैसे तो हम तो आज के दिन तो क्या दीदी जो मंदिरों में है ना दर्शन करने जाते हैं, और जो भी हो सके पुण्य दान अच्छी सेवाएं करने की कोशिश करते हैं दीदी। और दीदी मैं एक बात कहना चाहूँगा।
0: हाँ जी।
2: कि चलो के परिवार में अनबन सब ये टाइम ही ऐसा है करने तो वो हो जाता है, तो आज के दिन ये सब भुला कर फिर से ठीक करने का भी दिन है और मौका भी है दीदी।
0: जी बिल्कुल,
2: जैसे कि मैं बताऊं कि कई लोग रामदेवरा वगैरह दर्शन करने जाते हैं तो फिर वापस आके घर पे जो पांच लड़की कुंवासी बोलते हैं हम उसको जमाना पड़ता है, तो भाई भाई में या कुटुंब में तो अगर अनबन है तो वो तो कैसे बुला सकते हैं, तो वो सब भुला कर
0: बिल्कुल फिर से एक हो जाना चाहिए। तो चलिए सुरेश भाई, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है।
2: हेलो।
0: हाँ जी आई आवाज आई। हाँ जी
2: थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो मैंने यहाँ पर लगभग 3-4 आरोप ऐसा होते हुए देखा है और मैंने भी साथ लेकर कहा कि चलो जो
0: जी चले। बहुत अच्छी बात है, किसी के अंदर अनबन हो तो एक कराना ये भी पुण्य का कार्य है।
2: सही बात है दीदी, श्रद्धा भाव है उस इंसान को, क्या लड़ना क्या झगड़ना, ये बात है। तो दीदी ये कहना चाहूंगा, चाहे विषय से हटकर हो ये मेरी बात।
0: नहीं बहुत अच्छी बात है ना, मेन तो बात ही यही है कि दो भाइयों के बीच जो भी जिनके भी साथ अनबन है और वो एक हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है, और हर चीज को पकड़ के रखना ये भी अच्छी बात नहीं है, उसको छोड़ेंगे तभी वापिस संबंधों में सुधार आएगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात है दीदी जी। दीदी और आज का जो प्रश्न है वो तो मैं ठीक से देने की कोशिश करूंगा व्हाट्सएप के जरिए।
0: जी। चलिए बाकी सब बढ़िया सुरेश भाई?
2: हाँ जी बिल्कुल बढ़िया, तबीयत तो पत्रिका है प्रॉब्लम दीदी, वो तो ठीक है दीदी, लेकिन माता जी अब कैसी है?
0: जी पहले से तो ठीक है।
2: हाँ ठीक है दीदी, चलो नमस्ते।
0: जी नमस्ते भैया।
2: अगर कोई और दोस्त जोड़ना चाहेंगे तो जरूर जुड़िएगा।
0: अच्छा जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई धानेराव से, और बात चल रही थी अमावस्या की। तो देखिए सुबह सुबह से तो भक्ति से ही शुरुआत होती है, तो सबसे ज़्यादा आज के दिन भक्ति होती है शिव जी की। शिव भोलेनाथ के मंदिर में भक्त लोग जाते हैं, बाकी तो हर मंदिर में ऐसे जो जहाँ रोज़ रेगुलर जा रहे हैं वहाँ जाते ही हैं, लेकिन शिव मंदिर आज स्पेशल जाएंगे और आराधना करेंगे, कहीं अभिषेक भी करेंगे, और उसके बाद फिर पीपल की भी पूजा करके अपने पितरों का तर्पण करके ही घर पर आएंगे। फिर आने के बाद देखिए आज के दिन खास करके या तो खीर पूड़ी बनाई जाती है या मालपुआ बनाया जाता है, दही बड़े मालपुआ अच्छी रसोई बनाई जाती है, गुलाब जामुन भी बनाए जाते हैं, और फिर बना करके परिवार के परिवार पैक करके टिफिन पैक करके हरियाली, मतलब कहते हैं ना कि भले घर में हरियाली हो चाहे नहीं हो, ऐसी जगह जाते हैं जहाँ सभी इकट्ठा होकर के कोई अच्छे गार्डन में जाते हैं या अपने गांव से जैसे दूर कहीं पर भी अच्छा स्थान है मंदिर या तो शिव जी का मंदिर, क्योंकि मंदिरों में भी आप जानते होंगे कि मंदिर भी इतने बड़े बड़े बनने लगे हैं कि गार्डन भी होते वहाँ पर, तो वहाँ जा कर के सभी साथ में भोजन करेंगे, ये बहुत अच्छा है क्योंकि मिलने का एक अच्छा जरिया है। बाकी सभी अपने अपने घर में अकेले अपनी फैमिली के साथ भोजन करते हैं, और कभी कभार जब इस तरह का माहौल चेंज होता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो इस तरह भी जाते हैं अगर छुट्टी होती है तो। छुट्टी नहीं होती है तो भाई लोग तो चले जाते हैं अपने काम पर, बहनें भी आजकल काम कर रही है वो भी चली जाती है, लेकिन एक समय ऐसा था कि इस दिन की स्पेशल छुट्टी भले गवर्नमेंट की तरफ से हो ना हो परिवार छुट्टी रखता था, भाई लोग पहले से ही छुट्टी रख देते थे, भाई हरियाली अमावस्या है हम नहीं आएंगे, एक दिन पहले ही बता देते थे और छुट्टी रखते थे, और परिवार के परिवार बाहर जाते थे खाना खाने और सभी साथ में मिलकर खाते, तो क्या है कि इससे आपसी व्यवहार भी अच्छा मजबूत होता है, एक दूसरों के चीज़ों का आदान प्रदान भी होता है, चलो मैंने गुलाब जामुन बनाया आपने मालपुआ बनाया फिर उन्होंने खीर बनाई फिर उन्होंने रबड़ी बनाई, तो थोड़ा थोड़ा सबको एक दूसरे को देना लेना, कोई नमकीन आइटम बनाते हैं तो भी एक दूसरे को देना लेना, तो इससे प्रेम बना रहता है व्यवहार बना रहता है और स्नेह मिलन भी हो जाता है, क्योंकि इस व्यस्त जीवन में अड़ोस पड़ोस भी आजकल मिलना मुश्किल हो गया, कितने जने कहते हैं कि अरे उनको तो देखे हुए बहुत टाइम हो गया, तो ऐसा हो रहा है, तो ऐसे भागते दौड़ में मतलब थोड़ा सा समय अपने आप के लिए निकाले और आपस में मिलजुल करके चर्चा करके एक दिन पहले ही सभी सलाह करके कहीं ना कहीं का प्लान बनाना चाहिए। और बहुत सारी जगह पर तो समाज में भोजन रखा जाता है, पूरे समाज का चंदा ले लिया जाता है घर घर से, पर पर्सन जितने भी फिक्स करते हैं भाई 51 रुपये पर पर्सन या 100 रुपये जो भी है, तो जितने मेंबर उतने पैसे ले करके फिर समाज में भोजन बनाया जाता है तो समाज वाले सब इकट्ठा होकर के इस त्यौहार को ऐसे मनाते हैं, सभी साथ में भोजन करते हैं, तो उससे भी व्यवहार बनता है और सभी का मिलन हो जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा है। कुछ न कुछ कारण से वो कहते हैं ना, मनोरंजन होना चाहिए। और बाकी तो सावन महीने के हर सोमवार बहनें तो मिल करके जाती ही है बाहर टिफिन लेकर के, तो ये भी है। फिर शाम के समय माताएं बहनें घर में भजन कीर्तन भी करते हैं, सब इकट्ठे होकर के भजन रखते हैं मोहल्ले में एक ही जगह पर। और मतलब कहने का भाव है कि सुबह से भक्ति की शुरुआत होती है, रात को सोते तक भक्ति ही रहती है। और अच्छा है जितना ईश्वर भजन करेंगे उससे मन प्रसन्नचित रहेगा, नेगेटिव थॉट्स सारे खत्म हो जाएंगे, पॉजिटिव थॉट्स बने रहेंगे, तो वो भी एक खुशी का ही बात है। तो इस तरह इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। बाकी तो जितनी चर्चा करो उतनी कम है, क्योंकि समय का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस विषय को यही समाप्त करते हैं और आइए आज के प्रश्न की तरफ फिर से बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, हरियाली अमावस्या पूरे भारत देश में कहाँ कहाँ मनाई जाती है और अन्य राज्यों में इस त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि अलग अलग नाम मनाते सभी है लेकिन नाम चेंज हो जाता है, तो आपको बताना है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन का है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं। तो आइए फिर से सुन लेते हैं गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिएगा। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ रबड़ी के मालपुआ, जो खास आज के दिन बनाए जाते हैं। सिंपल मालपुआ तो बनाते ही है, लेकिन रबड़ी के मालपुआ ज़्यादातर बनाते हैं। और सिंपल मालपुआ तो फिर भी जल्दी बन जाता है, रबड़ी के मालपुआ में बहुत समय लगता है। तो चलिए आप सीख लीजिए, ताकि आप भी, अभी बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, तब आप बना करके इसका आनंद ले सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको रबड़ी के मालपुआ के लिए पहले आपको ऐसी सामग्री बता रही हूँ। मालपुआ के लिए आप ले लीजिए मैदा 1 कप, सूजी 2 बड़े चम्मच, दूध लगभग 1 कप ले लीजिए, और आधा छोटा चम्मच सौंफ लेना है। इलायची पाउडर भी आधा छोटा चम्मच ले लीजिए। 1 बड़ा चम्मच चीनी लेना है, और तलने के लिए घी लीजिएगा। तो ये हो गए मालपुए की सामग्री। 1 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच सूजी, दूध 1 कप, आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 1 बड़ा चम्मच चीनी, और तलने के लिए घी। अब चाशनी के लिए सामग्री लिखवा रही हूँ। 1 कप चीनी, आधा कप पानी, इलायची 2, केसर थोड़ा सा, ठीक है? तो 1 कप चीनी, आधा कप पानी, 2 इलायची और केसर के 2-3 धागे, ये चाशनी के लिए। अब रबड़ी के लिए ले लीजिए फुल क्रीम दूध 1 लीटर, चीनी ले लीजिए 3-4 बड़े चम्मच, इलायची पाउडर

नीचे से चिपके नहीं, दूध झले नहीं, ठीक है। फिर धीमी आंच पर पकाते रहिए और किनारे जमने वाली मलाई को वापस दूध में डालते रहिए, या फिर जो मलाई आती है ना उसके आप दूसरे बर्तन में भी ले सकते हैं। तो इस तरह आपको बनाना है। लगभग आधा रह जाए तो चीनी, इलायची और केसर डाल दीजिए, जो आपने अलग निकाले हैं मलाई वो भी डाल दीजिए, और 5 मिनट गैस पर पका करके गैस बंद कर दीजिए। मालपुए का घोल कैसे तैयार करेंगे? मैदा, सूजी, इन सबको छान करके आप चीनी, सौंफ और इलायची ये सब पानी में मिला करके घोल तैयार कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आप दूध ले सकते हैं, और पानी कम लेना है, दूध ज़्यादा लेना है। दूध में इस घोल को तैयार करना है, थोड़ा सा पानी आप ले सकते हैं, और घोल को ऐसा रखना है ना पतला ना ही ज़्यादा गाढ़ा, और 20-30 मिनट तक ये घोल तैयार करने के बाद ढक के रख दीजिए। अब मालपुआ बनाइएगा। कढ़ाई में घी गरम करिए, एक कलछी घोल डाल करके, मतलब घी गरम हो जाए तो एक चम्मच घोल डालिएगा, ठीक है। घोल डालने के बाद ये अपने आप ही घोल हो जाएगा, मालपुए का आकार अपने आप ही हो जाएगा। अब धीमी मध्यम आंच पर इनको तलिएगा, सुनहरा दोनों तरफ हो जाए उसके बाद निकाल दीजिए, ठीक है। फिर चाशनी में आप क्या करेंगे, चाशनी बनाना तो कितनी बार आपको सिखा चुकी हूँ। पानी में शक्कर डाल करके आपको गरम करना है, और जब एक तार की चाशनी आपको देखनी है, ठीक है, इसमें एक तार की चाशनी चाहिए, और आपको लगे कि हाँ एक तार की चाशनी तैयार हो गई है, इसमें मेल निकालने के लिए ठंडा दूध डालना है ताकि वो काला काला ऊपर जो मेल आएगा उसको निकाल देना है, और इस तरह चाशनी को एकदम उजली रखनी है, ठीक है, एक तार की रखनी है। और अब आएगा असली मज़ा, कैसे? गरम या हल्के गुनगुने मालपुए पर ठंडी या हल्की गरम रबड़ी आप डाल सकते हैं, ऊपर से बादाम, पिस्ता और केसर डाल दीजिए, बादाम किस्ता की कतरन और केसर डाल दीजिए, फिर आप खाइएगा। बहुत ही स्वादिष्ट ये मालपुआ तैयार हो चुका है, रबड़ी का मालपुआ, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। मालपुआ तल करके हमने निकाल रखे हैं, अब इसके ऊपर आपको रबड़ी डाल करके इस तरह सजा करके अपने इष्ट देव को भोग लगा करके ही खाना है, ठीक है। तो इस तरह मालपुआ तैयार हो चुका है हमारा, और अब देखिए समय भी हो चला है आप सभी से इजाज़त लेने का, इसलिए मैं अल्पविराम भी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि रेडियो मधुबन की घड़ी में बज चुके हैं 11:21:29 हो चुके हैं, ठीक है, इसलिए ब्रेक नहीं लेंगे। तो आज का कार्यक्रम आपने सुना है, काफ़ी अच्छा रहा है, सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर ज़रूर गौर करेंगे कि ईश्वर कभी भी किसी के संकल्प को अधूरा नहीं छोड़ता है, पूरा ज़रूर करता है। और नुस्खे में भी जीव जंतुओं से कैसे बचना है आपने जाना है, खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, और जो रेसिपी में आपको रबड़ी का मालपुआ बनाना सिखाया है ज़रूर बना करके खाइएगा, ठीक है। और ज़्यादा बन जाए चिंता मत करिएगा, आजकल तो सभी के फ्रिज रहता ही है, फ्रिज में रख दीजिए, दूसरे दिन खाने के कम से कम 1-1.5 घंटा पहले निकाल दीजिए तो आप खा सकते हैं, ठीक है। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था, पूरे भारत देश में हरियाली अमावस्या कौन कौन से राज्य में मनाई जाती है, और जहाँ हरियाली अमावस्या नहीं मनाई जाती है उन राज्यों में किस नाम से जाना जाता है, यह अमावस्या को क्या कहा जाता है? तो जवाब दिया है सुरेश भाई झोटाना से, आपका जवाब सही है तो आपके लिए ढेर सारी तालियां। तो जवाब आप जान लीजिए। देखिए हरियाली अमावस्या कौन कौन से राज्य में कहते हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यहाँ सब जगह हरियाली अमावस्या ही कहा जाता है। गुजरात में भी हरियाली अमावस या फिर हरियाली अमास इस नाम से जाना जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, इधर आषाढ़ अमावस्या के नाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है, ठीक है। तो आषाढ़ अमावस्या, तो ये आज का जवाब है, ठीक है। और बाकी विषय में जुड़े हैं हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु जुड़े हैं, सभी का नाम लेना चाहूँगी कि इन्होंने मतलब शुभकामनाएं दी है, तो कोई विषय में भी चर्चा की है, दयाराम जी रामपुरा से,

सुरेश भाई जोटाना से, कंचन भाई मंडाली से, दयाराम जी इकबालगढ़ से, फिरोज भाई पालनपुर से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, भूराराम जी ओर से, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, सुरेश भाई धानेराव से, आप सभी जुड़े हैं। विषय को भी स्पष्ट किया है और किसी किसी ने शुभकामनाएं भी दी है। आप सभी के लिए ढेर सारी और पुनः आप सभी को हरियाली अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। वो कहते हैं ना, हरियाली अमावस्या सावन के महीने की अमावस्या है, तो वो तो हम सभी जानते ही है। और इस दिन का खास आप सभी ने किया है, आज आप सभी जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा। हरियाली रहे, खुशहाली रहे, हर आंगन में पेड़ पौधों की लाली रहे, धरती मुस्कुराए, प्रकृति गुनगुनाए, हरियाली अमावस्या सबके जीवन में सुख शांति लाए। तो पुनः आप सभी को हरियाली अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का मीठा मोती भी आपको सुनाना चाहूंगी, जो बहुत ही सुंदर है। दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल आत्मा और परमात्मा की है। परमात्मा से दोस्ती आत्मा को भव सागर से पार करा देती है। अब मैं आपको एक प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भाव भजन है, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक बहुत ही सुंदर प्रश्न के साथ। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खम्मा सा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। हरि को नाम लिया जीभ कैया अटकी, बाता मत करे खोट कपट की, प्रभु को नाम लिया जीभ किया अटकी, बाता मत करे खोट कपट की, तीरथ व्रत कियो नहीं भाया नहीं राम गुण गाया, खाटो मीठो भोजन पायो फूलो नहीं समायो, थारे चोर मापे थारे चोर मापे लार किया टपकी, बाता मत करे खोट कपट की, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी धर्म करो नहीं गेलो, जोड़ जोड़ कर मर जावे लो आगे काई करे लो, थारे जामड़ा मारे ला भाया लठ की, बाता मत करे खोट कपट की, राम नाम का साचा मोती हंसा कोई चुग लीजो, लूकी सूकी खाकर भाया ठंडो पानी पी लीजो, थारो सावरियो जाने ला थारे घट की, बाता मत करे खोट कपट की, ओम नमो शिवाय की तो माला फेर लीजो, थाने फायदो हो तो भाया और आने भी कीजो, थारे नोटा सु भरेगा बाबा मटकी, बाता मत करे खोट कपट की, हरि को नाम लिया जीभ किया अटकी, बाता मत करे खोट कपट।

0: ये ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी, और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ। मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए, मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं? नहीं ना।
3: भारत को आजादी दिलाने में सैकड़ों गुमनाम क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है। उन्होंने ना अपने मौत की परवाह की, ना देश से निकाले जाने की, ना वो जेल जाने से डरे और ना ही संपत्ति जब्त होने से। कमाल की बात ये भी रही कि आजादी की ये लड़ाई भारत के साथ साथ विदेशों में भी समान रूप से लड़ी गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर, मैडम भिकाजी कामा, बैरिस्टर सरदार सिंह राणा, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, सरदार अजीत सिंह, लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप और चंपक रमन पिल्लई जैसे लोगों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। वंदे मातरम वो स्वर था जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आत्मा दी। ये गीत प्रत्येक भारतीय के भीतर ये भावना जगाता रहा कि हमारी धरती केवल भूमि नहीं बल्कि हमारी माँ है। माँ भारती, यानी जिनके चरणों की रज भी हमारे लिए पवित्र है। इस गीत की गूंज ने क्रांतिकारियों को अपना सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा दी। यही कारण है कि गीत को सुनते ही हर भारतीय के भीतर गर्व, उत्साह और समर्पण की लहर दौड़ जाती है। वंदे मातरम के स्वर ने भारत को एक शक्ति दी जिससे वो अपने स्वाभिमान, अपनी अस्मिता और आजादी के लिए एकजुट होकर संघर्ष कर सके। देशवासियों को विश्वास दिलाया कि भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा हुआ एक जीवंत राष्ट्र है। कालांतर में ये गीत उस चेतना का प्रतीक बना जिसने जाति, भाषा और प्रांत की सीमाओं से परे जाकर सभी को एक ध्वज तले एकत्र किया।
4: दीदी, मैंने सुना है एक क्रांतिकारी ऐसे भी थे जो महज 25 साल की आयु में देश की खातिर फांसी पर झूल गए थे।
5: हाँ बन्नो, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। वे एक जोशीले देशभक्त थे जिनमें अदम्य साहस था। उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कैसे भूल सकती हूं मैं वो तारीख, 17 अगस्त 1909, जब लंदन के पेंटन विले जेल में उस 25 वर्षीय क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। फांसी पर चढ़ने से पहले उनके अंतिम शब्द थे, वंदे मातरम। वे महान क्रांतिकारी और कोई नहीं, मदन लाल ढींगरा थे। उनके लिए वंदे मातरम सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति का सर्वोच्च मंत्र था।
4: दीदी, आपने ये तो बताया नहीं कि उन्हें फांसी दी क्यों गई थी।
5: बन्नो, मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी।
3: दरअसल साल 1908 के उस दौर में हिंदुस्तान की धरती पर स्वतंत्रता की चिंगारी धधक रही थी। शूरवीर क्रांतिकारी अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रण ले चुके थे। उसी दौर में मदनलाल ढींगरा ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया। उन्होंने खुलेआम अंग्रेज अफसर कर्जन वाइली को गोली मार दी, ताकि ये संदेश दे सके कि भारतवासी अब गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस घटना से पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया और मदनलाल को सिर्फ 46 दिनों में फांसी पर चढ़ा दिया गया। मगर उनकी शहादत ने हिंदुस्तानी युवाओं के दिलों में आजादी की आग और भड़का दी।
4: मुझे एक बात बताओ दीदी, आखिर इतनी छोटी उम्र में मदनलाल के भीतर इतना देश प्रेम पनपा कैसे?
5: लोग बताते हैं कि वे शुरू से इतने देशभक्त नहीं थे, लेकिन लंदन में पढ़ाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उनकी राह बदल गई। लंबी कद काठी और हंसी ठिठोली करने वाले इस नौजवान को उनके जीवन का एक उद्देश्य मिल गया।
3: दरअसल मदनलाल का जन्म पंजाब के अमृतसर के एक संपन्न परिवार में हुआ था। पिता नेत्र चिकित्सक थे। पढ़ाई में काफी तेज होने के कारण मदनलाल का लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज के सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला हो गया। रहने की व्यवस्था इंडिया हाउस में हुई, वही इंडिया हाउस जिसे श्यामजी वर्मा ने साल 1905 में खरीदा था, जिसके एक हिस्से में यूथ हॉस्टल था और जहां देश की आजादी की योजनाएं बना करती थी। तमाम छोटे बड़े क्रांतिकारी वहां बैठक करते थे। बताते हैं कि 1907 में ग्रेट ब्रिटेन में करीब 700 भारतीय स्टूडेंट्स थे, जिनमें अकेले लंदन में 380 स्टूडेंट्स थे।
4: ओ, समझ गई, मदनलाल को देशभक्ति की प्रेरणा कहां से मिली? इंडिया हाउस में आने वाले क्रांतिकारियों से? ठीक सोच रही हो ना?
5: अरे जरा ठहरो, ये प्रेरणा से कुछ अधिक थी।
4: क्या कह रही हो दीदी, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा।
5: मदनलाल का आकर्षक व्यक्तित्व था। कम समय में ही वे इंडिया हाउस में युवक युवतियों के आकर्षण का केंद्र बन गए थे। उनके दोस्त बड़े शोर शराबे वाले थे, अक्सर प्रेम गीत गाया करते थे। उन दिनों मदनलाल के मन में मातृभूमि की आजादी का विचार खास तौर पर नहीं था। एक दिन इंडिया हाउस में रविवार की बैठक चल रही थी, उसमें वीर सावरकर भारत की आजादी पर एक जोशीला भाषण दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर मदनलाल और उनके दोस्त बगल वाले कमरे में खूब शोर शराबा मचा रहे थे। इससे सावरकर को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। वे बगल वाले कमरे में गए, जहां मदनलाल और उनके दोस्त मौज मस्ती कर रहे थे। सावरकर ने उन्हें टोका और एक तरह से डांटते हुए बोले,
6: क्या बात है मदन, तुम काम और बहादुरी की बातें तो करते हो, लेकिन हमारी साप्ताहिक बैठकों में आने से कतराते हो। क्या यही वह बहादुरी है जिसकी तुम हमेशा बातें करते रहते हो?
3: सावरकर के शब्दों ने मदनलाल ढींगरा को अंदर से हिला दिया। उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो चुपचाप इंडिया हाउस से निकल गए। फिर कई दिनों तक सावरकर को अपना चेहरा नहीं दिखाया। समय गुजरा, उन्होंने हिम्मत जुटाई और दोबारा इंडिया हाउस लौटे। मन में कई विचार चल रहे थे।
7: मैं लौट तो आया हूं, लेकिन पता नहीं सावरकर जी अभी भी मुझसे नाराज है या नहीं।
3: मदनलाल अपने ख्यालों में खोए हुए थे कि अचानक उनका सावरकर से सामना होता है।
6: अरे ढींगरा, कहाँ थे इतने दिनों से, दिखाई नहीं दिए। मैंने कुछ लोगों से पूछा भी, किसी ने कुछ बताया नहीं। सब ठीक तो है ना घर परिवार में? पढ़ाई कैसी चल रही है?
3: मदनलाल को उम्मीद नहीं थी कि सावरकर उनसे इतने स्नेह से बात करेंगे, मानो उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। इससे हिम्मत पाकर ढींगरा ने सावरकर से पूछा,
7: क्या शहादत का समय आ गया है?
6: अगर कोई शहीद अपना मन बना चुका हो और तैयार हो तो आम तौर पर यही समझा जाता है कि शहादत का समय आ गया है।
3: ढींगरा ने अब मन बना लिया था। ये जुलाई 1908 की बात होगी। उन्होंने जानबूझकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन में शामिल होने का फैसला किया। ये एसोसिएशन भारतीय छात्रों को उग्रवादी रास्ते से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। इस एसोसिएशन के कार्यक्रमों में ब्रिटेन के कई बड़े बड़े लोग शामिल होते थे। ढींगरा ने उनकी मौजूदगी में सावरकर और दूसरे क्रांतिकारियों की बुराई की। जल्द ही उन्हें नेशनल इंडियन एसोसिएशन की सेक्रेटरी मिस एमा जोसेफिन बेक का भरोसा जीत लिया। इस प्रकार उन्हें अलग अलग कार्यक्रमों में आने वाले खास अंग्रेजी मेहमानों के आने जाने के समय के बारे में पता चलने लगा। ढींगरा ने अपना मिशन तय करने के बाद इंडिया हाउस छोड़ दिया। दरअसल उन्हें दिखाना था कि वो सावरकर से सहमति नहीं रखते। इस तरह साल 1909 में ईस्टर के बाद मदनलाल मिसेस हैरिस के घर रहने लगे।
4: दीदी, जब मदनलाल सावरकर से अलग सोच रखते थे तो उन्होंने अंग्रेज अफसर को गोली कैसे मारी?
5: यही तो उनका मिशन था। इसके लिए हमें जानना होगा कि आखिर कर्जन वाइली थे कौन।
3: कर्जन वाइली एक बहुत ऊंचे औहदे के अफसर थे जो 1866 में ब्रिटिश सेना और 1879 में भारतीय राजनीतिक विभाग में शामिल हुए थे। उन्होंने 1879 से 80 के अफगान युद्ध, अवध, नेपाल, मध्य भारत और सबसे बढ़कर राजपुताना में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया था। 1901 में उन्हें भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पॉलिटिकल एडी कैंप चुना गया था। वो गुप्त पुलिस के मुखिया भी थे। बताते हैं कि कर्जन सावरकर और क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इंडिया हाउस में एक मुखबिर भी लगा रखा था।
8: मुझे सावरकर और उसके सभी क्रांतिकारी साथियों की पूरी खबर चाहिए कि वो क्या योजना बना रहे हैं।
9: जी सर, आपको सारी इन्फॉर्मेशन समय पर मिल जाएगी।
8: तुम थोड़ा जल्दी काम करो, वो इंडियंस कुछ ना कुछ जरूर प्लान कर रहे होंगे।
9: मैं जल्द से जल्द बताता हूँ।
3: कर्जन निश्चिंत था कि उसके मुखबिर की खबर क्रांतिकारियों को नहीं है, लेकिन सावरकर से कहाँ कुछ छुपने वाला था। उन्हें भनक लग चुकी थी कि इंडिया हाउस में कोई गुप्तचर है।
6: हमें थोड़ा खबरदार रहना है, हमारे बीच में कोई है जो अंग्रेजों तक सारी सूचनाएं पहुंचा रहा है।
10: आप ये क्या कह रहे हैं, हमारे बीच में कोई गद्दार है?
11: कौन है वो गद्दार? आप नाम बताइए उसका, छोड़ेंगे नहीं उसको।
6: धीरज रखो, जल्द ही पता चल जाएगा सबको।
3: इंडिया हाउस में एक आक्रोश सा फैल गया था। हर कोई सोचने लगा था कि आखिर वो गुप्तचर है कौन। तरह तरह की बातें होने लगी थी, लेकिन वहाँ एक शख्स था जिसके चेहरे के हाव भाव कुछ बदल से गए थे। वो एक मेडिकल का स्टूडेंट था।
12: कहीं सावरकर जी को मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पता चलता तो वो मुझे छोड़ते क्या?
3: अभी वो छात्र ये सब सोच ही रहा था कि उसे सावरकर ने आवाज लगाई। कीर्तिकर, जरा बैठना मेरे साथ। भाव विहीन होने की कोशिश करता हुआ कीर्तिकर सावरकर के पास पहुंचता है।
12: जी बताइए, क्या सेवा है मेरे लिए?
6: बहुत बड़ी, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्यों कर रहे हो ये सब और किसके कहने पर कर रहे हो?
12: मैंने क्या किया? कुछ समझा नहीं मैं।
6: अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पोल खुल चुकी है।
3: फिर क्या था, अपनी जान पर खतरा पैदा होता देख कीर्तिकर ने ब्रिटिश पुलिस के ऑपरेशंस के बारे में उसके पास मौजूद सारी जानकारी सावरकर को दे दी। उधर ढींगरा कर्जन वाइली से व्यक्तिगत रूप से परिचित थे। 13 अप्रैल 1909 को मदन लाल के पास वायली का लिखा एक पत्र पहुंचा, जिसमें उन्होंने मिलने की बात कही थी। कहानी में यही एक जबरदस्त ट्विस्ट आया जब मदन लाल ढींगरा ने अपनी योजनाओं के बारे में सावरकर से चर्चा की। इसके पश्चात सावरकर ने ज्ञान चंद वर्मा को बुलाया और उनसे कहा,
6: आप लंदन छोड़कर न जाएं और इंपीरियल इंस्टीट्यूट में होने वाले कार्यक्रम में जरूर शामिल हो।
3: ढींगरा अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने लगे थे। उसी दौरान वो बिपिन चंद्र पाल के घर पर सावरकर से मिले। उस बैठक में निरंजन पाल भी मौजूद थे। मदन लाल काफी अच्छे मूड में थे। उन्होंने सावरकर से बड़े स्नेह के साथ बातचीत की।
6: आप ये बयान देख ले जो आपको करजन वायली के हत्या करने के बाद देना होगा। निरंजन पाल ने इसे टाइप किया है।
7: ठीक है, मैं इसे याद कर लेता हूँ।
3: सावरकर ने मदन लाल को बेल्जियम में बनी एक ब्राउनिंग पिस्तौल भेंट की और बड़े स्नेह के साथ उनसे विदा ली। ढींगरा भावुक हो उठे। तब सावरकर ने कहा,
6: अगर इस बार तुम असफल रहे तो मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना।
7: आप निश्चिंत रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
3: एक जुलाई को ढींगरा के सहेली मित्र सैंटियागो उनके आवास पर गए। ढींगरा सामान्य बने रहे। इसके बाद वो गोरेगांवकर से मिलने गए, जिन्हें उनके साथ इंपीरियल इंस्टीट्यूट जाना था। उन्होंने 108 लीडबरी स्ट्रीट स्थित अपने ही घर पर समय से पहले दोपहर का भोजन और शाम की चाय ली। दोपहर 2 बजे वो एक रिवॉल्वर लेकर अपने घर से निकले। उन्होंने चमड़े के खोल वाली एक बिल्कुल नई कटार खरीदी और उसे अपनी जेब में रख लिया। फिर वो फनलैंड गए और 18 फीट की दूरी से 12 राउंड गोलियां चलाई। इनमें से 11 गोलियां निशाने यानी बुलजाई के बिल्कुल करीब लगी। इसके बाद उन्होंने अपनी रिवॉल्वर साफ करवाई। शाम 7 बजे मदन लाल ने लाउंज सूट और नीली पंजाबी पगड़ी पहनी। उन्होंने अपनी कोल्ट रिवॉल्वर लोड की और उसे अपनी कोट की दाईं जेब में रख लिया। उन्होंने एक एक रिवॉल्वर कोट की दूसरी जेब और अपनी वेस्ट में भी रख ली। क्योंकि वो सावरकर द्वारा लिखा गया बयान याद नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे पेंसिल से कागज की एक शीट पर लिख लिया। उन्होंने अपनी जेब में 10-12 शिलिंग भी रखी और कार्यक्रम के लिए निकल पड़े।
5: मेरी बन्नो, तुम सुन रही हो ना, हमारे क्रांतिकारी किस कदर योजनाबद्ध तरीके से अपने मिशन पर जुटे थे।
4: हाँ दीदी, मुझे तो डर भी लग रहा है ये सोच सोच कर कि आगे क्या होगा। पकड़े जाने पर ब्रिटिश पुलिस मदन लाल जी के साथ कैसा सलूक करेगी।
5: बन्नो, क्रांतिकारी अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। तुम डरो मत बन्नो, बस इतना याद रखना कि स्वतंत्रता के इन वीर सेनानियों ने कितना कुछ देश के लिए कुर्बान किया।
4: बिल्कुल याद रखूंगी दीदी, भरोसा रखो।
3: आखिर वो दिन आ ही गया, 1 जुलाई 1909। इंपीरियल इंस्टीट्यूट की पहली मंजिल पर स्थित जहांगीर हॉल में नेशनल इंडियन एसोसिएशन की बैठक चल रही थी, जिसमें करजन वायली समेत कई प्रमुख ब्रिटिश नागरिक और भारतीय शामिल थे। असल में ये एक स्वागत समारोह था, जिसे सर अल्फ्रेड लायल की पत्नी लेडी लायल के सम्मान में आयोजित किया गया था। मदन लाल इस एसोसिएशन के एसोसिएट सदस्य थे, तो वो भी वहां पहुंचे, लेकिन अपना निमंत्रण पत्र लाना भूल गए। हालांकि विजिटर्स बुक में हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें प्रवेश मिल गया। बैठक में कोरेगांवकर भी एक पिस्तौल लेकर पहुंचे थे। जैसे ही मीटिंग खत्म होने वाली थी, करजन वायली वहां से निकलने की तैयारी करते दिखे। तभी कोरेगांवकर ने ढींगरा को उकसाया,
13: अजी जाओ ना, क्या कर रहे हो।
3: ढींगरा बात करने के बहाने करजन वायली के पास पहुंचे। दोनों ने शीशे का दरवाजा खोला और हॉल से बाहर निकल गए। जैसे ही वो सीढ़ियों के चबूतरे पर पहुंचे, ढींगरा ने अपनी आवाज धीमी कर ली, मानो वो कोई गोपनीय बात करना चाहते हों। करजन वायली को ढींगरा के करीब आना पड़ा। मौका भांपते ही ढींगरा ने अपने कोट की जेब से कोल्ट रिवॉल्वर निकाली और बिल्कुल करीब से पॉइंट ब्लैंक रेंज से दो गोलियां दाग दी। तब रात के 11:20 बजे थे। करजन वायली लड़खड़ाने लगे, तभी ढींगरा ने दो और गोलियां उन पर दाग दी। वहां मौजूद एक पारसी डॉक्टर कावस लाल काका ने बीच बचाव करने की कोशिश की।
14: ये क्या किया? He is bleeding.
7: आप बीच में ना पड़े वरना।
3: मदन लाल ढींगरा ने उन पारसी डॉक्टर पर भी गोली चला दी, खुद को भी गोली मारने का प्रयास किया जो असफल रहा। आसपास के लोगों से हाथापाई होने लगी। ढींगरा ने एक को जमीन पर गिरा दिया जिससे उसकी पसलियां टूट गई, लेकिन फिर किसी ने उन्हें जोर से पकड़ लिया और उनकी रिवॉल्वर छीन ली। हाथापाई में ढींगरा का चश्मा दूर जा गिरा था। उन्होंने शांत भाव से अपने पकड़ने वालों से कहा,
15: मेरा चश्मा दे दे।
3: घटना के पश्चात डॉक्टरों ने जब ढींगरा की नब्ज जांची तो वो हैरान रह गए। इतनी बड़ी वारदात के बाद भी उनकी नब्ज बिल्कुल सामान्य थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधिकारी ने ढींगरा से पूछा,
8: क्या आप चाहते हैं कि हम आपके किसी दोस्त को आपकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करें?
7: इसकी कोई जरूरत नहीं है, उन्हें कल के अखबारों में मेरी गिरफ्तारी के बारे में पता चल ही जाएगा।
8: ये तो बड़ा सयाना है, मुंह नहीं खोलेगा।
4: आगे क्या हुआ गीत दीदी? क्या पुलिस ने उनसे मारपीट की?
5: असल में ढींगरा को एहसास था कि पुलिस उनके दोस्तों को भी इस मामले में फंसाने की कोशिश कर सकती है, इसलिए उन्होंने चतुराई से जवाब दिया। बाद में पुलिस उन्हें वॉल्टन स्ट्रीट पुलिस स्टेशन लेकर गई।
3: आप सभी को बता दें कि करजन वायली की हत्या करने से कुछ हफ्ते पहले मदन लाल ढींगरा ने लॉर्ड करजन को भी मारने की कोशिश की थी। वो सभी वायसरायों में से सबसे ज्यादा अहंकारी माने जाते थे, लेकिन किस्मत ने करजन को दो बार बचा लिया। इनके अलावा मदन लाल ने बंगाल के पूर्व गवर्नर ब्रैमफील्ड फुलर की हत्या की भी योजना बनाई थी। हालांकि वो उस मीटिंग में देर से पहुंचे जहां इन दोनों को मौजूद रहना था, इसलिए मदन लाल अपनी योजना को अंजाम नहीं दे पाए। ये सब होने के बाद ढींगरा ने करजन वायली को मारने का फैसला किया। सावरकर थोड़ा सा शंकित थे कि पता नहीं इस बार ढींगरा सफल रहेंगे या नहीं। ये सिर्फ ढींगरा को ही मालूम था कि उन्हें हारना नहीं है। गिरफ्तारी के बाद का घटनाक्रम भी कम रोमांचकारी नहीं रहा। मामला अदालत में पहुंचा। वहां क्या क्या हुआ ये जानने के लिए आप श्रोताओं को करना पड़ेगा अगले एपिसोड का इंतजार। तब तक सुनते रहिए एक गीत एक नारा, राष्ट्रगीत हमारा, वंदे मातरम।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, आज मैं हाजिर हूँ आप सबका अपना पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हम राही। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सब जानते हैं, हम नई नई कहानियों को सुनते हैं, नए नए संघर्ष से रूबरू होते हैं और समाज में जो कुछ मान्यताएं फैली हुई हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। और हमारे मेहमान इस कार्यक्रम में जो भी आते हैं वो अपने तरीके से हमारे सभी साथियों को, चाहे वो मुख्य धारा के लोग हों या फिर हमारे दिव्यांग समाज के साथी हों, उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित करने का काम करते हैं। अलग अलग राज्यों में घूमते हुए, कई बार राजस्थान के दूर दराज ग्रामीण अंचलों में यात्रा करते हुए, आज एक बार फिर हमारी ये हमराही एक्सप्रेस या हमराही का ये कारवां जा पहुंचा है गुजरात। और गुजरात का एक बहुत ही पुराना शहर है जिसका नाम है अहमदाबाद। आप और हम सब परिचित हैं अहमदाबाद शहर से। तो आज के हमारे दोनों मेहमान अहमदाबाद से ही जुड़ रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं महेंद्र भाई चुड़ासमा और उनकी श्रीमती जी अल्पा बेन का आज के हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में जिसका नाम है हमराही। तो महेंद्र जी और अल्पा जी, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है।
1: जी नमस्कार।
2: जी शुक्रिया।
0: जी महेंद्र भाई, आप हमारे सुनने वालों को अपने बारे में बताएं, आपकी दिव्यांगता के बारे में बताएं, आपकी शुरुआत कहां से हुई, आजकल क्या कर रहे हैं आप, जरा ये सब हमारे सुनने वालों को कृपया बताइए।
1: सबसे पहले सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: क्या
1: तो हमारी खुशनसीबी है कि आज के दिन हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों के सामने पेश आ रहे हैं।
0: बहुत बढ़िया।
1: इसलिए मैं आपका संदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।
0: जी धन्यवाद।
1: सुनने वालों को मैं बताऊँ, मेरा नाम महेंद्र चुड़ासमा है।
0: जी।
1: मैं बाई बर्थ VI विजिटेड हूँ। 1975 में मेरा बर्थ है। तभी का एक ऐसा दौर था, रेडियो का दौर था।
0: जी जी जी।
1: टेलीविजन 1980 के बाद आया।
0: जी।
1: 75 से 80 तक भी टेलीविजन थे।
0: जी।
1: लेकिन बहुत बड़े बड़े लोगों के पास और बहुत सीमित, और कार्यक्रम की श्रृंखला भी बहुत लिमिटेशन हुआ करती थी।
0: जी जी।
1: तो उन रेडियो के दौर में तब जो भी गाने बजते थे, सुनते सुनते मुझे भी ऐसा हुआ कि चलो मैं भी गाना गाऊं।
0: जी।
1: और बहुत सारी चीजों को जानने का, परखने का मुझे पहले से बचपन से ही शौक रहा है। कोई नई नई, जैसे खिलौने में कोई नया खिलौना है ऐसा वगैरह, यानी कि मैं आज के दौर की बात करूँगा एज ए टेक्नोलॉजी, मुझे पहले से बहुत पसंद थी। इस तरह शुरुआत हुई। फिर मैंने हमारे अहमदाबाद में टाइम्स ऑफ इंडिया के सामने बहरामुंगा की शाला है, उसके अंदर ब्लाइंड स्कूल भी है।
0: अच्छा।
1: वहां पे मैंने 10th तक पढ़ाई की।
0: जी।
1: वहां से मुझे पूरा एजुकेशन मिला, साथ में म्यूजिक विशारद की डिग्री भी वहां से मैंने हासिल कर ली।
0: जी।
1: फिर आगे बढ़ते हुए हम एडल्ट एजुकेशन में आए, यानी कि वस्त्रापुर, BPA अभी नाम है, पहले BMA नाम था, ब्लाइंड मैन एसोसिएशन, अभी ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन नाम है वस्त्रापुर। वहां पे हमारे एक टीचर कहें या तो फिर जो भी ऑर्गेनाइजर कहें तो भी कोई गलत बात नहीं होगी, तारक लुहार सर।
0: जी।
1: कि हर एक को स्टेज पर लाने का काम भी कर रहे थे।
0: जी।
1: वहां ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करते थे।
0: अच्छा।
1: तब भी मेरी एक खुशनसीबी, वहां से मुझे 1994 में आरडी बर्मन साहब की जब डेथ हुई थी।
0: जी जी।
1: 4 जनवरी को।
0: जी।
1: और हमारे लुई ब्रेल का जन्मदिन था।
0: जी जी जी।
1: जन्मदिन हुआ करता है, उसी दिन को एक शो का आयोजन किया गया। हमारे गुजरात के बहुत ही प्रसिद्ध गायक कलाकार बंकिम पाठक जी एवं खांडेकर ऑर्केस्ट्रा के साथ, तब मैंने 2 गाने गाए। तब से मुझे वो स्टेज की दुनिया भाने लगी, ऐसी भाई कि मैंने उसके अंदर जो मेरा काम शुरू किया एज ए प्रोफेशनल 1997 से, तो वो मुझे लंदन भी ले गया, मुझे अमेरिका भी ले गया।
0: जी।
1: और आज बस वही सिलसिला चल रहा है।
0: क्या
1: मगर बीच में एक ऐसा दौर आया
0: जी।
1: कि लंदन में काम करने वाले प्रमोटर्स के लाइसेंस कुछ बैंड हो गए
0: जी,
1: जो 2006 में।
0: अच्छा,
1: तो उसके बाद फिर मैं कंफ्यूजन में आ गया कि अभी मुझे क्या करना, क्या चाहिए
0: जी।
1: एक्सीडेंटली वहां पर, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बीपीएम एनजीओ में कंप्यूटर ट्रेनिंग शुरू हुई
0: जी।
1: तो वो कंप्यूटर ट्रेनिंग शुरू हुई तो उसमें मैंने कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली
0: जी।
1: तो मुझे वैसे पहले से ही मुझे टेक्नोलॉजी में तो इंटरेस्ट बहुत था
0: जी।
1: तो फिर मैंने कंप्यूटर की ट्रेनिंग करने के बाद मैंने ऐसा काम किया कि हमारे सर ने ही, यानी कि हमारे आरपी सर रणछोड़ भाई सोनी
0: जी,
1: उन्होंने मुझे एक वॉलंटियर बेस पर लेकिन स्टाइफन के दौर पर वहां पे जॉब दे दी।
0: अच्छा,
1: हाँ, वो 2009 में
0: जी जी,
1: वो 2010 से शुरू हुई है सर। दो साल मैंने वहां पे काम किया और मैं बहुत सीखा।
0: अच्छा,
1: फिर कहते हैं ना कि भाई माता सरस्वती हर एक रास्ता बंद हो जाए तो एक रास्ता खोलती है
0: जी।
1: कलाकारों के लिए खास ये बात कही जाती है
0: बिल्कुल,
1: कि कलाकार का एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता अपने आप खुल जाता है
0: जी।
1: तो जैसे ही लंदन बंद हुआ तो 2-3 साल में अमेरिका की शुरुआत हो गई हमारे लिए। तो फिर मैं अमेरिका का काम मैंने संभालने लगा एज ए स्टेज सिंगर
0: जी।
1: और मैंने 20 साल तक पहले से 1994 से
0: जी
1: आज तक नॉर्मल लोगों के साथ काम किया। हाँ, मैंने वीआई पर्सन्स के साथ काम किया है, लोकल काम बहुत किया है, बाकी लोकल एवं इंटरनेशनल लेवल पर मैंने नॉर्मल के साथ काम किया है। बाद में फिर एक ऐसा दौर आया कि जिसमें मुझे अल्पा जी मिल गए। एक ट्रेनिंग के लिए मैं कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी करता था, जब जब मेरी टूर नहीं होती थी तो यहाँ इंडिया में मैं बचे हुए वक्त का सही उपयोग करके, सही यूज कर मैं एक ट्रेनिंग में गया था। वहां मुझे अल्पा जी मिली
0: जी।
1: फिर हमारी बात हुई, हमारी जान पहचान हुई, फिर ये रिश्ता आगे बढ़ा और आगे बढ़ते बढ़ते फिर ये परमानेंट रिश्ते में तब्दील हो गया। बस यहाँ तक तो अभी, यहाँ तक अभी है, और भी बहुत कुछ मेरे मुझे कहना है लेकिन अगर मैं कहूंगा तो इनकी बारी नहीं आएगी तो ये रखते फिर आगे, फिर मैं ब्रेक में उनको ब्रेक देने के लिए फिर मैं मेरी बात जो कुछ एक दो बात बतानी है, हालांकि पॉजिटिव है, मेरे करियर के बारे में है वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ तक तो मेरा ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया।
0: कुल मिलाकर के आप पूरी तरह से संगीत के प्रति समर्पित हैं, ये कहना चाहिए जी।
1: मैंने मेरी लाइफ में, जैसे हम दो पांव पे खड़े रहते हैं, ऐसे मेरी लाइफ दो पहिए पर खड़ी है, एक म्यूजिक और दूसरी टेक्नोलॉजी।
0: क्या
1: बस इन दोनों की साधना मैंने की है और करता रहूंगा।
0: बहुत खूब। और
1: टेक्नोलॉजी की बात मैं आगे बताऊंगा जी।
0: और हमारे लिए भी ये सौभाग्य का विषय कि आज एक अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत से हमें रूबरू होने का मौका मिल रहा है।
1: ये तो आप सब लोगों का प्यार और हमारी पूरी जनता के आशीर्वाद से होता है, फिर हमारी मेहनत, ये सब कुछ काम करता है। एक किसी एक चीज से कुछ भी काम नहीं होता।
0: बहुत खूब। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते। और आप अभी महेंद्र जी को सुन रहे हैं जो कि दृष्टि बाधित हैं और उनकी पूरी यात्रा के बारे में उन्होंने बताया, आगे भी बातें बहुत सारी होंगी। तो अब बात करते हैं जरा अल्पा जी से। हमने महेंद्र जी को सुना, अभी अल्पा जी को सुनने की बारी है। तो जी अल्पा जी, तो हमारे सुनने वालों को जरा अपनी आवाज में, अपने बारे में और आप की कोई दिव्यांगता है या नहीं है जरा वो भी बताएं अल्पा जी।
2: सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी, मेरा नाम अल्पा मेहता, मैं अभी अहमदाबाद में रहती हूँ और मेरे पेरेंट्स बड़ौदा में हैं। वैसे मैं बड़ौदा बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ और बड़ौदा में मेरे पेरेंट्स है, तो मेरी पढ़ाई आधी अहमदाबाद में हुई है, आधी बड़ौदा में भी हुई है
0: जी।
2: और म्यूजिक का शौक तो मुझे बचपन से ही है
0: जी।
2: और मैंने म्यूजिक विशारद किया है और मैंने बोला ना आधी पढ़ाई अहमदाबाद में और बड़ौदा में, वैसे कुल मिला के 12th तक पढ़ाई की है। लाइट म्यूजिक मुझे ज्यादा पसंद है, जैसे बोलते हैं गुजराती सुगम संगीत
0: जी, जी जी जी
2: वो मेरा प्रिय है। और उसमें मैं लाइव शोज भी करती हूँ। बड़ोड़ा में थी तब गरबे का करती थी नवरात्रि में
0: जी।
2: और बाकी ऑर्केस्ट्रा में ये सब भी मैं इसमें भी पार्ट करती हूँ। और मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ, फिर मेरे पेरेंट्स बड़ोड़ा में हैं और मेरी दो बहनें हैं उनके साथ मैं रहती थी। और ये इन हमारे हम दोनों की मुलाकात एक कंप्यूटर ट्रेनिंग में हुई थी, तो वैसे हम मिले और अच्छी जान पहचान बनी और बताया कि ऐसे आगे शादी में परिवर्तित हो गई।
0: क्या बात, बहुत बढ़िया।
1: संदीप जी, इनको तो गुजरात में बेस्ट टीचर्स का अवार्ड भी मिला।
2: और मेरा सौभाग्य है, मैं जो बड़ोड़ा में जो स्कूल में मैंने पढ़ाई की है वही पे मैंने
1: जॉब
2: भी की है और मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है, राज्य पारितोषिक अवार्ड टीचर के लिए।
0: बहुत बहुत तो अल्पा जी, कभी गवर्नमेंट जॉब के बारे में नहीं सोचा आपने?
2: किए है, चालू है अभी प्रयास।
0: अच्छा, कोशिश चल रही है, बहुत बढ़िया।
2: जी जी,
0: बहुत खूब। नहीं, मुझे लगा जैसे स्टेज शोज से आप जुड़े हुए हैं तो शायद पूरी तरह से ध्यान।
2: यहाँ अहमदाबाद में भी अभी भी जॉब चालू है
0: जी।
1: हम दोनों एक ही स्कूल में जॉब करते हैं अभी।
0: अच्छा,
1: और लेकिन फर्क ये है कि दो बिल्डिंग अलग अलग है। मैं हाई स्कूल में हूँ
0: जी
1: और ये डे में है।
2: मैं इंग्लिश मीडियम डे चिल्ड्रन छोटे बच्चों के साथ हूँ, ये गुजराती मीडियम
1: जी।
2: वो स्कूल के दो बिल्डिंग
0: है। वो स्पेशल स्कूल है या
1: नॉर्मल?
0: ओके ओके।
1: त्रिपदा, शायद श्रोताओं में से किसी ने इनका नाम, त्रिपदा इंटरनेशनल स्कूल। हाँ
0: जी जी जी, बहुत खूब।
1: हाँ, ये प्राइवेट है लेकिन।
0: जी जी जी, चलिए तो महेंद्र जी, अब जरा कहानी बताएं आप दोनों के मिलने की थोड़ा विस्तार से। बाकी परिचय तो हो गया आप दोनों से।
1: बस यही बात है कि एक ट्रेनिंग हुई थी कंप्यूटर की
0: जी।
1: वो कंप्यूटर की ट्रेनिंग में इनका भी आना हुआ और उससे पहले मुझे इनके बारे में एक मेरे दोस्त ने बताया था कि आप जिस ट्रेनिंग कंडक्ट करने जा रहे हो वहां पे आपको आपकी ही फील्ड की आर्टिस्ट मिलने वाली
0: जी।
1: मैंने बोला कि कौन हो सकता है, फिर उन्होंने नाम बताया था। मैंने बोला मैं नहीं पहचानता इनको, कोई बात नहीं, ये ऐसा गाती है वैसा गाती है सब मुझे बताया था। मैंने बोला ठीक है, जाएंगे तो फिर परिचय हो जाएगा। फिर वहां पे गए तो वहां पे तो कुछ ऐसा हमारा, मेरा पर्सनल कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे गए वहां पे सब कुछ। फिर मैं वहां से निकला, फिर उनसे मेरी बात हुई, फिर पर्सनल बात हुई, फिर म्यूजिक रिलेटेड बात हुई, तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके फिर हम एक दूसरे के करीब आ गए। फिर हमने तय किया कि चलो अभी अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग भी है। इनका नेचर ऐसा है कि एकदम फॉलोअर नेचर है, और मैंने आपको बताया था और मैं सबको बताता हूँ कि आदमी को डिमांड रखनी चाहिए, लेकिन ऐसी डिमांड ना रखे कि जो सामने वाले के ऊपर हावी हो जाए, यानी कि हमको गुलाम नहीं चाहिए। कई लोग ऐसा होता है, कई लोग ऐसा सोचते हैं, खासतौर पर जनरल लोग में ऐसा होता है कि भाई हमारी वाइफ है तो हम कहें ऐसा ही होना चाहिए, हम कहें इस प्रकार से खाना बनना चाहिए, हम कहें इस प्रकार से उन्हें पहनना चाहिए, ऐसा में ऐसा नहीं। ये सब फॉलो पर जाता है
0: जी।
1: एक दूसरे को फॉलो करो, बस यही। आज मैं चाहूं कि भाई ये आज मुझे ये खाना है, अगर वो बोलते हैं कि आज एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो फिर मुझे फिर मैं उसे प्रेशर नहीं कर सकता
0: जी।
1: ये किसी का भी अधिकार नहीं, जोर जबरदस्ती तो मैं मानता नहीं लाइफ की किसी भी चीज में, जोर जबरदस्ती में मानता ही नहीं हूं। देखिए, जोर जबरदस्ती से अगर काम होगा तो काम तो हो जाएगा
0: जी।
1: लेकिन वो फीलिंग्स नहीं आएगी जो अपनी मर्जी से काम कर रहे थे, उसमें सब कुछ आ जाता है।
0: बहुत सही,
1: सब चीज आ जाती है।
0: बहुत सही,
1: मैं ये मानता हूँ। और जो प्यार से काम होगा वो जोर जबरदस्ती से नहीं होगा। तो इस हिसाब से हम दोनों मिले। और देखिए, कोई भी है तकलीफ तो आने वाली है, प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होने वाले ही है।
0: वो तो हर जगह,
1: घर से बाहर निकलते हैं तो भी प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। कई प्रॉब्लम नजर आते हैं, कई प्रॉब्लम नजर नहीं आते,
0: नहीं आते। ठीक बात।
1: ये बीआई के लिए नहीं, हर के लिए बात,
0: सभी के लिए। जी जी,
1: हाँ सभी। अभी मान लो कि कोई घर से निकला और वो जल्दी में उतरते उतरते उसका पैर फिसला और दो तीन सीढ़ियां मिस कर गया, वो गिर गया, वही प्रॉब्लम भी है ना उसके लिए।
0: ठीक बात है।
1: ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड कि वीआई कोई भी घर से बाहर निकला तो वो गिरेगा। मैंने तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े नॉर्मल को गिरते हुए देखा
0: जी जी जी जी,
1: दिल से गिरते हुए भी देखा है और दिमाग से गिरते हुए भी देखा है।
0: जी जी जी जी तो महेंद्र जी एक बात बताएं
1: जी,
0: जब आपको दोस्तों ने बताया कि वहाँ पे आपकी मुलाकात आपके ही फील्ड के किसी व्यक्ति से होने वाली है
1: जी,
0: तो तभी तय कर लिया था कि उनको प्रपोज करना है या उनको मतलब प्रभावित
2: नहीं,
0: करना
2: नहीं,
0: है?
2: हम दोनों तो वैसे एक दूसरे का नाम सुन रखा था लेकिन एक दूसरे को वैसे पहचानते नहीं थे।
1: नहीं, इसमें ऐसा था कि वो बात तो होने की, वो बात आप संदीप जी से पूछ रहे हैं उसका उसका आंसर मैं इस तरह से दूंगा
0: जी, जी,
1: कि तब मैंने तय नहीं किया था।
0: अच्छा,
1: मैं किसी भी, देखिए किसी भी चीज को पहले जांचो परखो बाद में उसे अपनाओ। जांचो परखो का मतलब, जांचो परखो का मतलब ये नहीं है,
0: समझना जरूरी है,
1: हम उसे एग्जाम करें ऐसा नहीं है,
0: अंडरस्टैंडिंग।
1: हाँ बस, वो अंडरस्टैंडिंग किस तरह से है, उनकी रहने का तरीका कैसा है, हमको मैच खाता है, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो हमें कोई लड़की नहीं मिलती है तो जो मिला गया, तो कोई लड़का नहीं मिलता है तो जो मिला उसके साथ करके फिर आगे का जीवन भगवान भरोसे छोड़ देना, ऐसा नहीं। सब कुछ भले हो तो हो, ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार अगर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो जाए ना, फिर तो हमने बहुत सारी फोन पे बात की। कम से कम मैं आपको परफेक्ट बताऊं तो अप्रैल महीने 2015 में
0: जी,
1: एक साल तक तो हमने बात नहीं की।
0: अच्छा, अप्रैल 2015 से अप्रैल 16 तक, ओके ओके जी जी जी,
1: क्योंकि 2015 अप्रैल महीने की पहली तारीख को तो मेरी ट्रेनिंग लगी थी वहां पे, क्योंकि 15 दिन की थी, आप जानते हो कि 15-20 दिन की कंप्यूटर की ट्रेनिंग रहती है
0: जी जी,
1: तो वो ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद मैंने मेरा सिलसिला शुरू किया। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एमजीओ के ऊपर इसका कोई खराब रिएक्शन ना
0: जी,
1: और मेरे कैरेक्टर कर्म पर भी, क्योंकि लोग क्या करते हैं वहां पे जाते हैं उनको कोई मिलता है तो फिर वो दिखावा करते हैं, ऐसा मुझे पसंद नहीं है
0: जी।
1: वहां पे हम काम करने के लिए गए हैं तो हमें काम ही करना है, हमारी नजर काम पे होनी चाहिए।
0: ठीक बात है, फोकस हमारा पहले, फोकस पूरा हमारे काम पर होना चाहिए,
1: बस वो काम पूरा हो जाए, बाहर कुछ भी करो, कुछ भी नहीं, गलत नहीं करना।
0: वही मेरा पूछने का मतलब था कि भाई कहीं, लेकिन दिल के किसी कोने में फोकस थोड़ा दूसरी तरफ भी हुआ कि नहीं हुआ, यही मैं पूछना चाह रहा था।
1: नहीं हुआ, हुआ, वो मैं वही बता रहा हूँ धीरे धीरे, जैसे ही ट्रेनिंग पूरी होने को हुई
0: जी,
1: ट्रेनिंग पूरी होने को हुई, यानी कि ट्रेनिंग पूरे होने के 3-4 दिन बाकी थे, एक दूसरे को जानते हैं।

0: हाँ जी, क्योंकि
1: हमें देवदास नहीं बनाए
0: सही,
1: तो मैंने
0: ठीक बात है, ठीक बात है। जिसमें
1: बोला चलो उनको नहीं पसंद आएगा तो कोई बात नहीं, दोस्ती रखेंगे, इसमें क्या है।
0: क्या दिक्कत है। तो महेंद्र जी
1: आप
0: फिर पहले प्रपोज किसने किया?
1: मैंने वैसे तो हम दोनों मिलके इसमें अच्छा इसके बारे में अल्पा जी बताएगी,
0: कोई
1: चलो
0: कहानी, इसमें भी कोई कहानी छुपी हो तो बता दीजिए।
1: बताओ इस, हाँ अल्पा जी बताएगी, मैं उनको थोड़ा उनको गाइड करता
0: हाँ
1: रहूंगा।
0: नहीं, वो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन चलता रहना चाहिए। जी जी अल्पा जी बताएं।
2: जी ट्रेनिंग के बाद हमारी फोन पे बातें होती रहती थी। स्टार्टिंग में तो म्यूजिक की बातें होती थी, फिर ये कंप्यूटर ट्रेनिंग के रिलेटेड बात,
0: जी
2: फिर धीरे धीरे बातें ज्यादा होने लगी
0: जी
2: और दोस्ती भी आगे बढ़ती रही। फिर हम एक दूसरे के फैमिली के बारे में जाना, क्या है उनके फैमिली में क्या है, उन्होंने मेरे बारे में जाना, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करीब आ गए।
1: फिर लास्ट में हमने फीलिंग्स पे ध्यान दिया कि चलो एक दूसरे की तकलीफ क्या है,
2: हाँ, वो भी
1: आपको
2: जानना
1: क्या
2: चाहिए।
1: प्रॉब्लम है, अभी करंट प्रॉब्लम आपको क्या है,
0: जी
1: उनका प्रॉब्लम जाना, फिर मैंने मेरा प्रॉब्लम भी, वह भाई हमारा करंट प्रॉब्लम ये है, मेरा करंट प्रॉब्लम ये है, कुछ भी
0: जी जी
1: सोशल प्रॉब्लम हो सकता है, फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है,
0: ठीक बात।
1: ऐसे एक दूसरे के दर्द को दुख को समझने की कोशिश की, फिर जाके फिर ये बात जो आप पूछ रहे हैं वो भी अभी बताओ आप।
2: ऐसे दोस्ती आगे बढ़ती रही और एक दिन आया कि मुझे भी इनकी बातें पसंद थी, इनके मेरे प्रति जो विचार थे वो अच्छे लगे, हम एक दूसरे के विचार मतलब मैच करते ही थे, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हुए से।
0: क्या बात
2: तो
0: है जी,
2: एक दिन इन्होंने मुझे प्रपोज किया था, थोड़ी देर तो वैसे मुझे भी फीलिंग तो थी इनके लिए, लेकिन मैं
0: मतलब
2: सामने से ऐसे
0: इंतजार
2: बोल नहीं पा रही थी।
0: इंतजार था आपको कि भाई कोई पहल
2: जी
0: करे। अच्छा अल्पा जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपको ये डिसीजन लेने में किस बात ने मदद की? मतलब इनका आप ही के प्रोफेशन से होना आपको अच्छा लगा? मतलब बाकी सब बातें तो चलिए अपनी जगह है, सोच अच्छी होना, दौर एक दूसरे के लिए बने हुए रहना, ये सारी बातें, लेकिन एक जो होता है ना कि भाई यार ये भी अच्छी बात है कि हम दोनों एक ही प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, या ऐसा कुछ आपने सोचा नहीं?
2: ना ना, मुझे था कि एक ही प्रोफेशनल से हो तो अच्छा है, ऐसा सोचा था। तो
0: अच्छा ऐसा,
2: फिर जानते हो कि सबके आगे प्रपोज तो किया, लेकिन अभी इस डिसीजन को आगे बढ़ाने के लिए पेरेंट्स का भी तो सपोर्ट चाहिए,
0: राइट, बिल्कुल सही।
2: तो वो तो ऑब्वियसली सबका पहले बड़ा माइनस प्लस होता है, ऐसे हमारी
1: नहीं,
2: फैमिली में भी हुआ थोड़ा बहुत।
1: देखिए अल्पा जी, ये मैं इनका कहने का तरीका, ये इनका पूछने का मतलब ये है कि हम जो मिले वो किस प्रकार से मिले, किस प्रोफेशन की वजह से एक दूसरे से मिलना है, तो एक दूसरे के प्रोफेशन का ख्याल रखते हुए मिलना है या फिर और किसी चीज से मिलना है। तो एक बात यहाँ पे संदीप जी मैं बताऊंगा, हर एक को हर एक से कोई ना कोई उम्मीद तो रहती है।
0: जी जी
1: फॉर एग्जाम्पल अगर अल्पा जी हैं तो मेरा कैरियर के बारे में मैंने उनसे बात की, तो उन्हें भी थोड़ा अंदर से ऐसा एहसास हुआ कि अगर इनके साथ रहे तो थोड़ा बहुत हमें किसी भी प्रकार से गाइडेंस मिलेगा, एज ए प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगा, ऐसे आगे कुछ करने को मिलेगा, क्योंकि वो जहाँ पे थे वहां से उन्हें अपॉर्चुनिटी कम थी, इतनी ज्यादा नहीं थी, फिर भी थी, लेकिन लोग तो क्या होता है कि जितनी अपॉर्चुनिटी हो उससे ज्यादा चाहते हैं। आज मैं भी हूँ या आप भी हो, तो आप भी अपनी अपॉर्चुनिटी से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले ऐसा आप सोचते ही होंगे, तो इस प्रकार से हर सोचता है।
0: जी
1: तो इसके हिसाब से उन्होंने ये तय किया, लेकिन उनके इरादे गलत नहीं थे।
0: ठीक बात है।
1: मान लो कि मैरिज हो जाने के बाद,
0: सवाल सिर्फ इतना होता है महेंद्र जी कि क्या
1: जी,
0: होता है कि जब सेम प्रोफेशन भी मिल जाता है ना तो निर्णय लेना आसान हो जाता है।
1: आसान होता है, हाँ
0: जी।
1: उनका इरादा गलत ऐसा नहीं था कि चलो आफ्टर मैरिज मान लो कि प्रोफेशन में वो चले ना चले, प्रोफेशन में आगे कुछ डेवलप हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इनकी बात अच्छी लगी मुझे।
0: जी,
1: और
0: जी,
1: इनका
0: जी,
1: बिहेव आफ्टर मैरिज, इनका बिहेव ऐसा ही बिहेव रहा जो कि बिफोर मैरिज था।
0: बहुत बढ़िया। तो अभी थोड़ा सा अल्पा जी ने बताया कि कुछ परिवार वाले नाखुश, मतलब थोड़ा सा चिंतित थे, तो वो आपकी तरफ से थे कि इनके यहाँ से थे?
1: देखिए एक काम करो, पहले उनको बोलने का मौका दे, बार बार मैं तो बोलते रहूँ।
0: जी जी जी जी
2: जी मेरे पेरेंट्स की ना नहीं थी, मतलब हाँ भी नहीं थी और ना भी नहीं थी, डिसीजन वैसे मुझे लेना था।

0: थोड़ा बहुत उनको थी तकलीफ कि प्रोफेशनल इतना कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि इतनी आमदनी नहीं है, तो फिर आगे जाके आप दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम था
1: जी,
0: लेकिन पेरेंट्स को समझाया तो वो लोग एग्री हो गए फिर। और मेरी मम्मी पापा के साथ मेरे दो सिस्टर है मेरे से बड़ी है, उन लोगों का भी बहुत सपोर्ट मुझे था
1: जी जी,
0: और मेरे दोनों जिया जी भी बहुत अच्छे हैं, वो लोग का भी सपोर्ट था
1: जी,
0: और इनका तो था ही।
1: बहुत खूब। तो ये एक वजह थी कि मतलब जॉब परमानेंट जॉब नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता होती है, सभी माँ बाप को होती है।
2: हाँ, सेफ्टी तो चाहते हैं।
0: हाँ, और फिर आगे जाके हुआ भी ऐसे कि जॉब तो मिल गई लेकिन फिर ये कोरोना काल आ गया तो हमारी जॉब चली गई।
2: दूसरी बात एक ये भी थी कि मेरा तो अभी तो ना जाने जो भी तकदीर की बात है, मेरा एक्चुअली में मेरा बाहर रहना बहुत ज्यादा होता
1: जी।
2: जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे उसका ड्यूरेशन लिमिटेशन कम होता गया
1: जी।
2: पहले जब हम लंदन की टूर करते थे ना तो 6-7 महीने हमें आउट ऑफ इंडिया रहना पड़ता था, फिर बात अमेरिका के ऊपर आई तो 2-3 महीने से ज्यादा नहीं होता था। तो ये भी उन्हें ऐसा था कि भाई ये जाएंगे तो ये अकेले ही है तो कहाँ रहेंगे। हालांकि मेरे मम्मी पापा की सोच भी कुछ अलग है, ये लोग मेरे मम्मी पापा ये चाहते हैं कि हमारे गांव में आके रहो।
1: अच्छा,
2: तो मैंने मना इसलिए किया क्योंकि एज ए VI पर्सन
1: जी
2: मेरा डेवलपमेंट अहमदाबाद में हुआ।
1: ठीक बात है।
2: HP मैंने बहुत सारे यहाँ पे किए बराबर
1: जी।
2: अभी मैं वहां पे, अभी मेरे मम्मी पापा जो है वो भी कच्छ भुज, सुना होगा गांधीधाम
1: जी जी जी,
2: हमारे गुजरात का कच्छ जो रणोत्सव होता है
1: जी,
2: दिसंबर के बाद दिसंबर जनवरी को होता है
1: जी जी जी जी।
2: तो वहां पे गांधीधाम उनकी प्रॉपर्टीज मकान वगैरह जो भी
1: जी
2: वहां पे रहने का उन्होंने मुझे कहा, तो मुझे वो चीज क्योंकि एज ए VI पर्सन
1: थोड़ा सा लाइफ जो है ग्रामीण परिवेश में मुश्किल हो जाती है ब्लाइंड व्यक्ति की ना,
2: ग्रामीण परिवेश से भी ज्यादा एक्सेसिबिलिटी का इश्यू
1: राइट,
2: क्योंकि वहां से घर पे बाहर निकलना फिर जाना आना, और यहाँ पे जो सोर्सेस है वो तो सोर्सेस वहाँ पे थे नहीं और अभी भी नहीं है।
1: अच्छा महेंद्र जी, आप और अल्पा जी कभी विदेश गए साथ कार्यक्रम करने?
0: नहीं,
1: अभी तक नहीं हुआ जाना।
0: लोकल प्रोग्राम बहुत किए, विदेश साथ में नहीं गए, लेकिन मेरा एक सपना तो है वही, वो बाकी है।
1: तो मतलब आप
0: विदेश जाने का ही।
1: आप दोनों अलग अलग गए मतलब?
0: नहीं, मैं विदेश नहीं गई हूँ, मैं यहाँ लोकल प्रोग्राम।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
2: मैं VI का ग्रुप भी तैयार करता हूँ, मेरी आपके वहाँ पे जयपुर में अजीत जैन है ना, शायद आप वो क्या बोलते हैं, उनका म्यूजिक 25-26 सालों से उनका म्यूजिक एकेडमी चलता है,
1: अनुराग संगीत तो, संस्थान के नाम से जी।
2: हाँ, अनुराग संगीत। हाँ, वही। तो वहाँ पे मेरा आना जाना, ये अल्पा जी भी वहाँ पे होके आई है, अल्पा जी वहाँ पे साथ में नहीं थे।
1: अच्छा,
2: ये 2013 में गई थी, 2014
0: स्कूल के साथ गई थी, ये अलग, तब तो नहीं पहचान थी,
2: तब नहीं हमारी पहचान नहीं थी।
1: अच्छा,
2: लेकिन बात जरूर होती है अनुराग संगीत को लेकर।
1: चलिए, वो तो अच्छी बात है भाई।
2: वहां से कलाकार बहुत अच्छे थे, तो वहां से मैंने ग्रुप भी तैयार कर लिया था
1: जी,
2: लेकिन फिर कुछ ऐसी दिक्कत आई तो फिर अभी वो ऐसे ही पड़ा है
1: जी जी जी जी जी। तो महेंद्र जी, थोड़ा सा अपन ये बढ़े, उससे पहले मैं चाहूंगा कि दो लाइनें आप दोनों साथ में गुनगुनाएं हमारे श्रोताओं के लिए, क्योंकि अब आप दोनों संगीत से जुड़े हुए हैं तो आपको।
2: अभी गाने की बात है
1: जी,
2: गाने की बात है, तो हम एक्चुअली में जो बस वही पॉइंट पे मैं धीरे धीरे आने वाला था
1: जी, जी
2: गाने
1: जी,
2: की बात तो आप तो हमारे गाने सुनते रहोगे
1: जी,
2: इन फ्यूचर भी सुनते रहोगे और पास्ट में भी आपने सुने होंगे
1: जी जी जी,
2: फिर भी हम आपका दिल तोड़ेंगे नहीं
1: जी जी जी।
2: लेकिन गाना जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ, अगर म्यूजिक के साथ, साउंड के साथ अगर है
1: जी
2: तो बढ़िया रहता है
1: जी,
2: ऐसा मैं मानता हूँ
1: जी जी जी।
2: तो पहले आपकी जो बात है,
1: हाँ दो लाइन जरा आप जो आप दोनों का पसंद का कोई भी गीत।
2: हाँ, नहीं नहीं, वो अपना गाएगी और मैं अपना गाऊंगा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए जी जी जी। तो पहले जी जी सुनाइए प्लीज
0: जी, एक लता जी का सॉन्ग सुनाती हूँ, दो लाइन
1: जी जी जी। अल्पा जी, स्वागत है।

0: हर एक तमन्ना के बदले मैं आज हसरत करता हूँ। तुमने तो लूट लिया मुझको, मैं तुमसे शिकायत करता हूँ। ये जा मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बाहोशो हवास दीवाना।
1: क्या बात है, वाह वाह महेंद्र जी, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त आप दोनों
0: क्योंकि मैं
1: जी।
0: अल्पा जी तो मेरे पास आई तब से ये हिंदी बॉलीवुड के गाने वैसे पहले गाते थे, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन
1: जी
0: अभी थोड़ा ज्यादा हो गया है। बाकी इनका ट्रेडिशन
1: वो
0: गुजराती सुगम संगीत इनका।
1: उन्होंने कहा भी कि गुजराती लाइट म्यूजिक उनको बहुत पसंद है। जी, बहुत खूब बहुत खूब। तो आप कहीं ये तो नहीं कह रहे कि दो लाइन गुजराती की भी हम सुन लें अल्पा जी से?
0: कुछ भी नहीं हो, मैंने पहले कहा ना, मैं कोई अंडर प्रेशर या तो आउट ऑफ प्रेशर काम नहीं करूंगा। हाँ, रेकमेंड कर सकता हूँ कि भी ये ऐसा काम करते हैं, ऐसा चाहते हैं, ऐसा वैसा करते हैं।
1: जी। अल्पा जी तो सुनेंगे आपसे गुजराती में भी हम दो लाइनें, लेकिन अभी नहीं, जब तक आप सोच करके रखिए। महेंद्र भाई, मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि मेरे पास मतलब कई सारे ऐसे दोस्तों से बातचीत होती रहती है, और कई बार कार्यक्रमों के माध्यम से कई सारे साथियों के प्रश्न भी आते हैं। अभी देखिए, आप दोनों संगीत से जुड़े हुए हैं और एक तरह से स्टेज परफॉर्मर हैं आप दोनों, गवर्नमेंट जॉब नहीं है आप दोनों की, और आप दोनों सबसे महत्वपूर्ण बात कि दोनों ही दृष्टिबाधित भी। अभी होता क्या है कि दृष्टिबाधित जो लड़का है उनकी थोड़ी सी इच्छा होती है कि थोड़ी सी लड़की या तो लो विजन हो या फिर दृष्टिवान हो, और जो दृष्टि बाधित लड़कियां हैं कई बार वहां से भी ऐसा होता है कि थोड़ा सा लो विजन हो। तो आपको क्या लगता है कि लाइफ आपकी क्या मुश्किल लगती है क्या कहीं किसी मामले में आपको इन वजहों से, या नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों को ये सोच बदलनी चाहिए, आपको क्या लगता
0: सर, एक्चुअली मैं देखिए,
1: है? जी
0: आज से जब लुई ब्रेल नहीं थे तो
1: जी
0: ब्लाइंड लोग तभी नहीं थे, ऐसा तो नहीं है ना।
1: जी
0: लुई
1: बिल्कुल
0: ब्रेल
1: है।
0: ने ब्रेल की खोज की, तब जाके हम जैसे लोग पढ़े और यहां तक पहुंचे, आप और मैं सभी लोग।
1: जी
0: ऐसे दूसरे भगवान कौन है ये तो कोई अभी नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, टेक्नोलॉजी
1: जी
2: जी
0: एक ऐसा भगवान है।
1: जी
0: पहले तो इसने हमें दृष्टिवान लोगों से जोड़ा,
1: जी
0: और जोड़ा नहीं चिपकाया, मैं तो चिपकाया बोलता हूँ,
1: जी
0: एक ऐसा गुंदर लगा के चिपकाया कि कभी भी हम उखड़ नहीं सकते। जैसे कि मैसेज की शुरुआत हुई एसएमएस से, मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, तो एसएमएस से लेकर जूम तक बात पहुंच, जूम है, गूगल मीट तक, फेसबुक तक, सर साइटेड लोगों के साथ हम सब लोग फेसबुक पे चैटिंग करते हैं ना, तो वो लोग की आंखें चार हो जाती है कि यार तुम लोग इतना काम कर सकते हो। अभी तो हमारे कलाकार लोग फोटो पढ़ते हैं, हम लोग फोटो को पढ़ते हैं, तो वो लोग हैरत हो जाते हैं, अरे यार तुम लोग ये सब कैसे कर लेते हो यार, ये वो है। फिर हम समझाते हैं, फिर और दूसरी बात के, मैंने जब 9-10 में जब बीपीए में ट्रेनिंग की ना, कंप्यूटर की लैब असिस्टेंट था,
1: जी
0: तब उसी तरह लोग आते, तब मैं समझाता था कि भाई इसमें हमारे सॉफ्टवेयर है ये वो वगैरह वगैरह वगैरह करके, ये बोलता है, ये करता है, वो करता है, फिर एक डेमो, और डेमो मेरा दिखाने का तरीका अलग है। मैं किसी को, किसी विजिटर्स को डेमो दिखाता हूँ तो सीधा कंट्रोल पैनल खोलता हूँ
1: जी
0: कंप्यूटर की,
1: जी
0: और दूसरा फॉर्मेटिंग करता हूँ, पहले ना पहले ऊपर लिखता हूँ माई सेल्फ एंटर, फिर लिखता हूँ माई नेम इज सो एंड सो, फिर उसको फॉर्मेट करता हूँ, उसे आड़ा टेढ़ा सीधा ऊपर नीचे बीच में सब इटैलिक बोल्ड ये सब करता हूँ। तो इस तरह से मैं विजिटर्स को डेमो देता हूँ। तो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से अभी हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि हम दोनों दृष्टि बाधित लोग इस दुनिया में नहीं रह सकते, आराम से रह सकते हैं। हमें कहीं जाना है तो ओला उबेर
2: तो है ही,
0: ऑटो है,
2: और शॉपिंग करने में भी तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं होती, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते
1: जी।
2: तो दिक्कत है घर चलाने के लिए तो,
0: और खाना बनाने में भी दिक्कत नहीं होती।
2: अब तो कोई भी पैकेट लेके आओ तो वो
0: कोई भी इनविजन आई है, हम तो इनविजन आई यूज करते हैं
2: तो पढ़
1: नहीं। तो अल्पा जी कहते हैं कि जैसे चपाती बनाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, आपको लगता है ऐसा?
2: थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन खाना तो हमको ही है,
1: जैसे मुझे कोई कह रहा था कि
2: अच्छी
1: नहीं होनी चाहिए
2: शेप में, कोई बात नहीं, अच्छी आती है
1: जी,
2: मतलब
1: जी
2: आनी चाहिए लेकिन अच्छी तरह से
0: देखिए सर इसमें तो प्रैक्टिस
2: जाती है, वो भी ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये चलाते हैं तो चल जाता है ऐसा है।
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं, देखिए हस्बैंड वाइफ में इन सभी चीजों को लेकर नोकझोंक कभी भी नहीं होनी चाहिए।
1: नहीं
0: सुनने वालों से मेरी ये दरख्वास्त है कि आपकी वाइफ, ये तो नॉर्मल में भी होता है
1: जी जी जी,
0: आज नमक क्यों कम पड़ा, आज मिर्ची ज्यादा क्यों पड़ी, आज ये बराबर नहीं बना, मैं नहीं खाऊंगा, तुझे बनाना नहीं आता, तू क्या करती पूरा दिन, ये सब चीजें गलत है
1: जी जी।
0: अभी कॉम्प्रोमाइज को कोई जहर तो नहीं देता है ना, ये मुझे बताओ। चल
1: सही बात है,
0: सही बात, आज खाना अच्छा नहीं, आज खाना अच्छा नहीं बना
1: जी,
0: तो किस जहर डाल दिया,
1: नहीं
0: आपको बुखार आया, आपके पाँव में दर्द हुआ, आपके पेट में दर्द हुआ, बस तो फिर खाना खा लिया
1: जी।
0: देखिए भगवान हमें खाना देता है
1: जी,
0: मैं तो इनको ये बोलता हूँ कि अपने ये हमारी गाय माता है, हमारे बाहर डॉग्स है, उनको खाना खिलाओ वो बार, लेकिन खाना फेंको मत।
1: सही बात,
0: कोई बात नहीं, अगर पड़ा रहा तो मैं दूसरे दिन खा लूंगा, क्योंकि कितने मुश्किल से खाना मिलता है साहब, ये तो जिनको मिल जो करता है ना उनको पता चलता है,
1: उनको पता चलता है। ठीक बात,
0: हाँ तो अपने आदमी के साथ ऐसा थोड़ी कोई करता है। हाँ उनसे रोटियां कच्ची नहीं बनती है, अभी शेफ कोई भी हो उनका स्वाद जो है वो प्रॉपर आता है, बस खत्म हो गई बात,
1: खत्म।
0: फिर क्यों? और देखिए हर एक चीज में हर एक लोग को हर एक प्रकार का कॉम्प्रोमाइज तो करना मस्ट भी।
1: महेंद्र भाई आपको कौन सी डिश सबसे अच्छी लगती है अल्पा जी की बनाई हुई?
0: देखिए बहुत पंजाबी खाने बहुत अच्छा बनाती है, पंजाबी बनाती है।
1: क्या
0: फिर
1: बात
0: है? और देखिए सर मेरा कैसा है बताएं, बचपन में मैंने इतना सारा गलती से बहुत खा लिया है तो अभी मुझे खाने में इतनी खास रुचि नहीं है। हमारे दादा दादी नाना नानी मेरे फूफा फूफी वगैरह वो लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, हालांकि आज इस दुनिया में इनमें से कोई नहीं है। मैं एक बार से मेरे पेरेंट्स से ज्यादा इन लोगों ने मुझे संभाला है, मेरे अंकल आंटी सब, लेकिन अभी कोई नहीं है, सब भगवान के पास। तो इन्होंने मुझे सही में इतना खिलाया है, इतना खिलाया कि अभी मुझे किसी भी खाने की वो भूख नहीं रही। हाँ मैं खाता हूँ लेकिन वो बस खाने के खाता हूँ, मुझे ऐसी अरे यार ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, मुझे बस अच्छा सब्जी रोटी मिल जाए मेरे लिए वो फिस्ट के बराबर।
1: महेंद्र जी एक बात बताएं, जब से आप समझदार हुए हैं तो शादी के बारे में, मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई पहले से आपको भी ये पता था कि भाई कहीं पे अल्पा जी मिल जाएंगी किसी मोड़ पर और प्यार हो जाएगा, शादी हो जाएगी, लेकिन कुछ तो सोचा होगा आपने भी कि यार मैं स्टेज परफॉर्मर हूँ, जैसे आप कलाकारों को हम देखते हैं।
0: बहुत अच्छा सवाल है
1: जी,
0: मैंने शादी के बारे में मैं जब 10th में पढ़ता था तब से सोच लिया था
1: जी जी,
0: लेकिन मैंने सोचा एक ही चीज
1: जी
0: कि लाइफ पार्टनर अंडरस्टैंडिंग वाली होनी चाहिए बस।
1: आपने ब्लाइंड साइटेड वगैरह ऐसा कुछ नहीं सोचा था?
0: वो बात की बात है,
1: नहीं
0: वो बात नहीं, तब पहले था टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब थोड़ा था कि भाई थोड़ा बहुत कोई देख सके, तो क्या है कि अपना थोड़ा काम, क्योंकि अपना काम ऐसा है ना सर, अपना काम कैसा है, स्टेज के ऊपर जाना, अच्छे कपड़े पहना, अभी कपड़े संभाल लो कि एक सूट पहना है बराबर है, अभी कल के प्रोग्राम में गलती से कोई चीज सूट के ऊपर गिर गई और वही सूट आज पहनना है
1: जी।
0: तो अगर कोई थोड़ा बहुत दृष्टिवान होगा तो हमें, अगर नहीं होगा तो हमारे ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हमारा माइनस पॉइंट हो जाएगा
1: जी, जी।
0: तो पहले मुझे ये सब थोड़ा बहुत था, लेकिन वक्त के जाते जाते जाते जाते भी टेक्नोलॉजी जब आई तब फिर मेरा ये सब कुछ हट गया।
1: मेरा प्रश्न ये था दरअसल कि जैसे आप तो स्टेज पर प्रोग्राम देना और यही सब आपका काम था, है ना, तो एक होता है ना यार जैसे हमारे बाकी कलाकारों को होता है कि कभी कोई उनको मिल रहा है, कभी कोई उनसे प्रभावित हो रहा है, कभी उनको पसंद कर रहा है, कभी ऐसा सोचा होगा आपने भी या नहीं सोचा पता नहीं, आप ही बता सकते हैं कि भैया मुझे भी यार कोई मेरे कार्यक्रम को देख करके, मेरी प्रस्तुतियों को देख करके कोई लाइक करे, पसंद करे और सामने से कोई मेरे को प्रपोज करे।
0: अभी ये टॉपिक थोड़ा ऐसा है, बचपन से मुझे एक चीज का शौक था
1: जी जी,
0: म्यूजिक कंपोज करने का
1: जी,
0: हालांकि वो इंटरेस्ट मेरा अभी पूरा होने जा रहा है
1: जी।
0: तब मैं सोचता था कि मेरी लाइफ पार्टनर ऐसी हो कि उनको मैं गाना सिखाऊं, फिर उसका रिकॉर्डिंग हो और रिकॉर्डिंग करूं और उनका गाना रिलीज हो
1: जी।
0: मेरी सोच थोड़ी अलग है, ऐसा मैंने नहीं सोचा कि मेरे शो में कोई मुझे देखकर मुझे पसंद करे
1: जी, जी, जी।
0: लेकिन मैं ऐसा चाहता था कि मैं ऐसी कोई लड़की या कोई भी को पसंद करूं लड़की को, कि मेरे म्यूजिक के ऊपर मुझे कॉपरेट करें।
1: जी बहुत खूब,
2: गलत बात नहीं है,
1: क्योंकि आपकी जो वास्तविक क्रिएटिविटी थी वो मुझे लगता है बाहर आई। क्यों अल्पा जी, आपको क्या लगता है?
2: जी वही टाइम रही हम दोनों की, जब जॉब नहीं रही तब हम दोनों ने म्यूजिक पे बहुत वर्क किया दोनों ने एक साथ।
0: पहले तो हम दोनों बहुत सोच में पड़ गए कि अभी स्टेज शो भी नहीं है, स्कूल की जॉब भी बंद हो गई है, अभी आने वाले के टाइम का कोई ठिकाना नहीं, अब हम क्या करेंगे। क्योंकि जॉब देखिए, मैंने भी 12th पास किया है, इन्होंने भी 12th पास किया है, मैंने भी शरद किया, इन्होंने भी शरद किया, लेकिन अभी ये सब चीज कोई काम की थोड़ी देर के लिए नहीं है, ऐसा हमें लग गया। फिर सोचते सोचते फिर एक मेरा दोस्त है अयास कुरैशी करके,
1: जी
0: उनसे मेरी बात हुई, वो भी ब्लाइंड है, हमारे नवरंगपुरा स्कूल में पढ़ते हैं, हालांकि मुझसे छोटा है। तो उन्होंने मुझे एक ग्रुप से पहचान कराई जो कि ऑस्ट्रेलिया से फुरकान सर ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी ब्लाइंड है और वो वेब डिजाइनर है, ऑस्ट्रेलिया में है, हालांकि वो पाकिस्तान से है लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो चुके हैं। उनका एक ग्रुप चलता है एक्सेसिबल म्यूजिक प्रोडक्शन, और उसमें मैं ज्वाइंट हुआ और आज की तारीख में मेरा 6 महीना हुआ, आज उस ग्रुप में सबसे फर्स्ट मेरा नंबर है। जब भी कोई प्रस्तुति करता हूँ तो मेरी प्रस्तुति में वो बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि सबसे अच्छी प्रस्तुति आपकी होती है।
1: बहुत cool, जी।
0: तो बस वही मैं एक्सेसिबल म्यूजिक जो कि रिपर से मैं काम करता हूँ।
1: महेंद्र तो भाई आपने बार बार, मैं वही पूछने वाला हूँ, अब बार बार आपने टेक्नोलॉजी पर बहुत जोर दिया आपकी पूरी बातचीत में।
0: हाँ जी।
1: तो अब थोड़ा सा उस बारे में आप बताएं कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा है आपके जीवन में। और
0: हाँ मैं बताऊंगा, पहले अल्पा जी से आप कुछ पूछ लो कि वाकया कि सुनने वालों को ऐसा ना लगे कि ये अकेला ही बोले जा रहा है, उनको बोले नहीं देता है, कुछ पूछ लो, दो मिनट उनको पूछो,
1: नहीं, वो फिर सुनने, सुनने वाले कहेंगे कि वो अगर उनसे हम कुछ पूछेंगे भी तो आपकी आवाज बीच में जरूर आएगी। और यही मजा है महेंद्र जी, यही मजा है लाइव का दरअसल, यही आप उनको समझते हैं, वो आपको समझती हैं, ये मुझे लगता है कि जिंदगी की असली जो है ना प्यार यही है।
0: 90 का जब दौर था
1: जी,
0: तब उदित नारायण जी, कुमार सानू जी, सोनू निगम जी, अनुराधा पौडवाल जी का, अलका याग्निक जी के गाने आते थे।
1: बिल्कुल आते थे जी।
0: उन्हें सुनता था तब मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग जो गाने बनाते हैं ऐसा गाना मैं क्यों नहीं बना सकता।
1: क्या बात है।
0: फिर मैंने जब मैं प्रोफेशन में आया तब मैंने सोचा और मैंने लोगों से बात भी की तो लोगों ने मुझे गाइड किया कि भाई इसमें तो इतने म्यूजिशियंस चाहिए, इतना पैसा चाहिए। तो मैंने बोला हाँ यार इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है। फिर मैंने धीरे धीरे जाके 2003 में कीबोर्ड परचेस किया, N364 करके, 50,000 का कीबोर्ड था।
1: अच्छा।
0: उसमें मुझे सीक्वेंस मिला एक दोस्त के गाइड के। अच्छा वो उसमें कुछ टॉकबॉक नहीं था, उसमें तो हम पहले जैसे कि कैसे 3315 मोबाइल ऑपरेट करते थे, 3310 अपने कीपैड वाले फोन,
1: बिल्कुल बिल्कुल पुराने जमाने
0: में, ये की को इतनी बार दबाओ तो मैसेज खुलेगा, ये की को इतनी बार बजाओ दबाओ तो कॉन्टेक्ट खुलेगा, ये सब मैंने N364 पे पूरा उसका की मैप माइंड में कर लिया। तो मैंने साइटेड को मेरे साथ बिठा कर मैंने पूरा मैप तैयार किया माइंड में कि ये कितनी की है, उसमें से ये की को इतनी बार प्रेस करने से ये होता है वो होता है, करके 6 महीना तक मैंने वर्क किया। एक छोटा गुजराती एल्बम भी बनाया हमारे गुजरात के कलाकार है बाबू सोलंकी करके, हालांकि वो एल्बम का तो अभी कुछ नहीं है मेरे पास, वो मेरी बदनसीब भी कहूंगा।
1: अच्छा,
0: भले मैंने बनाया फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक एल्बम गरबे का एल्बम किया था जिसमें 25 गरबे थे और नॉनस्टॉप 2-2 मिनट के।
1: जी जी।
0: तो इस तरह से मेरा जो शौक है
1: जी
0: वो इस तरह से सेटिस्फाइड हुआ, मैं इससे सेटिस्फाइड हुआ
1: जी।
0: फिर धीरे धीरे जाते जाते फिर ये तो यार, फिर देखिए हर एक चीज में प्लस माइनस तो होते हैं
1: जी,
0: तो इसमें इतना थ्रो नहीं आता था जितना स्टूडियो क्वालिटी में थ्रो आता है
1: जी।
0: तो उसके लिए मुझे बहुत इंतजार करना पड़ा, बहुत यानी कि बहुत इंतजार करना पड़ा, और वो इंतजार अभी मैंने 2019 में 2020 में
1: जी
0: वो इंतजार पूरा। तो अभी मैं जो भी काम करता हूँ, अभी तो मेरे पास एक सिंगर है अल्पा
1: जी,
0: उसको मैं गाना गवाता हूँ
1: जी,
0: आगे तो क्या होगा वो हमारा ऑनलाइन स्टूडियो टेक्नोलॉजी का, उसमें हम किसी को जूम पे या फोन पे यहाँ से रिदम देंगे
1: जी,
0: लूप देंगे उसके ऊपर, लूप यानी कि रिदम, हाँ
1: जी,
0: उसके ऊपर उनको गाना सिखाएंगे
1: जी,
0: उनके पास एक मोबाइल रखना है उनका
1: जी,
0: और रिकॉर्डिंग बंद नहीं करना है, रिकॉर्डिंग चल रहा है चाहे वो 25 बार 100 बार क्यों नहीं गाता है, उन्हें रिकॉर्डिंग बंद नहीं करना है
1: जी।
0: फिर जब वो गाना कंप्लीट हो जाए तो उसी फॉर्मेट में सीधा हमें सेंड करें, फिर यहाँ पे कंप्यूटर में यहाँ पर मैं उसे फिल्टरिंग भी करूंगा, एडिट भी करूंगा, इफेक्ट भी डालूंगा, सब कुछ करूंगा। तो टेक्नोलॉजी का मेरे जीवन में सबसे बड़ा रोल तो ये कि मैं अपने आप रह सकता हूँ
1: जी, जी,
0: अपने आप आत्मनिर्भर, जो भी मोदी साहब का ऐलान है
1: जी जी जी,
0: आत्मनिर्भर मैं हूँ टेक्नोलॉजी के कारण। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम हैंडीकैप तो है ही, ज्यादा हो जाएंगे।
1: बहुत खूब।
0: हाँ, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, वो मैं मानता हूँ, लेकिन क्या करें, अभी उसके अलावा कोई गुजारा भी नहीं है,
1: कोई विकल्प भी नहीं है। ठीक बात है।
0: विकल्प नहीं है, यस। हाँ,
1: और आप तो बहुत सारे जो साइटेड लोग हैं उन्हें भी मुझे लगता है कि उनका भी काम करते होंगे, हेल्प करते होंगे, तो ये एक तरह से समावेशी जो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट है वो भी डेवलप करने में मदद मिलती है इस सब।
0: हमारे सभी आर्ट, मोस्ट ऑफ अहमदाबाद के आर्टिस्ट जो कि ऑक्टोपेड प्लेयर है ना
1: जी,
0: उनको किसी भी गाने के लूप चाहिए, लूप नॉट ट्रैक, लूप, वो लूप मैं उन्हें प्रोवाइड करता हूँ।
1: क्या बात,
0: एज ए वीआई पर्सन।
1: वाह, बहुत खूब जी। तो अल्पा जी,
2: जी
1: अभी वैसे तो आपने बताया कि कोई मुश्किल है नहीं जीवन में, फिर भी अहमदाबाद जैसे शहर में आप लोग रहते हैं, तो आती है कोई कठिनाई कभी, और अगर आती है तो फिर कैसे मदद मिलती है, कौन मदद करते हैं, क्या होता है?
2: देखिए, हम जहाँ अभी रहते हैं वो मैं जब छोटी थी तब मैंने बताया ना, मैं अहमदाबाद में भी पढ़ी हूँ, यहाँ की एक बैंक गर्ल्स स्कूल है
1: जी,
2: वहाँ मैं पढ़ी हूँ। तो मुझे ना पहले से फैमिली ज्यादा है उन्हें, तो मैं हॉस्टल में रहती नहीं थी। तो हम जहाँ पे अभी रह रहे हैं हम दोनों, वो मेरे मामा जी का घर, मतलब मेरे मामा भी नहीं है, मेरे मम्मी के मामा का घर।
1: ओके ओके ओके।
2: तो मैं छोटी थी तब उनके पास ही रहती थी, फिर वो लोगों का भी दूसरा मकान है अभी, वो लोग वहाँ पे रहते, और हम दोनों तो यहाँ पे, वो उनका पुराना मकान जो है वो मकान में हम दोनों रहते।
1: जी।
2: तो मैं छोटी थी तब यहाँ रहती थी, तो आजू बाजू वाले हमारे जो नेबर्स है वो भी मुझे पहचानते हैं
1: जी,
2: तो उनका भी बहुत सपोर्ट मिल जाता है। हालांकि हम तो बाहर से अपने आप भी ये बाहर जाते हैं, कभी घर के लिए शॉपिंग करके लाते, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी कोरोना काल है, लॉकडाउन चल रहा है, तो मेरे नेबर्स भी बहुत हेल्पफुल है
1: जी,
2: तो वो अभी चीजें सब प्रोवाइड कर देते हैं ऐसा।
0: और संदीप जी, आपने बताया कि आपको किस कठिनाई का सामना पड़ा, जब से हम हमारी जॉब बंद हो गई तमाम, तब मैंने जैसे आपको बताया,
2: हाँ, दूसरी जगह पे रहते थे, हाँ,
0: तो वहाँ पे रेंट ज्यादा था, हाँ, काम नहीं था, और वहाँ पे हमको कोई जानता नहीं था, तो हमको रेंट देना,
2: मकान भी बहुत छोटा था, हाँ, तो हमारा एक काम था कि हमें ऑन रिकॉर्डिंग स्टूडियो स्टार्ट करना है, तो फिर उसके लिए भी सब जगह कम पड़ती थी वहाँ पे।
0: बिल्कुल।
2: और ये मामा जी का मकान है तो ये बड़ा है, तो उन्होंने बोला कि हमारा मकान वैसे भी ऐसे खाली पड़ा है, तो आप लोग आ जाओ अभी,
0: हालांकि उन्होंने पहले ही बताया था लेकिन हमने मना किया,
2: हाँ।
0: जब हमारी जॉब लगी ना यहाँ पे त्रिपदा स्कूल में
1: जी जी,
0: पिछले 1.5 साल के पहले, तब जब जॉब लगी तो इनके पापा, मेरे फादर इन लॉ आए थे सब कुछ सेटअप करने के लिए, तब हमारे ये मामा जी जो है निरंजन भाई मेहता जो है, उनके घर ही आना जाना ज्यादा रहता था, तो उन्होंने तभी, निरंजन मामा ने तभी भी कहा था हमें कि भाई हमारा एक मकान है अगर आप चाहो तो, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, और हर ब्लाइंड का प्रॉब्लम ये होता है कि नीचे का मकान
2: ग्राउंड फ्लोर नहीं चाहिए, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे वो तो अच्छा है
1: जी जी जी जी जी,
2: ये सोच हमारी थी,
0: आज भी है,
2: आज भी है।
1: इसकी कोई खास, इसकी कोई खास वजह,
0: ये अल्पा जी कहेंगी, मैं तो कहूंगा लेकिन मैं बहुत बोल चुका
1: हूँ, हाँ, इसकी कोई खास वजह,
2: खास वजह ये होती है कि जब मौसम का टाइम होता है तब ऐसा रहता है कि पानी कहीं से आ जाएगा घर में, और बाहर बाहर जो होता है तो डॉग वॉग आ जाते हैं भाई, छोटा मोटा प्रॉब्लम,
1: मॉस्किटोस वगैरह भी वो ग्राउंड फ्लोर पे थोड़े ज्यादा होते
2: हैं, ग्राउंड फ्लोर पे ज्यादा रहते हैं, डर लगता है, ऊपर का मकान हो तो क्या, एक डोर बंद कर लो तो पूरा घर बंद हो जाता है, सेफ रहते हैं, सेफ मानते हैं।
1: ठीक बात।
0: दूसरा, खिड़कियों में जाली लगा देते हैं हम लोग, और हर ब्लाइंड को ये करना चाहिए संदीप जी, जो भी वीआई पर्सन है, अकेले रहते हैं विदाउट साइटेड
1: जी,
0: तो उन्हें अपनी खिड़की में एक ऐसी छोटी जाली आती है नेट, वो लगा देने ताकि बाहर की रोशनी भी आए
1: जी,
0: और हवा की भी आउट इन हो रहे और अच्छा भी लगे और सेफ रहे। तो बिल्ली है भी छोटा कोई ऐसा मॉस्किटोस है कोई अंदर आ ना पाए
1: जी,
0: ये हर एक वीआई को रखना चाहिए।
1: हालांकि
0: हम तो रखते ही लगा दिया यहाँ पे
1: बहुत बहुत जबरदस्त। तो
0: हमारी खिड़कियां भी अच्छी तरह से खुली रहती है और दरवाजे पे भी कोई इश्यू नहीं है और आराम से रहते हैं हम लोग।
1: तो अब लगभग कार्यक्रम के बिल्कुल आखिर में हम लोग आ गए हैं। महेंद्र भाई एक बात चलते चलते मैं पूछना चाहूंगा, पूरी बातचीत में आपने आपके माता पिता और आपकी जो फैमिली है उसका जिक्र थोड़ा कम किया है, तो खास वजह?
0: नहीं, वजह कुछ नहीं है। वो लोग जो चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते और हम चाहते हैं वो नहीं कर पाते।
1: तो अभी अल्पा जी से उनका परिचय हुआ या नहीं हुआ?
0: नहीं हुआ ना।
1: आपके मम्मी पापा? अच्छा
0: हुआ हुआ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा। तो
0: साल में एक दो बार आना जाना रहता है बस, ज्यादा नहीं।
2: फोन पे बातचीत हो जाती है, गांधीधाम में रहते हैं ना, तो साल में एक बार मिलना होता है।
1: बहुत खूब जी अल्पा जी। तो चलते चलते गुजराती लाइट म्यूजिक हो जाए
2: जी।
1: जी
2: ओके, तो एक गुजराती सुगम गीत सुना देती हूँ, दो लाइन।
1: जी
2: वैसे तो विदाउट म्यूजिक गाने की ज्यादा
1: हैबिट नहीं है,
0: रिकॉर्डिंग क्लब में इन फ्यूचर इनके बहुत सारे सारे गाने आने वाले हैं।
1: क्या बात है, वाह बहुत खूब बहुत खूब।
0: इनके भी आएंगे, मेरे भी आएंगे, सबके आएंगे,
2: दोनों के साथ में भी आएंगे।
1: और हम तो सोचते हैं कि कभी एक लाइव ऑनलाइन शो करें आप दोनों के साथ। जी
0: हाँ करो करो, हम तैयार हैं।
1: जी जी जी जी
2: एक गुजराती सुगम गीत
1: जी।

0: चातक कहे छे मारू चौमासु क्या आस पास छे।
1: बहुत खूब बहुत खूब। तो
2: ये गाना आपको फुल म्यूजिक अरेंजमेंट के साथ इन फ्यूचर
1: क्या इसका अर्थ अगर
0: गाने से ही ज्यादा हम दोनों एक दूसरे के करीब आए थे।
1: अरे क्या बात है। तो इसका अर्थ क्या है इस गाने का?
0: अगर इस गाने का अर्थ आंखों में बैठेला चातक,
2: जो चातक होते हैं ना
1: आंखों में बैठे हुए
2: चातक। आप चातक को तो जानते हैं कि वो पानी की बूंद को तरसते हैं, बारिश में पानी बारिश होती है तभी वो पानी पीते, बाकी नहीं पीते।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: वो कहते हैं कि मेरी बारिश कहीं आसपास है,
0: मतलब मानसून अभी आने वाला है।
1: आने वाला है बिल्कुल। मानसून की वैसे भविष्यवाणी भी हो गई है।
2: और
0: एक भी है, वैसे मौसम भी अहमदाबाद में थोड़ा ऐसा ही है।
1: ऐसा ही है।
2: ये जो गाना है ना, ये गाना है वो एक जो पोएट है कवि जिसे बोलते हैं बराबर, उसकी ये कल्पना है कि आंखों में जो आंसू होते हैं ना उन्हें वो एक चातक की नजर से उन्होंने देखा है। आंखों में बैठे हुए चातक कहते हैं कि मेरी बारिश आसपास है। वो चातक जो आंख में से पानी निकलने का इंतजार करती है।
1: अच्छा,
2: वो कवि की कल्पना है।
1: जी बहुत खूब। अच्छा एक हमारी पसंद से भी आप सुना सकते हैं दो लाइनें गुजराती।
2: बोलो
0: बोलो।
2: ओ बाप रे। बोलो
0: दिकरी। बोलो जानते होगे तो सुना देंगे एक दो लाइन।
1: दिकरी तो पार की थापण के वाय। ये बड़ा फेवरेट मेरा।
0: ओके ओके
1: जी।

0: संदीप जी, ये गाना मैं आपको इन फ्यूचर पूरा म्यूजिक के साथ इनकी आवाज में,
1: क्या बात,
0: और बतौर फीलिंग्स,
1: जी जी जी,
0: पूरी फीलिंग्स के साथ,
1: बहुत मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा।
0: मैं आपको रिकॉर्डिंग क्लब में इस गाने को,
1: ये बड़ा ही मतलब भावुक कर देने वाला गीत है मेरे।
0: नहीं, नहीं, सही बात है, सही बात है। नहीं नहीं नहीं, ये आपने हमें जो इतना, हाँ बस, हाँ वो फरमाइश को पूरा करेंगे, जरूर करेंगे।
1: क्या बात है, बहुत खूब। महेंद्र भाई, चलते चलते एक निवेदन भी मैं करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप एक संगीत की दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो एक आग्रह रहेगा कि हमारे जो कलाकार हैं, जो दृष्टिबाधित कलाकार हैं, और जो मतलब आज आपकी तरह सक्सेसफुल नहीं है, या मुख्य धारा के लोगों से जिनका संपर्क नहीं है, क्योंकि अभी के दौर में बहुत सारे लोगों ने अपने इन प्रोग्राम्स को जो करके अपना जीवन चलाते थे, उनको दिक्कत हुई है, उनको नुकसान हुआ है, तो कभी आपको भी अवसर मिले तो, वैसे आप करते होंगे मैं ये मान करके चलता हूँ, लेकिन हमारे दृष्टिबाधित साथियों को मंच जरूर आप दिलवाइएगा, ताकि आपकी आपके संपर्क की बदौलत उन लोगों का भी कुछ, उनकी भी मदद हो जाए।
0: सर जरूर, ये बात है, लेकिन मैं एक ही अपील करूंगा हर लोगों से।
1: जी जी जी,
0: फॉलो क्राइटेरिया।
1: बिल्कुल, निश्चित रूप से
0: फॉलो क्राइटेरिया, बस
1: निश्चित रूप से।
0: आप देखिए, हमारे सुनिए, हमारे वीआई का एक जो दिक्कत है थोड़ी, हम ऐसा नहीं बोल रहे, माइनस पॉइंट नहीं कहेंगे, लेकिन कम समझ है कि वो सामने वाले के क्राइटेरिया को नहीं समझते हैं।
1: जी जी जी।
0: अब अभी देखो, मैं हम जहाँ पे काम करते हैं उनको क्या चाहिए वो पहले हमें समझना पड़ेगा। हम अपना ही चलाएंगे तो नहीं चलेगा, हम अपना ही गाना गाएंगे तो नहीं चले। हाँ, आप गाना गाओ, लेकिन उनके क्राइटेरिया को फॉलो करो।
1: दोनों तरफा, दो तरफा काम होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए, जो कहना चाह रहे हैं, राइट?
0: दोनों तरफा तो होता है। देखो, जैसे कि मैं मेरी बात करूं तो मैं कई ऑर्केस्ट्रा में, जब नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल में गाना गाने के लिए जाता हूँ, तो पहले मैं वो देखता हूँ कि वो कैसे कलाकारों को वो गवाना है, वो मुझे देखना पड़े, फिर उस प्रकार से हमारी गायकी होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं, एटीट्यूड वाली बात नहीं है, ये समझदारी वाली बात है।
1: बहुत
0: कि मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि क्राइटेरिया अगर फॉलो करोगे तो कोई ब्लाइंड भी नहीं है, कोई साइटेड भी नहीं, सब एक सरीखे है, लेकिन क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़े, बस वो करते हैं, जो लोग करते हैं, फिर भी मैं जरूर कोशिश करूंगा।
1: क्या बात है, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: हम
1: बहुत
0: रिकॉर्डिंग क्लब में भी कोई कलाकार होगा तो हम उन्हें चांस भी देंगे।
1: अल्पा जी, चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सभी सुनने वालों के लिए?
2: मेरा संदेश यही है कि जो भी काम करो तो अच्छे से करो, मेहनत से करो, और हिम्मत मत हारो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
1: और महेंद्र भाई, आप भी हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देंगे?
0: बस मैं तो हर एक जगह पे हर एक लोगों को एक ही बात कहता हूँ, अगर आपके दिल में विश्वास होगा तो आप कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा।
1: जी जी जी।
0: आज तक मैं विश्वास की उम्मीद से ही आगे बढ़ा हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ।
1: बहुत बढ़िया। तो महेंद्र जी, अल्पा जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी हमारे साथ बातें करने के लिए।
0: इट्स ऑल ड्यूटी।
1: जी जी जी।
0: और रेडियो मधुबन का बहुत बहुत शुक्रिया। हम रेडियो मधुबन को भी फॉलो करने की कोशिश करेंगे आज से। आपकी चैनल भी अगर होगी तो सब्सक्राइब करेंगे,
1: निश्चित रूप
0: से। कैसे कैसे कार्यक्रम आते हैं वो भी देखेंगे, कमेंट्स करेंगे, रिव्यूज देंगे, फीडबैक्स देंगे,
1: जी जी,
0: सब कुछ करेंगे।
1: तो श्रोताओं, ये आज का हमारा ही कार्यक्रम, उम्मीद है आप सबको जरूर पसंद आएगा, और आपकी प्रतिक्रियाएं 9414-1415 पर जरूर दीजिएगा। info@radiomadhuban.in पर आप मेल करें, और गूगल प्ले स्टोर से आप रेडियो मधुबन ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं श्रोताओं अगले रविवार फिर किसी और नई हमराही जोड़ी के साथ।
3: अभी बचे हैं दोपहर के 1

0: ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बातें मिलाकातें कार्यक्रम में, और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान तनु जी जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जो बातें करेंगे वो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है इनका, वो हम लोग सुनने वाले हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें कैसी हमारी चेतना को एक नया जो है शक्ति प्रदान होता है, और वो हर व्यक्ति का यूनिक एक्सपीरियंस है। ये जैसे कि अगर हिंदी में कहावत है, गूंगे की मिठाई, जो करता है वही बता पाएगा उसको फीलिंग होएगा, लेकिन हर एक व्यक्ति का अलग इसमें रहेगा। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे वो चीजें संभव हुआ, और इन सभी चीजों को करने के लिए उन्होंने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए, और कैसे उन्होंने ये सारी चीजें अनुभव किया है, उनका एक्सपीरियंस आज हम लोग सुनेंगे। और बड़ा ही प्यारा सा आपको जो है एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगा तनु जी से, और मुझे लगता है कि आप सभी जब सुनेंगे उनको तो एक यूनिक एक्सपीरियंस आप भी कर पाएंगे। और बड़ा अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह के एक्सपीरियंस सुनते हैं। तो यहाँ पर जो टाइटल आपको दिया था, रिकाइंडल इनर हैप्पीनेस ब्लीज एंड प्यूरिटी, ये हमारे आत्मा के निजी गुण है, और इसी के चलते हम लोग कोशिश करते हार्डवर्क करते हैं कि मुझे कहीं से शांति मिले, खुशी मिले, प्यार मिले। लेकिन ये चीजें किसी बाजार की दुकान में नहीं मिलता, ये अनुभव से मिलता है, जो आज हम लोग तनु जी के माध्यम से सुनेंगे। तनु जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बात के मुलाकाती कार्यक्रम में इन चंद कार्यों के साथ। कैसे हैं आप?
1: थैंक यू सो मच, बिल्कुल परफेक्ट हूँ, एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू। आपने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू
0: जी। हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं अभी, सुभाष जी जलगांव से, और राजेश जी जुड़े हुए हैं, और राजेश जी ने सभी को क्लिक किया है, याद किया है, प्रांजल जी ने भी याद भेजा है। तो तनु जी, मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो वर्तमान में कहाँ पर है, क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, फिर हम लोग आगे यात्रा करते हैं, और थोड़ी देर के बाद निशांत सर से एक गीत आपके लिए डेडिकेट करने वाले हैं हम।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया, म्यूजिक बहुत पसंद है, तो उससे अगर शुरुआत होगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा जी। तो मैं वर्तमान में मैं बड़ौदा में हूँ, गुजरात बड़ौदा, एंड एक बिजनेस वुमन हूँ, हाउस वाइफ हूँ, मदर हूँ, मदर ऑफ टू चिल्ड्रन, एंड काफी कुछ कर रही हूँ। तो मिसेज मोंगिया हूँ, नायन जी की वाइफ हूँ, और अभी फिलहाल मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स इंक्लाइंड हुई हूँ, एंड मुझे बहुत मजा आ रहा है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, हर वक्त खुश रहना सीख लिया है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, खुश रहना है, ये समझ में आ गया है। एंड दैट्स व्हाई हमने जो टाइटल आज सिलेक्ट किया, मैंने टॉपिक रिकिंडल इनर हैप्पीनेस ब्लिस एंड प्योरिटी, जो आपने बहुत सही कहा रमेश जी, कि ये हमारी आत्मा के गुण है, निजी गुण है, ओरिजिनलिटी है। तो जब हम ओरिजिनलिटी से परे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं दुख का एहसास होता है, लेकिन जब ओरिजिनलिटी की तरफ बढ़ते जाते हैं, सत्य की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो आत्मा कहीं ना कहीं शांति महसूस करती है, और एक इनर हैप्पीनेस ऑलवेज रहती है, खुशी ढूंढनी नहीं पड़ती, इट्स देयर इनसाइड यू ऑलवेज। जी
0: जी जी जी, अगर पानी है तो उसकी शीतलता उसके साथ में होती है
1: बिल्कुल
0: जब तक कि उसके पास कोई सिचुएशन आ ना जाए कि उसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए। लेकिन देखा गया कि सिचुएशन आ भी जाए तो पानी को गर्म या और ज्यादा ठंडा कर सकता है, लेकिन जैसे ही सिचुएशन बदल जाता है तो पानी अपने स्वभाव में शीतलता में वापस आ जाती है। तो निश्चित तौर पे हमें जो है सिचुएशन को न देखकर अपने आप से जुड़ जाना, अपने आप से कनेक्ट होना, और जिसने हमें बनाया है उस रचयिता से कनेक्ट हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पे वो प्यूरिटी, वो शांति हमारे साथ हमेशा रहेगी, क्योंकि वो है ही है। उसको शांति में रहो कहने की जरूरत नहीं, शांति तो आपका स्वधर्म है। आप शांति पाने के लिए साइलेंस का उपयोग जरूर कर सकते हैं
1: जी जो आज के जमाने में बहुत ज्यादा जरूरत है साइलेंस की
0: जी जी। तो आइए निशांत जी, मैं चाहूंगा कि आप तनु मंगिया के लिए बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाइए, डेडिकेट कीजिए उन्हें। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: थैंक यू रमेश जी, एंड थैंक यू अर्चना जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म फॉर तनु जी। So it's a honor, and it's good to see lady entrepreneurs doing so well nowadays, and hats off to them. So
1: thank you.

0: थैंक यू,
1: थैंक यू सो मच निशांत, बहुत ही प्यारा संगीत
0: थैंक यू रमेश जी,
1: शुक्रिया,
0: थैंक यू।
1: तो आइए आगे बढ़ते हैं आज के शो में, हम लोग और एक अच्छा जो है फ्लेवर आ गया है शो में।
2: जी सबसे पहले निशांत जी को कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, ऑल वर माय फेवरेट सॉन्ग्स, सब सबके सब, थैंक यू, थैंक यू अर्चना जी, थैंक्स टू यू,
1: थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं और जैसे हम लोग आज बात करने वाले हैं कि वो है क्या चीज जिसे हम लोग एक बार फील कर ले तो हमारे जीवन में लाइफ टाइम के लिए हैप्पीनेस आ जाता है या आशीष प्राप्त होता है या पवित्रता हमारे जीवन में आ जाता है। निश्चित तौर पे मेरा सवाल यही है कि हु आर तनु और तनु नैन, ये क्या है? जी
2: आप शायद ये पूछ रहे जैसे कि हु एम आई, लाइक तनु मोंगिया या फिर तनु नयन मोंगिया, है ना? क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी की वाइफ हूँ, तनु नयन मोंगिया जो मेरी पहचान है कि ये नयन जी की वाइफ है, तो कभी कभी खुद से लगता है कि खुद की मतलब हु एम आई, यू नो, तनु इज नोन एज नयन मोंगिया वाइफ, से ज्यादा ये चीज जिसके लिए मुझे कोई आई हैव नो, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता है, इनफैक्ट आई फील वेरी वेरी प्राउड बिकॉज नयन जी देश के लिए खेले हुए हैं। एक्चुअली अभी भी उनका मैच चल रहा है, ये तो फन मैच है, फ्रेंडशिप कप है जो दुबई में इस वक्त पर चल रहा है क्रिकेटर्स एंड बॉलीवुड स्टार्स के बीच में, तो मुझे बहुत ज्यादा गर्व है कि मैं उनकी पत्नी हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे विकेट कीपर रह चुके हैं, दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर्स आज भी माने जाते हैं, तो आई एम वेरी वेरी प्राउड टू बी हिज वाइफ, टू बी नोन एज हिज वाइफ, और वो बहुत वंडरफुल इंसान भी है, तो आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी लकी। लेकिन कहीं ना कहीं तो लेकिन मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी अगर आप पूछेंगे तो ना तो तनु मोंगिया है और ना ही तनु नयन मोंगिया है, ओरिजिनल आइडेंटिटी ये मैंने अभी कुछ समय से ही जाना है कि ये हमारी आइडेंटिटीज बन गई है, यू नो, विद टाइम, क्योंकि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो व्हाट वाज आई हैड अनदर नेम, तनु बाथला, यू नो, मैं अपने पापा मम्मी के साथ रहती थी तो उनका नाम मेरे पास था, शादी हुई तो मेरे हस्बैंड का नाम जुड़ा, तो लेकिन मेरी ओरिजिनलिटी क्या है वो मैंने जाना जस्ट कुछ ही वक्त पहले, जब मैंने क्योंकि ये सवाल कुछ चलते थे माइंड में कि मैं कौन हूँ, यू नो, ये चीजें आती थी कि जो व्हेन आई वाज नॉट बोर्न एज तनु, इवन तनु, अगर सिर्फ तनु, मैं साइन भी करती थी ना तो मेरे सरनेम को कभी नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था शादी के बाद मुझे ये भी अपना साइन चेंज कर देना पड़ेगा बिकॉज सरनेम चेंज हो जाएगा, आजकल के वैसे बच्चे दांत देनी पड़ेगी आज की जनरेशन को, और ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपना अपना सरनेम को चेंज नहीं करते हैं, एटलीस्ट वो आइडेंटिटी के साथ रहते हैं बचपन से लेकर, या फिर जोड़ लेते हैं अपने हस्बैंड का सरनेम, विच इज वेरी गुड, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, तो मुझे लगता था कि मेरी तो पूरी की पूरी यू नो सरनेम चेंज हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा, तो वो सब ठीक है हुआ, इसलिए मैं सिर्फ साइन करती थी तनु, तो ये चलता था सवाल कि जो व्हेन आई वाज नॉट बोर्न एज तनु व्हाट वाज आई, जब मैं इस शरीर में नहीं आई हूँ तो मैं कहाँ हूँ, कहाँ थी, और जब हम शरीर छोड़ देते हैं, कहते हैं ना इन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो फिर किन्होंने छोड़ा, यू नो, ये थोड़े से क्वेश्चंस चलते थे माइंड में, जिनका जवाब मुझे धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना कोई चीजें आप यू नो कोई क्यूरियोसिटी है आपके मन में, कोई सवाल है, आप कुछ चीजें बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं, तो यूनिवर्स गिव्स यू द आंसर्स, तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ, क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल चलने शुरू हो गए थे, हु एम आई, हु इज गॉड, वेयर इज ही, क्योंकि इतना फेथ था, इतना बिलीफ था दैट इस पूरी दुनिया को चलाने वाली एक शक्ति तो है, सुपर पावर है, जिसे शायद हम भगवान का नाम दे देते हैं, बट वो है कहाँ और वो है कौन, उसे जानने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी, तो ये सारे प्रश्नों का जवाब मुझे धीरे धीरे धीरे धीरे मिलने लगा, और उस जो ब्यूटीफुल नॉलेज है उसका नाम है राजयोगा, जो मैंने सीखा है 4 साल पहले मैंने इसको जाना, क्योंकि वैसे मैं सिस्टर शिवानी के वीडियोस को बहुत देखना शुरू हो गई थी, उसके पहले कभी नहीं देखती थी, देखिए कैसा होता है वो, तो कब से ये सब तो कब से चले आ रहा है, लेकिन मुझे 4 साल पहले ही दिखाई दिया, क्योंकि सवाल तब से शुरू हुए ना, उसके पहले तो नॉर्मल था सब, सवाल शुरू हुए, लाइफ इज अनफेयर, आई यूज टू फील लाइफ इज वेरी अनफेयर, क्योंकि मैं क्या करती थी, जब किसी को देखती थी कोई गरीब है कोई, या कोई बहुत अच्छा इंसान है उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो दुख होता था, अच्छा नहीं लगता था, एक तरह से हमने सुना था कि आपके कर्म, यू नो, आप अच्छे अच्छे कर्म करोगे तो आपको फल अच्छा मिलेगा, लेकिन दूसरी ओर से दिखता था कि जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं हो रहा है, और जो कहीं बहुत अच्छे नहीं कर रहे दे आर वेरी हैप्पी इन लाइफ, तो फिर लगता था लाइफ इज अनफेयर। तो कहीं ना कहीं वो सारे जवाब धीरे धीरे मिलने लग गए, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मेरा सच में माइंड में एक भी क्वेश्चन नहीं चलता है, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे दुनिया में कोई भी परिस्थिति आ जाए, क्या या मेरे सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, मेरी पर्सनल लाइफ में भी मेरे साथ कोई मेरे माइंड में कोई सवाल चलता ही नहीं है। लाइफ इज फेयर, एवरीथिंग जो हो रहा है ये एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, इसमें कोई इधर उधर नहीं हो सकता। ये ब्यूटिफुल जो नॉलेज मुझे मिली है उसकी वजह से, और जो ओरिजिनलिटी अपने आप की समझी है कि मैं कौन हूँ, यू नो आई एम दिस एनर्जी, दिस ब्यूटिफुल एनर्जी हैविंग दिस ब्यूटिफुल 7 क्वालिटीज विद इन मी, ये जब समझ में आ गया बाकी सारी चीजें अपने आप यू नो एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। तो So I am neither Tanu Mongia, I am neither, my real identity is not Tanu Nayan Mongia, though I am very proud of it, but still I am proud to be who I am originally. I am this beautiful energy, divine being, who is always happy, forever happy and peaceful and pure.
1: बहुत अच्छी बात आपने बताया, who I am, the answer is here. लेकिन सारे चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि आप बाहर निकलते हैं तो एक अलग आइडेंटिटी है, घर पर रहते हैं एक आइडेंटिटी है हमारा, हम लोग बहुत सारे रोल प्ले करते हैं, व्यक्ति एक रोल अनेक।
2: हाँ जी हाँ जी बहुत सारे। जी जी बिल्कुल।
1: हर रोल को दी बेस्ट करने के लिए क्या तरीका आप अपनाते
2: हैं? जी तो एक्चुअली हम सभी रोल्स ही तो प्ले कर रहे हैं, ये समझ में आ गया है कि हम सब यू नो ये एक वर्ल्ड ड्रामा है, ये सृष्टि चक्र जो पूरा चलता रहता है, फिरता रहता है, इट्स लाइक अ ड्रामा, इट्स लाइक अ व्हील, और इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं सभी के सभी, और हमें रोल्स मिले हुए हैं। तो जैसे मैं कह रही थी कि मेरा सवाल था कि जब मैं एज तनु पैदा नहीं हुई थी तो व्हाट वाज आई, तो वो भी समझ में आ गया है कि हाँ मैं कोई ना कोई और बॉडी में थी, और मेरा उस वक्त यू नो लास्ट में कोई और मेरा रोल रहा होगा। मैं जैसे आज मेरे बच्चे हैं उनकी मैं माँ हूँ, तो ऐसे ही आई मस्ट बी अ मदर ऑफ सम अदर चिल्ड्रन। तो कहीं ना कहीं हमारे ये रोल्स, वी कीप प्लेइंग, वी कीप चेंजिंग आवर रोल्स, तो सब एक्टर्स हैं। तो मैं अभी बहुत सारे रोल्स प्ले कर रही हूँ, जैसे हम सभी कर रहे हैं। तो एक बेटी का रोल प्ले कर रही हूँ, एक बहू का रोल प्ले कर रही हूँ, पत्नी का रोल प्ले कर रही हूँ, माँ का रोल प्ले कर रही हूँ, एक बिजनेस वुमन का रोल प्ले कर रही हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट जो कुछ करना चाहती है सोसाइटी के लिए, वो रोल भी मैं प्ले कर रही हूँ। तो हम अलग अलग अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं और उन्हें एंजॉय करना चाहिए। जो भी रोल आपको मिला है, अब जैसे एक्टर्स होते हैं कोई फिल्म में, उन्हें जो रोल मिल जाता है, कई होते हैं मेथड एक्टर्स, है ना, पूरी तरह से यू नो घुस जाएंगे रोल के अंदर, और इतना ज्यादा घुस जाएंगे कि वो एक्चुअली अपने आप को वही समझने लग जाएंगे, होता है ना ऐसा। जैसे आई हैव अ यंगर सिस्टर जो एक्ट्रेस है, टीवी एक्ट्रेस है, और वो बहुत ऐसी है मेथड एक्टर, तो वो घुस जाती है अपने रोल में। तो उसको एक बार कुछ नेगेटिव रोल करना था, तो इतनी ज्यादा स्ट्रेस्ड हो गई थी, बिकॉज उसको चाहिए कि वो परफेक्ट रोल निभाए, और वो अच्छी बात भी है। लेकिन अगर हम एक्चुअल लाइफ में ये करने लग जाएंगे, ये मैंने समझा है कि रोल्स प्ले करने हैं हमें और ब्यूटिफुली भी करने हैं, लेकिन उनके अंदर हमें अगर हम पूरी तरह से बहुत ज्यादा घुस जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ में हमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है बार बार, क्योंकि हर रोल में आपके कोई ना कोई चैलेंजेस होंगे, कोई क्योंकि यू आर एक्सपेक्टेड टू डू सर्टेन थिंग्स एज अ मदर, आई एम एक्सपेक्टेड टू यू नो डू सर्टेन थिंग्स, अपने बच्चों को अच्छे से पालना है, अच्छे संस्कार देने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, ये सब मुझे करना है एज अ मदर, तो ये एक रोल है मेरा। लेकिन अगर मैं उसमें बहुत ज्यादा घुस जाती हूँ, ये मैंने अभी समझा है, यू नो आई विश ये नॉलेज, ये ब्यूटिफुल नॉलेज मुझे बहुत साल पहले मिल गई होती तो एक अलग तरीके से मैंने अपनी जिंदगी को बिताया होता, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अभी सुंदर तरीके से बिता रहे हैं। तो उस रोल के अंदर मैं ट्राई करती हूँ कि

0: एग्जाम्पल इज टू बी माई ओरिजिनल सेल्फ. मेरी ओरिजिनैलिटी से मुझे दूर नहीं जाना है. जो मुझे समझ में आ गई है बात कि मैं कौन हूँ, वो मेरा एक्चुअल मतलब इट्स माई ओरिजिनैलिटी. तो वही रोल मेरा फेवरेट है, क्योंकि जब मैं उस रोल में उस रोल को सही से निभा रही होती हूँ ना, तो मैं बाकी सारे रोल्स बहुत ब्यूटीफुली निभा सकती हूँ. ये मैंने समझ लिया है. हर एक को अच्छे अच्छी दिल से रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से लेकर मैं सब रोल्स निभा सकती हूँ. जब मैं ये समझ लेती हूँ कि मैं एक ब्यूटीफुल डिवाइन बींग हूँ, जिसे हर वक्त वो हैप्पीनेस अंदर ही है, वो प्योरिटी अंदर ही है. मुझे कहीं से कहीं खुशी मांगनी नहीं पड़ती है, मुझे प्यार मांगना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तभी होगा जब मैं अपनी ओरिजिनलिटी में रहूंगी. तो वो मेरा फेवरेट रोल है, टू बी माई ओरिजिनल सेल्फ, व्हाट आई एम.
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप ओरिजिनल बन गए. मतलब ये है कि हो आयाम ये आप समझ लिया है, इसलिए आप चाहते हैं कि आप उसी चीज को अच्छी तरह से याद रखें और उसके अनुसार आप चीजों को करें.
0: जी
1: क्योंकि जब
0: जी
1: उसको याद रखे करते हैं तो चीजें जो है आसान भी रहती है और मुश्किलें नहीं आती. अब बात आती है कि मुश्किलें आपके जीवन में ना आए, चैलेंजेस आपके पास ना आए या कोई रुकावट ना आए, ऐसा तो होगा नहीं. क्योंकि इंसान के जीवन में ये चीजें आती हैं, उसको शायद उनके अंदर वो पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए आता है, कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आता है, उसको अपॉर्चुनिटी देने के लिए आता है. लेकिन हम लोग सिचुएशन और सिचुएशन के साथ फोकस हो जाते हैं, इसलिए हमारे अंदर की जो पोटेंशियलिटी है, हमारे अंदर जो शक्ति है, उसको भूल जाते हैं और इसके लिए ज्यादा लंबा टाइम तक उस सिचुएशन को फेस करते हैं. लेकिन एक बार
0: जी
1: ओरिजिनलिटी के साथ हम जुड़ जाते हैं तो नेचुरली वो चीजें आसान हो जाती हैं जो आपने अभी कहा. तो
0: जी
1: मैं चाहूंगा कि आपके जीवन में भी आप वैसे आशीष तो आपको प्राप्त है, एक अच्छी चीजें आपको मिली है, अच्छे हस्बैंड आपको मिले हैं और आपको खुशी हो रही है इस फैमिली के साथ में. लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई सभी टाइम ये चीजें जो है आपके साथ जुड़ा रहा हो, कुछ सिचुएशन आपने भी फेस किया होगा. क्योंकि इंसान है तो मुश्किलें आएगी, रास्ते ऐसे टेढ़े मेढ़े भी आएंगे, तो सभी को उस जगह से उस सिचुएशन से फेस करना. तो आपके पास ऐसी कौन सी मुश्किलें आई, हर्डल्स आई, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए.
0: सबसे पहले तो आपने जैसे बहुत ब्यूटीफुली कहा दैट एवरी क्राइसिस कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना. कोई भी क्राइसिस में अगर हम अपॉर्चुनिटी को ढूंढ लेते हैं, वो आती ही है अपॉर्चुनिटी के साथ, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत पड़ती है. तो मेरे साथ भी, और देखा जाए तो चैलेंजेस सबकी लाइफ में होते हैं, प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में होते हैं, लेकिन हम उन्हें किस तरह से फेस करते हैं. एक एक एग्जाम्पल है, देखिए, एक सिचुएशन होती है, एक सिचुएशन है, 10 लोग उसके सामने हैं, हर एक का नजरिया अलग होगा, हर एक का उस सिचुएशन को फेस करने का स्ट्रेंथ अलग होगी, है ना. व्हाई? बिकॉज वो उसकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी शक्ति है उसे फेस करने के लिए. तो मैं अगर अपनी बात कहूँ तो डेफिनेटली एक लड़की का हमेशा सपना होता है कि मेरी शादी होगी और मुझे एक राजकुमार लेकर जाएगा. तो ये एक सपना होता है हर लड़की का, आई थिंक मेरा तो था ही. तो ऐसे ही बहुत ब्यूटीफुली एक राजकुमार ही आया, क्योंकि वो उस वक्त के वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स ऑफ द कंट्री थे. और उन्होंने उनके साथ जब मेरी शादी हुई तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. बहुत ब्यूटीफुल था वो पूरा सफर. लेकिन जैसे कहते हैं ना, रियलिटी सिंक्स इन, धीरे धीरे रियलिटी में हम आते रहते हैं. तो मैं एक अलग बैकग्राउंड से थी, एक अलग मेरे पेरेंट्स ने संस्कार जो दिए थे वो अलग टाइप के थे, डिफरेंट थे, बहुत सुंदर थे लेकिन अलग थे. और जिस घर में मैं आई वो थोड़ा सा अलग था, तो सबका सोचने का तरीका डिफरेंट था. हम सब लड़की जब आती है एक नए घर में तो उसकी एक्सपेक्टेशंस होती है कुछ, और वैसे ही जब बहू एक घर में आती है तो फिर घर वालों की भी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है. तो कोई भी गलत तो कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो जाते हैं. तो वो डेफिनेटली फेस हुआ था, क्योंकि अलग सोच थी टोटली. और तो तब ये ज्ञान नहीं था, तो मुश्किलें आई कि किस तरह से मैं मैनेज करूं सब कुछ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ठीक से संभाल नहीं पा रही हूँ सब कुछ. सबको सबको खुशी, जो एक लड़की को मन होता है कि मैं सबको खुश रखूं, तो वो हो नहीं पा रहा था. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था, आई एम फेलिंग इन माई लाइफ, रिश्तों में कहीं ना कहीं मैं सबको संभाल नहीं पा रही हूँ ठीक से. तो वो चैलेंजेस आते हैं, लेकिन विद टाइम धीरे धीरे बढ़ते हैं, हम खुद भी ग्रो करते हैं, समझ आती है हमको भी. लेकिन उस वक्त पर लगता है कि मैं सही हूँ और सामने वाले को लगता है कि मैं सही हूँ, लेकिन तभी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं. लेकिन ये जब मैंने अब जाके समझा है, तो मुझे तभी मैंने कहा ना कि मुझे बहुत फील होता है कि मैंने पहले ये नॉलेज मुझे क्यों नहीं मिली, क्योंकि मैं

0: बहुत ब्यूटीफुली इन चीजों को अब समझ पा रही हूँ कि कैसे एक दूसरे को एक्सेप्ट करना ही यू नो दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ रिलेशनशिप, ना कि ये सोचना कि वो ऐसे क्यों नहीं है, सामने वाला ऐसा क्यों नहीं है. हम कहते हैं वो ऐसे जैसा मैं चाहूं वैसा होना चाहिए, मैं जैसा चाहूं वो वैसे मुझे प्यार करें, वो वैसा ही सब कुछ करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है. हर एक का अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है, तो उसको एक्सेप्ट करना ये होता है असली यू नो जो जो आज भी मैं देख रही हूँ कि आजकल के बच्चों में, आजकल की जेनरेशन में पेशेंस लेवल नहीं है, इसीलिए हम देखते हैं रिश्तों में बहुत जल्दी कड़वाहट पैदा हो जाती है. तो ये चलो हमारे संस्कार ऐसे नहीं थे कि हम कुछ ऐसा एक्सट्रीम स्टेप कुछ लेते, लेकिन फिर भी अब लगता है कि काश उस वक्त पर ये ज्ञान मिला होता तो बहुत अच्छे से हर चीज को मैनेज कर पाते. तो उस वक्त के चैलेंजेस उस वक्त के थे, मैं इट्स ऑल ओवर, नो प्रॉब्लम नाउ, लाइफ इज गोइंग ऑन ब्यूटिफुली. लेकिन आज भी कई ऐसे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि मैंने एक टोटली डिफरेंट में हमारी जो सोसाइटी होती है, हम जहां पर यू नो पार्टी करो ये करो बहुत सब किया हुआ है, लेकिन अब सडनली मैंने एक ऐसा पाथ चूज किया है जहां पे मैंने एक अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन लेकर आई हूँ, तो उसमें एक अलग टाइप के चैलेंजेस है. आई नो आई एम ऑन द राइट पाथ, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाते. उनको लगता है कि बहुत जल्दी आपने ये शुरू कर दिया, बहुत जल्दी आपने इस पाथ पे चले गए आप, यू नो अभी तो टाइम है बुढ़ापे में. मतलब लोग समझते हैं कि एज हो जाए ना, जब कुछ और नहीं रह जाता करने को, तब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए. बट एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी है ना, एम आई राइट? ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब लोगों को ये समझ में आता है कि ये क्या, ये इसने ये क्यों छोड़ दिया या ऐसे क्यों कर दिया. तो वो चैलेंजिंग लगता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि स्पिरिचुअलिटी इट इज द करेक्ट वे ऑफ लिविंग, इट टीचेस यू द राइट वे ऑफ लिविंग. और वो बुढ़ापे में नहीं, बचपन से शुरू कर देना चाहिए वैल्यू एजुकेशन. तो वो थोड़ा सा लगता है कि है, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे पीपल स्टार्ट एक्सेप्टिंग यू. वो जब देखते हैं आपकी जिंदगी को ब्यूटीफुल चल रही है, अच्छे से आप जी रहे हो, खुश हो, हमेशा खुश हो, दूसरों को भी ऊपर लाने में मदद कर रहे हो, तो फिर तब उनको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं दे आर राइट.
1: तनु जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया. और कई बार ये चीजें जो है, लोग ने ये प्रीवियस प्रोग्राम है दिमाग में डाला हुआ, ये अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी जो है आफ्टर 60 प्लस के बाद आपको करना है, जब आपके पास कोई काम नहीं रहेगा तो आप यही काम करें.
0: जी जी जी जी.
1: तो मैं आपके पास जो है, आप 60 तक पहुंचते पहुंचते अपना कर्तव्य को बहुत खूबी से निभाते थे और आपका लाइफ भी अच्छा था. हाँ, उसके बाद आप कर भी सकते थे, लेकिन टाइम के साथ साथ चीजें चेंज हो जाती है. कहा जाता है कि समय जो है हर चीज को बदलाव में डाल देता है, और समय के साथ व्यक्ति व्यक्ति के जीवन और जीने के तरीके बदल. आज से 100 साल पहले अगर पीछे चले जाए आप, तो किसी ने साबुन से नहाया ऐसा तो नहीं कहा है, स्टेटमेंट है ना हमारे फोक फादर्स.
0: जी.
1: लेकिन आज इसकी कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है.
0: हाँ जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आपने कहा.
1: चेंज हो जाता है, आपके लाइफस्टाइल में बदलाव आता है और चीजें बनती भी है, उसके नीड के अनुसार चीजें आपके पास आ जाती है. तो वैसे ही अगर आज आपने स्पिरिचुअलिटी को अगर अपनाते हैं, तो वो नीड ऑफ आवर है, आज आपकी जरूरत है, क्योंकि आप 8 घंटे की ड्यूटी जरूर करते हो, लेकिन उसके साथ तैयारी 2 घंटे, तैयारी में फिर ट्रेवलिंग के 2 घंटे, ऐसे 12 घंटे का आपका जो है टाइमिंग बन जाता है. यू कैन नॉट से मैं 8 घंटा ड्यूटी करता हूँ, बोलने में आएगा, लेकिन उसके पीछे जो है आपके 12 to 15 hours जाते हैं. जैसे लॉकडाउन हो गया, उसके बाद हमने वर्क फ्रॉम होम किया, तो एक बड़ा सुकून लग रहा था कि अरे घर से काम करेंगे कितना मजा आएगा ना, खा पी के करेंगे, लेकिन देखा जाए तो क्या खा पी के कर रहे हैं, खाना पीना छोड़ के काम ही कर रहे हैं आप.
0: जी जी, वेरी ट्रू. ओवर टाइम कर रहे हैं सब.
1: हाँ, ओवर टाइम कर रहे हैं, आपका खुद का कोई जीवन ही नहीं रहा, सिर्फ काम ही रह गया आपके पास. आप सोने के पहले भी कॉल आएगा, टारगेट आ जाएगा, वो आ जाएगा, सवेरे जल्दी उठ
0: और घर के काम कर रहे हैं वो अलग.
1: वो अलग. तो क्या हो रहा है कि हम लोग को एक तरफ से ये, जैसे कि टाइम के साथ में जो चीजें हमारे बीच में आ रही हैं, ये बिल्कुल जैसे कि एक अमृत तृष्णा के समान चीजें हैं. एक तो हमें प्रेजेंट सुख देने का जो है मैसेज मिलता है कि घर से काम कर रहे हैं, वाह बहुत अच्छा है, लकी है आप. लेकिन घर वाले से पूछो, वो घर में रहते घर में कहाँ है, बोले
0: कहाँ है, सिर्फ नाम के लिए है घर में.
1: हो चीज में
0: जी
1: आज के समय में, तो इसका मतलब ये हुआ कि
0: जी
1: आप कहीं ना कहीं देर इज यू नीड अ ब्रेक, आप ठीक से जीवन को समझो, ये आपके लिए है मैसेज। क्योंकि
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली
1: अध्यात्म ये कहता है कि जीवन जीने की कला है। तो व्यक्ति
0: जी
1: को जब जीवन
0: बिल्कुल
1: जीना नहीं आता है या कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं या हर्डल्स आते हैं, अपॉर्चुनिटी के साथ साथ मुश्किलें भी जुड़ी होती हैं, तो वो चीजें कैसे हम लोग हैंडल करें और कैसे उसको पीसफुल हैंडल करें, इसके लिए अभी आपकी जरूरत है। जहां हो, जैसे हो, जिस सिचुएशन में हो, आपको योग मेडिटेशन ये आपका लाइफस्टाइल के अंदर, जिस तरह से खाना आप खाते हैं, जिस तरह से नहाते हैं, जिस तरह से
0: बिल्कुल
1: वो जरूरी चीजें समझते हैं, रोटी कपड़ा एंड मकान, आज के
0: वैसे
1: समय
0: ही
1: में
0: हो
1: रोटी
0: गया
1: कपड़ा और
0: है
1: मकान के साथ राजयोग भी जरूरी है। ये आपका फंडामेंटल में डालना पड़ेगा
0: वेरी
1: आपको।
0: ट्रू वेरी ट्रू। ये
1: रोटी
0: मैं
1: कपड़ा और
0: आपके
1: मकान
0: साथ
1: तो बनने में या उसको यूज करने में हमारा लाइफ चला जाएगा और हम उसका सुख नहीं ले पा रहे। मकान में है
0: बिल्कुल
1: लेकिन
0: सही
1: मकान का
0: बिल्कुल
1: सुख नहीं, कपड़ा लिया, कपड़े पहनने के बाद उसका सुख नहीं है।
0: बिल्कुल सही
1: पहनने
0: बोला
1: के
0: आपने
1: बाद हमको
0: बिल्कुल
1: बताना पड़ता है कि भाई आज मैंने नया कपड़ा पहना है। सामने वाला, अच्छा, ओ थैंक यू, इतना बड़ी वो सिचुएशन है आज कि
0: जी
1: आपने नया पहना है, लोगों को ऑटोमेटिकली मैसेज देना चाहिए था, वो खुद आके आपको अरे यू आर लुकिंग वेरी
0: बोलने चाहिए
1: ब्यूटीफुल, क्या नया ड्रेस खरीदा आपने, ऐसा होना। लेकिन आज मुझे बताना पड़ता है मेरा बर्थडे है, मेरा नया कपड़ा मैंने पहनाया, ये मैंने अभी। तो क्या हो रहा है कि लाइफ में वो चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है चीजें चेंज हो रही है। तो इसमें ये जरूरी है कि मेडिटेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो हम समझे। जीवन जीने की जो कला है आज के समय में हम भूलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी वस्तु व्यक्ति प्रभावित करते हैं, और उस प्रभाव से मुक्त रहने के लिए लाइफ में आप जो है, जैसे हमने शुरुआत में तनुजी से बात किया, हु आयाम, वो एक ब्लीस है, उसको समझना बहुत जरूरी है। वो अगर आप समझ लेते हो तो फिर बाकी सेकेंडरी है वो सारी चीजें आप जो करते हैं। तो आइए जाते जाते फिर से मैं तनु जी को आपको जोड़ना चाहूंगा। तनु जी, मैं चाहूंगा कि एक हमारे जो लोग हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं, मुंबई वगैरह या जहाँ बड़ौदा में आप रहते हैं, तो बहुत जगह जो है गांव शहरों में कन्वर्ट हो गए हैं, लाइफस्टाइल में काफी चेंज आ रहा है, तो ऐसे में लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे?
0: जी, तो आपने जैसे बहुत सुंदर तरीके से बात बताई कि आज रोटी कपड़ा मकान सिर्फ नहीं, मेडिटेशन राजयोगा, मन को स्थिर रखना, मन मन के ऊपर ध्यान देना। आज हम तन का ध्यान बहुत देते हैं, हर चीज तन के लिए कर रहे हैं ना, बॉडी के लिए। मुझे नए कपड़े खरीदने हैं, मुझे ऐसा खाना खाना है, मुझे डाइट करना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, ये सारी चीजें हमारी बॉडी के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन आज मन की तरफ कितने लोग ध्यान दे रहे हैं, और अगर आप बीमारियां देखें, 75% बीमारियां साइकोसोमैटिक होती है। जितनी भी बीमारियां आप देख लो, दे आर साइकोसोमैटिक, मतलब मन से शुरुआत हो जाती है उन बीमारियों की। तो मन पर हम लोग कितना ध्यान दे रहे हैं, वो हमें, ये बात मुझे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे ये बात समझ में आ गई। फॉर्चुनेटली मुझे ये बात, उसकी कृपा है कि मुझे ये बात समझ में आ गई, और मैं, यही मेरी शुभ भावना सबके लिए रहेगी कि सबको ये बात समझनी चाहिए कि जितना हम बाकी सारी चीजों पे ध्यान देते हैं ना, हमें अपने मन का ध्यान भी उतना ही देना चाहिए। मन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा। आइंस्टाइन ने अपना माइंड का इस्तेमाल कितना किया था, आई डोंट इवन नो द एग्जैक्ट अमाउंट, आई थिंक 4 पॉइंट सम%, इतना ही उसने अपना ब्रेन लगाया था, और वो क्या बन गया और आप सोचो कि हम कितना अपना उसके उसको उसकी पावर्स को कितना यूज करते हैं। हमारे अंदर पावर्स भरी हुई है, वी आर फुल ऑफ पावर्स। क्यों? क्योंकि हम उसकी संतान है। वो जो सर्वशक्तिवान, जिसको हम कहते हैं मोस्ट पावरफुल, हाईएस्ट अथॉरिटी की हम जिसको बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, तो उसके हम बच्चे हैं और वो सर्वशक्तिवान है। तो फिर मैं कौन हूँ, ये अपने आप को जब हम पहचान लेंगे, तब हम उस पे वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। क्योंकि अब हम अपने आप को निग्लेक्ट कर रहे हैं, दुनिया के साथ हम जुड़े हुए हैं, पूरी दुनिया के साथ हम जुड़े हुए हैं। न्यूज में क्या हो रहा है, दुनिया में न्यूज देखते रहते हैं पूरा दिन, हमको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, सारी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके थ्रू हम जान सकते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, मेरी फ्रेंड्स क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है, सब पता है। खुद से मिले हैं, खुद से कब मिले थे आप लास्ट, ये समझ लीजिए कि जब तक आप अपने आप से नहीं जुड़ेंगे, जब तक खुद को सही से पहचानेंगे नहीं, तब तक वो जिंदगी में वो असली खुशी, वो जो हमने बात की है इनर हैप्पीनेस, ब्लिस की जो हम बात करते हैं, आनंद, प्योरिटी, आज प्योरिटी की कमी हो गई है सबके अंदर, इम्प्योरिटीज इतनी सारी भर गई है, किसी की ज्यादा गलती नहीं है। जैसे रमेश जी ने आपने कहा कि यू नो विद टाइम ऐसा होना ही है कि ये पुराना होता गया सब कुछ, दुनिया पुरानी होती जा रही है, तो ऑब्वियसली इम्प्योरिटी से हम भर ही जाएंगे, लेकिन अपनी ओरिजिनलिटी को जैसे हम पहचान लेंगे तो वो प्योरिटी, जो इनर हैप्पीनेस है, वो अपने आप निखर कर बाहर आएगी। वी नीड टू पे अटेंशन ऑन आर माइंड, ऑन आर सेल्फ, मन पे ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा। मन को जितना शक्तिशाली बनाएंगे, कितनी भी बड़ी चैलेंजेस आ जाए, आज हम देख रहे हैं वी आर गोइंग थ्रू अ लॉट, कोरोना ने हम सबको बता दिया है कि लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी इजी, और ये तो यू नो ये इट्स नॉट गोइंग टू एंड हियर, आगे क्या क्या होने वाला है पता नहीं है, हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कोरोना में, सिर्फ उनको कोरोना हुआ नहीं, लेकिन वो बस डर के मारे मर गए, डर गए तो मर गए, मतलब अंदर डिप्रेशन, बच्चे आजकल के 12th स्टैंडर्ड में फेल हो गए, सुसाइड कर लिया। आप सोचिए कितना ज्यादा इंटेंगल हो गए हैं जिंदगी में, जबकि अपने आप को अगर पहचान लिया, मन को पहचान लिया, संभाल लिया, तो कहाँ से कहाँ हम पहुंच सकते हैं, हमें इसका कोई आइडिया भी नहीं है। इसीलिए रोटी, कपड़ा, मकान एंड राजयोगा बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल इसे ऑप्शन नहीं है हमारे पास, करना ही पड़ेगा। अगर खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और हमेशा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बिकॉज मुझे एक और चीज बहुत ब्यूटीफुल समझ में आई है कि वी आर मेड टू बी सक्सेसफुल, वी आर मेड टू बी हैप्पी। हम कोई जीवन में अनसक्सेसफुल होने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, तो हम कुछ भी करते हैं, हम उसमें अगर हमें सक्सेस नहीं मिल रही तो उसका कारण क्या है, उसे उसे ढूंढना है। बिकॉज सक्सेस इज माई बर्थ राइट, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, खुश रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो मैं क्यों दुखी हो जाऊं। तो ये चीजें अगर समझना चाहते हैं तो फिर ये नॉलेज को जरूर अपनाना चाहिए, जो मैंने अपनी लाइफ में लेकर आई हूँ। मैं ये रेगुलरली इसको स्टडी कर रही हूँ, एवरी डे रेगुलर बेसिस पर। डिसिप्लिन जब तक नहीं होगा तब तक आपकी लाइफ बदल नहीं सकती। वन एडवाइस दैट प्लीज गेट दिस इनटू योर लाइफ, एंड एक दूसरे के साथ प्यार की भावना, शुभ भावना, एक दूसरे के साथ, बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम अगर मैं कुछ नेगेटिव सोचती हूँ आज, तो वो सिर्फ मुझे असर नहीं करेगा, वो बाकी सारी दुनिया में भी असर कर रहा है। तो अगर मुझे इस दुनिया को ब्यूटीफुल बनाना है, अगर इस दुनिया का परिवर्तन करने में मदद करनी है, तो सबसे पहले मुझे अपनी मदद करनी पड़ेगी, ये मुझे समझ में आता है। तो हर एक इंसान अगर खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले दैट यस आई वॉन्ट टू चेंज फॉर द बेटर, मुझे अच्छा बनना है, मुझे दूसरों की मदद करनी है, तो आई थिंक द वर्ल्ड विल ऑटोमेटिकली बिकम ब्यूटिफुल, इजंट इट।
1: बिल्कुल बिल्कुल तनु जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हम लोग खुद को समझ ले, मन को समझ, सारा खेल मन का है ऐसा कहा जाता है, मन के जीते जी, जीते मन के हारे, तो
0: बिल्कुल
1: करें अपने मन को। और वैसे कहा जाता है, छोटे दादी हमेशा कहती हैं, जब हम लोग दादी के साथ बैठते हैं, तो मन एक बच्चे की तरह है, उसको आप जिस तरह से दिशा देंगे, जिस तरह से उसको चलाएंगे, वो वैसे ही
0: बिल्कुल
1: चलेगा।
0: सही, बिल्कुल, मैं खुद ये चीज बोलती हूँ, खुद ये चीज मानती हूँ जी।
1: तो यहाँ पर बड़ी असमंजसता ये है कि इतना अगर छोटा बच्चा मन की तरह छोटा बच्चा, बच्चे की तरह मन है, तो उसे हैंडल क्यों नहीं कर रहे, मन को क्यों नहीं जीत पा रहे, ये सवाल है। तो शायद कहने
0: जी
1: के लिए हम कह रहे हैं एक बच्चे को।
0: हाँ जी
1: ठीक है जी,
0: जी इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगी, इफ यू
1: बिल्कुल
0: इफ यू
1: बिल्कुल,
0: अलाउ मी टू। हाँ जी,
1: या
0: मन एक्चुअली मन बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह है, तो मन कभी भी शांत बैठ नहीं सकता, बिकॉज थॉट्स जो है वो मन में ही चलते रहते हैं ऑटोमेटिकली, यू नो वी कीप क्रिएटिंग थॉट्स, द माइंड कीप्स क्रिएटिंग थॉट्स, हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो हम क्रिएट कर रहे होते हैं, वो हमें पता नहीं चलता है, वो इतना सब कुछ ऑटोमेटिकली हो गया है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसका ध्यान नहीं रखा गया तो वो तो कुछ भी उठा लेगा, कुछ भी खेलेगा, है ना, और हो सकता है कि वो कोई ऐसी चीज उठा ले जो उसको तकलीफ दे, डेंजरस कोई, समझो उसने हाथ में एक नाइफ उठा लिया तो क्या हो जाएगा, क्योंकि माँ ने उसका ध्यान नहीं रखा था, उसको बैठकर एक अच्छा सा टॉय नहीं दिया था कि बच्चे आप इसके साथ खेलो, या कुछ अच्छी चीजें नहीं दी थी उसको देने खेलने के लिए, तो मन तो कुछ भी करेगा बच्चे के जैसे, लेकिन हमें उसे सही खिलौना देना पड़ेगा, और वो सही खिलौना है पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिविटी। जितना हम अपने अंदर पॉजिटिविटी को भरते जाएंगे, मन को हम वो सही थॉट्स दे पाएंगे, क्योंकि मन आज बहुत गलत जगहों पे जा रहा है, नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। और जब नेगेटिविटी की तरफ जाएगा ना, एक नेगेटिव थॉट अकेला नहीं आता है, उसके साथ लाइन आती है, ट्रेन ऑफ थॉट्स आते हैं। और अगर एक पॉजिटिव थॉट आ गया ना, तो मन स्थिर होना शुरू हो जाता है। वही कारण है हमारी जो बैटरीज डिस्चार्ज हो गए ना, हम कोई शक्तियां नहीं बची है हमारे अंदर, ना सहन करने की शक्ति, ना कोई भी सिचुएशन को सामना करने की शक्ति, ये सब बची नहीं है, बिकॉज बैटरीज डिस्चार्ज हो चुकी है पूरी तरह से। वो हमारी चार्ज होना शुरू हो जाएंगी अगर हमने मन का ध्यान रखना शुरू कर दिया। जितना हो सके कम से कम थॉट्स चले मन के अंदर, स्टेबल माइंड रहे। स्टेबल तभी रहेंगे जितना पॉजिटिविटी आएगी। और पॉजिटिविटी आएगी कैसे? जितना हम अपने मन को वो खुराक देंगे। अगर हम पूरा दिन नेगेटिव न्यूज देख रहे हैं, या नेगेटिव कुछ पढ़ रहे हैं, या कुछ ऐसी सीरियल्स या मूवीज देख रहे हैं, तो वो सारी चीजें हमारे अंदर जा रही है ना। तो बहुत ध्यान देना है। ये टेक्नोलॉजी जो आज हमारे सामने है, जो जिसके बहुत सारे फायदे भी है तो नुकसान भी है। वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हमें उसको किस तरीके से अपने फायदे के लिए यूज करना है। तो मन को हम हो सके उतना शांत, उतना पॉजिटिव, सकारात्मक दिशा में लेके जाए, यही समझ में आया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया एडिशनल कराने, एडिशनल चीजें बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू। और मैं राजू का सिखाती भी हूँ ना, तो वो सारे चीज आ जाती।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लगता है बताते हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ करके सभी को क्लियर हो ये बातें, हम कोशिश करते हैं कि सामने वाला उन चीजों को ठीक से समझ पाए। तो थैंक यू तनु जी, एंड नयन सर को भी याद करते हैं, उनको भी कहना हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।
0: और उनको
1: भी याद कर लिया हमने। और अर्चना जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो दोस्तों आज हमने खास बातें मुलाकातें इस चैप्टर में राजयोग और राजयोग से जुड़ा हुआ हमारा लाइफस्टाइल का जो टेक्निक है उसको ठीक से समझने की जरूरत हमने देखी है, और क्यों राजयोग आज के समय में जरूरत है इसकी वो भी हमने समझा है। समय के साथ साथ हर चीज की जरूरत होती है, और वो चीज आपके पास आती है। यू कैन नॉट से कि मेरे टाइम पे मुझे ये चीजें नहीं बताई गई है ना। इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको राजयोग के बारे में और तनु जी ने उसका एक्सपीरियंस किया है वो उन्होंने शेयरिंग किया है ना। सिचुएशन सबके साथ आता है, चाहे आप अमीर हो गरीब हो, सिचुएशन सबके पास दुख या फिर परिस्थिति आती है, तो उसको कैसे हैंडल करना है ये राजयोग आपको सिखाता है। सिंपल वे में जैसे ही आप अपने इनेट को अपने अंतरात्मा से जुड़ जाते हैं तो आप अमर बन जाते हैं, मौत से दूर हो जाते हैं। कितनी अच्छी बात है ना।
0: वाह,
1: सबसे बड़ा फियर क्या है? मौत,
0: मौत
1: तो का। उससे आप निकल जाते हो, अमर हो जाते हो। दैट्स इम्पोर्टेंट, यानी आप जीते हो।
0: तो सही
1: इसको समझना बहुत जरूरी है। ये एक फिलोसफी कहें या अध्यात्म कहें या हम सबसे बड़ा प्रश्न कहें, हुआ आया तो आपके पास है चाबी, खोल लीजिए, एक बार टच कीजिए, एंजॉय कीजिए लाइफ का वो हैप्पीनेस, वो पीस, वो प्यूरिटी, वो ब्लिस। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

0: नमस्ते दोस्तों, चलो एक बात बताओ, क्या तुम सब ने इंद्रधनुष देखा है? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं और वो रंग कौन कौन से होते हैं? और हाँ, इंद्रधनुष बनता कैसे है? क्या कहा, सवाल कुछ ज्यादा हो गए? मैं इतने सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, अभी आपको पता लग जाएगा मीना से मिलके। लेकिन ये मीना जंगल के पास अकेली क्या कर रही है?
1: मिठू, मिठू, ये मिठू पता नहीं कहाँ चला गया है।
2: अरे मीना, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो?
1: सुनील, मैं मिठू को ढूंढ रही हूँ।
2: ढूंढ रही हो मतलब, मिठू कहीं खो गया है क्या?
1: हाँ सुनील, मिठू कहीं भी नहीं मिल रहा।
2: अच्छा, तो ये बात है।
1: मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो सुनील, और तुम्हारे साथ ये छोटा बच्चा कौन है?
2: मीना, ये है मेरा चचेरा भाई ध्रुव, कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ रहने आया है।
3: हाँ मीना दीदी, और अभी मैं और सुनील भैया चाचा जी को खाना देकर आ रहे हैं।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है ध्रुव। अच्छा एक बात बताओ, तुम कितने साल की हो?
3: मैं तो पूरे 5 साल का हूँ। और आप?
1: मैं तो पूरे 9 साल की हूँ।
2: मीना, तुम्हें कैसे पता कि मिठू इसी तरफ उड़ कर आया है?
1: वही तो, मुझे नहीं मालूम कि मिठू किस तरफ उड़ गया है, इसलिए उसे हर जगह ढूंढ रही हूँ। जंगल के इस हिस्से में मैं पहली बार आई हूँ।
2: तब तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे मिठू को ढूंढने में, ठीक है ना ध्रुव?
3: ठीक है सुनील भैया।
2: चलो पहले उस तरफ चलते हैं।
0: लो भाई, मिठू को खोजने निकल पड़ी मीना, सुनील और ध्रुव की टोली।
3: सुनील भैया, ये मिठू कौन है?
2: मिठू मीना का तोता है जो खो गया है।
3: अच्छा, मगर तोता क्या होता है?
2: तोता एक तरह का पक्षी होता है ध्रुव। मीना, तुम्हारी साइकिल कहाँ है?
1: जंगल के रास्ते में बहुत सारे कंकड़ पत्थर थे, तो मैंने साइकिल बाहर कुएं के पास ही छोड़ दी।
3: मीना दीदी, आपने तो कहा था कि आप जंगल के इस हिस्से में पहली बार आई हैं, तो आपको कैसे पता कि यहाँ पत्थर है या नहीं?
2: ध्रुव, चुप हो जाओ और हमें तंग मत करो।
1: नहीं नहीं सुनील, इसमें तंग होने वाली कोई बात नहीं है। राजू भी इसी तरह मुझसे ढेर सारे सवाल पूछता है, और फिर मैं खुद भी तो बहन जी से खूब सारे प्रश्न पूछती रहती हूँ।
2: हाँ मीना, और तुम्हारे प्रश्नों की वजह से पूरी क्लास का जवाब मिल जाता है।
3: मीना दीदी, बताओ ना, आपको कैसे पता कि यहाँ पत्थर है?
1: ध्रुव, मैं जंगल में कुछ दूर तक साइकिल पर आई, पर रास्ते में इतने सारे पत्थर थे कि मुझे वापस जाना पड़ा, और फिर मैंने साइकिल कुएं के पास छोड़ दी।
3: मीना दीदी, क्या आपके साइकिल पर घंटी है?
1: हाँ है।
3: और साइकिल के पहिए भी गोल गोल घूमते होंगे, है ना?
1: हाँ ध्रुव, और जब मेरी साइकिल चलती है तो उसके पहियों से मिट्टी पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें।
3: लकीरें मीना दीदी, बहुत बड़ी।
1: हाँ ध्रुव।
2: ओहो ध्रुव, मीना अगर तुम इस शैतान के सवालों का जवाब देती रही तो हम मिट्टू को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं।
3: मीना दीदी, सुनील भैया, मुझे मिल गया मिट्टू, वो देखो वो रहा।
2: धत तेरी की, अरे वो मिट्टू नहीं है ध्रुव, वो तो एक कौवा है।
3: अच्छा हाँ, पत्तों के बीच में था तो मुझे ठीक से दिखा नहीं।
1: ध्यान से देखो ध्रुव, कौवा भी एक तरह का पक्षी होता है, मगर कौवा काले रंग का होता है, जबकि तोता हरे रंग का, और तोते की चोंच भी लाल रंग की होती है।
3: मीना दीदी, अगर तोता काली स्याही में गिर जाए तो वो भी काला हो जाएगा, तब किसे पता चलेगा कि कौन तोता और कौन कौवा?
1: तब हम उन्हें उनकी आवाज से पहचान लेंगे। इन दोनों पक्षियों की आवाज में बहुत अंतर होता है।
3: वो देखो मीना दीदी, उस तरफ उस डाल पर वो हरा पक्षी, वो ये ना मिट्टू।
1: मिट्टू, मिट्टू, अरे ये तो उड़ गया। नहीं, ये मेरा मिट्टू नहीं हो सकता।
3: वो क्यों दीदी?
1: वो इसलिए ध्रुव, क्योंकि मिट्टू मेरी ढेर सारी बातें दोहराता है, मेरा नाम दोहराता है और अपना भी। अगर ये मिट्टू होता तो अपना नाम सुनकर जरूर जवाब देता।
2: चलो मीना, थोड़ा और आगे चलते हैं।
0: और कुछ दूरी पर ही सुनील को कुछ दिखा।
2: वो देखो, उस बरगद के पेड़ की ऊंची डाल पर एक तोता।
1: मिट्टू, मिट्टू, मिट्टू,
4: मिट्टू,
1: मिट्टू, तुम मिल ही गए। सुनील, लगता है मिट्टू उन टहनियों में फंस गया है और निकल नहीं पा रहा। मैं अभी पेड़ पर चढ़कर उसे नीचे लाती हूँ।
2: ध्यान से चढ़ना मीना।
0: भाई वाह, आखिर मिट्ठू मिल ही गया। और जब मीना पेड़ से नीचे उतरी,
3: मीना दीदी अगर ये बरगद का पेड़ है तो फिर उधर वो कौन सा पेड़ है?
2: ओहो ध्रुव, तुम थकते नहीं हो सवाल पूछते पूछते? वो पीपल का पेड़ है। चलो मीना।
1: यहाँ तो इतना अंधेरा है सुनील, मुझे तो वापस जाने का रास्ता भी याद नहीं, अब क्या करें?
3: मगर अभी तो दोपहर है, तो फिर यहाँ इतना अंधेरा कैसे?
1: वो इसलिए ध्रुव क्योंकि यहाँ लंबे घने पेड़ हैं, जिनकी वजह से सूरज की रोशनी पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुँच पाती, और इसलिए दोपहर में भी काफी अंधेरा रहता है।
3: लेकिन दोपहर में?
2: ओफो, बस करो ध्रुव, सवाल बाद में पूछना, पहले यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं।
3: मीना दीदी, आपकी साइकिल के पहिए जो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बनाते हैं, वो बड़ी होती है या छोटी?
1: बड़ी। पर तुम ये अब क्यों पूछ रहे हो ध्रुव?
3: क्योंकि वहाँ पीपल के पेड़ के पास मैंने जमीन पर कुछ निशान देखे थे।
1: अच्छा चलो चल कर देखते हैं।
2: अरे ये तो तुम्हारी साइकिल के पहियों के निशान है ना मीना?
1: हाँ सुनील, इसका मतलब बाहर निकलने का रास्ता यही पास में है।
4: यही पास में है? सवाल काम के है।
0: और इसी तरह तीनों बच्चे जल्द ही जंगल से बाहर निकल आए, और बाहर कुएं के पास मिली उन्हें मीना की माँ।
5: मीना, सुनील, ठीक तो हो ना तुम दोनों?
1: हाँ माँ, हम बिल्कुल ठीक हैं।
5: मैं यहाँ से गुजर रही थी और तुम्हारी ये साइकिल कुएं के पास दिखी, पर तुम कहीं नजर नहीं आए।
1: वो माँ, मैं मिट्ठू को ढूंढते हुए जंगल में पहुँच गई, और वहीं मुझे सुनील और उसका चचेरा भाई ध्रुव मिले।
5: अच्छा।
1: माँ, ध्रुव भी अपने राजू की तरह बहुत सवाल पूछता है, और इसके सवालों की वजह से ही हम वापस अपना रास्ता ढूंढ पाए।
5: ये तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे तो ढेर सारे सवाल पूछते ही हैं, और इन्हीं सवालों का जवाब पाकर अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। अगर बच्चे सवाल ही नहीं पूछेंगे तो नई नई बातें कैसे सीखेंगे, है ना ध्रुव?
3: जी काकी।
2: चलो ध्रुव, आज से मैं भी खूब सारे सवाल पूछूंगा और नई नई बातें सीखूंगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और तुम्हारे हर प्रश्न का जवाब दूंगा।
4: हर प्रश्न का जवाब दूंगा, अपना ज्ञान बांट लूंगा।
0: भाई वाह, मजा आ गया जंगल की सैर करके, है ना? और मुझे अपने एक सवाल का जवाब भी मिल गया कि इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग। तो दोस्तों, तुम सब भी मेरी तरह सवाल पूछते रहना, ठीक है ना? आओ देखें मीना और मिट्ठू क्या नया कर रहे हैं।
1: जानो बूझो समझो दुनिया, सीखो नए कमाल।
4: पूछने से तुम ना कतराना, पूछो खूब सवाल।
0: भाई वाह, बात तो पते की कही है मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना।

0: बस कर छोटू, कितने सवाल करता है तू।
1: पूछने दो ना, पूछो छोटू, जो पूछना है पूछो।

0: वक्त है खेल का। देखें आज मीना की बहन जी क्लास में कौन सा खेल खिला रही हैं।
1: तो बच्चों आज फिर से भेद खोलना है हमें उसका, जो बीच में बैठा है खुद को छुपाकर।
2: बीच में बैठा है खुद को छुपाकर, क्या है वो बहन जी, कौन है वो?
1: बताती हूँ, चार शहरों के नाम हैं, जिनमें से तीन शहरों में कुछ समानता है, जबकि एक शहर है उनसे किसी खास वजह से अलग। और वो चार शहर हैं अहमदाबाद, भोपाल, जयपुर और पटना।
3: पटना, क्योंकि पटना में मेरे मामा जी रहते हैं, इसीलिए पटना है सही जवाब।
1: नहीं गोलू, पटना सही जवाब नहीं है।
4: बहन जी सही जवाब है अहमदाबाद।
1: शाबाश कृष्णा। और अहमदाबाद कैसे अलग है बाकी तीन शहरों से, मुझे कौन बताएगा?
5: मुझे पता है बहन जी, क्योंकि बाकी तीन शहर किसी न किसी राज्य की राजधानी है।
1: बिल्कुल ठीक सुनील, अहमदाबाद गुजरात में है पर गुजरात की राजधानी नहीं है। गुजरात की राजधानी है
6: गांधीनगर।
1: हाँ, और भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी, जयपुर राजस्थान की, और पटना
3: बिहार की।
1: हाँ सुमी, तो आज के खेल में मजा आया बच्चों?
6: बहुत मजा आया जी।
0: तो आप सबको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, अगली बार मिलेंगे मीना की एक नई कहानी, नए गीत और नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना।
7: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नटखट बंटी। बंटी अपने पापा के साथ सर्कस देखने गया।
2: वाह वाह, क्या करतब है, मजा आ गया।
1: सर्कस

0: है। क्या उन्होंने तुम्हें कुछ बताया था?
1: हाँ, वो मार्केट गई हैं।
2: बंटी जगलिंग करने की प्रैक्टिस में जुट गया।
1: मैं अच्छा कर रहा हूँ ना?
0: अरे वाह बंटी। हाँ सचमुच बेटे, तुम तो बिल्कुल सर्कस के जोकर की तरह करतब कर रहे हो। बड़े होने पर तुम जगलर ही क्यों नहीं बन जाते?
1: हाँ पापा, मैं सोचता हूँ कि मैं अच्छा जगलर बन सकता हूँ। अगर मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा तो यह जरूर सच होगा।
3: उफ, बाजार में कितनी भीड़ थी, शॉपिंग करने में तो जान ही निकल गई।
1: मम्मी आ गई। बताओ ना मम्मी, मल्ली क्या लाई हो?
3: एक मिनट बेटा।
0: बंटी बंटी थोड़ा रुक जाओ, तुम्हारी मम्मी थक गई होंगी। अरे उन्हें जरा सांस तो लेने दो।
3: बहुत अच्छे कुशन मिल रहे थे तो मैं ले आई।
0: बहुत अच्छा किया, घर में कुशन की जरूरत भी थी।
3: और हाँ बंटी बेटा, तुम्हारे लिए मैं लाई हूँ क्रेयॉन्स, बहुत दिनों से तुम मांग रहे थे ना, अब तो खुश हो ना?
1: थैंक यू मम्मी।
0: तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई ना, अब अपनी मन पसंद के रंग भर कर पेंटिंग करो। और हाँ, पेंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि सभी का मन मोह ले।
1: पापा मैं कोशिश करूँगा।
3: ये देखो, मैं बहुत खूबसूरत क्रॉकरी भी लाई हूँ, कम दामों में मिल गई इसलिए ले आई।
1: क्रॉकरी क्या होती है, जरा मुझे भी तो दिखाइए।
0: अरे वाह।
3: अरे संभल कर बंटी, क्रॉकरी बहुत नाजुक होती है।
1: अरे ये क्रॉकरी तो वह जोकर उछाल रहा था, क्यों ना मैं भी इनसे प्रैक्टिस करूं?
3: बंटी नहीं।
2: पर बंटी के हाथों से क्रॉकरी टूट जाती है।
1: ओ, ये क्या हो गया, अब मुझे यकीन नहीं है कि मैं अच्छा जगलर बन सकता हूँ।
4: और फिर मम्मी बंटी को समझाती है कि हर चीज अभ्यास से आती है और जगलर बनने के लिए क्रॉकरी से अभ्यास करने की जरूरत नहीं थी।

नमस्कार, मैं हूं सुरेश वाडकर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पे। आप सब मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें और गुनगुनाते रहें।

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है सातवीं जमात की उर्दू की मुआविन दर्सी किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल नज़्मों पर मुश्तमिल प्रोग्राम।

इस प्रोग्राम में पेश खदमत है एक नज्म, उन्वान है ये दुनिया हसीन है, शायर है जानिसार अख्तर।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल अच्छे होंगे और हमेशा की तरह बाल संसार इस कार्यक्रम में हम लोग पाठ्यक्रम के हिसाब से अगर आपको दिखाए बताएं तो हम लोग पिछली बार विशेष बच्चों की मनोभावनाओं को कैसे समझा जाए इस पर बातें चल रही थी। आज भावनात्मक अभिव्यक्ति में सहज सहमति की स्थिति कैसे बना रखें, बच्चों के स्वास्थ्य और भावनात्मक विकास के लिए हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान देना, इस विधि को समझने की कोशिश करेंगे आज। और हमारे आज के विशेष मेहमान जो हमें विशेष बाल मनोवैज्ञानिक है, बिहेवियरल साइंटिस्ट है, तो उनसे हम लोग बातें करते हैं और वो अपनी मनोस्थिति के साथ साथ बच्चों के बाल मन की बातें हमें सुना रहे हैं। डॉक्टर अजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं, तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर अजय शुक्ला जी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय भाई जी।
0: जी कैसे हैं डॉक्टर अजय शुक्ला जी आप?
1: बहुत अच्छे से, बहुत आनंद में, ब्लेसिंग्स आपके।
0: जी तो अभी हम लोग आज कोशिश करेंगे कि बच्चों के स्वास्थ्य भावनात्मक हेल्दी इमोशंस के विकास के लिए क्या करना है, किस तरह से इस पे काम करना है।
1: बहुत सामूहिक प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इमोशंस को लेके पेरेंट्स कई बार काफ़ी सतर्क भी होते हैं और वो प्रयास करते हैं कि बच्चों की जो भावनाएं हैं उनको हमेशा ध्यान में रखा जाए और ख़ासकर उस स्थिति में जब वो बहुत लॉजिकल होते हैं, लेकिन लॉजिक के साथ में उन्हें लगता है कि कुछ ऐसी इमोशंस हैं जो कहीं ना कहीं हाइड हो जा रही हैं, तो वो भावनात्मक अभिव्यक्ति कई बार करने के पहले सोचते हैं कि जो मैं एक्सप्रेशन करने का प्रयास कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इससे मेरे माता पिता कहीं आहत तो नहीं होंगे। माने वहाँ वो स्वयं के साथ साथ में अपने गार्जियंस का प्रोटेक्शंस भी कर रहे हैं या टीचर से कोई इमोशंस वो शेयर करते हैं, तो ये सब बातों का वो ध्यान रखते हैं। लेकिन बड़ों को कई बार लगता है कि जो इमोशनल बैकग्राउंड है इनका वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं है और होगा भी नहीं क्योंकि वो बालमन है। तो क्या हम बड़े उस स्थिति में स्वयं को स्थित रख पाते हैं कि वो जो मनोभाव उनका आ रहा है उसको हम केयर भी कर लें और भले ही उस पर जो हमारी क्रिया या प्रतिक्रिया है वो त्वरित फॉर्म में नहीं हो, कुछ समय के बाद हो जाए, लेकिन मनोभावों को बहुत एकाग्रचित होकर अगर सुन लिया जाए तो बच्चों को एक मन में फीलिंग होती है कि हमें बड़ों ने सुना है, क्योंकि वो इस अभिव्यक्ति के पूर्व अपने माता पिता या शिक्षक गणों या अपने बड़ों का मूड भी देखते हैं। कई बार वो देखते हैं कि सुबह से शाम की दिनचर्या में माता पिता थके हुए हैं या ऑफिस के कार्यों में वो बिजी हैं, तो वो तमाम संभावनाओं को एक्सप्लोर करने का प्रयास करते हैं और वो सोचते हैं कि जब वो बहुत शांति में हैं और मेरे से कहीं संवाद कर रहे हैं, भले ही वो होमवर्क के विषय में हो, आज की क्लास में जो कुछ भी हुआ उसका फीडबैक को ले रहे हों, तो उसी समय बच्चे बड़ी सहजता से अपने मनोभावों को शेयर करते हैं। और कई बार मैंने देखा कि वो मनोभाव छुपा लेते हैं और एक परिवार में मेरा जाना हुआ तो वहाँ पर उनके बच्चों के गार्जियन ने बताया कि हमारे बच्चे या मेरा बच्चा है जो है वो डायरेक्ट मेरे से नहीं कहता है, तो वो उन्हीं के ड्राइंग रूम में एक जगह पर अपनी कुछ जो विशेष होती हैं, उनकी इच्छा होती है, डिज़ायर होती है, कई बार उनको कुछ स्थूल चीज़ें पढ़ाई लिखाई के संबंध में चाहिए होती हैं, लेटेस्ट गजट हैं वो चाहिए होते हैं, तो वो अपनी अपेक्षाओं को धीरे से वॉल पर लिख देते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये देखिए मेरे बेटे ने ये लिखा हुआ है और ये डायरेक्ट नहीं कहता है, या इसको जो भी हमारी परिस्थितियों का अंदाज़ा होगा उसके हिसाब से हम हर्ट नहीं हों, और ये भी लिख देता है कि जब भी समय मिले या परिस्थिति अनुकूल हो तो ये हमें हमारे मनोभावों को पूरा करने का प्रयास कर देना। तो ये मुझे देखने के बाद में, हालांकि मैं काफ़ी भावुक भी हो गया उस समय, लेकिन ये भी मैंने पाया कि ये हो सकता है कि बच्चा दिखने में हमें बाहर रूप से छोटा दिखाई दे रहा है, उसकी आकृति को हम देख रहे हैं, लेकिन है तो उस शरीर में एक आत्मा, तो एक आत्मा जब एक शरीर के साथ होती है तो वो जीव आत्मा होती है और जीव आत्मा अपने वेग संवेग मनोभावों को अपनी शैली के साथ में प्रस्तुत करती है और ये ध्यान रखती है कि कोई हर्ट भी नहीं हो और हमारी अभिव्यक्ति सहज रूप से हो जाए और वो स्वीकार्य हो। जी
0: बिल्कुल डॉक्टर अजय जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि कैसे हम बच्चों की भावनाओं को समझे, इस विषय पर बातें चल रही है, उनकी अभिव्यक्ति को समझने की कोशिश करें, ये आपने बताया। अब सबसे पहली बात आती है कि स्वीकृति और समर्थन का माहौल बनाना, तो ये कैसे हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में ये चीज़ें शायद कम होती जा रही
1: है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ।
0: जी जी,
1: पहला जो दृष्टिकोण होता है कि वो एक्सेप्टेंस में चली जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो जहाँ आपने बहुत अच्छी लिसनिंग किया है तो वहाँ उन्हें एक ट्रस्ट एंड बिलीव सिचुएशन क्रिएट होती है कि और संभावना लगती है बच्चों को कि आज मेरी बात को बड़ों ने सुना है, तो ये जो एक्सेप्टेंस है यही धीरे धीरे सहमति में बदलेगी, और भले ही इसमें समय लग सकता है लेकिन उनकी भावनाओं पर ध्यान रखा जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि जिन भावनाओं को बच्चों ने प्रस्तुत किया है और उसके पहले अगर किसी पारिवारिक स्थितियों में माहौल क्या रहा है, वहाँ भी बच्चे इस बात को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हम जो कुछ कहते हैं उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया क्या हो रही है, तो वो भी उनके ऑब्जर्वेशन में रहता है। और बड़े भी देखते हैं कि पिछली इनकी इमोशंस को हमने अगर फुलफिल किया है और कंटिन्यू अगर हम करते जाते हैं तो नई नई इमोशंस हमारे सामने आएंगी। बात यहाँ पर इमोशनल बैकग्राउंड पर जाके किसी वस्तु या किसी सामग्री की उपलब्धता तक सीमित नहीं है, आवश्यकता इस बात की है कि बच्चे के द्वारा जो कुछ भी अभिव्यक्ति की गई है वो किन संदर्भों में है। उदाहरण के लिए कई बार बच्चों को अपनी जो आवश्यकता है अर्थात किताबें हैं, पढ़ाई के संबंध में कुछ और रेफरेंसेस हैं, वो अगर चाहिए और उसमें थोड़ा सा उनका जिद या जुनून ये अभिव्यक्त होता है कि ये अगर कम समय में उपलब्ध हो जाता है तो आगे उन्हें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा और अपनी स्टडी को वो एक शेप दे पाएंगे। दूसरी स्थिति यह होती है कि जब भी बच्चा अपने स्वाध्याय या अध्ययन में लीन है और उस स्थिति में उसको लगता है कि मेरे पास में सेकंड ऑप्शंस क्या है। सामान्यतः से अभी वर्तमान परिवेश में या परिदृश्य में आप देखें तो पढ़ाई पर दबाव है बच्चों को और बहुत अधिक नंबर लाने का जो एक निरंतर उनको कमेंट किया जाता है और वो कमेंट में जो फ्लक्चुएशन है वो कई बार पॉजिटिव और नेगेटिव और कई बार बहुत स्ट्रेसफुली होता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे ये सोचते हैं कि अभी जो एक्सेप्टेंस हो रही है वो रियल में फुलफिल होगी या नहीं होगी, या जो ये लोग दावा कर रहे हैं कि हम इसको पूरा कर देंगे, ये करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे संदेह के वातावरण में भी बच्चे रहते हैं और उनको मन में लगता है कि भविष्य किस स्थिति में है। हालांकि वो अंधकार की फीलिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसी परिवेश में मुझे सब कुछ मिलना है। तो ऐसी स्थिति में एक सेकंड विकल्प है जिसमें हम बच्चों की भावनाओं की रक्षा कर सकते हैं और वो विकल्प है कि पढ़ाई के अलावा अगर खेल या अपने मनोरंजन की कोई सामग्री वो डिमांड करते हैं तो उसे हम इसलिए प्रदान करें क्योंकि पढ़ाई के अतिरिक्त जो हॉबीज है उनकी, भले वो इंडोर गेम की हो या आउटडोर गेम की हो, उस समय ब्रेन को एक रिलैक्स मिलेगा, इमोशंस को एक सपोर्ट मिलेगा और उनको खेलकूद की गतिविधियों में शामिल होने के लिए जो आवश्यक सामग्री और वातावरण है वो भी हम प्रदान कर देते हैं। तो पढ़ाई और सेकंड ऑप्शन आपने दे दिया तो इससे हम अपने बच्चों की रक्षा भी कर सकते हैं कि किसी अदर इमोशंस की तरफ वो टर्न नहीं हो। जी,
0: बहुत अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लग रहा है कि हमारे सभी श्रोताओं को ये बात बिल्कुल समझ में आ रहा है कि कैसे हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत और फिर हम लोग बातें करेंगे इसी विषय को लेकर। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: संसार। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में। और आशा करूंगा जैसे कि हम सभी लोग बातें कर रहे थे स्वीकृति और समर्थन का माहौल बच्चों को कैसे बना के दे, तो इसमें आता है कि खुला संवाद की बात, बच्चों के साथ उनकी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करना महत्वपूर्ण बताया गया है। तो अजय जी, डॉक्टर अजय शुक्ला जी, आप क्या समझते हैं, इसको कैसे हम लोग समझें और इसके ऊपर कैसे काम करें?
1: बहुत अच्छी बात है और बाल संसार का ये पूरा आयोजन निश्चित तौर पर एक बड़ी दृष्टि और दृष्टिकोण को निर्मित करने में मददगार साबित होगा। इसी आशा को लेते हुए जब आपके प्रश्नों का मैं जवाब दे रहा होता हूँ तो उस समय बच्चों के जीवन के कई पक्ष मेरी आंखों के सामने एक रील की तरह घूम जाते हैं और कई बार उनकी काउंसलिंग करते समय इस प्रकार की मनस्थितियाँ क्रिएट होती हैं कि कैसे बच्चों की मदद की जाए। बाह्य तौर पर या आंतरिक तौर पर हम लोगों को लगता है कि कुछ उपलब्ध करा देना उनके लिए एक बहुत बड़ी संतुष्टि की स्थिति होगी, जबकि वास्तविकता ये है कि हम भले ही आज स्वयं की बुद्धिमत्ता की बात करते हैं या सामाजिक बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, लेकिन बच्चों के मन में जो इमोशनल इंटेलिजेंस को लेके बातचीत होती है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को लेके बातचीत होती है, तो उस स्थिति में बच्चों को लगता है कि हम जो कुछ भी व्यक्त कर रहे हैं उस अभिव्यक्ति के प्रति जो हमारा कन्वर्सेशन बड़ों के साथ हो रहा है उसमें हमें क्या बड़े संतुष्टि प्रदान कर पाएंगे। सेटिस्फेक्शन एक बहुत बड़ा मूल्य है, कंटेंटमेंट इज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस की बात की गई है, संतोषम परमम सुखम। तो हर बार बच्चों को अपने बड़ों से उनकी सहमति या मदद की अपेक्षाओं के साथ साथ में एक संतुष्टि भरा माहौल अगर प्रदान कर दिया जाए और ये कह दिया जाए कि जिस चीज़ की आप अपेक्षा रख रहे हैं भले ही वो वैचारिक संवाद की हो, भावनात्मक संवाद की हो, हम इन तमाम स्थितियों के बीच में एक साथ कम से कम प्रतिदिन एक अवसर प्रदान जरूर करेंगे, भले ही वो बच्चों के साथ आप कितने भी व्यस्त हों, सुबह अगर आप नाश्ता नहीं कर पा रहे हैं, दिन में भोजन नहीं कर पा रहे हैं, रात को अगर आप भोजन कर रहे हैं, तो तीनों ही स्थितियों में एक समय, भले ही वो रात्रिकालीन बेला हो, उस समय बच्चों के साथ में भोजन अगर आप करते हैं और उनको ये मौका देते हैं कि कोई बात वो अपने बड़ों के बीच में रख सकते हैं, तो वहाँ भी एक भावनात्मक संतुष्टि उत्पन्न होगी और यही भावनात्मक संतुष्टि बच्चों के जो संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की बात हम बाल मनोविज्ञान के माध्यम से कर रहे हैं उसमें मदद करेगी। क्योंकि जहाँ बच्चा हेजिटेट कर रहा है, संकोच कर रहा है अपने बड़ों से बात करने में, वो ओपननेस क्रिएट होगी और वो संवाद अपने बड़ों से वहाँ कायम भी कर पाएगा और भविष्य में ये जो संवाद डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर देखेंगे कि उस बच्चे के अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल है और जो एक निडरता क्रिएट हुई, तो ये एक बौद्धिक कौशल भी बच्चे के साथ में विकसित हो सकेगा अगर हम प्रतिदिन उस बच्चे को अपने एक बाल संसार को जोड़ने का प्रयास करते हैं। जी
0: जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी लग रही है, जहाँ पर हम भावनात्मक अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं और इसमें हमने दो पहलुओं को समझने की कोशिश की, जहाँ पर खुला संवाद यानी ओपन डायलॉग्स हो और दूसरा हमें बच्चों की हर चीज़ को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी, शुरुआत में हमें स्वीकार करना है और एक बार बच्चा हमारे अनुकूल चीज़ों को स्वीकार करते हुए हमारे साथ दोस्ती हो जाए तो फिर हम बच्चे को जो है कुछ चीज़ें सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा ये चीज़ें करने में।
1: जी,
0: तो आइए सहानुभूति को कैसे समझें हम लोग, क्या मैं अपने अंदर सहानुभूति लाऊं या बच्चों के अंदर सहानुभूति को देखना है या कैसे, क्योंकि कई बार ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे ऐसे भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, एक्चुअली में उसको ठीक से समझने में भी मुश्किल लगता है, तो आप बच्चों के इस मनोविज्ञान को समझने में सहानुभूति कहाँ किसमें कब देखना है?
1: देखिए, बहुत अच्छा लगता है कि जब हम सहानुभूतिपूर्ण बिहेव की बात करते हैं तो आप देखें कि हमारे वातावरण में, अर्थात बड़े जब अपने कार्यालयीन क्षेत्र में या फिर व्यावसायिक क्षेत्र में जब कार्य कर रहे होते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा कि वहाँ भी चाइल्ड इमोशंस काम करती है, अर्थात बड़ों के अंदर जो बाल मनोविज्ञान है वो निरंतर कार्य करता है और वो भी चाहते हैं कि जिन अपेक्षाओं के साथ में या जिस अनुकूलता की जो उन्होंने कामना कर रखी है अपने जीवन में, तो दिन भर की गतिविधियों में उन्हें भी जब स्नेह, प्यार, दया, करुणा, सहानुभूति, ये मानवीय मूल्य हैं, चेतना के को चैतन्य बनाने में मददगार होते हैं, और इन मानवीय मूल्यों के साथ जब आपका दिन भर गुजरता है तो आपको भी ये फीलिंग होती है कि यही सारे मानवीय मूल्य हमारे बच्चों की भी उनकी मनस्थिति को लेके अगर हम थोड़ा सा कार्य करने का प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो हमारा पारिवारिक दृष्टि और दृष्टिकोण है वो सकारात्मक बनेगा और हम सार्थकता के परिवेश में गतिशील हो पाएंगे। मैं सार्थकता इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार चीज़ें पॉजिटिव हम कर देते हैं या हो जाती हैं, लेकिन उसका जो परिणाम है उस परिणाम तक जब हम पहुँचने की बात करते हैं तो उसमें एक साथ पूरी की पूरी स्थिति टीम की हो जाती है, अर्थात टीम वर्क की बात हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम छोटी सी बात रखें कि अगर परिवार ने कुछ तय किया है कि ये सारा का सारा हम एक हफ्ते के अंदर मैनेज कर लेंगे या जो भावनाएं हैं उसको एक साकार रूप दे देंगे, तो उसके लिए अगर हम सप्ताह में एक दिन अर्थात रविवार का दिन चयन कर सकते हैं जहां आपकी भी छुट्टी है और बच्चों को लेके आप किसी पार्क में या किसी मंदिर के प्रांगण में जहां एनर्जी का जो लेवल है वो हाई फ्रिक्वेंसी पर रहता है, और उस स्थिति में आप देखें तो वहाँ बच्चे अपनी भावनाओं को शेयर भी कर सकते हैं, समय भी आपको मिलेगा और एक नवीन वातावरण के साथ में उनका संवाद हो सकेगा, प्रकृति से जुड़ पाएंगे और वहाँ समाधान की क्रियाएं यथावत रूप से विधिवत रूप से संपन्न हो पाएंगी। जी
0: जी डॉक्टर राजेश शुक्ला जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी आपकी बातें ठीक से समझ में आ रही हैं और बहुत अच्छा आपने सहानुभूति के बारे में बताया। अब सकारात्मक भावनाओं को कैसे हम लोग प्रोत्साहित करें, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बहुत अच्छी बात है, जीवन की प्रक्रिया में सकारात्मकता एक बहुत बड़ा मूल्य है और इसकी ओर बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमें छोटे छोटे उपाय करने होंगे। कई बार डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनको इन्वॉल्व करना होगा। उदाहरण के लिए कई बार आप भी देखते हैं कि बहुत सारी स्थितियों में आप बहुत व्यथित रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो अपने जीवन में कुछ नया परिवर्तन करने के लिए, हालाँकि सुनते समय बड़ा अजीब लगेगा और कई बार हम बड़ों से संवाद करते हैं और बड़े बोलते हैं कि अभी इतना समय कई घंटे हमने आपके साथ निकाले हैं और सुबह से शाम तक की चर्चा की है, लेकिन क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि हम लोग बड़ों मिलके और बहुत सारी स्थितियों में बच्चों की मदद लें या बच्चों की तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व करें? तो वो यहाँ पर मैंने उनसे कहता हूँ कि आप अगर एक डायरी मेंटेन करते हैं और उस डेट और उस ईयर की डायरी है और उस तिथि में बैठ के उनसे बातचीत करते हैं कि हम लोगों ने ये जो जीवन जिया है, भले ही वो माता पिता के रूप में हो, तो इसमें बेटा आपके हिसाब से आज के रेफरेंस में क्या चेंजेस करना चाहिए? तो जब पार्टिसिपेटिव मोड में आप बात करते हैं, सहभागिता आप दर्ज कराने की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि एक बच्चे के अंदर जो ऑब्जर्वेशन का लेवल है, परसेप्शन का लेवल है और वो चीज़ों को फैमिली के माहौल से सकारात्मकता से कैसे समझता है, और जब वो आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन के लिए कुछ उपाय वहाँ सजेस्ट करने का प्रयास बच्चे करते हैं और उनको आपने नोट डाउन कर लिया, तो वहाँ पर उनको एक बड़ा मनोबल मिलता है। और ये नहीं कि आपने उनको जन्म दिया है तो वो छोटे रहें या वो बड़े नहीं बने, हम सब चाहते हैं, जैसे माँ बच्चे को गोद में ले लेती है, पिता कंधे पर बैठा लेते हैं और उद्देश्य क्या रहता है कि मेरे से भी उच्चता ये जीवन में ग्रहण करें। तो ऐसी स्थिति में जब अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आप बच्चों की सहभागिता लेते हैं, उनकी कार्यप्रणाली से उनके अनुभवों को भी जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम बच्चों को विकसित कर रहे हैं तो जो कुछ भी विनियोजन किया गया है, जो भी समय या धन और हम एक लंबा काल उनके साथ गुजार रहे हैं, तो उसका जो परिणाम है वो भी आपको देखने में लगेगा कि ये जो बच्चे हम आज हमें सजेस्ट कर रहे हैं, ये बातें कई बार हमारे संज्ञान में नहीं होंगी और एक नया चिंतन वहाँ से शुरू होगा कि बच्चों के मन में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, ये एक नई मूल्य के साथ में गतिशीलता पैदा होगी और वहाँ वो बच्चा समझ पाएगा कि जीवन में सकारात्मकता का क्या महत्व है। जी
0: डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि कैसे बच्चों को और सकारात्मक भावनाओं को प्रोत्साहित करें, इस पर आपने बताया। अब कई बार चीज़ें जो है हमारे हाथ में होती हैं, लेकिन कुछ कुछ हमारी नकारात्मक भावनाओं से निपटने में हमें टाइम लगता है, तो इसके लिए हमें किसकी मदद और कैसे लें?
1: कई बार हमें लगेगा भाई जी कि हमारे सामने बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो रही है। उदाहरण के लिए माता पिता चाहते हैं कि बच्चे केवल स्टडी में कंटिन्यू लगे रहें, वो गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करें, या अचानक कहा गया कि स्कूल या कॉलेज में कि नहीं अभी आपको फिल्म देखने जाना है, और वो ग्रुप में आपको लेके जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चों को हमने एकांगी बना दिया, तो कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चा बड़ी सिटी में पढ़ रहा है या बड़ी सिटी के आसपास है, प्रतिदिन वो जा रहा है, उसको कुछ फिजिकल भी प्रॉब्लम आई है, उसके बावजूद भी उसने अपने आप को वहाँ मोटिवेट किया है, तैयार किया है, और वो उस वातावरण में जाने के बाद में अचानक वहाँ पर ये बात आती है इंस्टीट्यूट की ओर से कि आज हम कुछ नई जगह विजिट करेंगे, तो वहाँ पर हमें ऐसा लगता है एक संदेह या एक भय हमारे अंदर काम करता है कि मेरा बच्चा उस वातावरण में जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। भाई, आपका बच्चा घर से बाहर 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जा रहा है, आ रहा है, प्रतिदिन आप उसको भौतिक रूप से या भौतिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं, और ऐसे में अगर बच्चे ने कहा कि नहीं मुझे नहीं जाना है, या मैं उस प्लेइंग मोड में नहीं जाऊंगा, पिक्चर देखने नहीं जाऊंगा, या सामाजिक गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, तो अगर हमने शुरू से उसको डिफाइन कर दिया कि ये पाप है या पुण्य है, तो उसके सामने एक बैरियर क्रिएट होगा। हमें बताना होगा कि जिस व्यवस्था के तहत में, इंस्टीट्यूशन के तहत में आप जा रहे हो, तो सारी पूरा स्टाफ जाएगा, टीचिंग स्टाफ जाएगा, सारे स्टूडेंट जाएंगे, और वो वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे, भले ही वो कुछ गेम्स प्ले कर रहे हों, भले ही वो संगीत का कोई माहौल हो, लेकिन उस समय उस वातावरण के माध्यम से आपको कुछ सीखना होगा। और वो वातावरण में ज़रूरी नहीं है कि आप सहभागिता दर्ज करें, ये सारे बच्चे वहाँ सहभागी नहीं होंगे, लेकिन बहुत आनंद का उत्सव है तो आप ताली बजाएंगे। तो क्या ताली बजाना या आपके द्वारा मुस्कुराना या खिलखिला के हंस लेना, क्या ये व्यक्तित्व विकास का हिस्सा नहीं है? अगर आप प्रतिदिन इंस्टीट्यूट से केवल एकांगी होकर और पढ़कर घर पर आ जाते हैं, और इसके बाद अचानक 5 साल के बाद में, 3 साल के बाद में संगठन में काम करने का मौका मिलेगा, तो वहाँ जो आपके मन में डूज और डोंट डूज है, ये करना है या नहीं करना है, इसका द्वंद्व तो वहाँ ख़त्म हो जाएगा ना। आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो केवल हम जब समूह में या शैक्षणिक गतिविधियों के अलग अलग स्वरूप में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ पर केवल एक पक्ष नहीं बल्कि बहुपक्षीय आयाम से बातें होती हैं, और वहाँ बच्चों को लर्निंग इश्यूज प्रैक्टिकल डायमेंशन से मिलते हैं, क्योंकि वो केवल स्टोरी नहीं है बल्कि वो वहाँ स्टोरी जनरेट हो रही है, और उस स्टोरी के लाइव स्वरूप में वो बच्चा सहभागी बन रहा है, और वहाँ लर्निंग इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं, और ऐसी स्थिति में जब वो चीज़ों को समझता है या सीखता है, तो उसके मन में नकारात्मकता से लड़ने की ताकत आती है और सकारात्मकता के पद पर चलने की उसको अंदर से हिम्मत मिलती है, और वो हिम्मत बाई इंजेक्शन नहीं बल्कि नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, सामूहिक गतिविधियों के द्वारा संपन्न होती है। ऐसी स्थिति में माता या परिवार या आसपास का जो माहौल है सामाजिक, उनका दायित्व बनता है कि बच्चे को हम संपूर्ण रूप से विकसित होने के आयाम में सम्मिलित भी करें, उन्हें इनवाइट भी करें और प्रोत्साहित भी करें, जिससे कि सीखने की अलग अलग विधाओं में बच्चा जा सके और अपने आप को वो कहीं ना कहीं परफेक्शन की स्थिति में या पूर्णता की ओर बढ़ने के लिए स्वयं को तत्पर कर सके, तैयार कर सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर अजय शुक्ला जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बता दिया, और मुझे लगता है कि आज के इस एपिसोड में हमारे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपने दे दिया है, बच्चों के भावनात्मक जो स्वरूप को है उसे कैसे हम लोग ठीक से समझे और उसके ऊपर काम करें, और सहज सहमति को कैसे हम लोग अपने अंदर निर्माण करें। तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपने बताया है, और मुझे लगता है कि सकारात्मक नकारात्मक शायद बच्चों को इतना बड़ा जो पहलू है वो समझने में उनको टाइम लगेगा, लेकिन आपको जो भी लगता है बच्चा जैसा भी है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, उसे करने दीजिए और फिर बाद में उसको सीखने भी दीजिए। हम लोग तुरंत ही उसको अगर गाइड करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसकी जो सीख है खुद की वो शायद रुक सकती है,
1: भावनात्मक स्वतंत्रता वहाँ छीन जाएगी,
0: वहाँ उसकी छीन जाएगी, इसीलिए हमें थोड़ा सा आज़ादी दें, और अगर आप करना चाहें तो उसको ऐसा माहौल क्रिएट करके दे सकते हैं, वो आपके हाथ में।
1: जी बिल्कुल सहमत हूँ।
0: वो चीज़ें अगर आप घर के अंदर, आपका व्यवहार, आप बातें कैसे करते हैं, आपका स्टाइल, बच्चा ज़रूर आपसे सीखेगा, तो इसीलिए आप अगर अच्छे हैं तो निश्चित तौर पे आप उस माहौल में रहेंगे और बच्चा उसी माहौल से वो सारी चीज़ें सीखेंगे। एक हाथ 1% हो सकता है कि वो आपके हिसाब किताब के लिए आया होगा, तो वहाँ आप कितना भी अच्छा माहौल देगा तो वो उदम ही मचाएगा, तो वो चीज़ें अलग बात है। किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए हम ये एपिसोड नहीं कर रहे हैं, हम जनरल एपिसोड कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसा होता भी है, तो वहाँ पर डॉक्टर अजय शुक्ला जैसे काउंसलर्स जो है आपको हेल्प करेंगे, तो आप डॉक्टर अजय शुक्ला जी से संपर्क कर सकते हैं इस विषय को लेकर और उनसे बात भी कर सकते हैं। कभी आपको लग रहा है कि कहीं बार हम लोग सब कुछ करने के बावजूद भी वो चीज़ें नहीं हो रहा है, तो ऐसा भी सिचुएशन होता है। कई बार हम बीमार हो जाते हैं तो बहुत बार इलाज करते हैं, सभी डॉक्टर्स को दिखाते हैं, लेकिन वो हम ठीक ही नहीं होते हैं। और हो सकता है कि बाई चांस आप साल भर के बाद जो है वो आपका हिसाब किताब पूरा हो गया और आपका जो दर्द है वो छोटे से किसी एक्सरसाइज से ठीक हो गया, आप योग कर लिया, सब कुछ ठीक हो गया, साल भर से बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था।
1: जी, जी, जी।
0: तो ये भी क्या है कि साल भर आपका अकाउंट था, वो अकाउंट पूरा हुआ और जब आपने योग सीखा तो फिर वो सेटलमेंट हो गया।
1: बहुत
0: तो इस तरह की भी चीज़ें आती हैं, तो हमें ये सारी चीज़ों को ओवरऑल होलिस्टिक रूप से सोचना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि भाई ये चीज़ें क्यों नहीं हो रहा है, वहाँ पर अटक नहीं जाना है, अलग अलग पहलुओं को देखना है और ट्रायल एंड एरर जिंदगी का एक हिस्सा है, उसे स्वीकार करना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, एंड डॉक्टर अजय शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वो हमारे साथ जुड़कर इतनी अच्छी बातें जो है बाल संसार के बारे में बताते रहते हैं। और मैं चाहूँगा डॉक्टर अजय शुक्ला जी आपका नंबर भी दीजिए, अगर हमारे कोई श्रोता आपसे जुड़ना चाहे तो बिल्कुल आपसे जुड़े।
1: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, 9131099097
0: एक बार फिर से बोलिए,
1: 9131099097
0: तो ये डॉक्टर अजय शुक्ला जी का नंबर है। आशा करूँगा आप इसे रिपीट करके भी सुन सकते हैं, आराम से लिख लीजिए और फिर आपको लग रहा है कि डॉक्टर अजय जी से बात करना है तो बिल्कुल बात कीजिएगा, आप मैसेज करिए, मैसेज के बाद फिर आप कॉल करिए। तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, बाल संसार में फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, कुछ नई इंटरेस्टिंग बातें लेकर आपसे जुड़ेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: वो पहाड़ देख रहे हो?
1: हाँ, कितना सुंदर है।
0: और उनको देख रहे हो?
1: वो तो रतन मोहिनी दादी है ना।
0: वो इस पर्वत से भी ज्यादा अपने नियमों पे अडिग, उसकी चोटी से भी उच्च स्थिति वाली है। उस पर्वत से जैसे सूर्य दिखाई देता है ना, ऐसे ही दादी जी ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा से मिलवाती है।
2: ऐसी असीम शक्ति जिन्होंने समाज कल्याण में समर्पित कर दिया अपना जीवन, आइए सुने उनकी कहानी। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हर शुक्रवार रात 9:30 बजे कार्यक्रम शक्ति वंदन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
3: भैया आपको पता है, मैं बचपन में बहुत स्लेट का वो चौक होता है ना, वो खाता था, और मेरे को कल स्लेट और उसके चौक मिले। तभी मेरे को याद आया कि मेरी मम्मी कहती थी जब मैं छोटा था, अगर तू वो चौक खाता है तो तू कुत्ता बन जाएगा। मेरे को अभी याद आया वो।
4: और तुम क्या बने अभी तक?
3: नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं।
5: अरे भाई क्या बात हो रही है, यहाँ पे इतनी मजेदार, जो सब लोग हंस रहे हैं।
4: वो दीदी रोशन बता रहा है कि वो बचपन में चौक खाया करता था।
5: वैसे बचपन में ऐसी बहुत सारी बातें होती है ना जो हमें लगता था ये सच होता है, लेकिन बड़े होते हैं तो पता चलता है अरे ये तो कुछ और ही बात है।
3: उनको पाल बनाया गया है।
5: हाँ, मतलब बुद्धू बना, हम बुद्धू थे कितने, ऐसा लगता है कभी कभी ना। लेकिन बच्चों के साथ ऐसी बहुत सारी बात होती है क्योंकि हम बहुत छोटे होते हैं ना, हमें सब चीजें समझ में नहीं आती है, और बाद में पता चलता है कि सच क्या है, है ना। तो चलो क्यों ना आज ऐसे ही बातों के बारे में बात करते हैं जो हमें बचपन में सच लगती थी और बाद में समझ में आया कि वो सच
3: नहीं है।
5: नहीं है,
6: बनाया जाता है।
5: ओके, और कौन कौन आज बात करने के लिए है यहाँ पे बच्चों की दुनिया में?
4: हेलो, मेरा नाम वेदांत कुमार है।
3: हेलो दोस्तों, और मेरा नाम है रोशन और 10th क्लास में पढ़ता हूँ।
7: मेरा नाम है अमन और मैं 9th क्लास में हूँ।
8: मेरा नाम है शिवानी और मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ।
5: क्या बात है, तो शिवानी तो अभी बहुत छोटी है, लग रहा है उसको और ऐसी बातें पिता होंगी जो बाद में पता चलेगा अरे ये मैं क्या सोचती थी बचपन में। जैसे पता है मैं सोचती थी फ्रिज में लाइट कैसे जलती है, मुझे कभी समझ नहीं आता था।
8: मैं हल्का सा खोल के देखती थी, फिर मुझे पता चलता था कि उसमें एक बटन लगा हुआ है।
5: पता चलता था?
7: हाँ, मैंने एक बार ट्राई किया था फ्रिज को, कि जैसे हम फ्रिज खोलते हैं ना उसमें बटन होता है किनारे पे, पहले मुझे नहीं पता था, फिर मुझे मैजिक कैसे होता है, मम्मी बोलती थी मैजिक हो रहा है फ्रिज में, जब तुम लाइट खोलती उसको पता चल जाता है फ्रिज को कि तुम उसे खोलने वाली हो, इसलिए वो तुम्हारी लाइट जला देती थी।
3: फ्रिज के अंदर ही भगवान बैठे।
7: नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो फ्रिज को बोलती थी कि फ्रिज को पता चल जाता है कि तुम खोलने वाली हो इसलिए वो लाइट जला देती तुम्हारे लिए।
5: अच्छा, और आप लोग क्या सोचते थे?
4: दीदी मेरे को भी ये ख्याल आता था कि कैसे फ्रिज की लाइट अपने आप जल जाती है, दरवाजा बंद कर, फिर मैं थोड़ा थोड़ा दरवाजा बंद करता रहता था और ऐसे आँख एक आँख खोल के देखता था कब लाइट बंद हो गई, है बंद हो गई, कैसे हुई, कैसे।
7: हाँ दी, सच में ऐसा ही होता है।
3: मैं तो उसके थोड़ा सा खोल के देखता था, लाइट ऑफ हो जाता ऑन हो जाता, वो समझ में नहीं आया। फिर मैंने एक दिन एक मूवी देख रहा था, पता नहीं कौन से, उसमें आदमी चल के जाता है और जैसे ही पास में जाता है वो डोर खुल जाता है, मुझको भी ऐसे लगता था जैसे ही हम हाथ रखते हैं वो लाइट ऑन हो जाता है।
5: तो आप लोगों को कब पता चला कि भाई वहाँ पे बटन होता है या कैस वो टेक्नोलॉजी होती है, कब मालूम पड़ा, कितने बड़े थे?
7: मैंने बहुत बार ट्राई किया था, मतलब बचपन में तो नहीं कुछ पता चला था, जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई तब मैंने एक बार देखा था कि इसमें ये किस काम आता है, फिर मैंने उसको दबाया, जब फ्रिज खुली थी तो भी मैंने उसको दबाया तो लाइट बंद हो गई थी, तो मुझे पता अच्छा ऐसे बंद होती है लाइट फ्रिज की, जब वो दरवाजा बंद होता है ना तो वो पुश होता है तो उस वजह से लाइट बंद हो जाती है, और जब खुलता है तो वो हट जाता है तो इसलिए लाइट खुल जाती है।
5: आपको कैसे पता चला रोशन?
3: मैं तो करीब 8 साल का था, मैं ऐसे खोला था, खोलने के बाद ऊपर जूस रखी हुई थी, उसको उठाने के लिए उठाया और वो बटन दब गई, मुझे लगा ये कैसे हुआ, वापस से दबाया ऑफ हो गया, मैं ऐसे खेलता था टिक टिक टिक टिक मजा आता था।
5: वेदांत को कैसे पता चला?
4: दीदी एक्चुअली मेरे को ये बात पता नहीं थी कि कैसे होता है, और मैंने चिंता भी नहीं की क्या करेंगे पता करके, अपने को खाने से मतलब है। लेकिन ये चीज जो है लाइट वाली, मैंने सुना होगा कोई अंदर सिस्टम होगा दरवाजे में कुछ वैसा बना होगा, मेरे को बहुत लेट पता चला, क्लास 8th में पता चला कि अच्छा ये वो चीज है जिससे ऑन ऑफ होता है, मुझे लगता था कि कोई और चीज होगी।
5: और रोशन को तो ये लगता था चौक खाने से कुछ और ही बन जाएंगे।
3: और मेरे मम्मी को, मम्मी ऐसे बोलते थे मेरे को।
5: और आपको कब पता चला कि पहले डरते थे क्या जब ऐसे चौक नहीं खाते थे? फिर
3: मेरे को तो मन तो होता था यार काश खा पाता मैं
5: फिर, लेकिन लगता होगा
3: हाँ मैं कुत्ता नहीं बनूंगा, मेरे को इंसान रहना है।
5: तो इसलिए नहीं खाते थे फिर?
3: खाता तो था तभी।
5: तब भी खाते थे? फिर डर नहीं लगता था कि अरे मैं फिर
3: डर डर के खा जाते एक गुड़ गुड़ के
4: गुड़ गुड़ के खा लेता था।
7: हाँ ये सोच के खाता होगा,
5: एक खाने
3: की तो खा रहा हूँ मैं, खा लेता हूँ
4: आधा बनूंगा से पूछ निकलेगी।
5: तो कब पता चला कि ऐसा नहीं होता?
3: फिर तो मैंने ये एक बार मतलब मेरे मामा के साथ बोला था, मतलब मम्मी ने बोला था ये चौक बहुत खाता है, तो मैंने मामा को बोला कि मामा ऐसे बोलते हैं कि चौक खाने से मैं कुत्ता बन जाऊंगा, तो फिर मामा ने समझा ऐसे कुछ नहीं होता।
5: आपने मामा की बात मान ली?
3: हाँ मान ली, बस अब मेरे को चॉकलेट का मतलब चॉकलेट क्या चौक खाना था, बस मिल गया
5: रीजन
3: मिल गया, मामा ऐसे बोलते इसीलिए मैं खाऊंगा खा लेता हूँ,
5: डर खत्म हो गया। अच्छा और कोई ऐसी बातें याद आती?
7: मुझे एक बार पहली बार जब मैंने कॉटन कैंडी खाई थी ना, तो मुझे पता नहीं था कॉटन कैंडी है, पहले मैं बोला जाता था कि बुड्ढी के बाल है, और सीरियसली मुझे सच में लगता था कि बुड्ढी के बाल है,
5: पिंक कलर के बुड्ढी के बाल,
7: पिंक कलर के भी थे ना व्हाइट कलर के भी होते हैं, तो व्हाइट वाली पहले मैंने खाई थी, तो मैंने और बोला बुड्ढी के बाल है, मैंने कहा सच में क्यों बुड्ढी के बाल है, मम्मा ने बोला हाँ बुड्ढी के बाल है, और उसमें थोड़ा फ्लेवर विलर डाल के इसे हमारे लिए बनाया जाता है, मैंने कहा बुड्ढी के बाल से ये कैसे बनता है, मुझे अब जाके पता चला कि ये सिर्फ चीनी से बनता है, वो भी बहुत पतली
4: बुड्ढी अपना बाल दे भी देती है, ये रख लो।
5: आप लोगों को भी ऐसे लगता है
4: ये लो खा के वापस कर
7: देना, वो बोलती थी कि बहुत सारी बुढ़ियों के बाल कलेक्ट होते हैं और फिर ये बनता है।
5: अरे बाप रे, शिवानी को भी ऐसे लगता था?
8: नहीं
5: लगता था
8: मेरे को, तो हल्का हल्का, मतलब मैं तो कुछ और ही बोलने वाली थी।
5: क्या बोलने वाली थी?
8: पता है ये मुझे बचपन में बोलती थी, तुम तो पैदा ही नहीं हुई थी, मैं तो तुम्हें ठेले से उठा के लाई।
4: तुम्हें रियलिटी का पता चली?
7: मैं मजाक करती थी इसके साथ,
8: मुझे ऐसे सच्ची में लगता था।
5: क्या लगता था आपको?
8: कि ठेले से उठा के लाई है,
5: कि आपकी बड़ी बहन आपको ठेले से उठा के लाई है।
8: फिर कैसे थी? तुम तो ठेले में डॉल पड़ी हुई थी, मैंने तुम्हें देखा तो मैंने कहा ये कौन सी अच्छी डॉल पड़ी है, फिर मैंने उठा लिया।
5: फिर आपको क्या लगता था, अच्छा लगता था कि बुरा लगता था?
8: मुझे बुरा लगता था,
5: बहुत बुरा लगता था। फिर मम्मी को पूछा नहीं आपने कि मम्मी?
7: मम्मा को भी
8: इतनी अक्ल नहीं,
7: मम्मा भी यही बोल रहे, मैं बोलती थी मम्मा को मम्मी ऐसे मजाक करते, मम्मी भी मेरे साथ इसी तरह बोलते थे, फिर बोलते थे।
5: फिर शिवानी को बुरा लगता था? फिर कब पता चला कि नहीं ऐसा दीदी तो हमें मुझे बहुत चिढ़ाने को बोल रही है?
8: मुझे तो एक साल पहले ही पता चला।
5: एक साल पहले पता चला कि दीदी ऐसे चिढ़ाती है मुझे। फिर दीदी को बोला कुछ नहीं?
8: बोला।
5: क्या बोला?
8: तुम तो मुझसे झूठ बोलती थी।
5: बताओ ये बहुत छोटे भाई बहनों के साथ ऐसे

0: ट्वेल्थ के बाद 16 क्लास भी होती है, इतनी सारी क्लासेस पढ़नी पड़ती हैं. मुझे नहीं पता था कि इतनी सारी क्लासेस होती है, ट्वेल्थ के आगे भी क्लासेस होती
1: है, कॉलेज होता है उसके बाद.
0: मम्मी कहती थी मैंने 16 तक पढ़ाई की है, मैंने कहा मुझे भी 16 तक पढ़ना पड़ेगा. बाद में पता चला कॉलेज को ही मम्मी मिला के 16.
1: हाँ, क्योंकि उस वक्त समझ में ही नहीं आता
2: कि 16 भी पढ़नी है, फिर उसको कॉलेज भी पढ़नी है. ऐसा
1: बाप रे, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी ना. जैसे हम लोग खाना नहीं खाते थे ना, खाना नहीं खाओ तो बोलते थे अरे जल्दी से खा लो नहीं तो चिड़िया खा लेगी.
2: हाँ,
0: और मैं कहता था खा लेने दो. मम्मी मेरे साथ भी कहती थी, कई सारे ऐसे चावल और दाल के ऐसे बना लेते थे बॉल्स, कहती थी ये वाला खा लो वरना कौवा ले जाएगा, ये वाला खा लो वरना मैना ले जाएगी ये. मैंने कहा आज खा ही लेने दो, मैना को मेरा पेट भर गया है.
1: डर नहीं लगता था मुझे, तो बहुत डर लगता था, मैं तो खा लेती थी जल्दी.
2: और पता है कभी कभी ना मम्मी जब खाना खिलाते हैं ना तो मतलब कभी कभी ये कहती ये तुम्हारे तुम्हारे नाम का, ये तुम्हारी बहन के नाम का गराई. अच्छा बहन के नाम को नहीं खाओगी? मैं फिर खा लेती. फिर कहती नानी का, अच्छा नानी मुझसे प्यार नहीं करती ये नहीं खाओगी? मैं नानी के. फिर नाना जी के नाम का, उससे करते करते मुझे पूरा खिला देती थी. और फिर लास्ट का बचता था, मैं सबको खा लिया नहीं कुछ बचा, कहो मेरे नाम का नहीं खाओगी? मैं वो भी खा लेती थी, पूरा खाना खत्म कर देती थी. अब तो मैं ऐसे नहीं करती,
1: रोशनी के साथ भी होता,
2: पहले खिलाती थी.
1: सबके पूरे फैमिली के नाम का खाना खाया है, शिवानी ने भी खाया.
2: हम लोग को ऐसे ही करती थी, मुझे इसी तरह खिलाती थी.
1: अच्छा,
2: मतलब मम्मी को, मम्मी मुझे खिलाती थी, मैं इसको खिलाती थी.
1: क्या बात है,
2: मुझे खुद को याद नहीं है.
1: और रोशन तब क्या लगता था, मम्मी के नाम का खाना है, पापा के नाम का भी खाना है, सबके नाम का खाना है?
3: मैं तो मम्मी खिलाते हैं, मैं बोलता हूँ मम्मी पेट भर गया. फिर मैं मम्मी पूछती है मतलब नानी का खाना खाना नहीं कहोगे? तो उनको लगता बुरा तो लगता होगा यार, बुरा खा लेते.
2: हाँ यही बात है, मुझे बहुत बुरा लगता था.
1: अभी नानी भी खा लेता था सबके नाम का.
0: दीदी मम्मी खिलाते थे, खा लेता था सबके नाम का. मेरे जानवरों के नाम ज्यादा लिए जाते थे.
1: जानवरों के नाम कैसे, मतलब
0: ये कौवा उठा के ले जाएगा, ये मैना उठा के ले जाएगी. ऐसा नहीं कि कौवे के लिए खा ले मैना के लिए खा ले. खा ले वरना कौवा ले जाएगा, ये खा ले वरना मैना ले जाएगी.
2: अच्छा.
0: ये शेर ले जाएगा.
3: शेर ले जाएगा,
2: शेर क्यों, शेर दाल चावल ले जाएगा.
0: और फिर पूछता भी नहीं था कि दाल चावल खाता है कैसे.
1: और सब खाना फिनिश कर देते थे कहीं शेर मेरा खाना ले जाए.
0: और दीदी एक चीज और है, मैं बताऊं?
1: हाँ बताओ.
0: एक चीज है जो सबको लगता था कि ऐसा होता है लेकिन ऐसा होता नहीं है. सब जैसे हम लोग कार्टून देखते हैं ना, शुरू में लगता है जैसे कार्टून की कोई दुनिया है.
2: हाँ नहीं, हमको भी डिज्नीलैंड. हाँ, मुझे भी
0: है. कोई बार्बी की जगह है, कोई शिनशैन की जगह है, कहीं डोरेमोन असली में है. ऐसे मुझे भी एक बार वहाँ जाना है, कोई प्लेनेट है उनका.
1: क्या लगता था रोशन, क्या लगता था?
3: मैं टीवी देखता था और क्रिसमस के टाइम पे सांता क्लॉस आते थे.
2: हाँ.
3: चिमनी से नीचे आते थे. हाँ. हमारे घर पे चिमनी नहीं है, अब मैं क्या करूँ? चिमनी बनाओ मेरे को, चाहिए चिमनी.
2: हाँ. हाँ, ऐसी चीज भी हम लोग भी करते थे कि सांता क्लॉस. मम्मी बोलती थी मतलब हम लोग को ऐसी धोखे में रखा जाता था कि सांता क्लॉस आता है. हम लोग को लगता था सच में कोई सांता क्लॉस आता है, हमें गिफ्ट देता है. और बाद में सबको यही पता चलता है कि बाद में उनके मम्मा पापा ही गिफ्ट देते. अब जाके पता चलता है मम्मा पापा ही गिफ्ट देते. हाँ. थे उस टाइम.
1: लेकिन जो बच्चे सुन रहे हैं उनको तो ये सीक्रेट पता चल जाएगा.
2: हाँ, ये सीक्रेट तो उनके पास.
0: हमने जो अभी बोला भूल जाए,
3: बचपन बर्बाद.
1: अच्छा वैसे एक और चीज मुझे याद है, जब हमारे दांत टूटा करते थे.
2: हाँ, परी वाली कहानी.
0: चूहा वाली कहानी.
1: हाँ, क्या होता था बताओ?
2: ये तो एक मम्मा बोलती थी चूहा लेके चला गया.
1: एक बार वेदांत से भी सुन लेते हैं.
0: मम्मी कहती थी कि इसको खपड़ैल पे फेंक दो. खपड़ैल मतलब वो घर की जो रूफ होती है, फेंक दो, उधर आएगा चूहा लेके चला जाएगा. मैं बोलूं चूहा क्या करेगा? चूहा आके फिर अगले दिन तकिया के नीचे पैसा डाल के जाएगा.
1: पैसे मिलते थे अगले दिन?
0: वो यही डाल देते होंगे मम्मी पापा.
1: लेकिन मिलते थे ना.
0: मिलते
1: तो उस टाइम लगता था चूहा रख के गया पैसे.
2: हाँ, सच में. ऐसा
1: क्या लगता है?
0: अब लगता है यार चूहे का बैंक अकाउंट भी होगा क्या.
1: और रोशन क्या दांत के टूटने पे क्या लगता था, क्या बोल रहे थे कि दांत टूट गया ऐसे लगता था, पता नहीं क्या हो गया.
3: मेरे को तो खून निकलता था, मैं चूस लेता था, तब भी मैं खुश रहता था क्योंकि मेरे को दांत मिल गया, पैसे मिलेंगे मेरे को. मैं खुश रहता था.
0: एक बार दांत तोड़ लेते होगे.
2: जब भी मेरे दांत हिलते ना तो मैं ऐसे ऐसे करके जैसे हिलता है तो उसको तोड़ देती थी. तोड़ना तो नहीं चाहिए लेकिन मेरी आदत है कि मेरे जब दांत हिलते ना कभी कभी जीभ लगा के, कभी हाथ ऐसे ऐसे करके,

0: टूट जाता था और फिर मैं रख के अपने तकिए के नीचे सो जाती थी। मम्मी बोलती थी ऐसा करोगी तो फिर रात को टूथ फेरी आके इसके बदले तुम्हें पैसे देके जाएगी या फिर कुछ और अच्छी चीज देके जाएगी।
1: तो फिर टूथ फेरी देके जाती थी?
0: हाँ मैम, दीदी पैसे मिलते थे। उसके बाद मैं अगले दिन को कलेक्ट करती थी या तो कुछ खर्चा करती थी।
2: बस चाहिए पैसे। कभी तो 10 रुपए लगते थे, कभी 20 रुपए।
1: हाँ शिवानी बोलेगी,
3: जब मेरे तार टूटते थे ना तो मम्मी कहती थी इसे जाके गाड़ो और जब गाड़ोगी ना तो पीछे मुड़ के मत देखना नहीं तो दांत टेढ़ा हो गया।
1: दांत टेढ़ा हो गया? ओ फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते होगे ना?
3: नहीं,
0: डर के मारे।
1: वैसे ऐसा कुछ भी होता था ना, किसी चीज का बीज खा लो तो बोलते थे पेड़ निकलेगा अंदर से। उसका मुझे तो बड़ा डर लगता था।
2: मुझे तो अभी भी लगता है।
0: सेब का बीज खा लो तो सेब निकलेगा
1: अंदर से।
2: हाँ कई बार पेपर में ऐसे छोटी मोटी न्यूज आई है। एक बार आई थी न्यूज की किसी के फेफड़े में मटर का पौधा कुछ टाइप उग गया था। सच्ची बोली थी
1: बीज, लेकिन ऐसे
0: जेल नहीं होता, जेल नहीं होता
2: अंदर। अभी भी डर।
1: रोशन लगता था आपको ऐसे पहले?
4: हाँ पहले तो मेरे को लगता था, क्योंकि मैंने एक बार वो पोमोग्रेनेट होता है ना उसका सब खा लिया था। मेरे को नहीं पता था उसके अंदर बीज होते हैं, मेरे को पता नहीं था, सब खा लिया मैंने। मम्मी ने बोला बीज नहीं निकाला तूने? नहीं मम्मा। और मम्मी तो ऐसे मजाक में बोल देते थे कि तेरा पेट में पेड़ हो गए, कल सुबह देखना, कल सुबह उठ के पानी मत पीना।
1: तो फिर डर लगता था?
0: तो पानी पी के नहीं सोएंगे?
1: तो फिर डर लगता था?
4: तो डर तो लगता था, सुबह उठ के देखता था कुछ नहीं होता था, चलो मैं बच गया।
1: लगता है बीज अच्छा नहीं था।
3: मुझे बचपन में ऐसा लगता था कि उड़ने वाला घोड़ा होता है।
0: यूनिकॉर्न?
3: नहीं यूनिकॉर्न नहीं, उड़ने वाला घोड़ा।
1: अच्छा कहाँ देखा था आपने उड़ने वाला घोड़ा?
3: वो ना ऐसे मतलब कार्टून में भी दिखाते हैं और पिक्चर में तो ऐसे लगता है जैसे असली में है। हाँ
1: तो फिर आपको लगता था रियल होता है?
3: हाँ
1: तो आपको चाहिए होगा उड़ने वाला घोड़ा
3: था।
1: फिर कब पता चला कि ऐसा नहीं होता है?
3: फिर थोड़े दिनों बाद पता चला, नहीं नहीं नहीं थोड़े सालों बाद पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता,
1: घोड़ा नहीं उड़ सकता।
3: घोड़ा नहीं उड़ सकता, उसके पंख नहीं होते।
1: ओके और ऐसी कोई बात जो आपको बचपन में एकदम सच लगती हो?
0: जैसे कि
1: वेदांत, जैसे पंखा क्यों घूम रहा है या कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है अरे कैसे हो रहा है। याद करो
2: हाँ इंजेक्शन से रिलेटेड होता था। जैसे कि वैसे ये बात तो अभी भी सच है, कहते थे चलो चलो इंजेक्शन लगवाने चलो, तभी डॉक्टर चॉकलेट देंगे, वो तभी भी देते हैं।
0: नहीं मुझे तो नहीं देते।
2: मेरे को भी नहीं देते।
0: मुझे तो नहीं मिलती।
2: एक उसके बाद फीस ले लेते हैं हाई फाई।
1: लगता है विनान के डॉक्टर के पास सब कुछ जाना पड़ेगा।
2: हमारे डॉक्टर पता है दीदी कलर्स देते हैं हमको। कलर्स
0: मतलब?
2: अरे कलर्स, कलर करने वाला कलर्स।
0: ओ अच्छा, क्रेयॉन्स या फिर पेंसिल्स कलर।
1: ओके और अच्छा ठीक है, और कोई ऐसी बात जो लगता हो बचपन में बिल्कुल सच है? जैसे बाहर खेलने मत जाओ बोलते हैं ना बूढ़ा बाबू।
0: हाँ होता है ना दी, बाहर खेलने मत जाओ,
2: जल्दी से सो जाओ वरना साधु बाबा आएंगे झोली में भर के ले जाएंगे।
0: हाँ ऐसा होता है।
2: ऐसा मेरी नानी मेरे को
0: जल्दी सुना, जल्दी सो जाओ
2: कि सो जाओ वरना साधु बाबा आएंगे झोला लेके चले जाएंगे। कभी कोई वैसा व्यक्ति गुजरे उसे जा रहे साधु बाबा, चल चल जल्दी सो जा उन्हें उठा के ले जाएंगे।
1: हाँ, तो फिर आप क्या करते थे?
2: जाके सो जाता था अपनी मामी के साथ।
1: और रोशन?
4: मैं तो कभी कभी टीवी देखता था, और पहले तो बेन 10 कार्टून देखता था मैं, मेरे को अच्छा लगता था। हाँ मेरे बेन वो कैरेक्टर मेरे को अच्छा लगता था। तो मेरे कजिन्स जब पहले आए हुए थे मेरे घर पे, वो मेरे को काम दे देते कि एक ग्लास पानी लेके आ, मैं तेरे लिए बेन 10 वॉच दूंगा।
1: अच्छा
4: काम देते करते थे, मैं करता जाता था और मेरे को वॉच भी नहीं देते थे।
0: नो मैं से तो ऐसे ही होता था, मम्मा बोलती थी अगर तुम बिना बताए बाहर जाओगी ना तो फिर उनको पता हो जाता है बूढ़े बाबा को कि अपनी मम्मा पापा को बिना बताए बाहर आई है, इसको फिर उठा के ले जाते हैं। और फिर ऐसा होता है।
1: शिवानी को भी ऐसा था
0: बिना बताए बाहर जाओ?
3: मुझे तो मम्मी बोलती थी जल्दी सो जाओ नहीं तो भूत पकड़ के ले जाए।
1: फिर डर लगता
0: है?
1: कितना डर लगता था? थोड़ा कि बहुत।
3: मैं मम्मी को पकड़ के सो जाती।
1: मतलब ये वाला जो बात बोली जाती थी वो इसलिए कि आप लोग झटपट जल्दी से सो जाओ।
0: हाँ, जल्दी से कुछ कर लो या फिर जल्दी से खाना खा लो, फिनिश कर लो।
3: लेकिन तब भी मुझे नींद नहीं आती थी, सब लोग सो जाते थे, मैं अपनी आंखें खुली रखती थी, देखती थी कोई आसपास है तो नहीं।
0: ऐसा होता है जब डर लगता है ना रात को, फिर सो रजाई रजाई ओढ़ के सो जाते हैं और महसूस होता है कि कोई आ रहा है।
1: तो ये डर, अच्छा जो ये वाली बात बोली जाती थी कि जल्दी से सो जाओ नहीं तो बूढ़ा बाबा लेके जाएगा, इससे डर लगता था? कितना डर लगता था? मतलब बहुत डर लगता था कि थोड़ा डर लगता था?
0: थोड़ा, बूढ़े बाबा के लिए थोड़ा लगेगा लेकिन भूत के लिए बहुत डर लगता था।
1: बहुत डर लगता था?
2: बहुत तो नहीं लगता, मुझे डर लगता था भूत से ज्यादा मुझे लोगों से डर लगता है अभी भी।
1: तो फिर ये डर लगना कब खत्म हुआ?
0: जब हम थोड़े थोड़े बड़े होने लगे,
2: जब पता चल गया कि
0: ऐसा कुछ भी नहीं होता,
2: अब दूसरे मोहल्ले में जाते हैं
1: कि अब छोटे बच्चे दूसरे मोहल्ले में बताओ तब डर लगना कम हो गया?
2: मतलब बाद में मैं बड़ा हो गया तो फिर मेरे छोटा भाई है उसको नानी यही बोल के सुलाती थी, मैं उसको जाके ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ।
1: अब उसको बता दिया?
0: उसको बता दिया?
2: मैं सोता नहीं था, नानी बोली क्यों बताया उसको, अब उसको होगा कैसे? मैंने कहा वीडियो गेम खेलने से सो जाएगा।
1: बताओ
0: वाह,
1: मतलब बहुत सारी बातें ना जो हमें बचपन में बोली जाती है हमें बचपन में अपने आप लगती है कि सच है। शिवानी को कुछ बोलना है? कुछ तो बोलना है, सोच लो।
2: पता दी पहले हम लोगों को लगता था कि हम लोग भी अंडे से आए।
0: हाँ दी ये तो होता है, मतलब कभी कभी पहले पहले बचपन में ऐसे ही लगता था
1: अंडे में,
2: चिड़िया
1: अंडे
2: में निकले हैं। जैसे चिड़िया अपने बच्चों का ध्यान रखती है, एकदम प्यार करती है उनको, वैसे मम्मी तो हमें भी प्यार करती है, हम भी अंडे से आए होंगे।
1: अच्छा और रोशन कुछ बोलने वाला था ना?
4: हाँ क्या हुआ, मेरे मम्मी बोल देते सो जा नहीं तो भूत आके तुझे खा जाएगा। तो उस दिन शिवरात्रि था, पूरे रात जगे हुए थे, मैं भी जगा हुआ था और खेल रहा था। तो उसके सुबह मेरे को फिर पता चला कि मेरे रात में तो भूत आए नहीं, मेरे को खाया नहीं। उसके बाद मेरे को पता चल गया कोई भूत नहीं आते, मेरे को बाल बना रहे थे।
1: मतलब पता चल गया कि नहीं रात को ऐसा कुछ नहीं होता,
4: कुछ नहीं होता।
0: अच्छा
3: वो ना मुझे मतलब कि ऐसा लगता था मैं भूल गई,
1: मुझे ऐसा लगता था कि आगे क्या था?
3: कुछ भी नहीं था,
1: कुछ भी नहीं
2: था। हम लोगों को ऐसा लगता था पहले कि कैंडल लेके आप अंधेरे में जाओ ना तो भूत आ जाएंगे, कोई भी हॉरर मूवी हम लोग देखते थे तो। लेकिन ऐसा असली में नहीं होता, अब घर में लाइट चली जाएगी तो कैंडल ही जलाएंगे, अगरबत्ती तो नहीं जलाएंगे।
3: मुझे याद आ गया
1: क्या,
3: मुझे ऐसा लगता था कि अगर हम लोग बहुत ढेर सारे चिड़िया के पंखों को इकट्ठा करेंगे और फिर पहाड़ी से नीचे कूदेंगे और फिर पड़ाएंगे तो उड़ जाएंगे।
1: अरे बाप रे, ये तो काफी खतरनाक है, ये कैसे लगा आपको?
3: वो दिखाते हैं ऐसे ही
1: कार्टून में।
0: उसमें दिखाते टॉम एंड जेरी में दिखाते नहीं?
3: हाँ।
1: ओ, तो कभी ट्राई तो नहीं किया ना?
3: नहीं
0: अभी बच्ची नहीं होती
3: क्योंकि मुझे पंख नहीं मिले,
1: और पंख मिलते तो
2: पहाड़ों की कमी नहीं है।
1: ऐसे कभी ट्राई करके नहीं देखना क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, इंसान नहीं उड़ सकते। हाँ साइंस जरूर कमाल कर रही है, हेलीकॉप्टर बनाए हैं, एरोप्लेन बनाए हैं,
0: उड़ने वाले विंग्स भी बनाए हैं जिन हम पहन के उड़ सकते हैं,
1: लेकिन हम ये सब ट्राई नहीं करना क्योंकि ऐसा नहीं होता है।
4: और हम तो ये भी सोचते थे कि वो पीकॉक का फेदर होता है ना, उसको कोई बुक्स के अंदर रख के बंद कर देते उसको बच्चा हो जाता है। दूसरा पीकॉक का वो
1: निकल जाता है उसमें। अच्छा फेदर,
4: फेदर
2: फेदर का बच्चा निकल आता है।
1: अच्छा ऐसा हुआ था, ट्राई किया था?
4: नहीं ट्राई किया था पर हुआ नहीं।
1: हुआ
0: नहीं, नहीं मैं तो पिकॉक वाला ऐसा है जैसे बताया, तो मतलब पिकॉक को अपनी कॉपी में रखो ना तो उससे हमारे मार्क्स अच्छे आते हैं, हम इंटेलिजेंट हो जाते हैं।
2: पिकॉक को
0: मम्मा ने बोला
2: के पंख को,
0: पंख सॉरी पिकॉक के पंख को,
2: पिकॉक को कैसे कर सकते
0: हैं, पिकॉक के पंख को कॉपी के अंदर। इसलिए हमेशा जाती थी ना जब मैं पिकॉक को नाचते हुए देखती थी ना जो भी कभी भी, तो मैं हमेशा उसका पंख जहाँ जैसे वो नाचते हैं तो उनका पंख गिरता है तो कलेक्ट करके ले आती थी।
1: अच्छा ठीक है, अब मुझे लगता है हमने बहुत सारी बातें कर ली। अच्छा बस अब जाते जाते ये बताओ कोई भी चीज आपको ऐसे लगती है कि जिससे आपको ज्यादा डर लगा और बहुत टाइम तक लगा जो आपसे नहीं कही जाती तो अच्छा था, कोई चीज ऐसी लगती
0: है? वही वाली दी, एक बार है ना कि वही जो रात को अगर हम जल्दी नहीं सोते तो आत्माएं आ जाती क्योंकि उनका टाइम होता है।
1: अच्छा ऐसा लगता था?
0: हाँ
2: मुझे भी वैसे ही लगता था।
0: हाँ, रात को
2: आत्माएं
0: आती है इसलिए हम लोग जल्दी सो जाते हैं
2: जिसके बाद आत्माएं।
0: हाँ दी मुझे अभी तक फील होता है क्योंकि अभी लगता है, अभी तक लगता है मुझे
1: शिवानी।
0: और 3 बजे ऐसा कुछ 2:30 बजे
1: भूत आता है। लेकिन ये सब तो आप लोगों ने भूत वाली कहानियां और वीडियोस देख देख के है ना, ये सब वहीं से आया है ना।
4: नहीं वो कहते थे कि
0: नहीं, मम्मा ने भी एक बार बोला था ये बात कि उनका टाइम होता है इसलिए जल्दी सो जाना चाहिए.
1: हाँ, लेकिन अभी भी
2: अब तो पढ़ाई की वजह से जगना पड़ता है.
0: नहीं जी, मैं फिर भी तीन, हाँ मैं एक बार 3 बजे ही उठ गई थी. 3 बजे मैं उठ के बैठ गई, सब सो रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद से. मतलब अभी थोड़ा बहुत डर लगता है कि शायद हो सकता है उस दिन नहीं हुआ मैं.
1: चलो अब, लेकिन बात तो ये है कि जब हम, आप सभी तो मेडिटेशन भी करते हो और समझदार भी हो ना,
0: तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ.
1: तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा,
0: नहीं होता.
1: अच्छा चलो, हमने बहुत ढेर सारी बातें कर ली हैं आज, और डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जिनको प्रे करते हो ना, किनको प्रे करते हो, जिनको प्रे करते हो वो हमारे साथ है, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, है ना.
0: हाँ.
1: और नहीं तो कोई भी आएगा तो उसको दिशुम दिशुम कर देना. ओके,
3: हवा होते हैं
0: तो भी हमें चुके सकते
3: हैं ना अंदर घुस के.
1: ये सब भी एक फिल्मी कहानियां है.
0: इस बच्ची को अभी तक कुछ समझ नहीं आया.
1: चलो अच्छा, बहुत सारी बातें कर ली, अभी फिलहाल चलें हम लोग, और लोगों को भी बातें करने देते हैं, नहीं तो आप लोग तो पूरे दिन बातें कर सकते हो, है ना.
0: हाँ,
1: अच्छा चलो ठीक है, बाय बाय बच्चों.
0: बाय बाय दीदी.
5: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है. सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ.
6: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.
7: IET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 18वां पाठ, जाएं तो जाएं कहां, पृष्ठ 165. जात्रिया भाई. जात्रिया भाई अपनी बेटी झिमली के साथ दरवाजे की चौखट पर बैठे सीडिया का इंतजार कर रहे थे. रात होने को थी पर सीडिया अभी तक घर नहीं आया था. लगभग 2 साल पहले जात्रिया का परिवार सिंदूरी गांव से मुंबई आया था. अपना कहने को यहां दूर के रिश्तेदार का एक परिवार ही था. उन्हीं की मदद से जात्रिया भाई ने मछली पकड़ने के कटे हुए जालों की मरम्मत का काम शुरू किया. इससे तो उनका गुजारा ना हो सका. घर का किराया, दवाई, खाना, स्कूल का खर्चा ही नहीं, पानी भी पैसों से ही खरीदना पड़ रहा था. छोटे सीडिया को भी पास वाले मछली के कारखाने में काम करना पड़ा. सीडिया सुबह के 4 बजे से 7 बजे तक मछली साफ करता, छोटी बड़ी मछलियां छांटता, उसके बाद वह घर आता, थोड़ी देर सोकर दोपहर को स्कूल जाता, शाम को सब्जी मंडी में घूमता फिरता, कभी किसी मेम साहब की थैलियां उठाता तो कभी रेलवे स्टेशन पर जाकर पानी की खाली बोतलें ढूंढकर कबाड़ी वाले को बेचता. जैसे तैसे ही चल रही थी उनकी जिंदगी. पृष्ठ 166. अब तो रात भी हो गई लेकिन सीडिया घर नहीं आया. झिमली पड़ोसी के घर की खिड़की से टीवी पर नाच देख रही थी, मगर जात्रिया का मन टीवी देखने में नहीं लगता. यहाँ सब कुछ कितना अलग था, कितनी नई अजीब दुनिया थी. दिन काम की भगदड़ में चला जाता और शाम पुरानी यादें लेकर आती. सोचो और बताओ. जात्रिया भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस कर रहा था. क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? अपनी जगह छोड़कर दूर नई जगह जाकर रहना कैसा लगता होगा? जात्रिया जैसे परिवार बड़े शहरों में क्यों आते होंगे? क्या तुमने ऐसे बच्चों को देखा है जो पढ़ने के साथ काम पर भी जाते हैं? ये बच्चे किस तरह के काम करते हैं? क्यों करने पड़ते होंगे? पुरानी यादें. हरे भरे घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच खेड़ी गांव में जात्रिया का जन्म हुआ था. उसके दादा के जन्म के पहले से ही ये लोग यहाँ रह रहे थे. उनके गांव में शांति तो थी लेकिन सन्नाटा नहीं था. गांव में नदी की कलकल, पेड़ों की सनसन, पंछियों की चहक थी. यहाँ के लोग खेती का काम करते थे. गांव के लोग जंगलों में जाकर कंदमूल, साग सब्जी और सूखी टहनियां लाते. ये सब काम करते समय लोग बातें करते और गाने गुनगुनाते. बड़ों के साथ काम करके छोटे बच्चे भी ये सभी काम सीख जाते, जैसे बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, मिलकर नाचना, मिट्टी और बांस के बर्तन बनाना, पंछियों को पहचानना, उसकी नकल करना आदि। पृष्ठ 167। लोग जंगल से इकट्ठा किया सामान इस्तेमाल करते, बचा हुआ सामान नदी पार के बड़े गांव में जाकर बेच देते। इन पैसों से वे अपने लिए नमक, तेल, चावल और कभी कपड़े खरीदते। वैसे तो वह एक गांव था, मगर सब एक बड़े परिवार जैसे रहते थे। जात्रिया की बहन की शादी भी उसी गांव में हुई थी। अच्छे बुरे समय में सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। शादी ब्याह के काम और झगड़े गांव के बड़े बुजुर्ग साथ मिलकर निपटाते। जात्रिया अब जवान हो गया था। वह खेती का भारी काम अकेले ही करता, बड़ी नदी के बीचों बीच मछली भी पकड़ता। अब वह जंगल से फल, कंद, दवाई के लिए पत्तियां, नदी की मछली आदि सभी लेकर दोस्तों के साथ कस्बे के गांव में बेचा करता। गांव में त्योहार के समय अपनी उम्र के लड़के लड़कियों की टोली में नाचता और ढोल भी बजाता। बताओ, खेड़ी गांव में बच्चे क्या क्या सीखते थे? तुम अपने बड़ों से क्या क्या सीखते हो? जिन चीजों का ज्ञान जात्रिया को खेड़ी में हासिल हुआ, उनमें से कितना उन्हें मुंबई में काम आया होगा? पृष्ठ 168। क्या तुम हर रोज पक्षियों की आवाजें सुनते हो? कौन कौन से? क्या तुम किसी पक्षी की आवाज की नकल कर सकते हो? करके दिखाओ। तुम रोज ऐसी कौन सी आवाजें सुनते हो जो खेड़ी के लोग नहीं सुनते होंगे? क्या तुमने सन्नाटा महसूस किया है? कब और कहाँ? नदी के पास। एक दिन गांव वालों ने सुना कि उनकी नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनने वाला है। नदी को रोककर एक बहुत बड़ी दीवार सी खड़ी की जाएगी। तब खेड़ी और आसपास के बहुत सारे गांव पानी में डूब जाएंगे। लोगों को अपने पुरखों यानी बाप दादा की जमीन, घर बार छोड़कर नई जगह चले जाना होगा। कुछ दिन बाद सरकारी लोग पुलिस की पलटन को लेकर गांव गांव पहुंचने लगे। गांव के छोटे बच्चों ने तो पहली बार पुलिस देखी। कुछ बच्चे उनके पीछे भागते तो कुछ डर से रोने लगते। वे नदी की चौड़ाई, लंबाई, गांव के घर, खेत, जंगल सब नापने लगे। उन्होंने गांव के बड़ों के साथ मीटिंग भी की और कहा, गांव को नदी किनारे से हटाना होगा। जिनके पास अपनी जमीन है, उन्हें नदी पार बहुत दूर बसने के लिए नई जगह दी जाएगी। दूसरी जगह जहां जमीन मिलेगी, वहां स्कूल, बिजली, अस्पताल होंगे, बस और ट्रेनें भी होंगी। नए गांव में वह सब होगा जो आज तक खेड़ी के लोगों ने सोचा भी न था। उसके माँ बाबा और गांव के कई बड़े बूढ़ों को अपना गांव छोड़ना पसंद न था। जात्रिया भी यह सुनकर थोड़ा सहम जाता, थोड़ा खुश भी हो जाता। सोचता वह शादी के बाद अपनी दुल्हन को नए गांव के नए घर में ले जाएगा। पृष्ठ 169। ऐसा घर जिसमें बटन दबाते ही बिजली जलेगी और घर में नल खोलते ही पानी। बस में बैठकर वह शहर घूमने जाएगा। सोचता जब बच्चे होंगे तब उन्हें स्कूल भेज पाऊंगा, उन्हें अपने जैसा अनपढ़ नहीं रखूंगा। चर्चा करो और बताओ। जात्रिया के गांव के कई लोगों को अपने जंगल जमीन छोड़ना मंजूर न था। ऐसा क्यों? ना चाहते हुए भी उन्हें अपना गांव छोड़ना ही पड़ा। सोचो क्यों? जात्रिया के खेड़ी के परिवार में कितने लोग थे? जात्रिया जब अपने परिवार के बारे में सोचता तो उसके मन में कौन कौन आता? अपने परिवार के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे मन में कौन कौन आता है? क्या तुमने ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो अपनी पुरानी जगह से हटना पसंद नहीं करते? उनकी कुछ बातें बताओ। क्या तुम कोई ऐसी जगह जानते हो जहां स्कूल है ही नहीं? कल्पना करो, जहाँ बांध बनता है वहाँ के लोगों को क्या क्या परेशानियाँ होती होंगी। खेड़ी गांव और जात्रिया के सपनों के नए गांव के चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। अपने साथी का चित्र भी देखो, उनमें अंतर ढूंढो। एक नई जगह। दोपहर का समय था, कड़ी धूप और गर्म हवा से जात्रिया बेजान था। डामर यानी कोल तार से बना रास्ता जलते तवे जैसा गर्म था। आसपास कोई छायादार पेड़ भी न था, सिर्फ कुछ मकान और दुकानें थीं। दवाइयां खरीदकर जात्रिया घर की ओर चल पड़ा। उसकी पीठ पर पुराना टायर था। आजकल घर का चूल्हा जलाने के लिए वह ऐसे टायर के रबड़ के टुकड़ों को जलाता था। पृष्ठ 170। ये आग जल्दी पकड़ते थे और इससे लकड़ी भी कम लगती थी, पर इसके जलने से हुई बू और धुएं से सब परेशान थे। सिंदूरी नाम के इस नए गांव में हर चीज पैसों से मिलती थी, दवाई, सब्जी, अनाज, पशुओं की खुराक और लकड़ी भी। मिट्टी का तेल तो उनकी पहुंच से बाहर था, कहां से लाएं इतने पैसे। सोचते सोचते जात्रिया अपने घर तक पहुंच गया। छत के नाम पर टीन की चादर भट्टी जैसी जल रही थी। जात्रिया की बीवी तेज बुखार से तप रही थी। उसकी बेटी झिमली अपने छोटे भाई सीडिया को गोद में लेकर सुला रही थी। घर में कोई और बड़ा भी तो नहीं था। पिताजी तो पहले ही खेती छोड़ने के गम में चल बसे थे। इस नई जगह पर उनके गांव के 8-10 परिवार ही थे जो उसके अपने थे। बाकी सारा गांव यहां वहां बिखर गया था। जिन्हें जहां जमीन दी गई वे वहीं बस गए। जैसा सपना देखा था वैसा तो नहीं था यह गांव। बिजली तो थी मगर वह भी कभी रहती कभी नहीं। ऊपर से बिजली के बिल का नया खर्चा भी तो था। वहां नल तो थे पर उनमें पानी ना आता था। इस गांव में जात्रिया को टीन की चादर से बना हुआ एक कमरे का घर मिला। उसमें पशुओं को रखने की तो जगह ही नहीं थी। थोड़ी सी खेती की जमीन भी मिली थी मगर वह खेती के लायक नहीं थी। बड़े बड़े पत्थरों और कंकड़ों से भरी थी। जात्रिया और उसके परिवार फिर भी जी जान से उसमें मेहनत करते मगर धान को खरीदने में जो पैसे खर्च होते उतने भी हाथ न आते। पृष्ठ 171। वहां पुराने गांव में बीमारी कम थी। अगर कोई बीमार हो भी जाता तो जड़ी बूटी की दवाई जानने वाले बहुत से लोग थे। उनके इलाज से सेहत सुधर जाती थी। यहाँ अस्पताल तो थे पर डॉक्टर मुश्किल से मिल पाते और दवाई भी नहीं मिलती। यहाँ स्कूल था पर टीचर खेड़ी के इन बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं देती थी। नई भाषा की पढ़ाई इन बच्चों के लिए कठिन भी थी। सिंदूरी गांव के लोगों को इन लोगों का यहाँ आना पसंद न था। उनको खेड़ी के लोगों की भाषा, रहन सहन सब अजीब लगता। वे खेड़ी वालों को बिन बुलाए मेहमान कहकर उनका मजाक भी उड़ाते थे। क्या सोचा था और क्या हुआ? लिखो, क्या सिंदूरी गांव जात्रिया के सपनों के गांव जैसा था? सिंदूरी और अपने सपनों के गांव में उसे क्या अंतर मिला? क्या तुम कभी किसी के घर बिन बुलाए मेहमान थे? कैसा लगा? जब तुम्हारे यहाँ कुछ दिन मेहमान रहने आते हैं तब तुम्हारे परिवार वाले क्या क्या करते हैं? कुछ साल बाद जात्रिया ने कुछ साल सिंदूरी में ही बिताए। बच्चे भी बड़े हो रहे थे मगर जात्रिया भाई का मन अब सिंदूरी में नहीं लगता था। उन्हें तो बस अपने खेड़ी गांव की याद सताती रहती। पर अब खेड़ी था कहाँ? खेड़ी और आसपास के इलाके में था एक बहुत बड़ा बांध और रुके हुए पानी का एक बड़ा सा तालाब। जात्रिया ने सोचा, बिन बुलाए मेहमान ही कहलाना है तो ऐसी जगह जाएं जहां अपने सपने पूरे तो हों। उन्होंने अपनी जमीन और जानवर बेच दिए और वे मुंबई आ गए। अब उसके परिवार की नई जिंदगी शुरू हुई। बच्चे स्कूल में जाएं, कुछ बने, बस यही चाहते थे। यहाँ के हालात अच्छे तो नहीं थे, मगर धीरे धीरे शायद सब ठीक हो जाएगा, यही वे सोचते थे। जात्रिया ने अपनी खोली यानी एक कमरे की रहने की जगह की मरम्मत के लिए पैसे बचाने शुरू किए। पृष्ठ 172। उनके रिश्तेदारों ने कहा, मत बर्बाद करो ये पैसे, शायद हमें यह जगह भी छोड़नी पड़ेगी। हम बाहर से आने वाले लोगों के लिए मुंबई में रहने की जगह नहीं है। जात्रिया भाई यह सुनकर डर गए। उन्होंने सोचा, खेड़ी छोड़कर सिंदूर गांव में, उसके बाद अब यहाँ मुंबई में, अब यहाँ से भी हटना पड़ेगा तो जाएंगे कहाँ? क्या इतने बड़े शहर में मेरे छोटे से परिवार के लिए एक छोटा सा घर भी नहीं है? सोचो। जात्रिया भाई ने क्या सोचकर मुंबई जाने की ठानी? क्या उन्हें मुंबई वैसा ही मिला? जात्रिया भाई के बच्चे मुंबई में किस तरह के स्कूल में जाते होंगे? पता करो और लिखो। क्या तुम किसी बच्चे या परिवार को जानते हो जो अपनी जगह से हटाए गए हों? उनसे बात करो। वे कहाँ से आए हैं? उन्हें यहाँ क्यों आना पड़ा? उनकी पहली जगह कैसी थी? उसकी तुलना में नई जगह कैसी है? क्या उनकी भाषा और रहन-सहन यहाँ के लोगों से अलग है? कैसे? उनकी भाषा के कुछ शब्द सीख कर लिखो। क्या वे कुछ ऐसी चीजें बनाना जानते हैं जो तुम्हें जानते? क्या चर्चा करो। तुमने शहर की किसी बस्ती को हटाने के बारे में सुना या पढ़ा है? नौकरी में तबादला होने पर भी अपने रहने की जगह से दूर जाना पड़ता है, तब कैसा लगता है? वाद विवाद करो। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, शहरी लोग गंदगी नहीं फैलाते, शहर का गंध तो झुग्गी झोपड़ियों से है। तुम्हें क्या लगता है? आपस में बात करो।

बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो माधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। ये आज विशेष दिन है और विशेष दिन की विशेष बातें आपसे शेयर करूंगा। विक्रम साराभाई, तेजी बच्चन, इरफान हबीब, रॉबिन बैनर्जी, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही भागवत शरण उपाध्याय, दयानंद बांदे बांदेकर, जॉर्ज सिडनी, अरुणडेल और गुलशन कुमार, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए, आज विशेष स्वाति नक्षत्र है, हफ्ते की शुरुआत है। आज के दिन की कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा और साथ ही साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जैसे हम लोग सुविचार से। तो एक सुंदर सुविचार आपके लिए अभी सुनाते हैं और सुविचार के बाद आपको फिर एक सुंदर गाने की तरफ भी ले जाऊंगा जो आपके मन को सुकून देगा। कहते हैं जो लोग गिरने से डरते हैं वो कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते, इसलिए गिरने से कभी भी डरना नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं सफर इस कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं और एक बहुत ही प्यारा सा गीत की तरफ कार्यक्रम की शुरुआत में ले चलता हूँ मैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहे, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ विक्रम साराभाई के बारे में बात करते हैं। आइए, अब भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। इनका पूरा नाम डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई था। भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर भारत देश की उपस्थिति दर्ज करा दी थी। विक्रम साराभाई ने अन्य क्षेत्रों में भी सामान्य रूप से पुरोगामी योगदान दिया। वे अंत तक वस्त्र, औषधीय, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य क्षेत्रों में लगातार काम करते रहे थे। डॉक्टर साराभाई एक रचनात्मक वैज्ञानिक, एक सफल और भविष्य दृष्टा उद्योगपति, सर्वोच्च स्तर के परिवर्तक और एक महान संस्थान निर्माता, एक भिन्न प्रकार के शिक्षाविद, कला के पार के सामाजिक परिवर्तन के उद्यमी और एक अग्रीन प्रबंधन शिक्षक तथा बहुत कुछ थे। तो आइए ऐसे विशेष व्यक्ति के बारे में, विक्रम साराभाई के बारे में जानते हैं। डॉक्टर साराभाई का जन्म पश्चिम भारत के गुजरात राज्य में अहमदाबाद शहर में 1919 को हुआ था। साराभाई परिवार एक महत्वपूर्ण और संपन्न जैन परिवार था। उनके पिता अंबालाल साराभाई एक संपन्न उद्योगपति थे और गुजरात में कई मिलों के स्वामी भी थे। विक्रम साराभाई अंबालाल और सरला देवी के 8 बच्चों में से एक थे। अपने इंटरमीडिएट विज्ञान की परीक्षा पास करने के बाद साराभाई ने अहमदाबाद में गुजरात कॉलेज से मैट्रिक परीक्षा पास की। उसके बाद वे इंग्लैंड चले गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सेंट जॉन कॉलेज में भर्ती हुए। उन्होंने कैम्ब्रिज से 1940 में प्राकृतिक विज्ञान में ट्राइपॉस हासिल किया था और दूसरे विश्वविद्य के बढ़ने के साथ साराभाई भारत लौट आए थे और बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान में भर्ती हुए तथा नोबल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के मार्गदर्शन में ब्रह्मांडीय किरणों में अनुसंधान शुरू किया था। और विश्व युद्ध के बाद 1945 में वे कैम्ब्रिज लौटे और 1947 में उन्होंने विशेष जो उष्णकटिबंधीय अंशय में कॉस्मिक किरणों की खोज पर काम किया और इस शोध पर पीएचडी की डिग्री हासिल की और उन्हें सम्मानित भी किया गया। तो ये विशेष इनकी शिक्षा दीक्षा की बात थी और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक इनको कहा जाता है, जो इन्होंने कार्यक्रम बनाया। एक संस्थान निर्माता थे और उन्होंने विविध क्षेत्रों में अनेक संस्थाओं की स्थापना भी करके इसी काम को आगे बढ़ाया। संस्थानों में अनुसंधान का कार्य को लेकर काफ़ी काम किया, इसरो की स्थापना की, परमाणु विज्ञान कार्यक्रम इन्होंने चलाया और अन्य योगदान भी इनका रहा। और अंतरिक्ष की दुनिया में भारत को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले और विज्ञान जगत में देश का परचम लहराने वाले इस महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की 30 दिसंबर 1971 को कोवलम तिरुवनपुरम केरल में मृत्यु हुई। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके लिए सुनते रहो। मस्कुरा

0: मैं गीत सागर रेडियो मधुबन के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सुन रहे हैं गीत सागर को रेडियो मधुबन पर, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ। आइए, हमारे साथ दिल्ली से वंदना जी जुड़ी हैं, वो अपनी एक बात बताना चाहती हैं। तो वंदना जी, स्वागत है आपका।
2: हेलो दोस्तों, ओम शांति। मैं आपके साथ वंदना रूबरू हो रही हूँ कुछ बहुत अच्छी सी बातें आपके साथ शेयर करने के लिए। जो आज का विषय है वो है परिस्थिति। आपके सभी के जीवन में आपने देखा होगा कोई ना कोई परिस्थिति हमेशा आई रहती है और हम उससे इतने परेशान रहते हैं कि लोगों से कहते हैं कि क्या करूं, मेरी लाइफ में इतनी बड़ी परिस्थिति आ गई, मेरी समझ ही नहीं आया क्या करूं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी, जब कोई परिस्थिति आती है तो ऐसे में हम अपना जो हमारा गुण है उसको हम कस के पकड़ कर रखें ताकि हम परिस्थिति से पार हो जाएं। अब देखिए,

0: तो परिस्थिति कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। हाँ, वो बात अलग है कि सोच सोच के हम इसको बहुत बड़ा कर देते हैं, और होता क्या है, हमारा ध्यान समाधान से कम समस्या पर ज्यादा रहता है। इसी तरीके से एक और छोटी सी कहानी मैं शेयर करूंगी कि एक लेडी एक सन्यासी जी के पास गई और बोली, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परिस्थितियां मेरे सामने आती हैं, मैं क्या करूँ। उन्होंने उसको बोला कि तुम जाओ और जितने मेरे ऊंट है ना, सबको रात में सुला दो, एक एक ऊंट सोना चाहिए। बोली ठीक है। अब वो जाती है तो देखती है कि उसके कहने के बाद भी कुछ ऊंट खड़े रहते हैं, कुछ बैठ जाते हैं, कुछ खुद ब खुद सो जाते हैं, कुछ फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। तो उसने आकर ये स्वामी जी को बताया कि देखो आज तो इस तरीके से हुआ और सारे ऊंट सो गए। उनका नहीं, ऐसे से हुआ। तो उन्होंने बताया इसी तरीके से हमारे जीवन में क्या होता है, कुछ परिस्थितियां आती हैं, आके चली जाती हैं, कुछ अपने आप आकर बिना कुछ किए नुकसान किए बैठ जाती हैं, जैसे ऊंट है, कुछ उसके बाद भी खड़ी हो जाती हैं। तो ये जो हमारा जीवन है, परिस्थिति आएंगी भी जाएंगी भी, कुछ खुद ब खुद बैठ जाएंगी। तो जो जीवन है, हम अपने गुणों से भरपूर परमात्मा ने हमें बताया है, तो परिस्थिति का चिंता ना करके हम अपने गुणों को और ज्यादा बढ़ाएं, और हर परिस्थिति कुछ ना कुछ हमें एक सीख देकर जाती है, हमें बहादुर बनाती है, हमारे अंदर हिम्मत जगाती है, और हम अपनी लाइफ को इजीली क्रॉस कर देते हैं। आशा करती हूँ आपको ये मेरे विचार पसंद आए होंगे। चलिए, एक और नई कड़ी में आपको मिलती हूँ मैं, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। ओम शांति।
1: चलिए वंदना जी, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देके आपने परिस्थितियों पर विजय कैसे पाना है इसके बारे में अच्छी तरह से समझाया। आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी आपकी बातें पसंद आ रही है। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके नाम सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन खुद से यह सवाल पूछें, मैंने आज क्या सीखा, मैंने किसे खुश किया, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बात करते हैं अब तेजी बच्चन के बारे में। बहुत ही पॉपुलर साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन की पत्नी और भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन की बात है। इनका जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। तेजी बच्चन हनुमान जी की परम भक्त थी और उन्हें अभिनय की और गाने का बहुत शौक था। कॉलेज के दिनों में उन्होंने कई नाटकों में अभिनय तथा गायन आदि किया। अमिताभ बच्चन में अभिनय के गुण अपनी माता तेजी बच्चन से ही आए थे। अपने समय में कवि हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन की जोड़ी भारत की चर्चित और लोकप्रिय जोड़ी मानी जाती थी। 2004 से तेजी बच्चन का अधिकांश समय जो है बीमारी की वजह से अस्पताल में व्यतीत हुआ और 2007 में उनका निधन हुआ। तो आइए इनके बारे में बात करें। तो 1914 में फैसलाबाद में एक सिख परिवार में इनका जन्म हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। पंजाबी परिवार में जन्मी तेजी बच्चन का मूल नाम तेजी सूरी था। वे हरिवंश राय बच्चन की जिंदगी में दूसरी पत्नी बनकर आई थी। पहली पत्नी श्यामा के निधन के बाद हरिवंश राय बच्चन ने तेजी से प्रेम विवाह किया था। ये शादी 1941 में हुई थी। तब से 2003 में हरिवंश राय बच्चन के निधन तक तेजी ने हर कदम पर पति का साथ निभाया और 2003 में 96 वर्ष की उम्र में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के निधन के बाद से ही तेजी का स्वास्थ्य गिरता गया। और फिर हरिवंश राय जी के साथ इनकी मुलाकात की बात करें तो ये हरिवंश राय बच्चन की मुलाकात बरेली के एक मित्र ज्ञान प्रकाश जौहरी के घर पर हुई थी, जिनकी पत्नी लाहौर के फतेहचंद कॉलेज में प्राचार्य थी और तेजी उसी कॉलेज में मनोविज्ञान पढ़ाती थी और तेजी बच्चन की कविताओं की प्रशंसक थी, इसलिए दोनों के बीच में प्रेम और विवाह होने में देर नहीं लगी। और 24 जनवरी 1942 को इलाहाबाद की जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में इन्होंने विवाह कर लिया। और इस तरह से परस्पर समानता की भावना के कारण ये नज़दीक रहे। और तेजी बच्चन दमे की मरीज थी और मुंबई का नामी वाला वातावरण कभी उन्हें रास नहीं आया, इसलिए वो मुंबई के बजाय दिल्ली में रहना पसंद करती थी। अमिताभ के फिल्म उद्योग में पैर जमने के शुरुआती दौर में वे हरिवंश राय बच्चन के साथ दिल्ली में ही रहती थी, बाकी परिवार मुंबई में रहता था। तेजी बच्चन भी बच्चन जी की ही तरह भगवान श्री राम और हनुमान जी की परम भक्त थी। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी श्रीमती बच्चन इलाहाबाद में कई सामाजिक कार्य और रंगकर्मियों के रूप में जानी जाती थी। आनंद भवन भी आया जाया करती थी और वही उनकी मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी हुई थी। श्रीमती बच्चन ने ही हरिवंश राय बच्चन का परिचय नेहरू जी से कराया था। 21 दिसंबर 2007 शुक्रवार को लंबी बीमारी के बाद मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में तेजी बच्चन का देहांत हो गया। तब वो 93 वर्ष की थी। तो ये थी कुछ खास बातें तेजी बच्चन के बारे में। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते, मैं हूँ हमसिका अय्यर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सफर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। चलिए रॉबिन बैनर्जी के बारे में बात करते हैं। आसाम के गोलघाट के एक बहुत ही पॉपुलर वाणिज्य विशेषज्ञ, पर्यावरण प्रेमी, चित्रकार, फोटोग्राफर और दस्तावेजी फिल्म निर्माता थे। कुल 32 डॉक्यूमेंट्री बनाई इन्होंने और वाइल्ड लाइफ को बचाने और सहेजने के लिए खुद को इस तरह से समर्पित कर दिया था कि अपने मेडिकल प्रोफेशन को बिल्कुल छोड़ ही दिया था। और प्रकृति और पर्यावरण के प्रति रॉबिन बैनर्जी के इसी समर्पण के लिए 1971 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। उन्हें अपनी वाइल्ड लाइफ फिल्म के लिए 14 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। तो आप समझ सकते हैं। आइए ऐसे विशेष महान व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। आसाम के कारीगंज नेशनल पार्क के बारे में जब से पढ़ा और सुना है, जिन्हें वाइल्ड लाइफ में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है, उन लोगों का सपना होता है कि वो एक बार तो काजीरंग जाए। और जो भी यहाँ जाता है उसे इस जंगल से, यहाँ के जीव जंतुओं से जैसे मोहब्बत हो जाती। ऐसा ही कुछ डॉक्टर रॉबिन बैनर्जी के साथ हुआ। तभी तो एक मशहूर डॉक्टर कब वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर बन गया पता ही नहीं चला। डॉक्टर रॉबिन पेशे से एक डॉक्टर थे जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में रॉयल नेवी में अपनी सेवाएं दी थी। पेशे से पर्यावरणविद, एक फोटोग्राफर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, जिन्होंने काजीरंग का परिचय पूरी दुनिया को कराया। 12 अगस्त 1908 को पश्चिम बंगाल के बहरमपुर में जन्मे डॉक्टर रॉबिन की शुरुआती शिक्षा शांति निकेतन से हुई। फिर कोलकाता मेडिकल कॉलेज में उन्होंने डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उनकी पढ़ाई लिवरपूल और एडिनबर्ग से हुई और 1937 में उन्होंने लिवरपूल में रॉयल नेवी को ज्वाइन किया था। दूसरे विश्व युद्ध में ड्यूटी निभाने वाले डॉक्टर बैनर्जी पर युद्ध का बहुत प्रभाव पड़ा और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी कहीं शांति और सुकून के बीच बिताना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भारत वापस लौटने का निर्णय किया और 1952 में आसाम चंबुआ टी स्टेट से उन्होंने एक स्कॉटिश डॉक्टर के साथ काम करने का मौका मिला। और फिर यहाँ पर उनका परिचय कारिंगा से हुआ और हाथी पर बैठकर उन्होंने इस मंत्र मुक्त कर देने वाले जंगल का जो यात्रा किया, इस जगह ने उनके दिल को छू लिया और वो यही के बन गए। कुछ समय बाद 1954 में बोकालकाट के धनुश्री मेडिकल एसोसिएशन के चीफ मेडिकल अफसर के पद पर नियुक्त हुए और फिर बहुत पास था वहाँ से ये, और यहाँ उनका जो है विशेष काजीरंग से प्रेम हो गया और फिर इस पर उन्होंने फिल्म भी बनाई। और सम्मान और पुरस्कार की कोई कमी नहीं थी, बच्चों से बड़ा प्यार करते थे। और रॉबिन बैनर्जी का ख्वाहिश थी कि गोलघाट में उनके घर के बच्चों के लिए एक म्यूजियम में तब्दील किया जाए, पर वो अपनी ज़िंदगी में ऐसा करने में असफल रहे और 2003 में 6 अगस्त को 94 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के 6 साल बाद उनके घर को एक म्यूजियम में तब्दील किया गया और इसका नाम रखा गया अंकल रॉबिन चिल्ड्रन म्यूजियम। तो ये थी कुछ खास बातें रॉबिन बैनर्जी के बारे में। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में आगे बढ़ते हुए एक और खूबसूरत संगीत आपके नाम। सुनते रहो मस्कराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सफर कार्यक्रम। और सफर कार्यक्रम में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बीच बीच में हमारे प्रशांत सिरोडे सर आते हैं डुम्बुली से और वो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा करते हैं। तो आइए आज हम लोग उनसे सुनेंगे, आपके अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज के चारित्र के किन आदेशों को आज विद्यार्थियों और नागरिकों के पालन करना चाहिए जिससे उनका जीवन अच्छा बने। जी
2: सही बात है और बहुत अच्छा और सटीक सवाल है सर। ये आज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सवाल। वर्तमान कालखंड में छात्रों को और हम सभी को जीवन जीते समय जिन आदर्शों का पालन करना चाहिए, छत्रपति जी के किन आदर्शों को हमें स्वीकार करना चाहिए तो हमारा जो आज का जीवन है वो अच्छा बन सके, उज्जवल बन सके और सफल बन सके। इस दृष्टि से मैं कई सारे पहलुओं पर छत्रपति जी के और उनके माध्यम से किन गुणों का स्वीकार करना चाहिए इसके ऊपर प्रकाश डालूंगा। मैं सबसे पहले कई बार देखो हम लोग एक जैसे हमको एक शब्द है कंफर्ट जोन, यानी कि अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित बनाए रखते हैं, किसी प्रकार का चैलेंज स्वीकार करना पसंद नहीं करते हैं। तो इसको हमें नकारना चाहिए, इसको छोड़कर जो जो हमारे सामने जो समस्या है उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। ये बात हमें छत्रपति जी उनके जीवन के माध्यम से सिखाते हैं। इसके लिए मैं एक बहुत बड़ा एक सटीक उदाहरण मैं देना चाहूंगा जो बिल्कुल रामायण से जुड़ा है कि जब हनुमान जी और जामवंत जी तट पर सागर तट पर आ गए थे और उनको लंका जाना था तो कौन जाएगा, ये बहुत बड़ी समस्या थी उस समय। तो जामवंत जी हनुमान जी को बताते हैं कि तुम्हारे अंदर एक अलग शक्ति है, उसे तुम जगाओ, तो अगर तुम जब उसे जगाओगे तो जरूर लंका तक पहुंच जाओगे। और वही बात हुई, हनुमान जी को वो सारी शक्तियां याद आई। तो हमें भी हमारे पास भी अपनी अंदर की कई सारी शक्तियां होती है, उनको जगाना चाहिए तभी हमें पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। वरना हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, मुझसे ये नहीं होगा, नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इस प्रकार की बातें करते रहते और कुछ भी नहीं करते फिर जीवन में। तीसरी बात महाराज हमें सिखाते हैं कि हमें स्वयं को पहचानना चाहिए, जिसे हम मराठी में कहते हैं स्वच्छी ओळख, यानी कि अपने आप को पहचानो, मेरा मन किस बात में रमता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है। देखो सर, मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से लोगों को कि अगर हम चाहिए क्षेत्र में काम करें तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि 24 घंटे में से 18-18 घंटे भी अगर काम करें ना हम तो भी हम नहीं थकते हैं। हमें थकान क्यों होती है आज हमारे काम में, इसका कारण यही है कि हम अपने चाहिए क्षेत्र में काम नहीं कर रहे होते। जो मिला चलो दो वक्त का खाना मिल रहा है इस लिहाज से काम करते जाते हैं, लेकिन अगर हम हमारे चाहिए क्षेत्र में काम करेंगे जो सही मायने में कह सकते हैं एक अलग अंदाज में जिसे कहा जा सकता है कि ऐसा माना जाता है कि ईश्वर ने प्रभु ने भगवान ने सभी को इस धरती पर जो भेजा है ना वो किसी मकसद के हेतु भेजा है, उस मकसद को जानना है और उसके ऊपर हमें काम करना है, वही हमारा चहिता और अपना क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में अगर हम काम करें तो अपना जीवन जरूर सफल और आनंदी होता है। ये कैसे पहचानना है तो बड़ी आसान बात है सर, ऐसा क्षेत्र जिसमें काम करने में हमें रुचि होती है, आनंद मिलता है और कितना भी काम करो थकान महसूस नहीं होती है, उसमें जरूर आनंद मिलता है। जैसे कि मैं मेरे अपने बारे में कहना चाहूंगा, जैसे कि मैं अपना पेशा टीचर का है और इसके अलावा इतिहास में मुझे बड़ी रुचि है, तो मैं कई बार देखता हूँ कि घंटों इस पर काम करता रहता हूँ तो भी मुझे थकान नहीं होती सर, कभी ऐसा लगता ही नहीं कि अभी बोर हो चुका हूँ, कितना भी करता जाऊँ। जैसे कि हमारा एक प्रोग्राम है, अभी हम 10 या 15 मिनट के लिए ही मिले हैं, लेकिन अगर ऐसा मुझे आप लोग 2 घंटे के लिए भी बोलने के लिए कहेंगे कि सर छत्रपति जी के ऊपर 2 घंटे बात कीजिए तो मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आसानी से उसके ऊपर बात करता जाऊंगा और ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि सुनने वाले अच्छे का अनुभव करेंगे। तो यह भी एक बहुत बड़ी खासियत हमें यहाँ पर महसूस होती है सर। किसी भी क्षेत्र में जब हम काम करते हैं सर, तो उसकी एक शुरुआत होती है। तो हम ये सपने बड़े बड़े देखना तो अनिवार्य है, अगर नहीं देखेंगे तो ये गलत है। बड़े सपने देखना और उसकी शुरुआत मात्र किसी लघुता से होती है। कोई ऐसा नहीं कि मनुष्य सीधा टाटा या बिरला अंबानी बन जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं जब आप शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कि महाराज जी का जब उन्होंने अपने स्वराज्य की नींव रखी थी रायरेश्वर के मंदिर में, तो उनके पास कुछ नहीं था उस समय, लेकिन वो सच्ची नींव जैसे कि मन से रखी गई थी। और देखो ना, जैसे कि एक फिल्म का डायलॉग भी आपको शायद मालूम होगा कि कोई भी चीज को हम लगन से उसके ऊपर काम करें तो भी परवरदिगार हो या फिर इस निसर्ग की कई सारी जो शक्तियां है वो हमें सहायता करने के लिए आ जाती है। किसी चीज को तुम दिल से मांगो तो सारी कायनात तुम्हारा साथ देने के लिए उतर आती है। बस ये जो भावना महाराज जी ने हमें सिखाई है, जो उन्होंने रायरेश्वर में प्रतिज्ञा ली थी उस समय इसी भावना से ली थी, और पूरे महाराज का पूरा जीवन हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि सही मायने में की हुई प्रतिज्ञा नींव ये कितनी कारगर सिद्ध होती है। यही बात हमें भी हमारे जीवन में उतारनी चाहिए कि नहीं भाई, जो कर रहा हूँ, जो भी मुझे करना है, बिल्कुल इत्मीनान से मन लगा के करना है। कोई कह रहा है, कोई जबरदस्ती है, वो तो नहीं होता है। ये बात हमें छत्रपति जी सिखाते हैं। और एक बात महत्वपूर्ण है, हमको सीखना बहुत अनिवार्य है, चाहे छात्र हो, स्टूडेंट हो, या फिर कोई बड़ा आदमी हो, छोटे बड़े उम्र के सभी लोग, हमें जिस क्षेत्र में काम कर रहे उसका बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। हमारे साथी कौन है, हमारे विरोध में कौन है, उनका भी हमें अध्ययन करना चाहिए। जो महाराज जी के जीवन में महाराज जी ने स्वयं किया हुआ हमें दिखाई देता है, जिसकी वजह से उनका जो गोरिला नामक एक युद्ध तंत्र है, यानी कि मराठी में जैसे हम या फिर कह सकते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट और ज्यादा मुनाफा, ये जो बात है कि ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम इस प्रकार सभी दृष्टियों से अभ्यास करेंगे तो जरूर जीवन में यशस्वी होंगे। यही उनका गोरिला युद्ध तंत्र है। इसके अलावा मैं एक आखिरी बात बताना चाहूंगा वक्त के हिसाब से, और जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि हम महाराज के शागिर्द कह सकते हैं, यूं तो मराठी में उसके लिए बहुत अच्छा शब्द है मावळा, हम महाराज के ही मावळे हैं। तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण दायित्व, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, तो अपना जो काम है, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं अभी जो भी है, उस क्षेत्र में मन लगा के काम करना, ईमानदारी से काम करना, कहीं पर भी किसी प्रकार की गलत बात न करना, और सही मार्ग पर काम करते हुए तरक्की प्राप्त करना। हम ऐसा काम करें सर कि हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे उस क्षेत्र में ऐसा काम करें कि शायद अपने आसपास वाले, उस क्षेत्र में काम करने वाले बाकी जो सभी लोग है उनसे अलग हटकर कुछ अच्छा करें, ऐसा लगे उनको कि मैं ये जो बंदा है ये भी सही मायने में काम कर रहा है। और ऐसा अगर करेंगे ना सर, तो इतिहास गवाह है। या फिर मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगा इस संदर्भ में कि लोग सहायता करने के लिए अपने आप चले आते हैं, बस हमें लगन से काम करते रहना है। ये जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है आज की वर्तमान युग में, कि लोग अपना काम समझते ही नहीं है, बिल्कुल हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कहाँ मेरा कुछ जाने वाला है, ये जो भावना होती है मैंने नहीं किया तो काम रह जाएगा कि हम, जैसे कि अभी इलेक्शन होने वाला, जैसे कि लोगों की यही भावना होती है, मैंने मतदान किया क्या, नहीं किया क्या, क्या फर्क पड़ने वाला है, मुझे कहाँ तो राजनीति में जाना है, कोई भी चुन के आए तो मेरे जीवन में कहाँ कोई परिवर्तन होने वाला है, ये जो दृष्टि होती है यह मनुष्य को सही नहीं, यह मनुष्य के लिए सही नहीं होती है। ये इस प्रकार की अगर सोच हर एक क्षेत्र में हमें मिलती है, और इसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, इसे हमें कतई नहीं भूलना है। आपको मुझे बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया, आपका तहे दिल से शुक्रिया सर। शुक्रिया,
1: ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत ही अच्छा आपने बताया विस्तार से इन चीजों को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं, सलाम नमस्ते, खम्मा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति,
2: ओम शांति, धन्यवाद सर।

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम का नाम है युवा मंच। दोस्तों, एक महान व्यक्तित्व ने कहा था कि वी कैन नॉट ऑलवेज बिल्ड द फ्यूचर फॉर यूथ बट वी कैन बिल्ड आवर यूथ फॉर द फ्यूचर। यानी कि हम युवाओं के लिए भविष्य नहीं बना सकते, लेकिन युवा ऐसे बना सकते हैं जो भविष्य का निर्माण करे। और ऐसा भविष्य अगर हम चाहते हैं जिसमें समानता हो, जिसमें सहजता हो, जिसमें अपॉर्चुनिटीज हो, जिसमें उन्नति हो, तो यूथ की बात सुनना, उनके मन में क्या है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। भारत एक युवा देश है और आज इस युवा मंच पे हमारे साथ मौजूद हैं युवा साथी जिनका नाम है राजेश। अब उनसे बहुत सालों बाद मिल रहे हैं, लेकिन परिचित होंगे वो लोग जो लगातार रेडियो से जुड़े रहते हैं। राजेश, आपका स्वागत है।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते राजेश। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी एक बार आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं जैसलमेर राजस्थान से हूँ। मेरा एजुकेशन बैचलर इन रूरल स्टडीज फ्रॉम देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हुआ है। बैचलर इन रूरल स्टडीज अर्थात ग्रामीण अध्ययन, गांव के बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, कैसे हम गांव को एक गांव बना सकते हैं जो वास्तविक अर्थों में एक गांव होता है। और मेरा मास्टर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से चल रहा है। और इसी के साथ साथ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पब्लिक लीडरशिप किया ऋषिहूड यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा से। साथ ही साथ मैं सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ और मैं सेवा से जुड़ा हूँ, जैसे एनवायरमेंट के लिए प्लांट लगाना और वाटर कंजर्वेशन हुआ, प्लास्टिक मुक्त भारत जैसे कई छोटे छोटे काम मैं अपने स्तर पे और कई मेरे दोस्तों के साथ मिलकर मैं ये काम करता हूँ। धन्यवाद
0: राजेश। सबसे पहले तो हमने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन हम जब युवाओं की बात करते हैं तो एक पिक्चर लोगों के मन में आती है कि वो गांव से दूर जा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि हम जो बच्चे हैं या आने वाली जनरेशन है, ये गांव में रहेंगे नहीं रहेंगे, या अपॉर्चुनिटीज के लिए भी उनके पास रीजन भी है। लेकिन आपने जो पढ़ाई चुनी वो आप गांव की बातें कर रहे हो और डेवलपमेंट की बात कर रहे हो। आपने एक स्टेटमेंट कहा कि गांव को गांव बनाना
1: जी,
0: तो मैं जानना चाहूंगी कि ये टॉपिक मतलब या ये विषय पढ़ाई के लिए आपने क्यों चूज किया।
1: एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिफरेंट था, नया नया सब्जेक्ट था। यूजीसी ने इसने 2016 में यूजीसी इस प्रोग्राम को लेके आई और मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, इकोनॉमिक्स वही अकाउंट्स वही बिजनेस स्टडी पढ़ना, तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं था वो सब चीजें पढ़ने में। मतलब था एक इंटरेस्ट कुछ चीजें पढ़ने में जानने के लिए, बट वो इंटरेस्ट सोच रहा था कुछ नया किया जाए। तो एज ए मैं यूनिवर्सिटी विजिट किया वहाँ का, पहले तो उस यूनिवर्सिटी में इतना एक चुंबकत्व था तो मुझे खींच लिया, तो वहाँ से मैंने उसे मुझे यूनिवर्सिटी अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ करना चाहिए, मुझे पोटेंशियल लगा वहाँ पे। तो एक नया नया प्रोग्राम आया, किसी ने मेरे को सजेस्ट किया, चार्टेड अकाउंटेंट थे तो बोले कि नया प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है। मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं इसमें, उसका एक पैम्पलेट देखा, उसमें देखा एग्रीकल्चर ऊपर में था और इकोनॉमिक्स था, मेरे दोनों ही सब्जेक्ट इंटरेस्टेड थे। हाँ, जबकि एग्रीकल्चर मेरा बैकग्राउंड नहीं था, इंटरेस्टेड था मैं उसके बारे में जानना के लिए और इकोनॉमिक्स के बारे में। तो जबकि वो दो सब्जेक्ट ही देखे थे, बाकी तो गांव के बारे में तो बहुत सारी चीजें थी उसमें, जैसे
0: अच्छा।
1: हाँ, हॉर्टिकल्चर्स के बारे में था उसके बारे में, और प्लांट्स हर्बल मेडिसिन प्लांट्स के बारे में, वाटर कंजर्वेशन के बारे में, एग्रीकल्चर में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, क्रॉप मैनेजमेंट हो गया। तो एक गांव से जुड़ी सारी स्टडी, होल स्टडी होती है उस प्रोग्राम में जुड़ी हुई थी। तो मैंने तो एक साल ये चीजों को समझने में ही मतलब यूज किया कि कैसे हम चीजों को समझे पढ़ाई के लिए। जब एक साल के बाद तो ऐसा हुआ कि इतना अटैचमेंट हो गया प्रोग्राम से, इतना इंटरेस्ट आ गया, तो शायद मुझे लगता कि और प्रोग्राम करके मुझे नहीं आता।
0: Okay.
1: तो इसलिए मैंने थोड़ा डिफरेंट सोचा और डिफरेंट जुड़ा, तो मेरी कनेक्टिविटी बहुत हो गई। आज तक मतलब मुझे सबसे 3 सालों प्रीसियस लगते अपनी लाइफ के, क्योंकि लगता है कि जीवन में उस टाइम में मैंने प्रैक्टिकली एंड थियोरेटिकली बहुत कुछ सीखा और इतना मजा आया इंटरेस्टेडली, और उसको मैं इतना कनेक्टेड और टच फील करता हूँ।
0: ओके राजेश, ये 3 साल का कोर्स है
1: जी,
0: ना ग्रेजुएशन है
1: जी,
0: तो क्या है कुछ सब्जेक्ट्स उसमें, क्या पढ़ाई होती है, थोड़ा सा आप और बताएंगे
1: जी। ये नया प्रोग्राम है बट इसमें अभी हमारे 6th बैच या 7th बैच चल रहा होगा, तो कुल मिला के इसमें 6 सेमेस्टर होते हैं और 4 सब्जेक्ट एवरी सेमेस्टर होते हैं, और उसके साथ में जी जेनिक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है जो आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट जाके सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। जैसे आई एम स्टूडेंट ऑफ द रूरल स्टडीज, ग्रामीण अध्ययन का मैं स्टूडेंट हूँ, मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट जाके हिस्ट्री पढ़ सकता हूँ एक सब्जेक्ट 4 सेमेस्टर तक। तो ऐसे ही मैंने जैसे 2 सेमेस्टर मैंने योग पढ़ा, 1 साल मैंने टूरिज्म के बारे में जाना, इंडिया का टूरिज्म कैसा है उसका बेसिक थिंग्स, तो ये तो जेनिक इलेक्टिव। इसके साथ हम स्किल एनहेंसमेंट कोर्स पढ़ते सकते हैं, आप अपनी स्किल कैसे बढ़ा सकते हो। जैसे स्किल एनहांसमेंट, मैंने एक थेरेपी सीखी, एक्यूप्रेशर, यज्ञ थेरेपी। हम कैसे एक्यूप्रेशर दे सकते हैं लोगों को, अपना कैसे एक्यूप्रेशर से ठीक सकते हो, बेसिक हम चीजें सीख सकते हो जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे वहाँ पे स्किल एनहांसमेंट में दूसरे भी कोर्स है, जैसे हैंडमेड पेपर बनाना और स्क्रीन प्रिंटिंग हुआ, फ्रूट प्रोसेसिंग हुआ, काउ बेस्ड प्रोडक्ट्स हुआ, और जो सेकंड सेमेस्टर होते हैं जो कोर सब्जेक्ट होते हैं वो रिलेटेड टू रूरल स्टडीज, जिसमें मेनली एग्रीकल्चर होता है, मैनेजमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जिसमें आ जाता है मैनेजमेंट के पार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आप पढ़ते हो, एनजीओ मैनेजमेंट आता है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जानते हो, कम्युनिटी के बारे में आप स्टडी करते हो, डेवलपमेंट क्या से जो सारी चीजें जुड़ी है उसके बारे में पढ़ते हो टोटली।
0: बहुत इंटरेस्टिंग है।
1: हाँ, जितना थ्योरेटिकली पढ़ते हो उतना प्रैक्टिकली आप करते हो।
0: प्रैक्टिकली कैसे?
1: जैसे सपोज कि हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो पूरा सब्जेक्ट थ्योरेटिकली लगता है। प्रैक्टिकली ऐसा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन विजिट करवाया जाता है।
0: ओके,
1: ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के विजिट के साथ साथ आप ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से मिलते हो, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को, स्ट्रक्चर पार्ट को समझते हो, वहाँ के जो काम कर रहा है उसके बारे में सारी चीजें जान लेते हो। एचआर का जो काम होता है उसको सारे चीजों को आप होल लेवल अपने समझते। दूसरा एक और सबसे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम जो हर जहाँ चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसमें है कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम चीजें पढ़ते हैं, तो उसमें हमें एक स्किल सीखनी पड़ती है। जैसे मैंने वर्मी कंपोस्टिंग सीखा पूरी तरीके से, कैसे उसको बनाते हैं छोटे से लेवल से लेकर बड़े लेवल तक। जैसे ये कि मैंने वर्मी कंपोस्टिंग में करता तो नहीं हूँ, ठीक है, जितना मेरा ये है कि कोई मुझे हेल्प लेता है तो मैं उसके यहाँ जाता हूँ, विजिट करता हूँ, उसको हेल्प देता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा और करिए, कैसे मार्केटिंग कर सकते इसकी, कैसे आप इसको बना सकते अच्छे से या सही नहीं बन रहा है, तो मुझे कोई चीज की भी लगता है कि मुझे नहीं जानकारी है तो मैं वापस अपने एक्सपर्ट टीम या फिर मेरे टीचर लोगों से पूछता हूँ। तो ऐसे करके सारी चीजें मैं जानकारी लेता हूँ और ऐड करता जाता हूँ एज ए स्टूडेंट। मुझे आज ही लगता है मैं हमेशा स्टूडेंट हूँ सब्जेक्ट का, तो लर्निंग मेरी ग्रोथ होती रहती है हमेशा और उसको प्रैक्टिकली बांटता रहता हूँ खुद के थ्रू।
0: अच्छा राजेश, जैसा आपने बताया कोर्स में बहुत कुछ है जो आपने सीखा, अगर मान लीजिए कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहते हैं
1: जी,
0: तो आप थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में या प्रोसीजर क्या होता है, कैसा एनवायरनमेंट है वहाँ, कुछ उसके बारे में बताएंगे? यूनिवर्सिटी के नाम के बारे में भी एक बार फिर से बता दीजिए, कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं?
1: जी, मेरे यूनिवर्सिटी का नाम देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, जो शांति कुंज हरिद्वार में है, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर है, और सब्जेक्ट का नाम है बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज, और डिपार्टमेंट का नाम है स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो स्कूल के अंदर वो प्रोग्राम आता है बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज, और ये 3 साल का प्रोग्राम है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू 4 साल का प्रोग्राम हो गया है, जिसमें आपका मास्टर भी इंक्लूडेड रहता है, तो इसमें और पॉसिबिलिटीज बढ़ गई है रिसर्च के लिए भी, मास्टर्स के लिए भी, तो आपकी करियर अपॉर्चुनिटी भी बढ़ गई डेफिनेटली। मोस्टली फोकस ये किया जाता है कि हम जॉब प्रोवाइडर बने, कि एक गांव में जाके हम एंटरप्रेन्योरशिप करें और ज्यादा से ज्यादा जॉब प्रोवाइड करें, जॉब गेनिंग की वजह, तो यही उद्देश्य रहता है इस प्रोग्राम का मेनली। फिर भी कोई भी आप अपना जॉब भी लेना चाहते हैं एनजीओ में या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में, तो आपको पूरा फुली सपोर्ट किया जाता है।
0: ओके
1: जी।
0: अच्छा, एडमिशन कैसे होता है?
1: हाँ, जी मैं वो भूल गया था, मैं बताना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ। एडमिशन के लिए ये है कि ऑनलाइन फॉर्म निकाला जाता है, जिसमें आपको पहले सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, ऑफलाइन भी भर सकते हैं वहाँ जाके, आप एक बार विजिट करोगे तो आपको और अच्छा लगेगा, चीजों को प्रैक्टिकली समझेंगे। तो फॉर्म भरने के बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में आपका 50 मार्क्स का नॉर्मल जीके होता है और उसके PYQ आपको मिल जाएंगे, और 20 मार्क्स का आपका होता है रीजनिंग और मैथ्स, और 20 मार्क्स का यूनिवर्सिटी के बारे में होता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो इसलिए होता है कि क्योंकि आप मैन तो है ना, यूनिवर्सिटी आपको बना रही है, तो उसकी कुछ कोर वैल्यूज होती हैं, तो आप कोर वैल्यूज से एडजस्टमेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप कितना समझते हो, तो जितना ज्यादा समझता है वो आके और भी एडजस्ट कर सकता है, तो एक संभावना रखी जाती है मोटा मोटी।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए वो 20 मार्क्स का एड किया जाता है कि बच्चा उससे पहले कितना परिचित है, और इतना भी वो नॉर्मल होता है, इतना कोई वो होता नहीं, आप जाके एक बार विजिट कर लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी 20 मार्क्स का, तो क्योंकि वो एक पूरा अलग सिनेरियो यूनिवर्सिटी का है, क्योंकि वो अपने आप में एक, मैं यूनिवर्सिटी बाद में कहता हूँ, पहले तो आई एम टेलिंग द मदर, मैं उसको हमेशा माँ कहता हूँ पहले।
0: अच्छा।
1: क्योंकि शायद मदर एक फील करती है ना, शायद वो, मैं ऐसा फील करता हूँ कि मुझे बार बार जाने का मन करता है, और एक माँ से जो सीखने को मिलता है वो यहीं सीखने को मिलता है, तो ये उसका आपका फिर एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद आपका एग्जाम यदि आप क्लियर कर लेते हैं, सीटें बहुत कम होती हैं, 10 से 15, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होता है, फिर आपको इंटरव्यू में ही ये जाना जाता है कि आप इसके लिए कितना इच्छुक है पढ़ने के लिए, और आपकी बेसिक देखा जाता है, आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ, कितने आप कैपेबल हो, वो सारी चीजें, और मेन बात है आप इंटरेस्टेड कितना हो, तो वो सारे इंटरव्यू में सारी बातें, एक इंटरव्यू जो फॉर्मली रूप से होता है उसमें व्यक्तिगत रूप से सब समझने की कोशिश की जाती है।
0: आपको याद है आपसे क्या सवाल पूछे गए थे?
1: हाँ, मेरे को तो एक तो मेरा जो बेसिक मैं जहाँ से पढ़ा था उसके बारे में पूछा, कि उससे बारे में इसलिए पूछा कि चीज है, तो हमें इंटरव्यू दे रहा था, एग्जाम मार्च में थे तो इंटरव्यू में कम से कम दे रहा था 3.5 महीने बाद, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ सारी भूल गया हूँ। फिर भी मैंने बताई, याद था मेरा, मेरे परसेंटेज अच्छे थे, तो रिफ्लेक्ट करता है डेफिनेटली। और साथ ही साथ ये पूछा गया था कि आप इस कोर्स के लिए क्यों इंटरेस्टेड है, बस मैं नहीं कि ये प्रश्न ये होता, आप ये करना क्यों चाहते हैं?
0: आपने क्या बोला था?
1: मैंने कहा बस मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं नया सीखना चाहता हूँ और मैं इस बैकग्राउंड से जुड़ा हूँ। जैसे मैंने आपको बोला ना, हर मैं जब हर यूथ से बात करता हूँ कि गांव के बारे में, तो बोलते हैं कि रियलिटी इज द गांव, गांव ही असली जिंदगी है, वो बोलते हैं हमेशा, बट वो गांव में क्यों नहीं रहना चाहते हैं? कि ऐसी है कि सपोज मैं आज गांव में रहना चाहता हूँ तो मेरा थोड़ा लाइफ स्टाइल अलग हो गया, जैसे कि मुझे 24 hours लाइट चाहिए, ठीक है, दिन में तो आप बिना लाइट के भी काम चला सकते हो, रोशनी उसमें पढ़ सकते हो, रात्रि में भी आप कुछ देर के लिए तो आपको रोशनी चाहिए 9-10 बजे तक, तो गांव में कभी कभी उसका भी प्रॉब्लम्स रहता है, आज के भारत में भी अभी भी मतलब चीजें सुधर रही है तो बेटर हो रहा है, और बेसिक जो थिंग्स है वो गांव में थोड़ा और अच्छे इम्प्रूवमेंट हो सके तो फिर बेटर हो सकता है। जैसे गांव हमारे इतने अच्छे थे, कभी कोई बीमार पड़ता ही नहीं था तो हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं थी, और हमारे गांव में गुरुकुल सिस्टम था पहले से, तो बेसिक चीजें बच्चा वहीं सीख लेता, वहीं पढ़ लेता था, वहीं अध्ययन कर लेता। आज उसकी मतलब एक कहते हैं ना कि भाई टीचर है उसके लिए, स्कूल्स बना है, लाइब्रेरी बनी है, बट वो कितनी ओपन होती, कितना खुलता है, टीचर्स कितना आता है, अब चलो कितने भी हम अकाउंटेबिलिटी रख ले ऑनलाइन अटेंडेंस के माध्यम में भी, टीचर कितना आता है, फिर भी हमारे लिए एक नया ही है कि वो टीचर आके भी बैठ जाता है, वो कितना सिखाने की कोशिश कर रहा है। फिर भी गांव में कुछ बच्चे इतने कनेक्टेड इसलिए भी रहते हैं कि कुछ टीचर बहुत अच्छे मिल जाते हैं, वो आते डेफिनेटली सरकारी स्कूल्स में बहुत अच्छे टीचर आते और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और इसलिए वो बहुत अच्छा भी करते हैं। तो गांव मतलब रियलिटी है कि आपको ओरिजिनलिटी मिलती खाने पीने से संबंधित भी, हवा एकदम ऑक्सीजन लेवल डिफरेंट। आप यदि गांव शहर में 8 बजे उठते हो, गांव में आप 6 बजे उठ जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि वहां का ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है, आपका नींद अच्छी हो जाएगी आपकी, तो कह सकते हैं ओरिजिनलिटी इज द विलेज, तो स्वर्ग तो है ही वही।
0: ओके, तो आपको जब आपने पढ़ा, जब आपने 3 साल ये कोर्स किया, जैसे कि आपके मन में कोई ऐसी पिक्चर थी या कोई ऐसी बात थी जो चेंज हुई, या आपको लगा कि एक नया परसेप्शन मिला, आपको नई सोच आपके अंदर जगी?
1: मतलब एक लाइफ में होता है ना, एक यूथ के अंदर कुछ करना है, मतलब कुछ तो करना है भाई, ऐसे ही खा पी के मर जाएंगे तो कुछ हम क्या करके गए, ठीक है, तो लगता है कि यार क्या किया जाए, व्यक्ति हुई सो एक्सप्लोर करता है, तो फिर एक पिक्चर ये डेवलप हुई कि भाई मुझे एक ज्यादा तो गांव है और सब कितने विकसित है, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम है, बट वो प्रॉब्लम मैं कभी नहीं सॉल्व कर सकता, गांव के लोग जब तक नहीं जाते तो हम वो सिनेरियो कैसे बदलें, उनसे कैसे बात करें, उनको कैसे समझे, ठीक है, फिर एक संकल्प ये लिया, हम संकल्प ले सकते हैं उसके ऊपर भरपूर प्रयास कर सकते हैं, तो एक संकल्प मैंने ये लिया कि मैं जीवन में कुछ भी करूं, मैं चाहे सिविल सर्विसेज भी जॉब लूँ या फिर मैं अपना एंटरप्रेन्योरशिप करूँ या बिजनेस करूँ, मैं लाइफ में कहीं पे भी हूँ, बट मेरा एक लक्ष्य बन गया है कि मैं जे अपने जीवन के अंतिम तक एक गांव विकसित करना है, ठीक है, और वो गांव मिलके ही हो सकता है, तो उसके लिए मैं जितने प्रयास कर सकूँ वो करना, एक मेरी ये चीज चेंज हुई। पहले आज भी मतलब मैं थोड़ा सा फिर भी वो रहता हूँ कि कैसे होगा, मैंने कई लोगों से बात भी की, कई लोगों ने मुझे हेल्प भी प्रोवाइड की, क्योंकि अच्छे काम के लिए आपको सपोर्ट करने के लिए अच्छे लोग बहुत आसानी से मिल जाते हैं, आपको पूरी फुल्ली सपोर्ट करते हैं, आपके डिजाइन लेवल पे, आपको समझने के लेवल पे, हम कैसे स्टार्टिंग पॉइंट से कर सकते हैं, तो एक तो ये मतलब छोटा संकल्प मैं समझता हूँ, बट वो सब कहते हैं कि छोटा नहीं, बहुत बड़ा संकल्प है तुम्हारा। मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, मुझे एक गांव अच्छा विकसित करना। फिर मैंने ये बात किसी के सामने रखी तो उन्होंने बोला कि एक गांव ही क्यों करना, सब क्यों नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो सार्थकता नहीं है, फिर भी मैं एक पॉजिटिवनेस रखता हूँ अपने साथ में, हाँ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा गाँव डेवलप करें जो रेप्लिकेटेड मॉडल। ये मुझे नई चीज सीखने में मिली, मैंने जिससे भी बात की तो मैंने कहा ऐसा भी प्रयास किया जा सकता है और ऐसा ही करना चाहिए। तो अभी तो मन में यही है कि प्लान
0: मॉडल विलेज बना सकते हैं,
1: एक मॉडल विलेज बनाना है और जितने भी मॉडल विलेज है उनको समझना, इससे जुड़े हुए लोग जितने भी है उनसे बात करने मुझे बहुत मजा आता है, जो कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है और जो फील्ड से जुड़ा हुआ है, जो गांव से जुड़ा हुआ है, उनसे मुझे बात करके, उनसे कांटेक्ट बना के और उनसे जब चीजें नई नई सीख के मुझे बहुत मजा आता है। कुल मिला के मेरे को एक जो सिनेरियो चेंज हुआ ना, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि वो लर्निंग का बहुत हुआ। इससे पहले हम एक ना होती है ना, जैसे मुझे कुछ सीए बनना है तो मैं सीए के लिए ही पढ़ाई करूंगा, ठीक है, वो कितना इंटरेस्टिंग कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। तो ऐसा ही है कि शायद मैं इस काम कर रहा हूँ ना, मुझे इंटरेस्ट बहुत आता, मजा बहुत आता है, तो मेरे लिए डेफिनेटली काम बहुत अच्छा हो जाता है।
0: ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जो पढ़ाई की, जो आप करना चाहते हो उसमें आपको मजा आता है,
1: जी
0: बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा राजेश, जैसे आपने कोर्स के बारे में बताया, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया, एडमिशन के प्रोसीजर की बात की, ये सब क्या मतलब कब निकलते हैं फॉर्म्स और ऑनलाइन भर सकते हैं क्या या जाना पड़ता है वहाँ पे?
1: जो ऑनलाइन आप आराम से भर सकते हैं और यूजीसी का मोस्टली यूजीसी से यूनिवर्सिटी कनेक्टेड है, इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड, फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड, और आपका बहुत कम फीस इस द कहते हैं मेंटेनेंस फीस। और ये है कि शायद मुझे उन्होंने टच इसीलिए दिया कि वो बहुत ही मेंटेनेंस में आपको बहुत अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है। फिर ये है ना कि आज मैं यूनिवर्सिटी के लिए हमेशा के लिए तैयार रहता हूँ कुछ भी करने के लिए। यूनिवर्सिटी जैसे लोगों को अच्छे कनेक्टिविटी करना, लोगों यूनिवर्सिटी के लिए, डिपार्टमेंट के लिए करना, गांव के लिए करना, तो शायद वो आपके पास यदि आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हो, बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, वहां से करोड़ों रुपए फीस है, तो आप वहां टच नहीं लेके जाते हो। तो यहाँ कम फीस में आप बहुत अच्छा सीख के जाते हो, ठीक है, फर्स्ट थिंग।
0: तो वहाँ हॉस्टल भी है?
1: जी, रेजिडेंशियल ही कैंपस है, आपको अनिवार्य रूप से हॉस्टल में ही रहना पड़ता है क्योंकि वहाँ का लाइफ जीना होता है।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो आपको हॉस्टल में रहना पड़ता है, आप सुबह जल्दी उठ सकते हो, आप कल्चरली बहुत वहाँ रिच हो सकते हो, आप अपने नॉलेज के स्तर पे भी, पढ़ाई के स्तर भी बहुत अच्छा, लाइब्रेरीज भी है वहाँ पे, तो मतलब बेसिक एक यूनिवर्सिटी में होता है इंटरनेशनल लेवल पर सारा है।
0: क्या बात है?
1: मतलब रिसर्च के लिए भी बहुत संभावना है, जब आप कितने डेडिकेटली और इंटरेस्टेड हैं
0: आपके ऊपर डिपेंड करता है,
1: वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना लेना चाहते हो, वहाँ देने वाले बहुत है।
0: बहुत है, क्या बात है, तो मतलब बहुत ही सुंदर यूनिवर्सिटी लग रही है।
1: मुश्किल से आप यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हैं, और जुलाई में एक बार एडमिशंस ओपन हो जाते हैं, जुलाई के आसपास, मतलब इस बार तो जुलाई में इंटरव्यू भी हो गए थे, शायद एक बार आप देख सकते हो, अपडेट रहना पड़ता है
0: वेबसाइट पे,
1: वेबसाइट 1 मई के आसपास शायद बच्चों के रिजल्ट आ जाते हैं और उस समय एडमिशंस स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आपका एग्जाम डेट भी तय हो जाता है। और आपके भारत में करीबन 5-6 सेंटर्स भी हैं, जैसे लखनऊ हो गया, हरिद्वार खुद हो गया मेन, और महाराष्ट्र में भी शायद कहीं पे है, जैसे दुर्ग वगैरह है, छत्तीसगढ़ में, तो भोपाल है MP में, तो ऐसे ही मतलब उनके सेंटर्स बने हुए हैं, तो आप उस सेंटर्स पे जाके एग्जाम दे सकते हो, और फिर इंटरव्यू के लिए आपको यूनिवर्सिटी ही जाना पड़ता है।
0: अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो इंटरव्यू आपका वहीं होता है?
1: वहीं होता है, फिर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका एडमिशन ले सकते हो आप वहाँ।
0: ओके, तो इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज होंगे और भी यहाँ पे?
1: जी,
0: तो अच्छी बात है दोस्तों, जैसा कि आपने सुना अभी राजेश को, आप भी वेबसाइट विजिट करें, मैं तो कहूंगी देव संस्कृति की बात कर रहे हैं हम यहाँ, साथ साथ और भी यूनिवर्सिटीज जो है उनकी वेबसाइट समय पर विजिट करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है राजेश कि जो बच्चे हैं वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन समय निकल जाता है, यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसीजर का एक समय है, निश्चित समय है।
1: बिल्कुल,
0: तो अगर आप 12वीं में है तो आप उसी साल पहले से देख लें कि अगले साल एडमिशन कब होगा, आप लास्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करें, नहीं तो कई बार आप जो करना चाहते हैं हो सकता है वो कोर्स निकल जाए या डेट निकल जाए या आप को अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में पता ही ना लग पाए।
1: बिल्कुल।
0: और क्योंकि हम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो यूजीसी का नाम लिया, आप वहाँ पे यूजीसी की वेबसाइट पे अगर जाएंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, आप वहाँ पे भी देखेंगे तो प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है
1: जी।
0: तो क्लिक करके आप वहाँ से भी वेबसाइट में जा सकते हैं। जानकारी जरूर रखें, इंटरनेट युवाओं के पास है तो उसका इस्तेमाल सही इस्तेमाल अपनी शिक्षा के लिए जरूर करें।
1: YouTube पे भी आपको उसके एडमिशन प्रोसेस के लिए भी आपको और विस्तृत में आपको जानकारी मिल सकती है। आप इंटरव्यू कैसे दें, एग्जाम कैसे लिखें, उसके लिए भी आपको ऑनलाइन वीडियोस मिल जाते हैं बहुत ही आसान में, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी हाथ में है, बहुत ही आसान हो गया सारी चीजें। मेरे लिए ये था कि मैंने फॉर्म भी किसी दूसरे शहर में जाके भरा था।
0: अच्छा।
1: हाँ, ऐसा था। और मतलब कोई साइबर कैफे वाले विश्वास भी नहीं होता कि भर पाएगा, तो फिर मैंने लगा को विश्वास पाते साइबर कैफे, उससे जाके भरना पड़ा मुझे।
0: अच्छा, ओके।
1: और एग्जाम

0: बतकी की आपने ग्रेजुएशन किया, एक थोड़ा एनवायरनमेंट के बारे में वहाँ के कैसा है कुछ बताएं यूनिवर्सिटी का।
1: सबसे बड़ी और अच्छी चीज तो डीएसयू का एनवायरनमेंट है। जब मैंने आदरणीय प्रतिकुलपति महोदय से मैं जब मिला तो उनका कहना था कि राष्ट्र उपराष्ट्रपति जी एक दिन के लिए आते हैं, वो दो दिन रुक के जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज सिंह जी आते हैं, वो भी दो दिन, एक दिन के लिए प्लान करके आते हैं, दो दिन रुक के जाते हैं। द वाइब्रेशन इज द वेरी वंडरफुल ऑफ द यूनिवर्सिटी, बहुत ही अच्छा। मतलब मैं उसको फील ही करता हूँ, बता कभी सकता ही नहीं हूँ। आप जाके हो फील करते, जैसे रिसेंटली मेरा भाई है ना, मैंने उनको बोला हरिद्वार जाने को, मैंने कहा ऋषिकेश तो तुम जाना जाना, यूनिवर्सिटी जरूर जाना। वो गया, एंटर किया, वीडियो कॉल किया मुझे, थोड़ा और 10 कदम चला, बोले कि भाई तेरी यूनिवर्सिटी क्या है, गजब है। तो बस वो मैंने कहा, हमने कहा तुम जाके फील ही कर सकते हो, बहुत अच्छा वातावरण वहाँ पे, आप कितना अच्छा वातावरण और बना सकते हो, ये और भी महत्वपूर्ण है। और बच्चे बनाते भी हैं, यूनिवर्सिटी जैसे मार्केट का किंग कौन होता है, कस्टमर होता है ना, तो इसी प्रकार यूनिवर्सिटी का किंग तो बच्चे लोग ही होते हैं, बच्चे यूनिवर्सिटी के वही होते हैं। जब मैं भी इंजीनियरिंग के छात्रों से मिलता हूँ, मैं कहा आपका यूनिवर्सिटी मतलब ऐसा है वैसा है, बट बनाने वाले भी तो आप ही लोग हो, आप प्रयास करो, डेफिनेटली अच्छा बनेगा। आप एक पौधा तो लगाओ, 10 लोग और मोटिवेटेड होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, बट आप प्रयास तो करो। तो ऐसा एक बच्चे बहुत भरपूर प्रयास करते, फैकल्टी बहुत हेल्प करती है वहाँ पे, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा वातावरण है। जैसे एक्यूप्रेशर पार्क, आपको नेचुरल जूस मिलता है वहाँ पीने के लिए, बहुत ही सस्ते में, मतलब कह सकते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे, बहुत अच्छा कैंटीन है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, एकदम प्योरिटी वाला खाना। तो आज भी डीएसयू का मुझे बहुत याद आता पर्सनली, क्योंकि आप कई हॉस्टल्स में रहते हो ना, तो फिर आपको समझ आता है कि डीएसयू का कैसा खाना, हॉस्टल का कैसा खाना। तो मुझे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, एकदम सिंपल खाना और बेहतरीन। जब कभी आप, मैं 5 साल में, 3 साल तो वहाँ रहा, कभी बीमार नहीं पड़ा, उससे भी 2 साल पहले भी कभी बीमार नहीं पड़ा, तो 5 साल में कभी बीमार पड़ा ही नहीं वहाँ पे।
0: क्या बात है,
1: कभी मेरे को बुखार तक नहीं आया वहाँ पे। थोड़ा ठंड ज्यादा पड़ता है तो जरूर आपको जुकाम हो सकता है, फिर भी ये जैसे आप ये ना कि जैसे मैं हूँ स्टूडेंट रूरल स्टडीज का, साथ में पढ़ रहा हूँ जन कलेक्टिव जी, योगा भी सीख रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ में आप जल नीति भी सीख रहे हो, षटकर्म सीख रहे हो, सूत्र नीति सीख रहे हो, ये साथ में जो चीजें सीखते हो ना, आप खुद को पता नहीं चलते कि हमारे स्किल में और क्या गेन हो रहा है।
0: बाद में रियलाइज होता है कि हमने जो सीख लिया इस वक्त, बहुत लोग हैं पता है जो सीखना चाहते हैं
1: जी,
0: जिनको लगता है, क्योंकि हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और स्वस्थ रहने के लिए जैसा आपने कहा बहुत सारी विधाएं हैं, योगा है खास तौर से, और अगर आपके स्टूडेंट लाइफ में वो शामिल हो जाए तो शायद आप जीवन भर नहीं भूलेंगे।
1: जी जी बिल्कुल, मैंने रियलाइज किया कुछ दिन पहले कि एक मतलब सफल व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है ना, तो उसका लाइफ स्टाइल होता है, बहुत लाइफ स्टाइल होता है, कैसे कितने बजे सोता है, कैसे सोता है, कैसे वो रहता है, तो शायद मुझे लगता है बहुत ही रिफ्लेक्ट करता है। मैं ये चीज फील किया और कई चीजें हम फील करके ही सीख पाते हैं। फिर मुझे लगता है कि यदि हम 5 बजे उठते हैं तो हमारा बॉडी हेल्दी रहती है, सुबह एनवायरमेंट बिल्कुल अलग रहता है, एनर्जी और रहती है, कोई लोग 2 बार दिन में नहाते हैं तो उसे और एनर्जाइज होते हैं, तो ये हमारी छोटी छोटी आदतें और लाइफ स्टाइल का जो हिस्सा होती है हमको बहुत ही आगे तक ले जाती है।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने राजेश, जो ये आपने बात कही है, कई लोग ऐसे हैं, जब हम बात करते हैं जो सक्सेसफुल, जिन्हें हम सक्सेसफुल मानते हैं, जिनके बिजनेस हैं बड़े बड़े, या जो कोई कार्य है एनजीओस भले चला रहे हैं लेकिन एक अच्छे स्तर पर चला रहे हैं, या जो शुरुआत भी कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि उनका लाइफस्टाइल अगर उनसे पूछा जाए तो एक जो सामान्य लाइफस्टाइल है जिसमें ये सब चीजें शामिल नहीं, उससे भेद तो पाएंगे, अंतर तो पाएंगे। अच्छा राजेश, और कोई ऐसी बात है जो आपने ऑब्जर्व की और आपको लगता है कि युवाओं के अंदर या युवाओं को मालूम होनी चाहिए, जो आपके साथी हैं आपको लगता है उनको मदद मिलेगी ये बात?
1: अच्छा ऑब्जर्वेशन तो
0: कोई भी ऐसी लाइफ के प्रति आपकी बात,
1: ऑब्जर्वेशन तो मेरी बहुत है। मैं ये है कि युवा हमेशा अपने आंख कान और ये सब जो इंद्रियाएं होती है खुली रखे।
0: ओके।
1: दूसरा है कि वो सेल्फ अपने बारे में अवेयर हो, चाहे वो स्पिरिचुअली लेवल पे, आत्मा के लेवल पे भी, और फिजिकली बॉडी के लेवल भी वो अवेयर हो, तो अवेयर होना जरूरी है। और अवेयर यूथ है ना, तो हमारे अंदर पावर होनी चाहिए जिज्ञासा की, हम जिज्ञासा की बात है, हमारी जानने की जो इच्छा शक्ति है, हमेशा हमें अवेयर होना चाहिए। जैसे ये कि मैंने प्रश्न किया

0: राखी के ऊपर बहने ही क्यों राखी बांधती है, भाई क्यों नहीं बांध सकता? ठीक है, ये मैंने प्रश्न किया। तो हमारे अंदर जो क्वेश्चंस करने का भाव है ना, वो आना चाहिए यूथ के अंदर में, वो सबसे ज्यादा डेवलप होना चाहिए। यदि हम आपने ये करना प्रारंभ कर लिया तो आपका नॉलेज भी गेन हो जाएगा, आप अवेयर और ज्यादा हो सकते हैं। ये यूथ में थोड़ा सा कई यूथ करते भी हैं और वही युवा कहलाते हैं। और हम एज ए उम्र की बात करें तो उम्र में एक मैं कुछ दिन पहले ही मैं अपना एक स्टोरी छोटा सा सुनाना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। मैं 11 12th में जिस हॉस्टल में रहता था उन वार्डन सर से मिलने गया। मैं कहा सर रूम तो है नहीं आपके पास खाली, मैं आना चाहता था। तो बोले फिर भी मैंने उनसे मिलने गया मुझे, वो मतलब हमेशा ये कहते हैं फोन नहीं करते बच्चे लोग। तो मैं ठीक है सर मैं मिल के ही आता हूँ। मिलने गया तो मैंने कहा सर आप 25 साल बच्चों के साथ रहे, आपका एक्सपीरियंस क्या है, अनुभव क्या है? तो बोलेंगे बेटा मैं फैमिली को समय तो कम दे पाता हूँ, अपने बच्चों को समय कम दे पाता हूँ, बट एक चीज अनुभव ये करता हूँ कि बच्चों के साथ रह के बूढ़ा महसूस नहीं करता हूँ। हमेशा वो बूढ़ापन आता ही नहीं इस जीवन में भी, पता नहीं वही एनर्जाइज फील करता हूँ बच्चों के साथ, नई नई चीजें सीखने को मिलती है। तो मुझे लगा बहुत अच्छी बात है ये। तो मैंने कहा सर जो भी अब कुछ नया होगा आपको समय निकाल के आना है, हम बुलाएंगे वहां पे भी। तो बोले ठीक है बच्चा। तो मुझे अच्छा लगा उनसे मिलके। तो एक युवा के मन में ना हमेशा जो मैंने कहा प्रश्न पूछने का भाव होना चाहिए, साथ ही साथ जानने की इच्छा, पढ़ने की इच्छा, लिखने की इच्छा, सीखने की इच्छा और आनंद जिसको हम कहते हैं उसको एक लॉन्ग टाइम लॉन्ग टर्म आनंद लेने के लिए कला के माध्यम से जुड़ना चाहिए उसको हमेशा। तो यूथ को मैं यही समझता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने को बेहतर बनाए और दुनिया को कैसे बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं वो करें।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लगी राजेश की, जो हमारी प्रश्न पूछने की जो क्यूरियोसिटी है, हम बच्चों को देखते हैं, बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं
0: जी,
1: और लेकिन उतना ही वो सीखते हैं, डेवलप होते हैं
0: जी।
1: जैसे जैसे हम बड़े जाते हैं ना, कई बार हमें एक दो बार अगर बोल दिया जाता है कि अरे कितना बोलते हो, या चलो चुप हो जाओ, अरे कोई इसका जवाब नहीं है, कभी ऐसा भी होता है। और कभी ऐसा होता है कि धीरे धीरे हमें लगता है अब हम बड़े हो गए तो हमें सब पता होना चाहिए
0: जी,
1: लेकिन इतना कुछ है लाइफ में सीखने के लिए कि हमें सब पता नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए पूछते रहे, पूछने में शर्म नहीं करें।
0: बिल्कुल, और ये है कि जो जितना बच्चा पूछ रहा है उसकी जिज्ञासा को भी हम कैसे शांत करने के लिए हम रास्ते खोजते रहते हैं, बट ये उसका मन तो देखो कितना वो प्रश्न पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, कितना जिज्ञासा है। जैसे मैं छोटा होता था ना तो मैं पूछता था, कोई आता था घर पे, कोई रिलेटेड मतलब कोई ऐसे या गांव में होता था, कोई नया अनजान व्यक्ति भी आ जाता था कभी गांव में पानी पीने के लिए, और कोई शहर का अंधा है तो छाछ वाछ के लिए भी आ जाते। तो मैं पूछता आप क्या करते हैं, तो ये फिर पूछता था आपकी सैलरी कितनी।
1: अच्छा।
0: एक प्रश्न पूछने का तरीका।
1: हाँ।
0: तो बोले मम्मी को कि बच्चा बड़ा वो है कि बड़ा क्यूरियोसिटी वाला, और सैलरी का आज तक हम कोई नहीं पूछता था ऐसे प्रश्न, मतलब मुझे बोला कि सैलरी नहीं पूछना चाहिए किसी से। मैं कि ठीक है, बट एक प्रश्न पूछने का वो जिज्ञासा होनी चाहिए हमको, क्योंकि हम दुनिया और ज्यादा से अच्छे समझते। दूसरा मेरा ये रहा कि मैं पढ़ना है ना, जब 3rd क्लास में था जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया था, वो ऐसी स्टोरी है कि न्यूज़पेपर लाना ट्रेन में आता था गांव में शहर से, और शहर से मतलब न्यूज़पेपर ले आता था घर पे, पहले तो पढ़ना नहीं आता था, वो पिक्चर से देख लेते खुश हो जाते थे हम उससे समझते, फिर ये कि पढ़ना जब आया तब तक तो घर में है ना, पहले वो पूरा अखबार ना पढ़ ले समझ ले तब तक किसी दूसरे के पास जाएगा।
1: अच्छा।
0: हाँ। और ऐसा होता था।
1: हाँ, तो कितने बड़े थे आप जब पूरा पढ़ते थे आप बैठ के?
0: मतलब मैं पूरा अखबार अच्छे से खंगालता था, मतलब उससे बहुत सारी चीजें मुझे याद भी रहती थी। अच्छा। दुनिया में क्या क्या हो रहा है।
1: स्कूल में ही थे आप तब?
0: हाँ, जब स्कूल में पढ़ता था पूरा अखबार 7th क्लास में, पूरा अखबार 6th 7th क्लास।
1: अच्छा।
0: सुबह सुबह जल्दी स्कूल अखबार आ जाता था, मैं सुबह जल्दी उठ जाता स्कूल के लिए, तो मेरे पास आधा घंटा रहता था, तो जरूर मैं 20 मिनट स्कूल यहीं पढ़ लेता था, कभी कभी स्कूल में जाकर अखबार मिल जाता था, 10 मिनट जल्दी चला जाता था वहाँ पढ़ लेता था, फिर वापस आके खाना खाने के बाद फिर अखबार और पकड़ो और पढ़ो अखबार।
1: आपको अच्छा लगता था मतलब?
0: हाँ, हिंदी अखबार मैंने मतलब हमेशा वही पढ़ा, तो मुझे हिंदी आज भी अच्छा लगता है। आज तो मैं मतलब और भी हिंदी न्यूज़पेपर,
1: जानकारी मिलती है आपको,
0: हिंदी मैगजीन्स, चाहे वो क्या बोलते हैं बच्चों की जो चंपक भी होती है इंग्लिश हिंदी में, तो वो भी पढ़ता हूँ कि इसमें नया क्या है, हम कैसे लिख सकते हैं चंपक, क्या हम लिख सकते हैं,
1: अच्छा
0: हाँ,
1: इस मतलब इस भाव से आप पढ़ते थे उसको?
0: इस भाव से अब पढ़ना प्रारंभ किया है मैंने, मतलब वो मतलब चंपक लिख रहा है तो किस के लिए लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, तो ये सब प्रश्न करके हम उस चीजों को समझे, मजा आता है बहुत। जैसे मैं चंपक रेलवे स्टेशन खरीद के पढ़ रहा था, पास में कुछ बैठे थे लोग, तो बोले मैंने दो मैगजीन खरीदा, उन्होंने भी मुझसे मांग लिया, मैं पढ़िए, तो मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का भी और मजा आता है, क्योंकि एक मैं चाहता हूँ ना भारत को और अच्छा भारत कैसे बना सकते, तो एक हमको कल्चर डेवलप करना पड़ेगा पढ़ने का लिखने का। जैसे मुझे मेरा एक दोस्त था, उसका भी टारगेट है, मेरा भी टारगेट है कि हम कम से कम भारत में हर 10 किलोमीटर तो नहीं, एक गांव में अच्छा लाइब्रेरी डेवलप करे, जो कम्युनिटी लाइब्रेरी हो, गांव के लोग ही उसको रख रखाव करे और गांव के लोग ही उसमें अच्छी अच्छी बुक्स ला के रखें, ठीक है, और उसमें पढ़ने का एक कल्चर डेवलप करे, क्योंकि गांव में ना लोगों पास समय भी होता है, वो समय किसी और चीजों में बैठते, जैसे एक अंकल थे वो मैं एक बार पढ़ के फिर वो पढ़ते थे, वो बोलते मैं नॉवेल्स भी पढ़ता हूँ, ठीक पढ़े लिखे थे, और तो फिर ऐसा है कि गांव में कई कम्युनिटी हॉल भी बने होते हैं सरकार की तरफ से, हम वहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं इजीली बुक्स और एक कल्चर डेवलप कर सकते हैं। आजकल तो राजस्थान में हर जहाँ देखे थे लाइब्रेरी का अलग ही नया ही स्वरूप दिख रहा है, बच्चे वहाँ जाके फीस दे के पढ़ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कम्युनिटी पे जो होल बने हुए वहाँ पे हम गांव के मिल के लोग वहाँ पे लाइब्रेरी डेवलप कर सकते हैं,
1: गांव के युवा भी मिलकर ये काम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और पढ़ाई से ज्यादा शिक्षा से ज्यादा डेवलपमेंट कहाँ से होगा, मतलब हमें नई नई चीजें पता चलेंगी और आइडियाज भी आएंगे उससे, और जो बच्चे कई बार है कि अक्षर ज्ञान है ज्यादा पढ़ते नहीं, तो अगर स्कूल में नहीं भी जा रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो एज ज्यादा हो गई है, तो किताबों के माध्यम से पढ़ सकते हैं, शिक्षित हो सकते हैं, फायदे तो बहुत सारे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात आपने बोली राजेश, एक छोटी सी लाइब्रेरी गांव के लोग मिलकर भी इसको कर सकते हैं।
0: जैसे ये है ना कि प्लास्टिक को खत्म करना है, तो मैं जब सोचता था कि मोहल्ले में किया जाए, मगर इतना आसान भी नहीं है, लोगों को बात बताना समझाना मतलब इतना इजी है नहीं ये जो अपन सोच रहे हैं, और जब वो पढ़ते हैं ना तो खुद से करते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है कि इसको मैं खुद करूं, जैसे मेरा प्लास्टिक का कचरा मैं कहीं भी जाता हूं अपने बैग वाले जो साइड में होता है ना पानी की बॉटल लगते हैं वहां डाल देता हूं, या फिर कुछ भी छोटा जगह होता है उसमें पॉलीथीन अलग कर देता हूं, और घर में आके उसको सेग्रीगेशन कर लेता हूं, पॉलीथीन अलग, कागज अलग, ठीक है, कांच और लोहा समथिंग अलग अलग। हम मैंने घर पे लेवल पे भी है ना अपना पूरा कचरा है ना व्यवस्थित कर सकते, ऑर्गेनिक मैटर्स को एक अलग बाल्टी में डाल दिया, पौधों के लिए वो ऑर्गेनिक मैटर तैयार कर लिया, घर में प्लांट्स लगा दिए तो ऑर्गेनिक मैटर उसमें यूज कर लिया, बाकी सारी चीजें सारी मार्केट में सेल हो जाती है, पॉलीथीन सेल हो जाता है आपका, मतलब ये कि आप समझ रहे हो कोई भी चीज पैकेजिंग में ले आ रहे हो तो आपका पैसा मार्केट उस आपसे ही ले रहा है, तो आप उसको फेंक रहे हो तो मतलब अपना लॉस कर रहे हो सीधा सीधा। कागज है कि वो बिक सकता है, छोटे अमाउंट को बड़े अमाउंट में इकट्ठा करके, अब नहीं भी बेचना चाहते हो तो आप जो जहाँ पे सेल कर सकते हो उसको ऐसे ही देखे आओ, क्यों वो बेच सकते हैं, कम से कम रिसाइकल में आएगा। तो ऐसे ही सबसे अच्छी सेवा कि अपने स्तर पे हम एनवायरमेंट को बेटर बना सकते हैं। एक बात मेरे सर ने कहा था कि हम अपने कर्म भूमि को ही कर्म क्षेत्र बना सकते हैं, तो यही है हमारी कर्म भूमि, हम जहाँ जी रहे उसको ही अच्छा बनाओ, बाकी आपको करने की जरूरत ही नहीं है
1: क्या?
0: बाकी ये आपसे देख के हम और लोग भी करेंगे, आप उनको बताइए कि ऐसा ऐसा हम करते हैं, आपको डस्टबिन नहीं है तो हम डस्टबिन ला के दे देते हैं, बट आप अलग तो करिए, ठीक है, आप नहीं फेंक सकते हो कचरा, नहीं गाड़ी में डाल सकते, हमको ही दे दीजिए, अरे हम ही कर देंगे, आप हमारे पड़ोसी तो कम से कम कचरा हमारे सामने तो नहीं फेंकेगा। तो ये छोटे छोटे भाव हमको पैदा करना पड़ेंगे और हमको खुद को ही करना पड़ेगा। जैसे कि पहले फर्स्ट तो मेरे लिए मोहल्ले को तो क्या मेरे परिवार वालों को समझाना मेरे लिए क्रिटिकल हो गया था।
1: अच्छा
0: हाँ, क्योंकि आदत पड़ी हुई उनकी,
1: इतना समय से
0: इतना आसान नहीं है। जैसे मैं बस में गया तो उसको बोला कि मैंने पॉलीथिन बाहर मत फेंकी, मुझे ही दे दीजिए, मैं ही रख देता हूँ, तो वो शायद मुझे हमसे लर्निंग ले जा सकता है, जो हम देख के जो सीखता है ना वो। तो अब ये कि कम से कम मैं घर वालों को तो समझा चुका हूँ, अब ये कि सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा जब भी समय मिले मेरे टीम के मेंबर्स है और वो कार्यक्रम भी करते रहते पॉलीथिन से, हम बच्चों में जैसे पिछली बार हमने गणेश महोत्सव मनाया था, मिट्टी का गणेश जी, और एक ही थीम था कि पॉलीथिन को हम कोई भी चीज पॉलीथिन लाए नहीं थे, बाजार से प्रसाद भी लाते थे पॉलीथिन में नहीं, फूल भी लाते थे पॉलीथिन में नहीं, हम कुछ भी चीज ला रहे थे हम वहीं पे स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग, ठीक है, तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पर। कभी कभी हमको नहीं मिलता कुछ के लिए, तो उसके लिए हम प्लास्टिक लाते हैं अपने घर पे ही रख देते हैं, उसको रीयूज करते हैं बार बार। जैसे मम्मी कम से कम सब्जी आती है तो हम करीबन और दूसरे सामान आते हैं मार्केट से, प्लास्टिक हो जाती है हमारी एक खड्डी करीबन 1 kg, तो वापस उन्हीं को दे देती है प्लास्टिक सब्जी वाले भैया को, सब्जी वाले वापस उसी में सब्जी देखते हैं सबको। तो दूसरा है कि हम प्लास्टिक फाड़ने का तरीका भी हमारा, तो ऐसे छोटी छोटी चीजें है ना, तो शायद हमको सोचना चाहिए, वो सोच हमारी पढ़ाई से ही विकसित हो सकती है, हमारे देख के हमारे बिहेवियर में हम एम्पैथाइज करते तभी उस चीज से सीख सकते हैं।
1: बिल्कुल राजेश, बहुत जो बातें आपने कही वो मुझे लगता है बहुत प्रैक्टिकल है, और अच्छी बात यह है कि आप इस उम्र में ही बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं
0: जी।
1: और शिक्षा का उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है
0: जी। एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ, क्यों इसलिए ऐड करना चाहता हूँ कि वो चीज मैंने रेडियो से सीखी। जैसे हमारे रोहित भाई जी है, तो रोहित भाई जी क्या कर रहे थे, एक दिन कहीं बैठे थे हम सब लोग और मीटिंग चल रहा था, तो मीटिंग इनफॉर्मल मीटिंग में हम सब बातें कर रहे थे, तो क्या करे इतने सारे पेज लेके आए, जहाँ पे पेज पे नहीं लिखा था उसको पेज को कटिंग कर रहे थे और अपने वो जहाँ पे नोट करने की कुछ चीजें थे उसमें ऐड कर रहे थे। आज क्या था, हम 50 रुपये का स्टिकी नोट्स मार्केट से खरीद के ले आते हैं, तो शायद वो हम अपने घर में बोर्ड लगा दिया उस पे ही, और वो नोट्स पेज छोटे छोटे हमारे पेज इकट्ठा, थोड़ा टाइम लगता है हमारे पास, समय कभी फ्री रहता तो हम उसको अलग कर सकते हैं। मेरा दोस्त कहता था गांधी जी है ना छोटे छोटे पेज का उपयोग करते थे, मैंने कहा हमने तो गांधी जी को देखा नहीं है छोटे छोटे पेज उपयोग, बट तुमने बोला है तो सही बात है और करना भी चाहिए मुझे। तो वो छोटी छोटी आज मैंने कोई भी है ना, जैसे बिल देता है ना उसका पर्ची फर्श में रख दो ठीक है, या फिर कहीं फेंको मत, तो मैं अपना नोट्स बना सकता हूँ, उसपे वर्ड्स मीनिंग्स लिख सकता है इंग्लिश का, तो आप यूज कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों।
1: बिल्कुल, और बिल्कुल आपने ये बात इतनी सही बोली राजेश कि आपके पास जो भी चीजें आती है कई बार ना हम पुराना तो डस्टबिन में फेंक देते हैं और फिर नया हमारे पास है नहीं सोचने के लिए मार्केट में जाते हैं
0: जी।
1: तो अगर एक पेज पे लिखा हुआ है कुछ तो उसके पीछे का इस्तेमाल हो सकता है, कई बार हमने एक ही समय का उस फेंक दिया
0: जी।
1: और क्लिप आते हैं आप, छोटे छोटे क्लिप होते हैं या कई बार वो क्लिप होते हैं जैसे कपड़े सुखाए जाते हैं उसको, बहुत सी ऐसी चीज है, तो उसमें पेपर को फंसा के एक जगह रखा जा सकता है
0: जी,
1: है ना, तो उसमें बहुत काम आ जाते हैं। आप पर्यावरण की बात की और शिक्षा की बात की, और जो आप वो बात कर रहे थे प्लास्टिक वाली कि कैसे काटते हैं, वो भी एक बार आप थोड़ा सा बता दो क्लियर करके
0: जी। मम ऐसे एक बार भूख लगा था तो चिप्स खा रहे थे,
1: हाँ।
0: मेरी हर चीज स्टोरी से जुड़ी हुई, तो मैं वहीं से सीखता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ,
1: हाँ,
0: बेहतर कनेक्ट कर पाए हम
1: जी।
0: तो चिप्स खा रहे थे तो किसी ने चिप्स का पैकेट फाड़ा, तो चिप्स का पैकेट 2 टुकड़ों में बट गया, एक छोटा सा टुकड़ा किया हमने फेंक दिया और दूसरा रखा, चाहे हम नहीं भी फेंका हो, सपोज कहीं भी छोटा टुकड़ा फेंक के कहीं उड़ जाता है, तो ऐसे उन्होंने बोला कि ऐसे लाखों टन्स में वो छोटे छोटे टुकड़े होते ना बढ़ जाते हैं, तो आप एक बड़ा जो पॉलिथीन को ऐसे फाड़े कि वो सेपरेट ना हो, वो एक में ही पॉलीथीन रहे ठीक है। तो मतलब जैसे कुछ फाड़ने का तरीका होता है, आप उसको बीच में से ऐसे फाड़ो कि वो हम अच्छे से खा भी सकते हैं उसको, और पॉलीथीन पॉलीथीन रह सकता है ठीक है। मोस्टली ऐसी चीजें तो लोग अवॉइड करते हैं जितना ज्यादा एनवायरनमेंट के प्रति सजग होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना 1-2 रुपए का चिप्स हम 10 रुपए हम खरीद के खा रहे हैं, तो गरीबी तो ले ही रहे हैं ठीक है, हमको जरूरत है तो हम खा भी रहे, तो फिर उसको हम बचाए कैसे पॉलीथीन को
1: right.
0: तो उसको फाड़ने का एक तरीका होता है, आप कहीं पे भी यूट्यूब पे भी अच्छा वीडियो मिल जाएगा पॉलीथीन को कैसे फाड़ाता है
1: ताकि वो टुकड़ा अलग ना हो,
0: और उकड़ा ना, तो लाखों टन्स में टुकड़ा हो जाते हैं। तो मैंने बोला ये क्या कहाँ से बात कर रहे हो तुम, क्योंकि हम युवा है तो पूछते ना प्रश्न क्या बात कर रहा है लाखों टन्स, तो बोले कि हाँ ये बात हमने हमारी इन्वायरमेंट वाली मैम से सुना। तो फिर मुझे लगा कि हाँ भाई बात तो सही है, चाहे ना भी हो लाखों टन में भी करना तो नहीं चाहिए ना। तो फिर मुझे वहाँ लगा, वहीं से सीखा मैंने, तो फिर और इससे पहले भी सीखा कि हम पॉलीथीन को ऐसे फाड़े कि यूज आ सके, जैसे हार्ड पॉलीथीन होती है जैसे चॉकलेट का, उसके अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स आती है, तो उसको ऐसे फाड़े कि उसको हम कहीं यूज कर सके, जैसे कि
1: रीयूज वाला कांसेप्ट है।
0: दूध का थैली होता है ना, पहले ले लेते थे वापस 1 kg थैली इकट्ठा हो जाती थी, पता नहीं आजकल वो लेते नहीं, पता नहीं मुझे उसका आइडिया नहीं है, बट ये कि मैंने कहीं देखा तो मार्केट में हम पौधा प्लांट लगाते हैं ना उसके लिए हम पॉलीथीन खरीद के लाते हैं, उसके लिए अलग से पॉलीथीन आता है, उसमें मिट्टी डाला सैंपलिंग लगाई, तो अब क्या करते दूध के थैली को ही फाड़ दिया ऊपर से, उन्होंने सैंपलिंग उसी में लगा दी। तो ये जैसे कि मैंने एक घर में ही मतलब एक दिन युद्ध कर लिया,
1: अच्छा।
0: हाँ वार हो गया मेरा, कि घर में एक फंक्शन था 350-350 लोगों का खाना था, तो मैंने कहा कुछ भी हो गिलास कहीं से भी लाओ, टेंट वालों से लाओ, चाहे घर में 3 घरों से मांग के लाओ, बट प्लास्टिक कहीं दिख गया ना तो तुम देख लेना
1: अच्छा।
0: हाँ तुम्हारा कार्यक्रम मैं ही स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि आप प्यार से है ना कितना काम करते हो इजीली नहीं समझ पाते, और मुझे था कि मुझे करना है डेडिकेशन से, और मैं नहीं करने दूंगा प्लास्टिक यूज नहीं कर दूंगा, तो सारा मैनेजमेंट मेरे पास था, तो मैंने सारी प्लास्टिक जितनी भी यूज करने वाली आई हुई थी उसको मैंने पहले निकाल के ऐसी जगह रख दिया जो कहीं से ला नहीं सके, बस उसको तो कहीं उसको जरूरत पड़ी वो नहीं ला सकता उस वक्त में, ऐसी जगह मैंने उसको अरेंजमेंट किया। पहले मैंने अरेंजमेंट पहले से कर रखी थी ग्लासेस स्टील की, क्योंकि हम 100 ग्लासेस 150 ग्लासेस स्टील की होती है हमारे पास, प्लास्टिक ग्लास तो कितने भी कर सकते ना उस वक्त। तो फिर मैंने कहा क्या किया जाए कि 300 लोगों का खाना है, बर्तन धोने वाला था, मैं सारी उसको ऐसे मतलब एक साथ तो 150-150 लोग नहीं आएंगे ना, साफ करके अच्छे से साफ करके उनको पहुंचाता गया, तो कहीं भी सप्लाई में कमी नहीं आई। और मेरा संकल्प पूरा हुआ कि मैंने प्लास्टिक यूज नहीं होने दिए। ठीक है, वो बहुत सालों तक नहीं सड़ता है, जैसे एक ब्रश है तो 500 साल तक नहीं सड़ता है, तो अब मैं ब्रश भी करता हूँ, ब्रश जब हम करते हैं तो एक साफ होता है हमारा, मतलब ब्रश में जो फंसा हुआ है ब्रश से ही साफ हो सकता है। तो ये कि आप एक दिन ब्रश करो एक दिन मैं फिंगर से अपना एक दंत मंजन वो करता हूँ, तो मतलब ये कि उसका साइकिल बढ़ गया ब्रश का।
1: हाँ, और बैम्बू वाले भी आते हैं।
0: हाँ, बैम्बू है, नीम है, तो लोग मतलब जो हमारा पुराना लाइफ स्टाइल था ना, बड़ा सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल था, तो हम तो ऐसे हम लाइफ को बना सकते हैं हमारे जीवन में कि छोटे छोटे यूज करके, और प्लास्टिक जितना हो सके उतना हम कम यूज करें।
1: बिल्कुल,
0: और हो सके तो हम ज्यादा से ज्यादा यदि यूज में आ भी रहा है तो रीयूज करें उसको, और कोशिश कर रिसाइकल। तो ये है कि जैसे आजकल ब्रिक्स बन रही है, प्लास्टिक ब्रिक्स आपने सुना होगा, बॉटल में सारी बहुत सारी पॉलिथीन रख के, वो कई लोग उस ब्रिक्स से वॉल भी बना रहे, जैसे प्लांटेशन हाँ। का वॉल बनाना, एक प्लांट्स का नीम कट रही उसके ऊपर बना लिया तो उस पर बैठ सकते
1: हैं, भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं।
0: हाँ, क्रिएटिव हो सकता है। तो ऐसा है कि वो कहीं शायद हमारे एनवायरमेंट को खा रहा है तो नहीं खा सकता है, क्योंकि प्लास्टिक को बनने के लिए आप लगे भी प्लास्टिक फैक्ट्री में जाइए ना तो आपको समझ आता है कि वो प्लास्टिक के दाने में कितना फ्यूल लगता है, मतलब कैसे वो बनता है, बहुत सारे रिसाइकल होता है। ऐसे जैसे कि पहले पत्तों में चीजें पैक होती थी, वो सस्टेनेबल है, उसको एनर्जी, मतलब यदि हम फिजिक्स के लेवल पे जाएं तो उसका एनर्जी तो ट्रांसफॉर्म होती है और जनरेट नहीं होती है, तो पत्ते अपने आप, प्रकृति अपने आप सही करती थी सब कुछ।
1: प्रकृति की अपनी साइकिल है ऑलरेडी।
0: हाँ, वो प्रकृति सबसे बड़ी माँ है और वो अपने आप को कैसे जान बचाना चाहती है सब कुछ वो अच्छे से जानती है करना। फिर भी हमारा एक जीवन है, हम उस जीवन में रहते हैं, हमको बेहतर बनाना है तो ये संकल्प हमको लेना पड़ेगा। और मैंने प्लास्टिक की जो बात की इसके बाद मैंने जो करके दिखा है तो घर वालों का हो सकता है। अगली बार हमने जो हमारे तांबे का लोटा प्रचलन में था और तांबे के लोटे में आज भी पानी पिया जाता है, तो उसका आप साफ सुथरा रखिए, 50-100 लोटे अरेंज कर लीजिए आप, तो उसमें आप पानी पिला सकते हैं बेहतर।
1: क्या बात है।
0: ठीक है, हाइजीन ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो आप उसको साफ करके भी कर सकते हैं, कई लोगों को यह मानना कि हाइजीन हो जाता है, बट तांबे में आप यूज कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, मतलब
0: जैसे ये कि ना साफ भी कर रहे हैं तो उसके अंदर जो मैंने सुना है कि उसके जो केमिकल्स के पार्टिकल्स होते हैं ना सर्फ वगैरह के, तो वो आपके अंदर जाते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह जा रहे हो तो उसको ज्यादा पानी पी रहे हो तो खत्म हो जाएगा आपका बैक्टीरिया, मीन्स कि मैं कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ क्या बोलते हैं एक्जेक्ट, जैसे डायरिया जैसे होता है, डायरिया का जो चीज होता है, तो आप ज्यादा पानी पियो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जबकि वो पार्टिकल्स गए उसको कैसे खत्म करोगे, जो केमिकल पार्टिकल्स के जो वॉशिंग केमिकल पार्टिकल्स है, नहीं हो सकता है ना,
1: नुकसान बहुत करते हैं।
0: ठीक है, तो फिर यही है कि पहले हम साफ भी मिट्टी से करते थे, आज हमारी बॉडी भी बोलते हैं पंच तत्वों से मिला है, तो ये सब चीजें कनेक्टेड है। हमको इस चीजों में भी मैं और जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एग्जैक्ट कैसे साइंटिफिकली प्रूव करके लोगों को समझाया जा सके।
1: जी राजेश, आपने जो बातें कही डेफिनेटली पर्यावरण वाली, वो ऐसी नहीं है जो हम केवल देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसा होना चाहिए जीवन शैली ऐसी तो करें, हम में से हर कोई कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: छोटी छोटी बातें जीवन में शामिल की जा सकती है। और आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये सब बातें कहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। और बातों ही बातों में हमने शिक्षा के बारे में बात की तो पर्यावरण के बारे में भी, लेकिन युवाओं के जीवन में जो भी वो ठान ले वो कर सकते हैं ये तो डेफिनेटली प्रूफ होता है। और आपको भी आपके भविष्य के लिए बहुत ढेरों शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मधुबन का, और जब भी मैं आता हूँ तो ऐसे लगता है कि मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, और दूसरी बात ये है कि बहुत सालों बाद आया हूँ तो ऐसा लग रहा है बहुत कुछ रह गया है, तो शायद आज वो छोटे प्रारंभ के माध्यम से पूरा हो पा रहा है। और रेडियो ने हमेशा मुझे कनेक्टिविटी दी है, प्यार दिया है, और और दूसरी बात, आप सभी श्रोताओं को जो मेरी कहानियां सुनेंगे, मेरी बातें सुनेंगे, तो मेरी बातें नहीं, आप हम सबकी बातें हैं, तो मैं गलत कह रहा हूँ कुछ भी तो मुझे अच्छा लगेगा। बट मैंने जो भी बातें की वो मेरी लर्निंग्स है, तो हम इस लर्निंग के माध्यम से हम कैसे बेहतर बन सकते हो कर सकते हैं। धन्यवाद,
1: थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका भी और राजेश का भी। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कार्यक्रम युवा मंच में। तब तक रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए,
0: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रुक रुक रुक। कुछ सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ। और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: वेल दोस्तों, आप सभी का आज के इस खूबसूरत शाम में बारिश की रिमझिम में स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त मोना। गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त मोना। आप दोस्तों के बीच प्यार के साथ, मस्ती के साथ गुनगुनाते खूबसूरत शाम बिताने आई हूँ और लेकर आई हूँ आज सवाल, कुछ कहानियाँ, प्यारी सी कविता और आपसे चटपट बातें करने का एक मौका। जी हाँ, जरूर कॉल कीजिएगा। हमारा नंबर है 9414151415। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन।
1: क्या होता है?
2: अरे तिकुनी पता क्या, इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
3: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
1: अच्छा, तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
2: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
4: ऐसी बातें बचपन में होती है, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।

अमन वेल दोस्तों, आज का सवाल आप के लिए। वो इनमें से कौन सा देश अरब देश नहीं है? इनमें से कौन सा देश अरब देश नहीं है? आप सभी को पता है भारत का, भारत ने एशिया के बहुत बड़ा, एशिया का बहुत बड़ा हिस्सा जो है अरब देश में आता है, और कुछ हिस्सा अफ्रीका का भी अरब देश में शामिल होता है। बड़े नामी ग्रामी देश हैं। खास ये अरब देश अपने आप में बहुत अमीर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो तेल है बहुतायत मात्रा में प्राप्त होता है, और यही वजह है कि ईरान अपने आप में काफ़ी क्वेश्चनेबल बन चुका है। ईरान का जो तेल है वो बहुत अच्छा है, पर आपको तो बताना है इनमें से कौन सा देश अरब देश नहीं है। आपके सामने हमने ऑप्शन रखा, ए जॉर्डन, बी इराक, सी इंडोनेशिया। सही जवाब झटपट देना 9414151415 पर देना।

0: Klinge.
1: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
2: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ़ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी, लेकिन इफ़ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो ईजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम आधुनिक और डिजिटल भारत के विषय पर बात करेंगे मैं और
1: रूहानी।
0: चलिए, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। आजादी के 79 ईयर्स बाद दुनिया बदल चुकी है, इसके मायने भी बदल चुके। चलिए, असली देशभक्ति क्या है, इस विषय पर कुछ बातें जरूर करते हैं।
1: इतिहास में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें गुलामी से आजाद कराया। अब जिम्मेदारी हमारी है कि हम आधुनिक और डिजिटल भारत को सही दिशा में ले जाएं। 21वीं सदी के बच्चे होने के नाते आज हमारे पास इंटरनेट के रूप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का सही इस्तेमाल करना ही हमारी असली देशभक्ति है।
0: चलिए, देशभक्ति सिर्फ केवल सेना में भर्ती होकर ही नहीं निभाई जाती, आप घर बैठे भी देश के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। आजादी के नए रूप के बारे में बात करें तो हम बात करना चाहते हैं, हर साल 15 अगस्त को जब हम लाल किले पर तिरंगा फहराते देखते हैं तो मन में देशभक्ति के भाव जरूर उमड़ने लगते हैं। हम परेड देखते हैं, शहीदों को याद करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है जब हमारे देश को आजादी मिली थी तब इंटरनेट, स्मार्टफोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आदि कोई चीज नहीं थी। आज की दुनिया बदल चुकी है और बच्चे क्या बड़े सभी के लिए आजादी के मायने नए रूप में सामने आए हैं।
1: मेड इन इंडिया और लोकल सोच को बढ़ावा देना, भारत में बनी चीजों को बढ़ावा देना और अपने कारीगरों का सम्मान करना भी देशभक्ति है।
0: और गलत जानकारी न फैलाना भी देशभक्ति है। सोशल मीडिया या इंटरनेट पर बिना सोचे समझे हम कई गलत खबर पढ़ते हैं, आगे बढ़ा देते हैं और ये भी कहीं ना कहीं क्या है, नुकसानदायक है, देश को गुलामी में ढकेलने के लायक है।
1: स्क्रीन टाइम से आजादी भी देशभक्ति है। घंटों तक मोबाइल गेम खेलना या रील्स देखना हमारी सोच और सेहत को बांध देता है। तकनीक का गुलाम बनने के बजाय उसे अपनी तरक्की का साधन बनाना ही असली आजादी है।
0: वहीं पर साइबर बुलिंग और नफरत से आजादी भी सच्ची आजादी है। इंटरनेट पर किसी का भी मजाक उड़ाना और सबके साथ सम्मानजनक व्यवहार न करना भी एक तरीके से गुलामी का कारण बनता है। तभी कहते हैं इंटरनेट पर किसी का मजाक ना उड़ाए, साथ ही साथ सबका सम्मानजनक व्यवहार सबके साथ करे, जिम्मेदार नागरिक बने। हमें डिजिटल दुनिया को सुरक्षित भी रखना है और सुंदर भी बनाना है।
1: सीखने और इनोवेशन की आजादी भी देशभक्ति है। आज का भारत स्पेस यानी अंतरिक्ष से लेकर कोडिंग और रोबोटिक्स तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। एक छात्र के रूप में नए विचार सोचना, प्रश्न पूछना और विज्ञान तकनीक को देश के भले के लिए इस्तेमाल करना स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि है।
0: तो चलिए, इतनी सारी जानकारी और इतनी बातें इस देश की आजादी के लिए सलूट है। आगे बढ़ते हैं, एक और बेहतरीन गीत आप तक पहुंचाते हैं और आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर। सवाल है आज अरब देश के विषय पर भी, इनमें से कौन सा देश अरब देश नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है ए जॉर्डन, बी इराक, सी इंडोनेशिया। सही जवाब जरूर देना 9414151 पर देना। सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो
0: और गीत है
1: तू है शक्ति।
0: चलिए सुन लेते हैं दामिनी जी की मीठी आवाज। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें।

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज के होमवर्क की तरफ आप दोस्तों को लेकर चलते हैं।
1: सेनापति हे ने विनय पूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है?
0: आउट्रम गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं नाना साहब, पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है, नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है।
1: सेनापति है ने कहा, तो लॉर्ड केनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार देना चाहिए।
0: आउट्रम ने कहा, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हो? हम ये महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते।
1: सेनापति है मन में दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे,
0: किंतु आश्चर्य की सारे महल का कोना कोना खोज डाला, पर मैना का पता न लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड केनिन का एक तार आया, जिसका आशय था इस प्रकार।
1: लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता।
0: उसी क्षण क्रूर जनरल आउट्रम की आज्ञा सेनाना साहब के सुविशाल राज्य मंदिर पर तोप के गोले बरसाने लगे। घंटे भर में वो महल मिट्टी में मिला दिया गया।
1: उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सके, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है।
0: जब तक हम लोग के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेने हम लोग नहीं भूलेंगे। ये बात क्रूरता की है और ये क्रूरता अंग्रेजों की है, वो भी एकदम जो कहते हैं ना सिंपल हमारे भारत के लोगों पर।
1: उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है, जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा? अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धा अवस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए।
0: इस प्रकार की सोच उन अंग्रेजों की थी उस दौरान, वो ब्रिटिश राज्य की एक गंदी सोच, जिसका वर्णन इस पूरे इतिहास के इस पूरे पन्नों में जाहिर हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार पुनः आप दोस्तों के बीच एक और गीत प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मानव। वेल दोस्तों, सीधे चलते हैं आज के सवाल के जवाब देने के लिए। इन तीनों में से कौन सा देश जो है वो अरब देश नहीं है? आपके सामने हमने तीन ऑप्शन रखे थे, जॉर्डन, इराक और इंडोनेशिया। कौन सा देश लगता है?
1: ऑप्शन सी, इंडोनेशिया।
0: क्यों जॉर्डन और इराक नहीं?
1: क्योंकि वो अरब देश है।
0: अच्छा, चलिए, बिल्कुल सही कहा, ये दोनों अरब देश हैं। सिर्फ सही जवाब इंडोनेशिया है, वो है हमारे साउथ एशियन देश है। और अरब देश के ये जो दोनों देश हैं, ये आते ही एशियन कॉन्टिनेंट में ही है, पर अरब के एरिया पर है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलने का वादा है ठीक शाम
1: 6 बजे।
0: तब तक के लिए उड़ान से कहेंगे गुड बाय। सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो,
0: रेडियो मधुबन
1: 107.8।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर सायरा मैयर और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में कार्यक्रम का नाम ही अपना गाँव और अपना अंचल। जिस गाँव और जिस अंचल में रहते हैं पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे वो गांव और अंचल कभी नहीं भूल पाते। तो सरकार का जो मंशा है जो रेडियो स्टेशन दिया आसपास में जो गतिविधि हो रही सब तक पहुंचाने के लिए एक मंच आज राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय चंडला में और बच्चों का बारी बारी हुनर और प्रतिभा सुनने को मिलेगा। पहला प्रस्तुति हम सुनने जा रहे हैं एक प्रार्थना के रूप में और इस कार्यक्रम को साधने के लिए हमारे साथ 6 छात्राएं हैं तो वो भी अपना बात को रखेंगे नाम का साथ अपना नाम और वो कौन सा गांव से आते हैं और कौन सा क्लास।
1: मेरा नाम सुपना कुमारी है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ, मैं अंबावेली से आती हूँ।
2: मेरा
1: नाम अंजू कुमारी है, मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ, मैं बघेरी से आती हूँ। मेरी स्कूल का नाम भारतीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंडीला।
0: तो चलिए बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए हम आज आपका पास राख रहे हैं खासकर ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय का सहयोग से। तो जैसे बच्चे अपना प्रस्तुतियाँ देंगे, सुगना रेडी।

0: कार्यक्रम का पहला गीत में ही बच्चे अपने अपना भाव और भावना को माँ सरस्वती तक पहुँचा दिए और इस तरह कार्यक्रम जब होता है बच्चे पढ़कर भाग लेते हैं और अपना भाव और भावना को देते हैं अर्पण करते हैं तो समर्पित रूप में अपना जीवन को जब त्याग करते हैं तब भगवान भी खुश हो जाते हैं बच्चों का गीत को देखकर उनका सुर ताल का साथ लय का साथ भावना भी है भाव भी है जैसे घर में अगरबत्ती करते हैं नमस्ते करते हैं पूजा पाठ करते हैं तो हमारा छह छात्र जो सुकुना एंड अंजू सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं पहला प्रस्तुति के लिए और छोटे बच्चे भी हमारे साथ इस कार्यक्रम को जोड़ेंगे लेकिन और कुछ विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर तो खास कर अंजू बड़े होकर क्या बनेगी
1: टीचर
0: क्यों टीचर क्यों क्योंकि पढ़ाते हैं तो बच्चा मिट्टी को जैसे रूप देंगे उस तरह बनता है जैसे कारीगर क्या करता है कारीगर अच्छा से सुंदर देते हैं लकड़ी हो चाहे मिट्टी हो उसको सुंदर रूप दे देते हैं तो शिक्षक भी बच्चों को सुंदर रूप में रूप देकर डॉक्टर इंजीनियर टीचर बना देते हैं तो इसलिए टीचर शिक्षक का महत्व ज़्यादा है सैनिक टीचर और किसान ये तीनों देश का ज़्यादा और पूरा मेन रोल करते हैं पूरा पिलर है उनका बिना हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा सैनिक जो कि बॉर्डर में सैनिक काम क्या करता है जो फौजी में देश को रक्षा करते हैं हाँ और किसान हमको अन्न देते हैं और शिक्षक हमें अच्छा शिक्षित कराते हैं बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं छोटा सा

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
2: अपना पारी में बच्चों का आवाज सुनिए, देखा पहले और अच्छा गीत सुने प्रार्थना के रूप में, और हमारे रेडियो मधुबन तरफ से भी गीत सुने, तत्पश्चात और एक प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए गोड्डा गुडिया दोनों आए हैं, तो सुनते हैं उनका आवाज से क्या बोलना चाहेंगे। अपना नाम बताएंगे। हेलो, नाम बताइए। और कौन सा क्लास? पहले का प्रस्तुत सुनेंगे, सभी बच्चे साथ दे रहे हैं हमारा कार्यक्रम को सुन रहे, अपने को कंट्रोल करके बैठे हैं चुपचाप, और हमारा तीन छात्रा और छात्रा दोनों मिलकर गीत गाएंगे। सुना
3: पहुंच गई चंडीगढ़, चंडीगढ़ से जयपुर, जयपुर से रामेश्वर, रामेश्वर से चलते चलते लौट चली।

0: नहीं गए सब घूम कर आकर अपना घर में पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कार्यक्रम के लिए और छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको भी स्वागत कर रही है कि बच्चे सच्चे होते हैं, मन के सच्चे, दिल के सच्चे, प्यारे प्यारे लगते हैं। और हम भी कभी बच्चे थे लेकिन आप तो बड़े हो गए, हमारा बच्चे कम नहीं है। आपने अपना नाम बताएंगे प्लीज, अपना नाम बताओ। हेलो जी, हाँ यशोदा, चेतना, आत्मा तो चेतना है कि नहीं? अरे यशोदा बिना हमारा कुछ अस्तित्व नहीं है। मधु वाह, मधुबन, रेडियो मधुबन से हम आए और मधु हमारा इस कार्यक्रम को सजा रहे। और एक गुड़िया किंजल, बस सभी के लिए ताली बजा दो भाई, ये तीनों बच्चे के लिए। सुना कौन सा गीत सुनाएंगे? कविता हाथी राजा, वाह हाथी तो राजा है, जंगल का राजा हाथी है, जंगल का राजा हाथी है। हाथी कभी देखा है? चित्र में नहीं, फोटो में नहीं, हाथी देखा है? कितना पैर है उसके हाथी का? चार। कितना पैर है? चार। सभी बच्चे हाथी देखे? असली असली असली देखे
1: जी।
0: कब? जंगल में ना गांव में? गांव में हाथी आता है। अरे
1: बा,
0: क्योंकि जंगल का बाजू में तो बड़ा बड़ा पहाड़ है, जंगल है, हो सकता आ सकता है, लेकिन कोई भी पालतू हाथी भी आता है। चलिए हाथी राजा के बारे में सुनेंगे, सभी सुनेंगे बच्चे? चलिए सुनते हैं हाथी राजा।

0: वाह, तुम्हारा नाम बताओ?
1: राजकुमार।
0: अरे वाह राजकुमार, राजकुमार हमारा होबनहार बच्चा है और राजा बनेगा। बड़े होकर क्या बनेगा? राजा बनेगा ना? डॉक्टर बनेगा? क्या बनेगा?
1: डॉक्टर।
0: हाँ हाँ, राजकुमार हमारा राजा बनेगा और डॉक्टर भी बनेगा। डॉक्टर का काम क्या होती है?
1: सुई लगाता।
0: अरे बाप रे, सुई। बहुत होशियार बच्चा हमारा राजकुमार। अरे बैठ जाता है सिर्फ, राजा तो बैठता नहीं है, राजा तो पूरा शासन करता है ना। तुम्हारा अच्छा मैम कौन है?
1: ममता मैडम।
0: अच्छा, क्या बात है, ममता मैम उनका अच्छा मैम है। क्या ममता मैम क्या सिखाते हैं?
1: गिनती।
0: गिनती सिखाते हैं और राजा बनने के लिए तरीका बताते हैं, डॉक्टर बनने के लिए तरीका बताते हैं, है ना। बहुत अच्छा है। राजकुमार के लिए क्या करेंगे, जोर से ताली बजाएंगे। राजकुमार हमारा खुशी खुशी लग रहा है तुमको? सब ताली बजा कर खुशी करा दिए। ताली बजाने से कोई पैसा नहीं लगता है, एक्सरसाइज हो जाता है और चेहरा में गोलाप फूल जैसे खिलता है। सबका चेहरा देखो कितना खिलखिला रहा है ना, जैसे कमल फूल खिलता है ना। कमल फूल कैसे खिलता है देखो बच्चे, ऐसे करो हाथ। अरे वाह, कमल फूल दो दो हाथ अंगुली से इशारा से करो, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। कमल फूल ऐसे खिलता है, कमल फूल जैसे हमको भी बनना है। कैसे बनना है? कमल फूल जैसे
1: बनना है।
0: हाँ देखो बच्चे आज कितना खुशी से बोले, कमल फूल जैसे सब सहन करता है, कीचड़ पानी सब उनके साथ रहकर पूरा उपराम, सबसे अलग। हमारा राजकुमार भी सबसे अलग है, सभी मैम उनको याद करते, सभी सर उनको याद करते ना
1: जी।
0: क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास गुण है, विशेषता है। बहुत अच्छा बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा इस कार्यक्रम को सजाने के लिए। और दो बच्चे है, तीन बच्चे, वो भी सुनाएंगे, लेकिन आओ और बच्चे सुनाएंगे कुछ।
2: हसीना
0: सुनाएंगे कुछ इस कार्यक्रम को, अगला कड़ी में सुनाएंगे हसीना हमारा साथ। कौन सा क्लास में हसीना है?
3: फाइव,
0: फिफ्थ क्लास। तो सुनाओ
3: ना।

0: पर्वत खड़े हुए,
1: चली पर्वत खड़े हुए,
0: इसी प्यार से सूरज उगता,
1: इसी प्यार से सूरज उगता,
0: चंदा।

0: क्या बात, प्यार प्यार मतलब कितना खुशी का बात, ताली बजा प्यार के लिए। प्यार में सब कुछ समय होता है, जब प्यार से कोई काम करेंगे, प्यार से याद करेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, प्यार से बुलाएंगे, चुटकी में सब काम हो जाता है। और हमारा गुड़िया, हमारा परी आज प्यार सबको लुटा रहा है, गीता माध्यम से, कविता का माध्यम से। कौन सा फलिपा, कौन सा गांव से आती गुड़िया, तुम कहाँ से आती?
1: गिरवर बोर्ड से।
0: अरे बाप रे, गिरवर बोर्ड से आती, इतने दूर से आती है, वाह, गिरवर बोर्ड से। और बड़े होकर क्या बनेगी गुड़िया तुम?
1: डॉक्टर।
0: हाँ डॉक्टर, डॉक्टर का काम सुई लगाना होता है, इंजेक्शन देना होता है। और इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाए, और प्यार प्यार भरा, दिल भरा कविता का माध्यम सबका मन मुग्ध कर दिया। हमारा श्रोता सुन रहे इस कार्यक्रम को, और ये तो चंडला का आवाज, विद्यालय के भुवनहार बच्चे ममता मैम और एक मैम हमारा साथ इस कार्यक्रम में आए हैं, तो उनको भी हालो करेंगे। मैम आप अपना परिचय देंगे?
2: मेरा नाम संगीता शर्मा है और मैं इसी विद्यालय में अध्यापिका हूँ, पहले से पांचों को हिंदी पढ़ाती हूँ। और ये बच्चे अच्छे अच्छे कविता बोल रहे हैं, इनको सिखाई है मैंने, और मुझे पढ़ाने का बहुत ही शौक है। मुझे पढ़ाना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चों से पढ़ाना है, इनको नॉलेज देना, और इनको मैं सांस्कृतिक प्रभारी भी हूँ, तो नाच गाने वगैरह करवाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद भी गायिका हूँ, गाती हूँ गाना।
0: बच्चों का आवाज को सुनकर मैम भी अपना आवाज को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं और बड़े भी तो सच्चे बना देते हैं। और इस कविता का माध्यम से प्यार कितना सीमेंट का काम करता है, जोड़ना है प्यार, जैसे ईंट और रेती को सीमेंट दे देंगे तो दोनों को पूरा बराबर जोड़ देता है, कभी टूटता। तो इस कविता का माध्यम से सभी बच्चे भाग लिए, और मैम इस कविता का माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे। मैम एक जो कविता सुनाई बच्ची, प्यार वाला कविता, वो कविता का महत्व थोड़ा बताइए आपका, आप तो बच्चों को सिखाते हैं।
2: ये कक्षा 5 का पहला ही पाठ है।

चाहिए। ईश्वर ही हमको सबसे जुड़ने का और इस संसार से जुड़ने का प्रेम सिखाता है, है ना। तो इसलिए नानी का और दादी का बच्चों के संस्कार निर्माण में बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। और इसी में दो लाइन मैं बच्चों के ऊपर गाना गा देती हूँ, क्योंकि बच्चे मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं बच्चों के लिए ही गाना गा

0: सच्चे धन्यवाद।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चे का शुरुआत कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम को भी धन्यवाद और हमारा ममता मैम को भी धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। ममता बहन का आवाज भी लेंगे अंतिम समय में।
2: लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: This is Aditya Raj Kapoor and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और एक बोलते बोलते फिर और एक प्रस्तुति करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें खुशी मिल रहा है। बच्चे सच्चे होते हैं और बढ़ चढ़ कर अपना भाव और भावना को देते हैं, क्योंकि उनको मौका मिलता नहीं। आज मौका मिला है रेडियो मधुबन उनका बात को रखने के लिए एक मंच दे रही है, जिस मंच का माध्यम से, जिस स्टेज का माध्यम से अपना भाव को जन जन तक पहुँचाते हैं। और आदिवासी गांव में रहते बच्चे इस तरह आकाशवाणी में आने के लिए उनको कोई पूछता नहीं था, तो रेडियो मधुबन ब्रह्मा कुमारी आज उनका बात को रखने के लिए उनको मंच दे रहे, माइक दे रहे, तो पुनः और एक प्रस्तुति के लिए रेडी है। हमारा सभी गुड़िया आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सभी? अपना नाम क्या बताया था?
2: अंजू
3: शुभना।
1: चलिए सभी मिलकर एक प्रस्तुति करेंगे। ओके,

0: वाह वाह बोल रहे से बच्चे, बहुत अच्छा सुंदर प्रस्तुति के धन्यवाद देते हैं।
1: इस तरह बच्चे को जब मान के मिलते हैं बनेंगे सभी बड़े होकर,
0: लेकिन मेहनत जरूरी है। विद्यार्थी जीवन में मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बिना मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है। इसमें पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई,
1: तब तक विद्यार्थी पढ़ाई का जीवन में पढ़ाई करना है और बड़ों का बात मानना चाहिए, है ना।
0: ब्रेक के बाद और एक प्रश्न सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन।
2: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चल रहे हैं और आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन पर राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय चंडला का आवाज। अंतिम प्रस्तुति में पुनः उनको स्वागत करते हैं, शुरू करेंगे।
3: चंडा पड़ा अंबर में

धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। बहुत खुशी लगा सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। सभी बच्चे बोलो रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो और मुस्कुराते रहो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार बाबू जी।
0: नमस्कार भूरीलाल जी, कैसे हैं आप?
1: बात मत पूछो, आज बरसात ने अपना खैर निकाल दी।
0: क्या बात है, क्या हो गया?
1: नदियाँ नाला और घर की नालियाँ भी तूफान में आ गई।
0: क्या बात है, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो बारिश
1: भी तूफान में आ गए।
0: क्या बात है, बारिश की तो जरूरत थी और बारिश अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है फिर तो।
1: आज बड़ी गजब का काम कर दिया इसने, पूरी हरियाली मना ली है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: क्या करे, क्या करे, उसके साथ में अपने को भी इसका सामना करते हुए रहना पड़ता है।
0: बिल्कुल
1: हाँ, इसलिए मेरा एक गाना भी इसमें।
0: हाँ जी बताइए।
1: गाने के बोल है, साथ में जिएंगे साथ में मरेंगे, मरने से वो नहीं डरना। लता जी की आवाज है।
0: हाँ
1: लता जी की आवाज है,
0: ठीक है। कौन सी मूवी से?
1: साथ जिएंगे साथ मरेंगे, मरने से नहीं डरेंगे। ये गाना है सर।
0: चलिए बिल्कुल,
1: प्यार तुम्हारा हमारा अमर रहे।
0: ठीक है, बिल्कुल कोशिश करते हैं। हाँ
1: धन्यवाद सर, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार
1: भाई है, राम जी है, मदन भाई है, और वो सुभाष भाई है महाराष्ट्र वाले
0: जी।
1: वो अपनी मूल की भाषा मेरे को बहुत अच्छी लगती है। क्या बोलते हैं वो, तो पता नहीं पड़ता नहीं, लेकिन भी उनकी भाषा बहुत पुरानी पुरानी भाषा है ना, बहुत अच्छी लगती है। और भुरा राम जी कहते हैं राम राम, मैंने कहा भैया अच्छी बात है, तुम्हारा राम राम बंदा को स्वीकार है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपको भी।
0: थैंक यू, नमस्कार आपको भी। नमस्कार, क्या कहे, शुरुआत अभी हमारी हुई नहीं, उससे पहले हमारे भूरीलाल जी का फोन है। मतलब अब तो रेस लगी है, रेस की 8 बजते ही जैसे ही यहाँ पे हमारी म्यूजिक, हमारा जो अंडरले है वो बजता है और तुरंत ही हमारी बात होती है, तो सबसे पहले हमारा कॉल जलता है। चलिए, मुस्कुराते हुए चेहरे और महकती हुई रात, सुनो सुनो होने लगी है अब दिल की बात आपके साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और इस प्यारे से मौसम में और प्यारे से अंदाज में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी आरजे केवल, और आप सुन रहे हैं आपका चहिता, आपका फेवरेट शाम का शो खुशी के नगमे दिल की बात है। जी हां, आज 12 अगस्त दुनिया भर में इंटरनेशनल यूथ डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यही आज के दिन हम अगर बात करें, आज के दिन सबसे बड़ी खासियत है कि ये दिन युवाओं की ऊर्जा, उनके सपने और समाज में उनका योगदान को सेलिब्रेट करने का दिन है। आज की रात बहुत ही खास है, एक तो 12 अगस्त की ये रात, और ऊपर से आज के बेहद ही खूबसूरत दिन इंटरनेशनल यूथ डे यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर, युवा होने का मतलब सिर्फ उम्र का एक आंकड़ा नहीं होता दोस्तों, युवा होने का मतलब होता है सोच में ताजगी, दिल में उमंग और सपनों में उड़ान। इसलिए तो कहते हैं कि दोस्तों, एज इज जस्ट अ नंबर, यानी कि उम्र सिर्फ एक आंकड़े है, ना कि हमारे जवान होने या बूढ़े होने पे या बच्चे होने की कोई बात है। बस दिल से जवान होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपकी उम्र 18 की हो या 80 की, अगर आपके दिल में नए सपने देखने का जज्बा है तो आप युवा है। जी हाँ दोस्तों, ना उम्र की कोई सीमा हो, ना सरहदों का कोई बंधन, ना उम्र की कोई सीमा, ना सरहदों का कोई बंधन, दिल जवां हो जिसका वही करे खुशियों का अभिनंदन। जी हाँ दोस्तों, आज की रात हम चाहते हैं कि आप अपने दिल की वो बातें हमसे शेयर करें जो आपको खुशी देती है। आपका वो कौन सा सपना है जिसे आप आज भी पूरा करना चाहते हैं, या फिर आपके बचपन की वो कौन सी यादें हैं जो आज भी आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर आती है। चलिए दोस्तों, शो की शुरुआत करते हैं, उससे पहले एक और हमारे कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे करते हैं बातें। हेलो,
2: हाँ जी सर, नमस्ते, गुड इवनिंग, सुरेश जी बोलता हूँ जेठाना से, कैसे हो सर?
0: बढ़िया सुरेश जी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग,
2: बिल्कुल अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, बारिश रिमझिम बरस रही है।
0: क्या बात है,
2: और हमारे भूरीलाल जी की भी हमने रिमझिम आशीष सुन ली
0: जी,
2: और खुशियाँ भी दे गए सबको
0: जी। बिल्कुल, उनके आते ही उनकी खुशियों की जो बातें होती है वो तो अलग ही होती है,
2: अलग ही होती है सर। और वही तो जीवन का एक मकसद होता है कि जो हम खुशी से जिए
0: जी,
2: तो 2 साल ज्यादा जिए।
0: बिल्कुल,
2: कहने का मतलब यही है कि हम खुशी से जिएंगे तो वही तो हमारा जीवन भी अच्छा जाएगा
0: जी,
2: और एक जीवन में खुशी भी रहेगी, और सबसे साथ मिलके रहना भी अच्छा रहेगा। वरना तो हम खुद में नहीं रहेंगे, अकेले अकेले रहेंगे तो क्या जीना, कोई जीना है
0: बिल्कुल
2: नहीं। इसीलिए तो बस कोशिश से जिए, कोशिश से आनंद में जिए
0: बिल्कुल,
2: और बस हरदम हरदम हमारे बड़े लाल की तरफ मुस्कुराते सभी रहे,
0: बस बिल्कुल।
2: जीवन में बस कुछ ले नहीं जाना है, बस एक ले जाना है तो बस एक दूसरे का भाव प्रेम ले जाना है साथ में
0: बिल्कुल।
2: तो बस बहुत अच्छा लगा सर आपको, हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए कि युवा दिन है
0: बिल्कुल। आपको भी
2: सही बात है सर, युवा कहते ना कि युवा जो है तो ये कुछ आगे जाके कुछ अच्छे नेक काम कर सकते हैं। देखिए मैं बताऊं सर कि हमारे गांव की बात करूं तो हमारे गांव में एक युवा संगठन है
0: जी,
2: और युवा संगठन की जो बात करें तो हमारे गांव में कोई भी काम होता है तो युवा लोग ही करते हैं, क्योंकि पूरे संगठन बनाया हुआ है
0: ओके।
2: और इसी संगठन से जो कोई भी काम का काम होता है, गाँव का काम होता है, कोई ऐसा कोई कुछ करना है गांव में, कुछ अच्छे बदलाव लाना है तो ही तो युवा कर सकते हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल। और आज के समय पे युवा की जो ताकत है, युवा जो है देश बदलने की ताकत भी रखते हैं
2: जी। हाँ, इसी जज्बे के साथ आज दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, युवा है हमारे पास। देखो आज प्रधानमंत्री इतने साल हो गए फिर भी युवा है
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो आज कितने साल कितने घंटे काम करते हैं, रात को अच्छी तरह से सोते भी नहीं है, और बस दुनिया का एक दुनिया को बदलने की वो एक तमन्ना रखते हैं कि कुछ न कुछ करे हम करते और दुनिया को बदल दे और हमारा
0: जी।
2: देश को बदल दे और देश हमारा आगे जाए, ऐसी वो काम कर रहे हैं
0: जी।
2: तो चलो आज के दिन की सबको शुभकामना हम देते हैं, युवा लोगों को और सभी जो काम कर रहे हैं इसको भी। और बस एक गाना भी मैं दे दूं आपको, शायद हमारे बुरीलाल जी ने भी अच्छा गाना दे दिया है,
0: बुरीलाल जी ने बहुत अच्छा
2: गाएंगे साथ मरेंगे
0: जी,
2: अच्छा गाना दे दिया है उसने, वो भी गाना है साथ साथ रहेंगे सब। और सब एक तो मैं ऐसा एक गाना भी दे रहा हूँ कि एक दूसरे के
0: एक दूसरे से
2: करते हैं प्यार
0: हम,
2: दूसरे से दिल भी करार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो
0: है तैयार हम,
2: है तैयार हम। बस कोई भी काम हो एक साथ करेंगे
0: बिल्कुल
2: तो काम आसान हो जाएगा सर। आज ऐसा ही दिन है तो मैंने ऐसा ही गाना आपको दिया है।
0: नहीं नहीं, बहुत बहुत ही प्यारा गाना है ये, और कोशिश करते हैं कि हम
2: हमारे साथियों को, हमारा बुरा राम जी है, बुरा राम जी को भी हमारा राम राम, शायद थोड़ी देर में आ ही जाएंगे बुरा राम जी,
0: अभी सारे बुरा राम जी आएंगे।
2: इंतजार कर रहे हैं कि हमारे सुरेश भाई फोन पे रखे, मैं बात करूँ तो चलो मैं बहुत फोन रखता हूँ, हमारे बुरीलाल जी की एंट्री हो जाएंगी। नमस्ते,
0: बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया सो मच सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ दोस्तों, कहते हैं कि युवा बहुत कुछ ताकत रखता है अपने आप में, चीज़ों को बदलने की ताकत रखता है। ऐसे ही कुछ हमने देखा भी था नेपाल में, जब सरकार को गिरा दिया था युवाओं ने अपने ही बलबूते पे, और नई सरकार जब आई तो भी युवा सरकार आई, और इतना ही नहीं युवाओं की जब वो सरकार आ गई नेपाल में, और उसके बाद भी मैंने कहीं न्यूज़ में सुना था कि कुछ समय बाद यानी कि 6 महीने या 8 महीने के बाद जब सरकार नई बनी, युवा सरकार हुई, उसके बाद भी वहाँ के युवाओं ने उस सरकार का जो काम किया है या कितना काम उन्होंने प्रॉमिस किया था, कितने वादे उन्होंने किए, तो उन वादों को पूरा किया कि नहीं किया, नए वहाँ तक पहुँच रखी थी नेपाल के। तो ये होते हैं नेपाल के युवा, और हम चाहते हैं कि हर देश का ये युवा ऐसा ही कुछ करे। चलिए पहले बात करते हैं हमारे एक और कॉलर से, हमसे जुड़े हैं। हेलो,
3: आप बुरा राम बोल रहे हो? कैसे भाई?
0: बुरा राम जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
3: बस आपके ध्यान से बैठे और प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
0: बिल्कुल, और क्या है और बारिश के हालचाल वहाँ पे?
3: बस ठीक है सर, और आज पितृ अमावस है तो नदी पे जाके नाके पूजा का वो किया।
0: हाँ जी, आज अमावस तो थी जी, बिल्कुल
3: वो जाके किया। अभी प्रोग्राम सुन रहे थे
0: जी,
3: और सुरेश भाई जोटाना वाले और सबको मेरा हाथ जोड़ के राम राम।
0: सभी सुन रहे हैं आपको, सभी सुन रहे हैं आपको, और उन सभी की तरफ से आपको भी राम राम।
3: और मेरी फरमाइश एक गाने की
0: जी, आपका आवाज कट गया बुरा राम जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हेलो हेलो, हाँ बुरा राम जी आपका आवाज कट गया, आप सुन पा रहे हैं?
3: मैं करता हूँ वापस
0: जी बुरा राम जी। जी हाँ दोस्तों, शायद नेटवर्क में कुछ इशू होगा और इशू के होने की वजह से शायद बात नहीं हो पा रही, शायद फिर से कॉल है, चलिए कोशिश करते हैं। हेलो, जी हाँ नहीं, बात नहीं हो पा रही है और फिर से कोशिश करेंगे। बुराराम जी हमसे बात करें, हमसे जुड़े, तो यही चीज़ थी, हम बात कर रहे थे कि वो सरकार का काम कहाँ तक पहुँचा है, वो फिर से चेक किया, जहाँ जहाँ कमी लगी या जहाँ जहाँ काम नहीं हुए उसके लिए फिर से आवाज़ उठाई नेपाल के युवाओं ने। तो यही हम चाहते हैं कि हर देश का एक युवा अपने आप में एक मिसाल बने, अपने आप में दुनिया बदलने की ताकत रखे। और शायद बुराराम जी का फिर से कॉल है। हेलो, हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बुराराम जी बताइए फरमाइश अपनी।
4: फरमाइश बोले तो जिंदगी एक सफर है सुहाना
0: जी,
4: यहाँ कल क्या होगा किसमें जाना, ये करके गाना है
0: जी,
4: और ये सुनाएंगे तो अच्छा है, हम भी सुन
0: लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको आपका ये फरमाइश आपको हम जरूर से सुनाएंगे, बस सुनते रहिए रेडियो और बने रहिए रेडियो के साथ। थैंक यू सो मच,
4: सुनने में मजा आता है, सुन रहे हम तो।

0: मैं सॉल्व करके बताते हैं आपको।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे बुरा राम जी, और बुरा राम जी से बात हो गई है। चलिए आज के सफ़र की हम शुरुआत करते हैं पहले नगमे के साथ। पहला नगमा सुनते हैं और फिर करते हैं और भी ढेर सारी बातें, और भी फरमाइशों को पूरी करेंगे हम आपकी। और बस इसी तरह से आप अपना प्यार हम पे बरसाते रहिए, और हमारे शो को बस इसी तरह से प्यार देते रहिए। चलिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सबका आलमगीर, सबको मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, सुनते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए, झूमते रहिए और सबको प्यार से झुमाते रहिए। ओ, आज दर पे चल के आया है मौका।

वेलकम बैक दोस्तों। अभी हमने बहुत ही प्यारा एक गाना सुना, बरसे रे फुहार बरसे। जी हाँ दोस्तों, सॉरी मेरा गला आज थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन क्या करें, कांच की बूंदे बरसे जैसे बरसे रे फुहार। जी हाँ दोस्तों, 1980 की ये आइकॉनिक फिल्म थोड़ी सी बेवफाई का ये गीत संगीत की एक ऐसी धरोहर है। अभी हमने जो गाना सुना, आज भी बारिश के मौसम में दिल को छू जाते हैं। इस खूबसूरत गीत को लेजेंडरी आशा भोसले जी ने गाया है, खय्याम साहब ने इसका मधुर संगीत दिया है और इसे अपने शब्दों से सजाया है गुलजार साहब ने। गुलजार साहब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो कुदरत की छोटी सी छोटी चीज़ को भी बेहद शायराना बना देते हैं। इस गाने में जैसे उन्होंने बारिश की बूंदों को कांच की बूंदे और फुहार को हीरो का हार कहा है। इस गाने से जुड़ी एक खास बात ये भी है कि खय्याम साहब ने इसमें ट्रेडिशनल इंडियन क्लासिक राग और आशा भोसले जी की आवाज़ की हरकत का ऐसा मेल बिठाया कि स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के वक्त ही पूरी टीम ने समझ लिया था कि ये गाना बारिश के गीतों में हमेशा के लिए अमर होने वाला है। आशा जी की चंचल आवाज़ ने इसमें जो ताजगी भरी, वो आज भी 45 प्लस साल के बाद भी, यानी कि 45 साल से भी ज़्यादा हो गए इसके बाद भी, वैसी की वैसी महसूस होती है। यहाँ दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। हमारे भूरीलाल जी और सुरेश जी से हम कहना चाहते हैं कि आपने जो हमें गाने फरमाइश के रूप में दिए हैं, कोशिश करेंगे हम आपको वो सुनाएं, लेकिन बस एक मिनट से ज़्यादा हम सुना नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास वो प्लेलिस्ट में नहीं है। बिकॉज़ वो हमारी जो प्रोटोकॉल है, हमारे जो गाने बजाने की जो है उसके पहाड़ है, क्योंकि वो कुछ 80 और 90s के वो गाने हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपको गाना सुनाएं, लेकिन आपसे भी निवेदन है कि आप हमें अगर वो गाने 60 या 70 के दशक के हो तो बेहतर रहेगा, तो हम उसको आपके लिए इजीली प्ले कर सकेंगे। कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं आपके लिए। बस आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और ये अगला पेशकश, अगला गाना आप सुनिए।

0: ये गीत तो आप लोगों ने सुना होगा।
1: क्या आप जानते हैं कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है?
0: इसीलिए अपनी बच्ची की कम उम्र में शादी ना कराएं।
1: उनके स्वास्थ्य और उनके अच्छे भविष्य के लिए उन्हें खूब पढ़ाएं। बेटी कुदरत का है उपहार, नहीं करो उसका तिरस्कार। जो बेटी को दे पहचान, माता पिता वही है।
2: वेलकम बैक दोस्तों। उड़ले यू। जब ये उड़लिंग होती है तो हमें पता है ये गायक कौन है इसके। जी हाँ बिल्कुल, किशोर कुमार साहब की ये आवाज़ इसमें किशोर कुमार साहब ने गाया है। और आपको बता दूँ ये फिल्म थी अंदाज़, 1971 में आई। शंकर जयकिशन जी इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे। हसरत जयपुरी साहब ने इसे लिखा है। बहुत ही प्यारे इसके जो वर्ड्स हैं, बहुत ही प्यारी तरह से लिखा है कि चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा। जब हम आज बात कर ही रहे हैं उस युवाओं की, तो हर युवा के अंदर ये एक संकल्प हो कि चांद तारों से भी चलना है आगे, आसमानों से भी बढ़ना है आगे, बस किसी को भी हमें पीछे नहीं गिराना है, सभी के साथ मिल करके देश को भी आगे बढ़ना है। यही आज का युवा संदेश के साथ हम बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। और अगला जो नगमा है एक और हम सुनेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि हमारी जो फरमाइशें हैं वो हम पूरी करें। तब तक सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

वेलकम बैक दोस्तों। जो गाना भी हमने सुना 1988 की ब्लॉकबस्टर फिल्म विजय का ये गीत संगीत की दुनिया का एक ऐसा नगमा है जो दिल को सीधे हवाओं में उड़ने का एहसास कराता है। इस खूबसूरत गीत को लेजेंडरी सुरेश वाडकर जी और लता मंगेशकर जी ने अपने सुर से सजाया था। शिव लहरी यानी कि शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया जी, जो कि एक आजकल के ट्रेंड है, दो म्यूजिक डायरेक्टर एक साथ अपने आप को साथ में ला करके छोटा नाम बना के शिव हरी की जोड़ी ने इसका संगीत दिया है और इसे अपने रोमांटिक शब्दों से सजाया है नीदा फैजल साहब ने। मूवी में ये गीत ऋषि कपूर और मीनाक्षी शेषाद्री पर दर्शाया गया था। शिव कुमार शर्मा जी के संतूर और हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी की जुगलबंदी ने इस गाने को एक अलग ही ऊंचाई दी है। जब आप ये गाना सुनते हो तो लगता है जैसे सच में बादल आसमान में तैर रहे हो। निदा फिजल साहब के शब्दों ने इसे रोमांस में एक ऐसी रूहानियत भर दी कि सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की जी की आवाज़ में ये गीत हमेशा के लिए आशिकों का फेवरेट बन गया। जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। जो अगला हमारा जो नगमा है, हमारे भूरीलाल जी ने जो फरमाइश दी थी हम उनके लिए ये प्ले कर रहे हैं। बड़ी प्यार से ये गाना उनके लिए प्ले कर रहे हैं। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों सच्चे रिश्ते की नींव हमेशा इन्हीं खूबसूरत वादे और एक दूसरे पर विश्वास से मजबूत होती है। जी हाँ दोस्तों, मोहब्बत में वादों की अहमियत बहुत खास होती है, लेकिन जब प्यार की बात हो और उसमें एक दूसरे का हाथ जिंदगी भर थामने रखने का इरादा हो तो मोहब्बत अमर हो जाती है। 1984 में एक फिल्म आई थी लैला सावन कुमार तक, पूरा नाम है सावन कुमार तक, ऐसा नहीं कि सावन कुमार तक, सावन कुमार तक साहब जी के निर्देशक में बनी फिल्म। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में पूनम ढिल्लो और अनिल कपूर साहब की मुख्य भूमिका थी और इस फिल्म में संगीत दिया था दिग्गज संगीतकार उषा खन्ना जी ने। आज हम बात कर रहे इसी फिल्म के उस मशहूर सी और भावुक गीत की जो अभी हमने सुना, जो हमने अभी आप कह के साथ जिएंगे। इस गाने की सबसे खड़ी जो हमने कहा उषा खन्ना जी ने भारतीय संगम संगीत और मेलोडी का बहुत ही खूबसूरत मेल बिठाया था। 80 के दशक के दौर में जब डिस्को और फास्ट म्यूजिक का दौर शुरू हो रहा था तब भी इस गाने की सादगी ने हर किसी का दिल जीत लिया था। पर्दे पर अनिल कपूर जी पूनम ढिल्लो की केमिस्ट्री ने इस गाने के हर एक शब्द को जीवित कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, एक और हमारा ऐसा ही प्यारा सा नगमा, मेरे को बड़ा पसंद है ये जो अभी हमें सुरेश जी ने हमारे लिए फरमाइश में दिया है, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। चलिए सुनते हैं ये नगमा सुरेश जी का और फिर इस गाने के बारे में करते हैं बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक बम।

सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।

बम चिकी चिकी बम, चिकी बम बम चिकी चिकी बम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। जी हाँ दोस्तों, ये गाना 90s में हो नहीं सकता कि किसी के जबान पे ना हो। बच्चे बच्चे ने ये वाला सॉन्ग तो ज़रूर से गाया है और बोला है बम चिकी चिकी बम, चिकी बम बम चिकी चिकी बम। बिल्कुल दोस्तों, है ना, इतना प्यारा गाना है और इसके हर एक शब्द में बहुत ही खास चीज़ें हैं। दोस्तों प्यार सिर्फ प्रेम प्रेमिका के बीच नहीं होता, प्यार का असली और सबसे अटूट रूप दिखता ही एक परिवार में है, जहाँ परिवार भाई भाई का रिश्ता, भाभी का माँ जैसे दुलार, अपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा होता है। बिल्कुल इस फिल्म में भी ऐसा ही कुछ दिखाया है। बड़े भाई ने अपने दोनों छोटे भाइयों के लिए और उनके लिए जो कुछ भी किया है, अपने परिवार के लिए जो कुछ भी किया है, यही प्यार हमें देखने को मिला है। 1991 में मुकुल आनंद जी के निर्देशन में बनी ये फिल्म हम अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और गोविंदा साहब की तिगड़ी पर फिल्माया गया। यह गाना पारिवारिक प्रेम और एकजुटता की सबसे बड़ी मिसाल बनी और संगीत के बागदौड़ संभाले थी संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। जी हाँ, आनंद बख्शी साहब ने इस गाने में रिश्तों की मिठास को इतने सादे और असरदार शब्दों में पिरोया कि हर घर की कहानी लगने लगी। मोहम्मद अजीज, सुदेश भोसले, उदित नारायण और अलका याग्निक जी की सुरीली आवाजों ने इसमें जान फूंक दी थी। ये गाना है ही इतना प्यारा। स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन जी, रजनीकांत और गोविंदा की केमिस्ट्री और उनका चुलबुला अंदाज देखते ही बनता है। जब तीनों भाई अपनी भाभी को मनाने के लिए गाते हैं, हम सब है ताले तू चाबी सबकी, तो रिश्ते की वो मासूमियत और अपनापन दिल को छू लेता है, है ना दोस्तों। चलिए इसी नगमे और इसी प्रेम भाव, आज जैसे हमने कहा कि युवा दिवस है और इसी प्रेम भाव को हम सभी मिलजुल कर बांटे, सभी में अपना परिवार ढूंढे, सभी में को अपना परिवार समझे, तभी तो ये प्रेम और भी बढ़ता रहेगा। चलिए सुनते हैं रेडियो पे अगला ये नगमा। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते, ओम शांति। मैं हूँ हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

वेलकम बैक दोस्तों। अभी जो गाना सुना बदरा छाए, जी हाँ बिल्कुल बदरा छाई है। बादल कई जगह पे बरस रहे, कई जगह पे अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और सभी बारिश के मज़े ले रहे हैं। और हमने भी ये जो गाना सुना अभी आया सावन झूमके से, अपने सुर से सजाया था मोहम्मद रफ़ी साहब जी ने, लता मंगेशकर जी ने, म्यूज़िक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी, आनंद बख्शी साहब ने इसे लिखा था। सन 1969 में आई ये मूवी थी। चलिए दोस्तों अब वक्त है आप सभी से विदा लेने का और फिर मिलेंगे हम अगले हफ्ते सोमवार को ठीक इसी समय 8 बजे बहुत सारी ढेर सारी बातों के साथ। तब तक आप हमें दीजिए इजाज़त। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सहज स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आखिर सहज स्वास्थ्य में स्वागत न करें तो क्या आपका अस्पताल में स्वागत किया जाए? प्रायः लोग यही कहते हैं कि जब कोई आप अस्पताल जाते हैं तो कोई वहां स्वागत के लिए खड़ा नहीं रहता। अगर कोई ये कह भी दे कि आप आए अस्पताल, बहुत अच्छा लगा, फिर आते रहिए, तो फिर लोग बुरा मान जाते हैं कि भाई अस्पताल कोई ऐसी जगह है जो बार बार जाया जाए। जब हम अस्पताल को, यानी जब स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए हमें किसी ऐसे जगह जाना पड़ता है जहां पर हम रोगी होकर, दुखी होकर, चिंतित परेशान होकर या किसी प्रकार की व्याधि को लेकर जहां पहुंचना पड़ता है, वहां व्यक्ति जाना नहीं चाहता। ये बात बिल्कुल सही है कि हर एक व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, हर एक व्यक्ति रोग मुक्त, व्याधि मुक्त रहना चाहता है, किसी भी प्रकार के दुख दर्द से मुक्त रहना चाहता है। प्रायः दुख दर्द के लिए सबसे बड़ा कारण जो है हमारे शारीरिक बीमारियों के रूप में, शारीरिक व्याधियों के रूप में हमारे सामने आता है। और जब इन व्याधियों को ठीक करने के बारे में सोचा जाता है तो लोग यही समझते हैं कि अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे अब तो। ऐसे में जब कोई भी व्यक्ति अस्पताल जाना पसंद नहीं करता तो क्या हम अस्पताल न जाएं उसके लिए कुछ कर सकते हैं? ये सोचने वाली बातचीत है। आइए आज स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही विषयों पर चर्चा करते हैं और स्वास्थ्य जगत के ही एक्सपर्ट्स इस विषय पर हमें जवाब देंगे। जिन लोगों के पास हम स्वास्थ्य के लिए जाना चाहते हैं, बीमार होकर पहुंचना चाहते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, ये आज समझते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं स्वास्थ्य जगत से एक ऐसे एक्सपर्ट जिनको स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव है। भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है और आज भी दे रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, पहले तो मैं यही चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्योंकि एक डॉक्टर हैं, अस्पताल आप चलाते हैं, अस्पताल में बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, तो प्रायः ये चीज कहना कि फिर आइएगा जब कोई आपके पास आकर इलाज करके जाता है या वो ऐसे ही आता है कोई राय मशवरे के लिए, आपका स्वागत है, आप पुनः मिलिएगा, फिर आइए, ये कहते ही व्यक्ति मन में सोचता है अस्पताल में क्यों बार बार आऊं, ये तो व्यक्ति मेरी मंगल कामना नहीं कर रहा है, ये बात समझी जाती है। आप एक स्वयं स्वास्थ्यकर्मी होने के नाते इस चीज को कैसे देखते हैं?
1: श्री भैया, मेरी पढ़ाई भले ही एलोपैथी में हुई है, मगर मैं प्राकृतिक चिकित्सा गोरखपुर में आरोग्य मंदिर में प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो यहां जो हम लोगों ने देखा कि पहले मरीज महीनों के लिए आता था, ठीक होता था और चला जाता था, और फिर वो हमसे चिट्ठी पत्री के माध्यम से, उस फोन के माध्यम से और तार के माध्यम से वो हमसे जुड़ा रहता था। जब इंटरनेट आ गया तो वो हमसे ईमेल के माध्यम से, और सोशल मीडिया आ गया तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के माध्यम से वो हमसे जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक चिकित्सालय में व्यक्ति बार बार आना चाहता है, वो ये चाहता है कि वो आए, अपने शरीर की सारी गंदगी को साफ करे और एक अच्छा स्वस्थ शरीर और एक स्वस्थ मन लेके बाहर चला जाए। हाँ, आप किसी अगर मॉडर्न अस्पताल जो एलोपैथी की प्रैक्टिस करता है उसमें अगर आप किसी भी विभाग में जाएंगे तो मरीज हमेशा ये कहता है, भगवान इस बार ले आए हो, ठीक करके बाहर निकाल दो कि वापस यहां चक्कर ना लगाना पड़े। मॉडर्न मेडिसिन में सिर्फ एक ब्रांच है जहां पे जब पेशेंट बन के कोई आता है या उसके परिवार वाले उसको लेकर आते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं। और आप भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं, मगर जो ऑब्स्टेट्रिक ब्रांच है जिसमें बच्चा पैदा होता है, उसमें परिवार जन जब अपने परिवार के सदस्यों को लेकर आते हैं, जब महिला खुद आती है, उसके हस्बैंड आते हैं, सास ससुर आते हैं, माँ बाप आते हैं, भाई बहन आते हैं, तो वो बड़े खुश होते हैं। और हम लोग एक छोटा सा टिक सेंटर भी चलाते हैं यहाँ आरोग्य मंदिर के अंदर, तो वहां हम ये देखते हैं कि बच्चा पैदा होना एक बहुत खुशी की बात हमारे समाज में मानी जाती है, और उस खुशी के लिए अगर कोई नई नई मैरिड लेडी है जो आती है अस्पताल में किसी पेशेंट को देखने के लिए, तो उसकी सास या उसकी जो बड़ी है घर की महिला, वो कहती हैं कि अरे इसने खुशी दे दी, तुम भी कब दोगी खुशी। तो ऑब्स्टेट्रिक्स को छोड़कर कोई और ब्रांच नहीं है जिसमें अस्पताल आके एक व्यक्ति खुश होता है। अस्पताल एक अच्छी जगह नहीं है, मगर मैं सबको ये बात बोलूंगा कि अस्पताल निराश नहीं करती है, आपकी जो निराशा है उसको आशा में बदलती है। तो अगर आप स्वस्थ हैं, और हम सहज स्वास्थ्य का कार्यक्रम इसीलिए कर रहे हैं कि आपको अस्पताल आने की जरूरत न पड़े, और एलोपैथिक अस्पताल लोग नहीं जाना चाहते हैं, मगर आयुर्वेदिक अस्पताल हुआ, नेचुरोपैथी का सेंटर हुआ, हमारे केरला में इतने सारे हेल्थ सेंटर्स हैं वहां लोग जाना चाहते हैं, हमारे देश में कितने सारे आश्रम हैं जहां मेडिटेशन होता है लोगों का, एक सादा भोजन दिया जाता है, वैसे सेंटर्स में अब लोग अपनी भाग दौड़ की जिंदगी से बचने के लिए जाना चाहते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि एलोपैथी सेंटर में लोग नहीं आना चाहते, मगर प्राकृतिक चिकित्सालय में बहुत से लोग अपने साल में एक हफ्ता या दो साल में दो तीन हफ्ता बिताते हैं, जिससे शरीर और मन दोनों साफ होता है।
0: स्वास्थ्य लाभ लेना, अपने आप को स्वस्थ करने के लिए व्यक्ति जरूर आना चाहता है। जैसे आपने कहा, एलोपैथिक अस्पताल में लोग यही कहते हैं कि रोगी बनकर न जाना पड़े, कि एक बार अगर हम अस्पताल में रोगी बनकर गए तो जल्दी से जल्दी ठीक होकर वहां से जाया जाए, ये हर व्यक्ति की मंशा रहती है। अब स्वास्थ्य के बारे में आप ये बात कह रहे थे कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही ये है कि आपको अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़े, आप अस्पतालों से दूर रह सकें, स्वस्थ रह सकें, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। पिछले दिनों हम ये बातचीत कर रहे थे तो ये बात समझ में आ रही थी कि अनेक ऐसी बीमारियां उसका कारण हम स्वयं हैं, या हमारे खराब आदतें हैं, या हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारा आहार व्यवहार विहार, ये सब कुछ बदल जाने के कारण हम किसी न किसी प्रकार की व्याधि को स्वयं आमंत्रित कर लेते हैं। एक ऐसी ही आम सी चीज जो लोगों में देखने को मिलती है वो कब्ज की समस्या, जिसके ऊपर आपने विस्तार से बात कही। कब्ज कहते ही लोग कहते हैं कि भाई ये तो कई लोग सालों से इसका इलाज कर रहे होते हैं, कोई कुछ चूर्ण खा रहा होता है, कोई एंटासिड ले रहा है, कोई किसी प्रकार का फ्लूइड पी रहा है, कोशिशें बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अगर कब्ज ना हो, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? लोग सोचते हैं कि भाई क्या कोई नई चीज खाने को अपने भोजन में शामिल करने से क्या हम कब्ज से बच सकते हैं? तो इसके बचाव के उपाय क्या हैं, पहले हम इस चीज को समझें, फिर मैं ये भी प्रश्न पूछूंगा आपसे कि जिनको कब्ज है वो इससे निजात कैसे पाएंगे।
1: श्री भैया, सहज स्वास्थ्य का कार्यक्रम स्वास्थ्य को सहज बनाना है, और जो भी हमारे श्रोतागण हैं उन्हें अस्पतालों से दूर रखना है। कब्ज की बीमारी में सबसे बड़ी बात जो कही जाती है, यदि हम चाहते हैं कि कब्ज न हो, तो इसका विचार हमें शौचालय में नहीं भोजनालय में करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है, और यदि हम अपना भोजन संभाल लें तो कब्ज छोड़िए कोई भी बीमारी हमको नहीं छू सकती। आज एक पेशेंट को मैंने आरोग्य मंदिर में देखा, उन्होंने कहा कि हमको 2 महीना पहले डायबिटीज आ गई थी, डॉक्टर ने दवा शुरू करने को कहा, मैंने बाजार में बना हुआ भोजन छोड़ दिया, मैंने अन्न की मात्रा आधा कर दी, मैंने फलों की मात्रा बढ़ा ली, मेरा डायबिटीज ठीक हो गया। डायबिटीज की बात इसलिए क्योंकि उनको मालूम नहीं था उनको डायबिटीज है, वो कब्ज के रूप में उनको मिला कि मेरा पेट नहीं साफ हो रहा, पेट नहीं साफ हो रहा है। तो भोजन पर अगर स्वादिष्ट होने के बारे में हम सिर्फ यही सोचते रहें कि भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, तो हम बीमार पड़ते चले जाएंगे। हमको ये सोचना पड़ेगा कि भोजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ हितकर भी होना चाहिए। और कब्ज की अगर बात करें तो कब्ज निवारक भोजन होना चाहिए। आपको अपना भोजनालय ठीक करना है, और हमारे समाज में तो उसको माँ अन्नपूर्णा का मंदिर कहा गया है। आप कितने भी बड़े सेंटर्स में चले जाइए, मंदिरों में चले जाइए, भोजनालय का नाम माता अन्नपूर्णा पे रखा गया है। वहां पे अगर हम कब्ज कारक भोजन जो है उसको कब्ज निवारक भोजन से बदल लें तो हम बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको सलाद और फलों की मात्रा, कच्चे फलों की मात्रा अपने भोजन में बढ़ानी है। आपका कब्ज बहुत कठिन और बहुत पुराना हो सकता है, मगर खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर, पालक, पत्ता गोभी को कच्चा इस्तेमाल करिए। आप कब्ज से डरिए मत, क्योंकि अगर आप डरेंगे तो वो आपको और परेशान करेगा। और इसको रोज खाइए। आप ये मत सोचिए कि आपने एक दिन ये भोजन किया ये परेशान कर रहा, नहीं, आप इसको रोज खाइए। और अगर आप अपने भोजन में हाई फाइबर डाइट को बढ़ा देंगे, और जो चीजें आंतों में चिपकती हैं जैसे मैदा हुआ, कोई भी प्रोसेस्ड फूड हुआ, बहुत चीनी वाला सामान हुआ, इसको अगर आप रोक देंगे तो आपका कब्ज बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कब्ज के इलाज में अब मानसिक इलाज की भी बात की जाती है। वो ये कहा जाता है आपको मोशन हो या ना हो, आप कृपा करके सुबेरे एक तय समय पे बाथरूम जरूर जाइए। अगर आप बाथरूम जाएंगे तो आपका बॉडी, जो आपका रिदम है, उसको ये मालूम चलेगा कि अरे भाई अब तो मुझे साफ होना है। अगर आप बहुत ज्यादा तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, चाय, कॉफी का प्रयोग कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसे छोड़िए, क्योंकि अगर आप उसे छोड़ देंगे तो आपकी आंतें जो उसकी

0: वजह से चल रही हैं, उसकी वजह से चलायमान हो रही हैं, वो अपनी ताकत वापस धीरे धीरे पाने लगेंगी। आपको पानी पीना पड़ेगा। मैं जो भी स्कूल जा रहे हैं बच्चे या जो भी श्रोता हमारे सुन रहे हैं, आप 2 गिलास सुषुम पानी, नॉर्मल वाटर नहीं तो हल्का गुनगुना पानी पी के आप बाथरूम जाइए। अगर आप जाएंगे तभी आप अपने पेट को साफ कर पाएंगे। आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा नींबू मिला लें, एक चुटकी नमक डाल लें, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी आंतों को चलाना शुरू करेंगी। और इसका उपयोग आप कर सकते हैं अपने घर में सुषुम पानी नींबू के साथ एक सही समय, और हाई फाइबर डाइट जो है उसको लेकर हम अपनी आंतों को ठीक कर सकते हैं। भोजन भी बहुत जरूरी है, भोजन का समय भी बहुत जरूरी है।
1: मैं यही एक प्रश्न पूछना चाहता था डॉक्टर साहब। बहुत बार लोग जब कब्ज का इलाज जब सोचते हैं तो लोग सोचते हैं कि हाँ भोजन पर ध्यान देना है, सलाद खाना है, फलों की मात्रा खानी चाहिए, जो हम सब्जियां खा रहे हैं उसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं कि भाई ये तो ठीक है कि भाई ये खाना चाहिए, तो फिर कई लोग ये पूछते हैं फिर हम खाना कब खाएंगे, और फिर ये बोलते हैं कच्चा ही खा लेंगे तो फिर खाना छोड़ दें क्या, और फिर ये भी लोगों के मन में प्रश्न के रूप में उभरता है कि कब खाया जाना चाहिए, कितना खाया जाना चाहिए।
0: अगर आप 40 साल से कम हैं तो आप 3 से 4 बार भोजन कर सकते हैं। और 3 से 4 बार भोजन करने का मतलब है कि आप सुबेरे का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम को हल्का बहुत स्नैक और रात का भोजन करेंगे। और अगर आप 40 साल से ऊपर हो गए हैं तो प्लीज शाम के भोजन को बंद कर दीजिए, और रात का भोजन जो आप कर रहे हैं वो 8 बजे के पहले लेना शुरू करिए। भोजन का समय बहुत जरूरी है। आप दोपहर के और शाम के भोजन के साथ सलाद खा सकते हैं, आप सुबेरे के नाश्ते के साथ फल खा सकते हैं। आपको बहुत भूख लगती है तो आप शाम को कुछ बना हुआ प्रोसेस्ड फूड उसकी जगह आप कोई एक फल खा सकते हैं। आपको अपने जो सबसे ज्यादा नुकसान हम लोग को कर रहा है वो हमेशा भोजन करना कर रहा है। हमारी आंतें जो हैं वो हल्का हल्का हमेशा थोड़ा बहुत चलती रहती हैं, मगर हम कर क्या रहे हैं, हम घर से गुजरे तो कुछ खा लिया। भारती अगर आप ऑफिस में बैठे हैं तो अरे 11:30 बज गया, जरा कुछ मंगा लिया जाए पीने को। अरे कुछ पीने को मंगा रहे, उसके साथ कुछ खाने को भी मंगा लेना। किसी का आज अगर हमारे साथ में काम कर रहा व्यक्ति है, उसका कोई जन्मदिन या कोई सालगिरह हुई, चलो अरे नाश्ते का इंतजाम है आज उन्होंने किया है। हम किसी के घर जब मिलने जाते हैं तो हमारी भारतीय परंपरा के हिसाब से आप क्या पियेंगे, चाय या कॉफी, क्या नाश्ता करेंगे, हम खिलाते जरूर हैं। मैं लोगों को बोलता हूं कि अगर आपको कब्ज है, आप किसी के घर गए, आपने वहां कुछ खा लिया, तो कृपा करके अपने रात के भोजन को छोड़ दी, अपनी आंतों को थोड़ा आराम दीजिए, अपनी आंतों को और ना बोलना सीखिए। यदि आपका पेट आप नहीं पचा पा रहे हैं, आपको परेशानी है, तो दूसरे के पास अगर आप जा रहे हैं तो वहां भोजन मत करिए। बहुत सारे हम लोग ने पुराने उसमें बोला है कि बेल एकमात्र ऐसा फल है जो कॉन्स्टिपेशन ठीक करता है, पपीता बहुत अच्छा फल है जो कॉन्स्टिपेशन ठीक करता है, सेब, अमरूद, ये सारे फल हैं जो बहुत अच्छे से आपके पेट को साफ करते हैं। नारियल पानी पीने, आप पानी नहीं पीना चाहते नारियल पानी पी लीजिए, पानी में नींबू मिला के पी लीजिए, आपको कुछ स्वाद चाहिए तो थोड़ा सा नींबू मिला लीजिए उसमें, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं आपके लिए। हम कॉन्स्टिपेशन भैया बहुत सारे लोगों को बहुत एक्सट्रीम गर्मी में और बहुत एक्सट्रीम ठंडक में भी होता है। बहुत एक्सट्रीम गर्मी का मौसम होता है तो हमारा पसीना ज्यादा निकलता है, तो हमारे पूरे शरीर से पानी सोख लिया जाता है, हमारी आंतों से भी पानी सोख लिया जाता है, तो जो मल है वो कड़ा हो जाता है। यही चीज एक्सट्रीम ठंडक में भी मानिए, कि आदमी ठंड के मारे पानी ही नहीं पीता है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो प्लीज मैं बहुत सारे लोगों को यही कहता हूं कि आप कृपा करके पानी जरूर पीजिए। बहुत सारे लोग जो कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, अगर वो ठीक से पानी पी लेंगे तो ही उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। हम घरेलू नुस्खे, पानी पीना, सलाद खाना, फल खाने पे विचार न करके चलो डॉक्टर के यहाँ चला जाए, या जिसी चूरन का प्रचार है, अरे यार ये चूरन खा लिया जाए, अरे लेक्सेटिव पी लिया जाए, अरे एनिमा लगवा लिया जाए, हम इसी सब में परेशान है। अस्पताल में अगर आप चाहते हैं कि आपको न जाना पड़े तो अपने भोजनालय को सुधार लीजिए, सही भोजन कर लीजिए, तो आपको किसी भी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: जब आप ये बात कहते हैं कि अगर मैं अपने भोजनालय में सुधार ले आऊंगा तो फिर मुझे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सलाद की बात की, फलों की बात, आपने ये कहा कि हर दिन के भोजन पर हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम 40 साल के उम्र से नीचे हैं तो हम अपने भोजन पर क्या कर सकते हैं, कितने बार हम खा सकते हैं, और 40 के ऊपर की उम्र अगर हमारी है, 40 और 40 के ऊपर हैं, तो फिर हम सिर्फ 3 वक्त भोजन करें, और उसमें भी भोजन का समय शाम का सबसे जो रात्रि भोजन है वो रात को 8 बजे से पहले कर लिया जाए, ये आपने बात कही। भोजन से पहले सलाद खाना और सुबह के नाश्ते में फ्रूट खाने के बारे में आपने बात कही। मैं इस प्रश्न को इसलिए पूछ रहा हूं कि बहुत सारे लोग आज भारतीय जनमानस में ये चीज कही जाती है, अरे सलाद विलाद तो ये तो सब विदेशी लोगों की है, ये हमारे यहाँ का सिस्टम नहीं है। और जो लोग खाना शुरू भी करते हैं तो उनको अक्सर टोक दिया जाता है, ये क्या नई नई चीजें ले आते हैं, हमारे यहाँ का ये सिस्टम नहीं है, ऐसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं। तो इस पर भी सही तरीके से समझ होनी चाहिए कि सलाद भोजन का हिस्सा है, सलाद खाना, कच्ची सब्जियां खाना, इस पर पारंपरिक रूप से हम क्या राय रखते हैं?
0: या तो भोजन सुधार लीजिए या व्यायाम करिए, दोनों चीज, या आप इसका विचार करेंगे। अगर आप अच्छा भोजन कर रहे हैं तो अच्छा व्यायाम करना पड़ेगा, और अच्छा भोजन का मतलब है बहुत स्वाद वाला भोजन, तला भुना भोजन, उसमें अच्छा व्यायाम की जरूरत पड़ेगी। अगर आप फल सलाद ये सारी चीजें खा रहे हैं तो आपका शरीर कम व्यायाम में भी काम कर लेगा। व्यायाम बहुत जरूरी है। कब्ज के मरीजों को भी ये कहा जाता है कि आप जरूर वॉकिंग करिए, योगा करिए, आप जो पेट पे ऐसे आसन जो पेट दबाते हैं आपका, उनका प्रयोग करिए, उससे आपके जो आते हैं वो दबेंगी, चलायमान होंगी और आपका पेट साफ होगा। मिट्टी की पट्टी देना, हमारा पेट की गर्म ठंडी सेक देना, इससे भी आदमी को आराम मिलता है। तो हमारे पूरे आप अगर जो भोजन को देखिए, और एक बड़ी सीधी बात है, हम भगवान को अपने परिवार का अंग मानते हैं, हम भगवान को भी फल खिला रहे हैं, हम भगवान को भी भोजन करा रहे हैं, हम प्याज और लहसुन छोड़कर भगवान को सब कुछ खिला रहे हैं। तो जब हम प्रभु को सब कुछ खिला रहे हैं तो हमें खुद खाना चाहिए। आज जैसा भोजन हो गया है उसमें फाइबर की कमी बहुत ज्यादा हो गई है, और आप खुद देखिए भैया, हम लोग ने पिछले अपने टॉपिक्स में बात किया है, पिछले सहज स्वास्थ्य के एपिसोडों में बात की है कि वापस से मोटे अनाज की बात हो रही है, वापस हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हमें अब जौ, बाजरा, कोदो ये सब खाने की बात की है, नाचनी, रागी, ये सब खाने की बात की है। तो अच्छा, कोई भी ये चीज नई नहीं है, एकदम नई नहीं, हम नॉर्मल नहीं रह पा रहे हैं, इसीलिए हमें इसको भोजन में अपने जोड़ना पड़ रहा है। नहीं, हमारी मात्रा कम थी। आप किसी भी शादी ब्याह में जाइए भैया, सबसे पहले प्लेट प्लेट के बगल में सलाद रखा रहता है, और ये हमेशा रखा रह रहा है, हमेशा रखा जा रहा है। तो ये हमारे भोजन का अंग है, ये हमारे भोजन का पार्ट है। तो सलाद को भोजन के साथ और नाश्ते के साथ फल खाने की प्रथा तो बहुत पुरानी है, और ये अच्छी भी है। इतना करने से हमें हाई फाइबर मिल रहा है, बहुत सारे मिनरल्स मिल रहे हैं।

0: मूली इत्यादि का प्रयोग करते आ रहे हैं और उन चीजों को लोग ऐसे ही कच्चा खा लेते थे, खेतों से धुलाई करके उधर ही खाने की परंपरा भी थी। फलों की मात्रा के बारे में भी हम ये बात समझते हैं कि भारत में इतने ज्यादा सीजनल फ्रूट्स हैं कि हर मौसम के फल फूल इतने ज्यादा हैं और लोग हमेशा से उनका सेवन करते आए हैं। आज उन चीजों से दूर होते होते आज हम अपने स्वास्थ्य को भी खोते हुए नजर आ रहे हैं, कब्ज जैसी बीमारियों के हम शिकार हो रहे हैं। प्रश्न और भी है मगर समय कहता है कि यहाँ रुकना होगा, मगर आज आपने बताया कि कैसे कब्ज को ठीक करने के लिए हमें स्वयं अपने भोजनालय से शुरुआत करनी है, अपनी आयु के अनुसार भी हमें भोजन पर ध्यान देना है, भोजन में कच्चे सब्जियों और पके हुए फलों को खाने के समय के बारे में भी आपने जानकारी दी। हर दिन ये हमारे भोजन का हिस्सा होना चाहिए ये भी समझ में आया, और भोजन करने का समय क्या होना चाहिए ये भी बात समझ में आ रही है कि सूर्यास्त से पहले पहले भोजन कर लिया जाए, रात को कम से कम 8 बजे से पहले तो भोजन हो ही जाना चाहिए। ये आज के एपिसोड से बातें समझने और सीखने को मिली हैं। आप हमारे श्रोता मित्रों के लिए इतना मार्गदर्शन दे रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी श्रोता मित्र इसका लाभ लेंगे और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे। आज आप हम सबके लिए इन जानकारियों के साथ पहुंचे, के लिए सभी श्रोताओं की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों आज के सहज स्वास्थ्य में करना क्या है, अगर आपके घर में आप स्वयं या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कब्ज से या पेट न साफ होने के कारण चिंतित या परेशान है, तो उसकी मदद करने के लिए शुरुआत आज से ही करनी है। घर में कच्ची सब्जियों की मात्रा को बढ़ाएं, कच्ची सब्जियां खाना शुरू करें, पके हुए फल खाना शुरू करें, अपने भोजनालय से इस समस्या का निवारण कर सकते हैं और ये बिल्कुल आपके अपने हाथ में है। आज के सहज स्वास्थ्य में इतना ही दोस्तों, फिर मुलाकात होगी, तब तक दीजिए मुझे इजाजत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: This is Uma Shankar Mishra, former director CBI, and you are listening to Brahma Kumari's community radio station. Radio Madhuban, keep listening, keep smiling.
1: बच्चों आ जाओ रेडियो के पास, सपनों की सैर कार्यक्रम में मनी दीदी और परी आ गए हैं आपसे ढेर सारी बातें करने।
2: हाँ परी, और अब तो बच्चे हमें अपनी बहुत सारी बातें भी शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स भी बताते रहते हैं।
1: हाँ बच्चों, तो चलो अब प्रॉब्लम्स का सिलसिला चालू है, जानकारियाँ फिर बाद में कभी लेंगे। और पता है मनी दीदी, एक छोटी सी बच्ची ने एक क्वेश्चन पूछा है। मैं स्कूल में अकेली रहती हूँ, कोई मेरे साथ नहीं खेलता, सब अपने अपने ग्रुप में है, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ?
2: अच्छा, तो वैसे परी इस बच्ची का नाम क्या है?
1: हाँ, इस बच्ची का नाम है ईशा।
2: हाँ अच्छा ईशा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, आप तो बहुत प्यारे हो। और पता है कभी कभी तो हमें दोस्ती करने के लिए पहले अपना हाथ बढ़ाना होता है, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा मिक्स होने की कोशिश करो, किसी से बातें करो, किसी की अच्छी चीज को देखो तो उसकी तारीफ करो, अगर वो अच्छा ड्राइंग करती है तो उसकी तारीफ करो, किसी से उसके पसंदीदा खेल के बारे में पूछो।
1: हाँ फिर क्या होगा पता है, धीरे धीरे तुम्हारे दोस्त बनने लगेंगे। सच्चे दोस्त तो वो होते हैं जो दिल से जुड़ते हैं, तो तुम मुस्कुराओ और पहल करो, दोस्ती खुद तुम्हारे पास आएगी।
2: हाँ और आप तो बहुत अच्छे हो, क्योंकि हम तो आपके फ्रेंड है ना।
1: हाँ तो ईशा ट्राई करना इसको, कल स्कूल में जाओ तो एक दोस्त जरूर बना लेना।
2: हाँ चलो भाई, बच्चों की समस्या का भी समाधान हो गया। परी चलो प्यारा सा गाना सुनते हैं, फिर तो आपकी कहानी भी सुननी है।
1: हाँ और मनी दीदी भी बुक रीडिंग के लिए आने वाली है, तो चलो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आ जाओ बच्चों, रेडियो के पास कहानी परी शुरू कर रही है। आज आपको चूहिया की बेटी का विवाह, इस पर कहानी सुनाएंगे। एक चूहिया को एक सुंदर कन्या थी, वो अपनी बेटी का विवाह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से करना चाहती थी। बहुत सोच विचार करने से उसे लगा कि भगवान सूर्य उसकी कन्या के लिए उपयुक्त साबित होंगे। चूहिया सूर्य भगवान के पास गई और कहा, सूर्य देवता, क्या आप मेरी सुंदर कन्या से विवाह करेंगे? क्या उसे आप अपनी पत्नी के रूप में पसंद करेंगे? तो बच्चों सोचो, सूर्य भगवान ने क्या कहा? सूर्य ने कहा, चूहिया चाची, आपने मुझे अपनी बेटी के योग्य वर समझा, इसके लिए मैं आभारी हूँ, पर मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझसे तो शक्तिशाली वरुण देवता है, जो अपने बादलों से मुझे ढक देता है। तो बच्चों चूहिया जल देवता के पास गई और कहा, वरुण देवता, क्या आप मेरी सुंदर कन्या से विवाह करेंगे? तो वरुण देवता ने कहा, देखो देवी, सबसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं हूँ, मुझसे शक्तिशाली तो वायु देवता है, जो मेरे बादलों को दूर तक उड़ा देते हैं। तो बच्चों फिर चूहिया वायु देवता के पास गई और उसने भी अपनी बेटी के लिए विवाह का प्रस्ताव रखा। तो वायु देवता ने कहा, चाची, मुझसे भी तो ज्यादा शक्तिशाली पर्वतराज है, वे मार्ग में खड़े हो जाते हैं और मुझे रोक देते हैं। मैं चाहे कितना भी ताकत लगाऊं, पर्वतराज को मैं अपने रास्ते से हटा ही नहीं पाता। तो बच्चों चूहिया सोचो किसके पास गई? पर्वतराज के पास। उसके आगे भी विवाह का प्रस्ताव रखा। तो पर्वतराज ने कहा, मुझसे भी शक्तिशाली तो मूषकराज है, माना चूहों का राजा, वे अपने साथियों के साथ मेरे चट्टानी शरीर में बड़े बड़े बिल खोदकर मुझे खोखला कर देता है। तो बच्चों अंत में चूहिया चाची मूषकराज के पास गई और विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, मैं आपकी बेटी से अवश्य विवाह करूंगा। और फिर तो बच्चों गाजे बाजे के साथ धूमधाम से चूहिया की बेटी और मूषकराज का विवाह संपन्न हुआ। तो देखा बच्चों, ये कहानी हमें क्या समझाती है? दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, है ना बच्चों? कोई भी ऐसे शक्तिशाली नहीं बन जाता, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, तब हमें अपने कार्य में सफलता मिलती है। तो चलो बच्चों, अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: मैं हूँ वर्षा उसगांवकर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: चलो बच्चों, आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। हम शुरू करने वाले हैं आज एक नई कहानी, वो भी तेनाली रामा की। और आज हम सुनने वाले हैं, कहानी का शीर्षक है कुएं का विवाह। एक बार विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय और उनके बुद्धिमान मंत्री तेनाली राम के बीच एक छोटी सी अनबन हो गई और मामला इतना बढ़ गया कि राजा के कोप से बचने के लिए तेनाली राम राजधानी छोड़कर दूर के गांव में जाकर छिप गए। और कुछ दिन बीत जाने के बाद राजा को तेनाली राम की अनुपस्थिति का एहसास हुआ और उनका मन अशांत रहने लगा और उन्होंने तेनाली राम की दूर दूर तक खोज की, लेकिन तेनाली राम का कोई पता नहीं चला। तो राजा बहुत निराश हो गए। उन्हें लगा शायद तेनाली राम अब कभी नहीं आएंगे। फिर उनके मन में एक चालाक योजना आई। उन्होंने सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि वे अपना राजकीय कुआं किसी और कुएं से विवाह में दे रहे हैं, तो इस विवाह में शामिल होने के लिए सभी गांव के मुखियाओं को अपने अपने गांव के कुएं को लेकर राजधानी में आना होगा और जो भी आदेश नहीं मानेगा उस पर 1000 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये आदेश सुनकर सभी गाँव वाले तो बहुत परेशान हो गए। कुआं तो पानी का स्रोत होता है, उसे कैसे किसी और के साथ विवाह में दिया जा सकता है, ये तो नामुमकिन है। तो जिस गांव में तेनाली राम छिपे हुए थे वहां के मुखिया भी घबरा गए और तभी तेनाली राम ने उनका सहयोग करने को सोचा और फिर उन्होंने कहा कि सभी गांव के मुखियाओं को इकट्ठा करो और सब राजधानी की ओर चल पड़ो। फिर भेष बदल कर तेनाली राम भी उनके साथ चल पड़े। तो राजा के दरबार में एक संदेश वहां गया और कहा, महाराज सभी गांव के कुएं आपके राजकीय कुएं के विवाह में शामिल होने के लिए नगर के बाहर रुके हुए हैं, आप कृपया अपने राजकीय कुएं को उनकी अगवानी के लिए भेजें। तो ये सुनकर राजा समझ गए कि ये तेनाली राम की चाल है। उन्होंने पूछा कि ये विचार उसे किसने दिया है, तो कहा कि उनके गांव में एक अजनबी आया था जिसने यह विचार दिया। तो राजा तुरंत समझ गए वो अजनबी कोई नहीं बल्कि तेनाली राम है। वे स्वयं नगर के बाहर गए और तेनाली राम को ढूंढ निकाला और ससम्मान उन्हें दरबार में वापस लाया और सभी गांव वालों को पुरस्कार देकर विदा किया। तो ऐसी थी तेनाली रामा की चतुराई। तो चलो बच्चों, अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं एक प्यारे से गाने के बाद। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

से हमें वो करते याद, धन्य बनाने वाले दिल से लाखों धन्यवाद।

0: चलो बच्चों, अगर इधर उधर हो गए हो तो फिर से रेडियो के पास आ जाओ और अपना वॉल्यूम लाउड कर लो और हाथ में डायरी पेन भी ले लो, क्योंकि अब बारी है पहेली की।
1: हाँ बच्चों, अपना वॉल्यूम लाउड कर लो मतलब कि रेडियो का वॉल्यूम लाउड कर लो, अपने गले का वॉल्यूम लाउड नहीं करना।
0: हाँ बच्चों, सही बात कही मनी दीदी ने। और याद है ना बच्चों, पिछली कड़ी में हमने आपको एक गणित की पहेली पूछी थी।
1: हाँ परी, याद है ना, मैंने तो पूरा दिन उसको समझने में लगाया और आखिरकार मुझे समझ आ गई।
0: वाह मनी दीदी, ट्यूबलाइट जल गई आपकी।
1: हाँ, यानी अब मैं ट्यूबलाइट नहीं हूँ।
0: तो बच्चों, याद करा देते हैं आपको फिर से कि हमने पिछली कड़ी में क्या पूछा था। एक व्यक्ति के पास 15 बकरियां हैं, जिसमें से 7 बकरियों को छोड़कर बाकी सभी मर जाती है, तो अब उस व्यक्ति के पास कितनी बकरियां बची?
1: बच्चों, कल मैंने क्या जवाब दिया था? मैंने कहा था कि 8 बकरियां बची, क्योंकि 15 में से 7 मर गई तो 8 ही बची ना। लेकिन परी ने क्या कहा था याद है ना? प्रश्न में ही जवाब छिपा है, तो प्रश्न को फिर से सुनो। एक व्यक्ति के पास 15 बकरी, जिसमें से 7 बकरियों को छोड़कर बाकी सभी मर जाती है, यानी 7 बकरियां तो बची हुई है ना, तो सही जवाब है 7।
0: बिल्कुल सही बच्चों, देखा मनी दीदी बच्चे कितने स्मार्ट है।
1: हाँ अच्छा है बच्चों, ऐसे ही मैथ्स में थोड़ा ध्यान दिया करना।
0: तो चले मनी दीदी, अब अगले सवाल के लिए तैयार हो जाओ।
1: फिर से मैथ्स का तो नहीं है ना परी?
0: एकदम सही कहा मनी दीदी।
1: ओह नो,
0: ओह यस।
1: अच्छा ठीक है, चलो आप बोल रहे हो तो थोड़ा और कैलकुलेशन कर लेंगे।
0: हाँ तो ध्यान से सुनना बच्चों। 2 पिता और 2 पुत्र होटल में लंच करने के लिए गए। प्रत्येक ने 70 रुपए का मेनू ऑर्डर किया। अब बताओ कुल कितना खर्चा हुआ होगा?
1: 2 पिता और 2 पुत्र लंच के लिए गए, यानी कि 4 लोग, और फिर 70 रुपए का एक का खर्चा हुआ, तो 70 × 4 तो कितना हुआ परी? 28, 280 रुपए है ना? 280 रुपए सही जवाब है ना?
0: मनी दीदी अभी भी आप कंफ्यूज हो रहे हो।
1: अच्छा फिर से मेरे कैलकुलेशन गलत कैसे हो गई? आपने क्या बोला था?
0: 2 पिता और 2 पुत्र,
1: यानी 4 लोग।
0: 4 लोग हुए, फिर से थोड़ा ध्यान सोचो।
1: अच्छा चलो बच्चों, मैं तो सोच रही हूँ, आप भी सोचो। और अगर आपको सही जवाब सूझ रहा है तो जल्दी से भेज दो मुझे 94 14 15 14 15 पे। पता नहीं अभी मेरी कैलकुलेशन में फिर कौन सी गड़बड़ हो रही है। चलो अभी क्या करना है परी, ये बताओ आप।
0: अभी तो भगवान को गुड नाइट करना है और पूरे दिन का सारा हाल चाल बताना है।
1: चलो भाई बच्चों, जल्दी से डायरी पेन में लिखो, मैं भी लिख रही हूँ।
0: हाँ, और भगवान को पूरे दिन के लिए सारी जो अच्छी बातें हुई दिल से थैंक यू करना,
1: और गलती हुई उसके लिए दिल से सॉरी करना,
0: और उनकी गोदी में सो जाना।
1: गुड नाइट,
0: स्लीप टाइट,
1: गुड बाय। सुनते रहो,
0: मुस्कुराते रहो,
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

सुन सुन नन्ही लोरी की धुन, हो जाओ मीठे सपनों में गुम।

किलोर श्रोताओं कदी आओ ला रेडियो मधुबन में, श्रोताओं कदी आओ ला। तो सावन महीने की शुरुआत गुजरात में आज से शुरू हो चुके हैं और राजस्थान में आज 15 दिन हो गया है। तो सावन महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है आज क्या है वो आप सभी को पता है। चलिए चंद पंक्तियों से शुरुआत करते हैं। हरियाली अमावस्या आई, खुशियों की सौगात लाई, पेड़ लगाए धरती सजाए, प्रकृति ने फिर मुस्कान सजाई। हर आंगन में हरियाली हो, हर मन में खुशहाली हो, प्रकृति से प्रेम करें हम सब, यही जीवन की सच्ची लाली हो। तो हरियाली अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। ईश्वर कभी भी किसी की इच्छा को अधूरा नहीं छोड़ता, कैसे जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, नुस्खे तो आपको बहुत ही अच्छे देने वाली हूँ। और ये मौसम के अनुसार, ठीक है अभी मौसम बारिश का है तो इस अनुसार ही आपको नुस्खे देंगे। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें करेंगे, हरियाली अमावस्या कैसे मनाई जाती है जरूर हम इसमें चर्चा करेंगे। और रेसिपी में आप क्या खाना पसंद करते हैं। आज के दिन, आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि बहुत बड़ा त्यौहार है राजस्थान में हरियाली अमावस्या। तो विशेष करके आज के दिन क्या बनाया जाता है वो रेसिपी मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ। और आज का प्रश्न भी बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये सब कुछ सुनेंगे अशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: आशना कार्यक्रम में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, धरती माँ का मान बढ़ाओ, हरियाली से सजे संसार, यही हो अमावस्या का उपहार। तो आप सभी को पुनः हरियाली अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का सुंदर सा विचार है कि भगवान हमेशा हर एक के संकल्प को पूरा करता है, किसी के भी संकल्प को अधूरा नहीं छोड़ता है। अगर सच्ची लगन है हमारी तो कैसे। तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी कि गज और असुर के संयोग से एक असुर का जन्म हुआ। उसका मुख गज जैसा होने के कारण उसे गजासुर कहा जाने लगा। गजासुर शिव जी का बड़ा ही भक्त था और शिव जी के बिना अपनी कल्पना ही नहीं करता था। उसकी भक्ति से भोले भंडारी गजासुर पर प्रसन्न हो गए, वरदान मांगने को कहा। गजासुर ने कहा, प्रभु आपके आराधना में कीट पक्षियों द्वारा होने वाले विघ्न से मुझे मुक्ति चाहिए, इसलिए मेरे शरीर से हमेशा तेज अग्नि निकलती रहे जिससे कोई पास न आए और मैं निर्विघ्न आपकी आराधना करता रहूं। महादेव ने गजासुरों को उसका मन चाहा वरदान दे दिया। गजासुर फिर से शिव जी की साधना में लीन हो गया। हजारों साल के घोर तप से शिव जी फिर प्रकट हुए और कहा, तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने मन चाहा वरदान दिया था, मैं फिर से प्रसन्न हूं, बोलो वत्स अब क्या मांगते हो। गजासुर कुछ इच्छा लेकर तो तप कर नहीं रहा था, उसे तो शिव आराधना के सिवा और कोई काम पसंद ही नहीं था, लेकिन प्रभु ने कहा कि वरदान मांगो तो वह सोचने लगा। गजासुर ने कहा, वैसे तो मैंने कुछ भी इच्छा रख करके तप नहीं किया, लेकिन आप कुछ देना चाहते हैं तो आप कैलाश छोड़कर मेरे उदर माने पेट में ही निवास करिए। भोले भंडारी गजासुर के पेट में समा गए। माता पार्वती ने उन्हें खोजना शुरू किया, लेकिन वे कहीं मिले नहीं। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण करके शिव जी का पता लगाने को कहा। श्री हरि ने कहा, बहन आप दुखी न हो, भोले भंडारी से कोई कुछ भी मांग ले वो दे देते हैं, वरदान स्वरूप वह गजासुर के उदर में वास कर रहे हैं। श्री हरि ने एक लीला की, उन्होंने नंदी बेल को नृत्य का प्रशिक्षण दिया और फिर उसे खूब सजाने के बाद गजासुर के सामने जाकर के नाचने को कहा। श्री हरि स्वयं एक ग्वाले के रूप में आए और बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन पर नंदी ने ऐसा सुंदर नृत्य किया कि गजासुर बहुत ही प्रसन्न हो गया। उसने एक ग्वाला वेशधारी श्री हरि से कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इतने साल की साधना से मुझ में वैराग्य आ गया था, तुम दोनों ने मेरा मनोरंजन किया है, कोई वरदान मांग लो। श्री हरि ने कहा, आप तो परम शिव भक्त है, शिव जी की कृपा से ऐसी कोई चीज नहीं जो आप हमें न दे सको, किंतु मांगते हुए संकोच होता है कि कहीं आप मना न कर दे। श्री हरि की तारीफ से गजासुर स्वयं को ईश्वर तुल्य ही समझने लगा था। उसने कहा, तुम मुझे साक्षात शिव समझ सकते हो, मेरे लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं, तुम्हें मन चाहा वरदान देने का वचन देता हूँ। श्री हरि ने फिर कहा, आप अपने वचन से पीछे तो नहीं हटेंगे। गजासुर ने धर्म को साक्षी रखकर हामी भरी तो श्री हरि ने उससे शिव जी को अपने उदर से मुक्त करने का वरदान मांगा। गजासुर वचनबद्ध था, वह समझ गया कि उसके पेट में बसे भोलेनाथ का रहस्य जानने वाला यह रहस्य ये कोई साधारण ग्वाला नहीं है, जरूर स्वयं भगवान विष्णु आए हैं। उसने शिव जी को मुक्त किया और महादेव से एक आखिरी वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु आपको उदर में लेने के पीछे किसी का अहित करने का नशा मतलब या मंशा नहीं थी, मैं तो बस इतना चाहता था कि आपके साथ मुझे भी स्मरण किया जाए, शरीर से आपका त्याग करने के बाद जीवन का कोई मोल ही नहीं रहा, इसलिए प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि मेरे शरीर का कोई अंश हमेशा आपके साथ पूजित हो। तो भोलेनाथ ने उसे वह वरदान दे दिया। श्री हरि ने कहा, गजासुर तुम्हारी शिव भक्ति अद्भुत है, शिव आराधना में लगे रहो, समय आने पर तुम्हें ऐसा सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब गणेश जी का शीश धड़ से अलग हुआ तो गजासुर के शीश को ही श्री हरि काट लाए और गणपति के धड़ से जोड़कर जीवित किया था। इस तरह वे शिव जी के प्रिय पुत्र के रूप में प्रथम आराध्य हो गए। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि भगवान कभी भी किसी के संकल्प को अधूरा नहीं छोड़ते, उन संकल्पों को पूरा करने की जरूर कोशिश करते हैं। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, और हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं, बात करेंगे। हेलो
1: हेलो, नमस्कार, ओम शांति। हमारी प्यारी बहन उषा जी, मैं दयाराम भाई बोल रहा हूँ राजस्थान रामपुरा से।
0: हाँ जी दयाराम जी, नमस्ते, कैसे हो आप?
1: मैं बहुत ही अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है, सभी मित्रों की और सभी मेरे आरजे भाई बहनों की। और सबसे पहले तो मैं रेडियो मधुबन स्टूडियो में आपका तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ।
0: थैंक यू।
1: आप एक हफ्ते के बाद आई है स्टूडियो में, आपने ही बहुत ही शानदार कार्यक्रम की आगाज कर दिया है और विचार भी बहुत सुंदर दिया है।
0: थैंक यू।
1: तो आपको और आपके जो सभी रेडियो मधुबन के जो अपना योगदान दे रहे हैं और भी भाई बैठे हैं जो अपने गान लगा रहे हैं, जो कई धुन बजा रही है, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और आज हरियाली अमावस्या की सभी को बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं
0: जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं,
1: सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और आएंगे और सवाल का जवाब भी देंगे और विषय में भी बात करेंगे जरूर।
0: जी जी, बहुत बहुत आभार आपका दयाराम जी। हाँ जी, तो ये थे दयाराम जी लाखनी से, और अभी वर्तमान में आप रामपुरा रह रहे हैं। तो चलिए अगली कड़ी में मिलते हैं, तब तक के लिए सुनते हैं गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना मैं आपको बहुत ही सुंदर घरेलू उपाय देने वाली हूँ। जी हाँ, बारिश के मौसम में अक्सर क्या होता है, मच्छर, चींटी, कीड़े मकोड़े और दूसरे जीव जंतु ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और कहीं काट भी देते हैं, तो इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे बचेंगे, और अगर काट देते हैं तो इनका उपाय भी आप जानेंगे। तो क्या है, अगर इस तरह के जीव जंतु काट लेवे तो काटे हुए स्थान पर आप साबुन और साफ पानी से धो लीजिए, ठीक है, ताकि वो बार बार खुजली नहीं चलेगी,

ऐसे नहीं कि हम नाखून से खुजाते रहें, क्योंकि नाखून से जब हम खुजलाते हैं ना तो कितनी बार घाव पड़ जाता है और हल्का सा ब्लड भी बाहर आ जाता है। इसलिए खुजलाना नहीं है, नहीं तो संक्रमण की समस्या हो सकती है। ज़्यादा ही खुजली चल रही है तो आप कपड़ा हाथ में लेकर कपड़े से घुमाइए, ठीक है, उससे खुजली चलाइए। और उपाय आप कर लीजिए, साबुन लगा दीजिए, साफ पानी से धो लीजिए तो खुजली भी नहीं चलेगी। और वो कहते ना कि बिना पहचान के कोई तेज रसायन, मिट्टी, पेट्रोल, केरोसिन या कोई ऐसे जो शरीर को नुकसान करे, इन चीज़ों का लेप नहीं करना है। अगर हमें समझ नहीं है तो ठीक है, अगर समझ है तब तो कोई बात नहीं। कितनी बार समझ नहीं होती और हमें इस तरह के अखतरे करने जाते हैं, फिर वो लेने का देना पड़ जाता है। इसलिए तेज रसायन, मिट्टी, पेट्रोल, केरोसिन, इन चीज़ों का लेप नहीं करना है अगर हमें इसकी समझ नहीं है तो। और बचाव के लिए इतना कहना चाहूँगी आपको, इन सभी से, कीटनाशक चीज़ों से, इन जीव जंतुओं से, कीटाणुओं से बचना हो तो घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना है। खास करके गमले, कूलर और पुराने बर्तनों में तो बिल्कुल भी पानी जमा नहीं होने देना है। शाम के समय पूरे कपड़े पहनिए और मच्छरदानी और रिपेलेंट का आप इस्तेमाल करें, ठीक है। बारिश में जूते पहनने से पहले जूते और कपड़े अच्छी तरह जांच लें। कितनी बार क्या है, जीव जंतु जूते के अंदर बैठे रहते हैं, हम जल्दबाजी में जूते बिना चेक किए ही पहन लेते हैं, फिर वो जीव जंतु हमें काट लेते हैं। इसलिए पहनने से पहले थोड़े से जूते चप्पल को झटक लीजिए। चप्पल में से तो फिर भी दिखाई देता है, लेकिन जूते में से तो जीव जंतु नहीं दिखाई देता है, तो उनको झटक करके फिर पहनिए ताकि जीव जंतु बाहर आ जाए, ठीक है। और ये तो हुए घरेलू उपाय। और खास सावधानी तब रखनी है जब तेज सूजन, बेहोशी, बहुत तेज दर्द, फैलते हुए सूजन या शरीर पर गंभीर एलर्जी जैसे लक्षण हो, तो उस समय घरेलू उपायों पर निर्भर नहीं रहना है और तुरंत ही चिकित्सालय जाना है, ठीक है। बाकी छोटी मोटी बीमारियों में घरेलू उपाय कर सकते हैं। तो ये हुए आज के घरेलू उपाय। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, कौन कौन से राज्य में हरियाली अमावस्या मनाई जाती है और अन्य दूसरे राज्यों में हरियाली अमावस्या को किस नाम से मनाया जाता है, वो नाम आपको सुनाना है। तो प्रश्न एक है, जवाब दो है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर एक अल्पविराम लेकर के पुनः रूबरू होंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बादल बरसे, हाँ जी नमस्ते, मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है। बादल बरसे धरती महके, पत्तों पर मोती आए, हरियाली के इस मौसम में खुशियों के फूल खिलाए, एक पेड़ लगाकर हम भी प्रकृति का श्रृंगार करें, हरियाली अमावस्या पर धरती माँ से प्यार करें, धरती माँ से प्यार करें। पुनः आप सभी को हरियाली अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: हाँ जी, स्वागत आपका। कौन बोल रहे हैं?
1: हरियाली ज्यादा राजस्थान में उसका महत्व ज्यादा है
0: जी। आप क्या करते हैं आज के दिन खास, क्या करते हैं दयाराम भाई?
1: आज तो अपने दीवा से भी बोलता है
0: जी।
1: हाँ
0: जी,
1: के लिए आप ये वृक्ष का किया वो बहुत अच्छा किया है। हाँ, वृक्ष रोपण के लिए वो धरती की शोभा है अने जरूरी है। आज प्रकृति विनाश हो रही है, उसके लिए तो बारिश कम हो रही है
0: जी।
1: भक्ति के साथ साथ ये प्रकृति का श्रृंगार है, क्योंकि वृक्ष भी है, हमारा कहना वही है, दूसरा तो आप दे सकते
0: जी। लेकिन आज आप कैसे मनाते, इस त्योहार को कैसे मनाते, ये बताइए। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे, आज हरियाली अमावस्या है तो कैसे क्या करते हैं, क्योंकि राजस्थान में तो बहुत ही महत्व है इसका। हाँ जी,
1: गुजरात में भी कोई वो
0: गुजरात में आज से सावन की शुरुआत है, कैसा लग रहा है आपको?
1: हाँ, आज से होती है, दरेक जगह होती है, गुजरात में आज से होती है
0: जी।
1: शिव जी का महत्व, लेकिन हम मनाते मारवाड़ी सावन
0: जी,
1: क्योंकि हम के राजस्थान के रहने वाले हैं
0: जी जी।
1: इसके लिए हम वो अभिषेक वो उस पूनम से करता है, उस पूनम तक बड़े तक।
0: अच्छा अच्छा जी जी। और आज का प्रश्न है, ये हरियाली अमावस्या कौन कौन से राज्यों में मनाई जाती है और दूसरे राज्यों में इसको किस नाम से जाना जाता है?
1: वो तो मालूम नहीं, लेकिन राजस्थान में ज्यादा उसका महत्व है।
0: अच्छा,
1: हाँ, बहनों भी बहुत उसका उपरण करती है, बहन गुजरात में कम है, उसको गुजरात में दीवा से ही बोलता है
0: जी जी जी।
1: हरियाली अमावस्या हम समझते है
0: जी जी जी। ठीक है दयाराम जी, बहुत बहुत आभार आपका।
1: ठीक है,
0: हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे दयाराम जी इकबालगढ़ से, आप ने भी बताया है कि सावन की शुरुआत हो चुकी है और अभिषेक वगैरह बहुत होता है गुजरात में, बिल्कुल सही कहा आपने। अब आप भी जुड़ सकते हैं आशियाना कार्यक्रम में और अपनी बात को बता सकते हैं। आशियाना कार्यक्रम सीधा प्रसारण है, जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, आपका स्वागत है। और आज हम त्योहार पर ही बात करेंगे, आज हरियाली अमावस्या है। कुछ समय से आपको मैं चंद पंक्तियां भी सुना रही हूँ, तो उधर भी आप जा सकते हैं पंक्तियों की तरफ भी। हिंट तो मैं दे चुकी हूँ, लेकिन हाँ मनाते थोड़ा अलग तरीके से है, वो भी आपको बताएंगे। हेलो,
2: नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, कैसे दीदी?
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, हम बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए आप कैसे हो?
2: बस हम भी बहुत अच्छे हैं, और आज आए हैं आप, बहुत अच्छा लगा दीदी, कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। और हमारे सभी मित्रों को भी मैं बोलना चाहूँगा कि आज कार्यक्रम लाइव चल रहा है, मैं बात कर रहा हूँ दीदी से, तो आप भी जरूर जुड़िए। थोड़ा दिनों से दीदी हाजिर नहीं थे, लेकिन फिर भी हम तो कार्यक्रम हरदम सुनते ही रहते थे
0: जी।
2: तो चलो आज आए दीदी, आपका बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
0: थैंक यू।
2: और अच्छे दिन है, आज अमावस्या है, लेकिन हमारे तो दीदी क्या बताओ, तो हमारे तो यहाँ गुजरात में थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी महिलाएं जाती है, महादेव मंदिर में जाती है, शिव जी के मंदिर में जाके जो पीपल के होते, पीपल के बहुत पूजा करते हैं, पीपल के जो आसपास की जो पूजा करते हैं
0: जी,
2: और बस प्रार्थना करते हैं कि भाई सबको अच्छा रखे। और कहते हैं कि पीपल का जो पूजा करने से कई सारे पुण्य का पुण्य मिलते हैं, भगवान
0: जी,
2: का
0: जी,
2: वास होता है,
0: ऐसे कहते हैं पीपल के अंदर सभी देवताओं का वास होता है।
2: हाँ, देवताओं का वास होता है। और ये पीपल ऐसा एक पेड़ है दीदी, कि हमको तो ज्यादा नहीं, हम एक दो घंटे वहाँ बैठेंगे तो हमारी जो ऊर्जा है और भी बढ़ जाती है। कई सारी
0: बिल्कुल, क्योंकि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है।
2: हाँ, ऑक्सीजन देता है, इसीलिए इसके कई सारे हमारी बीमारियों से भी हम बच पाते हैं वहाँ
0: जी।
2: तो चलो आज अच्छा है दिन दीदी, यहाँ तो हमारे तो महिलाएं जाती है, हम भी जाते हैं पीपल की पूजा करते हैं
0: जी।
2: ज्यादातर हमारे यहाँ कम होता है, जैसे राजस्थान में ज्यादा हरियाली मच का, हमारे थोड़ा कम होता है इधर
0: जी।
2: पीपल की पूजा तो हर महिलाएं करती है अच्छे दिन
0: जी।
2: तो बस अभी हमारे मित्रों सबको नमस्ते दीदी।
0: गुजरात में सावन की शुरुआत हो चुकी है, तो कैसे आपने इसका आघात की है? कहते ना कि वही शुरुआत होती तो अच्छी होती है, तो आगाज कैसे किया? हाँ जी,
2: हाँ कल तो क्या है, कल दीदी कल कहते ना कल पहला दिन है अमोस का, जो सावन महीना का, आज तो अमोस है
0: जी।
2: कल से हमारे मंदिरों में ज्यादातर भीड़ लगेगी
0: जी, हर सोमवार है ना?
2: नहीं, हर रोज, पूरे महीने तक।
0: पूरा महीना तो रहता ही है, सोमवार का एक अलग ही महत्व रहता है।
2: सोमवार का ज्यादा होता है दीदी, और सोमवार को कई जगह पे मेला भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है, आसपास गांव में भी मेला होता है, और शिव जी पूजा करते है। तो मैं बताऊँ दीदी, ये जो कल से जो भीड़ होगी मंदिरों में, बहुत भीड़ होगी, लेकिन जब भी महीना पूरा हो जाता है तो दूसरे दिन कोई बिल्कुल कम लोग दिखते हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि भाई भगवान तो हर रोज मंदिर में होता है, एक महीने तक ऐसा नहीं, थोड़ा एक महीना ही भगवान होता है।
0: हा, हा, हा।
2: लेकिन पूजा तो हर रोज करनी ही चाहिए, ऐसा नहीं कि सावन महीने नहीं करें
0: जी।
2: तो सावन महीने में ज्यादा भीड़ रहती है दीदी, कल से हमारा यहाँ सावन महीना छठ शुरू हो जाएगा आज अमोस से
0: जी।
2: तो कल से सभी मंदिरों में भीड़ रहेगी, और भोले बाबा का सभी पूजन पाठ करेंगे
0: जी जी जी। और आज के प्रश्न का जवाब देंगे या फिर ऑफ एयर देंगे?
2: बाद में दूंगा दीदी।
0: जी जी ठीक है, चलिए। और परिवार में सभी अच्छे?
2: हाँ सभी अच्छे हैं, बहुत अच्छे सभी। हमारे सभी मित्रों को मैंने भी बात कर ली है, हमारे मित्र, हमारे गुराराम जी बोल रहे थे कि सूरज जी ने हर रोज कॉल करता था दीदी, हमारा फोन नहीं उठाती थी। मैं बोला कि भाई दीदी आते थे लेकिन जो लाइन में नहीं आते थे, लेकिन आज आप जरूर बात कीजिए। श्रीराम जी के मैंने बोला आज आपका दीदी कॉल उठाएंगे, आज से बात भी करेंगे।
0: जी जी, आज आप कर सकते हैं, जरूर फोन उठाएंगे जी। बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से। तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में बहुत ही सुंदर बातें चल रही हैं, हरियाली अमावस्या है, और प्रश्न भी आज का यही है कि हरियाली अमावस्या कौन कौन से राज्यों में मनाई जाते हैं, और अन्य राज्यों में इसको किस नाम से जाना जाता है, हरियाली अमावस्या को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के हैं 94-14-15-14-15। और देखिए, हरियाली अमावस्या वो सावन आता है, सावन कहते ना कि सावन आता है तो अपने आप ही अंदर से निकलता है कि बस सावन आया है तो हरियाली चारों ओर छा ही जाएगी, क्योंकि बारिश अच्छी होगी, सभी एक उम्मीद तो रखते हैं और होती भी है सावन महीने में बारिश भी, और हरियाली भी चारों ओर छा जाती है। तो आज अमावस्या का दिन है, आज खास दिन है पूरे सावन महीने में। वैसे अभी हरियाली तीज भी आ रही है, उसके बारे में तो उस दिन ही बात करेंगे। हेलो,
3: हेलो शबेन जी।
0: हाँ जी कंचन भाई, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप?
3: हम अच्छे हैं, ठीक है, आप कैसे हैं?
0: जी हम भी बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत आशियाना कार्यक्रम में।
3: काफी दिनों के बाद आप आए तो बहुत अच्छा लगा हमें भी, हमें सुन तो रहे थे प्रोग्राम आशियाना, लेकिन रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, आज रूबरू बात कर रहे थे। और सब कुशल मंगल बहन?
0: हाँ जी हाँ जी, सब कुशल मंगल।
3: माता जी की तबीयत कैसी?
0: जी जी ठीक है।
3: श्रावण मास शुरू हो गया है आज से, अमावस है बहन जी, आपने बात जो बताई, रिमझिम बारिश अभी चल रही है, मैं दुकान पे ही हूँ, इसमें जाने का था लेकिन अभी बारिश चालू हो गई तो बाद में जाएंगे। तो बात
0: जी जी, आज तो और आज
3: अमावस्या है हमारे, जो कल से श्रावण मास गुजरात में तो शुरू होगा
0: जी।
3: तो आज जो दशा माँ का व्रत
0: जी,
3: तो
0: वो शुरू हो जाएगा,
3: तो आज स्थापन किया है हमारे घर में भी, हमारी बहू जो सुबोध के घर से अरे वो बोलती थी दो तीन दिनों से कि भाई मेरे को ये स्थापन करना है, तो हमने भी सहयोग दिया, सभी को सब कुछ ला दिया
0: जी,
3: और आज स्थापन किया है इन्होंने
0: जी,
3: ऐसा बोलते
0: जी जी,
3: हम भी थे
0: जी,
3: अभी अभी 9:30 बजे आए।
0: अच्छा,
3: और सुरेश भाई का कॉल आया कि भी बहन जी आ गए।
0: अच्छा जी जी जी,
3: हरियाली अमावस तो हमारे तो यहाँ जो हमारे गांव में तो ये खास करके ये सही ये करते मनाते जी, लेकिन ये जो मैंने बताया ना कि आज के दशा माता व्रत चालू हो
0: जी
3: हुआ है, तो ये सब हमारे गांव में
0: जी जी जी। सावन महीने का बहुत है गुजरात में, पूरे सावन महीने का तो बहुत ही ज्यादा महत्व है, ऐसे बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं जी,
3: हमारे भी उपवास चालू कर देंगे,
0: भक्ति बढ़ जाती है जी,
3: तभी उपवास करेंगे, भजन कीर्तन का प्रोग्राम हमारे ज्ञान आश्रम गुरु जी का आश्रम है, ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर है, तो वहाँ सब रात को 9 बजे से 11 बजे तक भजन कीर्तन का, महिलाएं आएंगी, पुरुष वर्ग भी आएगा, तो ये पूरा चलेगा
0: जी।
3: बिली पत्र चढ़ाने का है जो ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर है, तो दो दो भाइयों का बारी पे एक ही है
0: जी,
3: आज लाएंगे तो कल सुबह में चढ़ेंगे
0: बिल्कुल
3: बिली पत्र
0: जी जी जी,
3: तो ऐसा आयोजन किया है, और जो कल चढ़ेंगे ना उसका प्रसाद भी होगा रात को भजन कीर्तन का, में बात जो प्रसाद करते हैं ना इसको इसका दोनों भाइयों का प्रसाद भी होगा
0: जी,
3: कल तो ऐसा आयोजन हम हर साल करते हैं,
0: बहुत बढ़िया जी,
3: ऐसा है। और बताया है सवाल का जवाब तो मैं दूंगा
0: जी, ठीक है
3: अभी दोस्तों को, आपको आज हरियाली अमावस्या को डेढ़ो डेढ़ो
0: बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, और आइए यहाँ पर अब हम एक गीत सुनेंगे, उसके बाद इस त्योहार की बात करेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: ना केवल पूजा में फूल चढ़ाए, ना केवल पूजा में फूल चढ़ाए, आइए एक पौधा भी लगाए। हरियाली अमावस्या तभी सफल होगी जब धरती को हम हरा भरा बनाए। आप सभी को पुनः हरियाली अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में आज चर्चा भी इसी पर हो रही है कि हरियाली अमावस्या पर हम खास क्या करते हैं। प्रश्न भी आज का यही है कि हरियाली अमावस्या कौन कौन से राज्य में मनाई जाती है और अन्य राज्य में इसको किस नाम से जाना जाता है। तो आप विषय में भी जुड़ सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं। आज के प्रश्न का नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। और आज के खास दिन जो हरियाली अमावस्या है उसको आप मना सकते हैं, कैसे मनाते हैं वो आप बता सकते हैं। और आशियाना कार्यक्रम सीधा प्रसारण है तो आप जुड़ने की कोशिश जरूर करिएगा। हमारे बहुत सारे श्रोता बंधुओं का शिकायत रही होगी कि फ़ोन करते हैं उठाते नहीं हैं, लेकिन जब हम उपस्थिति नहीं थे तो कैसे फ़ोन उठाते। इसलिए सभी से हम फिर भी क्षमा चाहते हैं कि आपको तकलीफ पड़ी, लेकिन आज आप फ़ोन कर सकते हैं, हम उठाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और बाकी देखिए हरियाली अमावस्या के तो भाई खास महत्व यही है। हमारे भारत देश में तो हर त्यौहार हर दिन के हम सभी वैल्यू करते हैं, तो जब इस तरह का त्यौहार आता है तो आप समझ सकते हैं कि इसका हम ज़्यादा ही महत्व देते हैं और बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसलिए अक्सर कहते हैं कि भारतवासी हमेशा खुश रहते हैं। दूसरे देशों में तो देखिए हम आए दिन सुनने को मिलता है वो डिप्रेशन में ही रहते हैं, वो ये कितनी बातें सुनने को मिलती है, लेकिन भारत देश में हल्के से उदासी आती उससे पहले ही त्यौहार आ जाता है, फिर खुशियाँ चारों ओर छा जाती है, तो अच्छी बात है ना। और जैसे अभी सावन महीना लगा है, हर सोमवार का महत्व, हर सोमवार को देखो चहल पहल मंदिरों में और भजन कीर्तन घर घर में, तो हर दिन को हर त्यौहार को आनंदमय बना देते हैं, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। तभी तो हम त्योहारों का इंतज़ार करते हैं, अरे फलाना त्यौहार आ रहा है, उदासी आए उसके पहले वो गायब हो जाती है, टिकने ही नहीं देते हम सभी। और अच्छी बात है, क्यों टिकने देना है ना, उदास क्यों रहना है, हमेशा खुश रहना है। तो खुश तभी रह पाएंगे जब हम पॉजिटिव रहेंगे। तो चलिए, वैसे तो इस दिन को देखे मैं खास खास मेन पॉइंट आपको बता देती हूँ कि हरियाली अमावस्या पर खास करके हम वृक्षारोपण भी करते हैं, प्रकृति की सेवा करते हैं, शिव पूजा तो बहुत सारी करते हैं, दान पुण्य पितरों के लिए तर्पण भी करते हैं। इस तरह ये विशेष दिन हो जाता है और इसका विशेष महत्व हो जाता है। अब चलिए थोड़ा सा और हम अपने नागरिकों की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे आम पब्लिक क्या करते हैं। हेलो, पहले तो हम अपने श्रोता बंधु से बात करेंगे।
1: जय माता जी, जय श्री हरि।
0: हाँ जी, जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत आपका सुरेश भाई रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
1: हरियाली अमावस्या की देश देश शुभकामनाएं।
0: जी आपको भी।
1: और रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वाले सभी मेरे मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन पितृ अमावस्या और हरियाली अमावस्या की देश सारी शुभकामनाएं, मंगल कामना
0: जी। और आज के दिन को खास कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं स्पेशल?
1: एक्चुअल में देखिए, मैं अभी यहाँ रामेश्वर महादेव के मंदिर में हूँ। यहाँ लोग पीपल को मतलब पितरों की पूजा वगैरह कर रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, तिल जो सब अर्पण कर रहे हैं
0: जी,
1: क्योंकि आज का दिन माना जाता है कि पितरों के लिए पितरों की पूजा करना उत्तम है
0: जी।
1: और देखिए, हमारे राजस्थान में कई जगह ऐसे भी है जो हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानते हैं, कई पे पितृ अमावस्या भी कहते हैं, और कई पे भी तो मतलब गवर्नमेंट हॉलीडे भी होता है हरियाली अमावस्या का
0: जी।
1: तो आज का दिन तो वैसे देखिए साल भर में एक बार आता है, और श्रावण मास में जो अमावस्या पड़ती है वही पितृ अमावस्या या हरियाली अमावस्या कहलाती है। तो आज का दिन बहुत बहुत उत्तम दिन है
0: जी।
1: और बस मतलब कहते हैं कि आज के दिन जो पितरों को पूजा अर्पण करते हैं ना, तो उनको मतलब कहा गया शास्त्रों में कि तर्पण, उनकी आत्मा को तर्पण प्राप्त होता है, तृप्ति हो जाती है
0: जी।
1: और बाकी तो सभी हमारे दोस्त जानते ही है, और बस तो और आप आ गए तो बाहर आ गई।
0: अच्छा
1: आप चांद लग गए आप याना में, और क्या चाहिए हमको, अमावस्या के दिन आगमन हुआ है, हरियाली अमावस्या के दिन आगमन हुआ है, रेडियो मधुबन सूखा सूखा तो हरा भरा हो गया हरियाली अमावस्या के
0: दिन। थैंक यू,
1: क्योंकि आशियाना के बिना तो जीवन नहीं है ना
0: जी, घर परिवार में तो रहना ही पड़ता है।
1: और वो भी है प्लस, देखिए आशियाना ऐसा शब्द है कि देखिए खाए सिवाय आदमी रह सकता है क्या?
0: नहीं रह सकता, इसलिए आशियाना का मतलब ही है कि रहने का स्थान, उसी को घर परिवार कहते हैं।
1: और घर परिवार में तो आना ही पड़ेगा ना, कहाँ जाओगे, कितने दिन चिपके बैठोगे
0: जी। बिल्कुल
1: नहीं आओगे तो फिर आपके जो परिवार वाले वो आपको ढूंढने आ जाएंगे।
0: तभी वो कहावत है ना, लौट के बुद्धू घर को आए।
1: हाँ मतलब
0: कहीं पर भी जाओ, घर के बिना तो आनंद है ही नहीं,
1: शांति मिलती नहीं है ना?
0: नहीं मिलती है, सही है।
1: कहीं पे भी कितने दूर घूमने जाते हैं फिर बोल घर आए तो बोलते शांति मिली है।
0: शांति मिली, सही है। जी
1: और बाकी कैसे
0: जी
1: हो?
0: बाकी बढ़िया बढ़िया, आप सभी अच्छे?
1: हाँ
0: जी।
1: आज का क्या है वो तो उसमें
0: आज का प्रश्न है, हरियाली अमावस्या पूरे भारत देश में कहाँ कहाँ मनाई जाती है और अन्य राज्य में इसको किस नाम से जाना जाता है?
1: देखिए वैसे तो हरियाली अमावस्या तो राजस्थान में मनाई जाती है
0: जी,
1: अन्य राज्यों में पितृ अमावस्या, हरियाली अमावस्या, ये मतलब राजस्थान में हरियाली अमावस्या कहते हैं, कई पितृ अमावस्या भी कहते हैं, ये अलग अलग कहा जाता
0: है। अच्छा ठीक है सुरेश भाई, बहुत बहुत आभार आपका।
1: कहीं से दक्षा माता के उपवास भी चालू होते हैं तो दक्षा माता अमावस्या भी कहते हैं।
0: अच्छा
1: ठीक है,
0: चलो जय माता जी, बहुत बहुत आभार, जय श्री हरि। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, और आप भी जुड़ सकते हैं, आशियाना कार्यक्रम सीधा प्रसारण है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही है, प्रैक्टिकल बातें, क्योंकि आज के त्योहार को हम मनाने जा रहे हैं, है ना। सुबह से शुरुआत हो चुकी है, जैसे कि हमारे श्रोता बंधु सभी कह रहे हैं कि आज पितरों को भी तर्पण करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। हेलो
2: हेलो, नमस्ते दीदी, मैं सुरेश भाई जाने जाते।
0: ओहो नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो आप, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
2: बिल्कुल बिल्कुल अच्छे है, और अच्छी अच्छी बातें हो रही है, तो बहुत अच्छा के रेडियो मधुबन का एक हमारा आशियाना घर जैसा परिवार बना लिया है अपने दिल में दोस्तों ने, तो ये भी बहुत अच्छी बात है।
0: जी जी बिल्कुल
2: जी जी जी,
0: पूरा एक परिवार ही है।
2: मैं आपकी और दोस्तों की मैं ध्यान से बात सुन रहा था, तो वैसे तो हम तो आज के दिन तो क्या दीदी जो मंदिरों में है ना दर्शन करने जाते हैं, और जो भी हो सके पुण्य दान अच्छी सेवाएं करने की कोशिश करते हैं दीदी। और दीदी मैं एक बात कहना चाहूंगा।
0: हाँ जी।
2: कि चलो के परिवार में अनबन सब ये टाइम ही ऐसा है करने तो वो हो जाता है, तो आज के दिन ये सब भुला कर फिर से ठीक करने का भी दिन है और मौका भी है दीदी।
0: जी बिल्कुल,
2: जैसे कि मैं बताऊं कि कई लोग रामदेवरा वगैरह दर्शन करने जाते हैं तो फिर वापस आके घर पे जो पांच लड़की कुंवासी बोलते हैं हम उसको जमाना पड़ता है, तो भाई भाई में या कुटुंब में तो अगर अनबन है तो वो तो कैसे बोल सकते हैं, तो वो सब भुला कर
0: बिल्कुल फिर से एक हो जाना चाहिए। तो चलिए सुरेश भाई, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है।
2: हेलो।
0: हाँ जी आई आई आवाज आई आपके। हाँ जी
2: आई, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो मैंने यहाँ पर लगभग 3-4 आरोप के साथ ऐसा होते हुए देखा है, और मैंने भी साथ लेकर कहा कि चलो जो
0: जी। चले बहुत अच्छी बात है, किसी के अंदर अनबन हो तो एक कराना ये भी पुण्य का कार्य है।
2: सही बात है दीदी, श्रद्धा भाव है उस इंसान को, क्या लड़ना क्या झगड़ना, ये बात है। तो दीदी ये कहना चाहूंगा, चाहे विषय से हटकर हो ये मेरी बात।
0: नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है ना, मेन तो बात ही यही है कि दो भाइयों के बीच जो भी जिनके भी साथ अनबन है और वो एक हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। और हर चीज को पकड़ के रखना ये भी अच्छी बात नहीं है, उसको छोड़ेंगे तभी वापिस संबंधों में सुधार आएगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात है दीदी जी। दीदी और आज का जो प्रश्न है वो तो मैं ठीक से देने की कोशिश करूंगा व्हाट्सएप के जरिए।
0: जी जी जी
2: जी जी।
0: चलिए बाकी सब बढ़िया सुरेश भाई?
2: हाँ जी बिल्कुल बढ़िया, तबीयत तो पथरी का है प्रॉब्लम दीदी, वो तो ठीक है दीदी, लेकिन माता जी अब कैसी है?
0: जी पहले से तो ठीक है।
2: हाँ ठीक ठीक
0: जी
2: ठीक है दीदी, चलो नमस्ते।
0: जी नमस्ते भैया।
2: अगर कोई और दोस्त जोड़ना चाहेंगे तो जरूर जोड़िएगा।
0: अच्छा जी बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई दानेराव से, और बात चल रही थी अमावस्या की। तो देखिए सुबह सुबह से तो भक्ति से ही शुरुआत होती है, तो सबसे ज़्यादा आज के दिन भक्ति होती है शिव जी की। शिव भोलेनाथ के मंदिर में भक्त लोग जाते हैं, बाकी तो हर मंदिर में ऐसे जो जहाँ रोज़ रेगुलर जा रहे हैं वहाँ जाते ही हैं, लेकिन शिव मंदिर आज स्पेशल जाएंगे और आराधना करेंगे, कहीं अभिषेक भी करेंगे, और उसके बाद फिर पीपल की भी पूजा करके अपने पितरों का तर्पण करके ही घर पर आएंगे। फिर आने के बाद देखिए आज के दिन खास करके या तो खीर पूड़ी बनाई जाती है या मालपुआ बनाया जाता है, दही बड़े मालपुआ अच्छी रसोई बनाई जाती है, गुलाब जामुन भी बनाए जाते हैं, और फिर बना करके परिवार के परिवार पैक करके टिफिन पैक करके हरियाली, मतलब कहते हैं ना कि भले घर में हरियाली हो चाहे नहीं हो, ऐसी जगह जाते हैं जहाँ सभी इकट्ठा होकर के कोई अच्छे गार्डन में जाते हैं, या अपने गांव से जैसे दूर कहीं पर भी अच्छा स्थान है मंदिर, या तो शिव जी का मंदिर, क्योंकि मंदिरों में भी आप जानते होंगे कि मंदिर भी इतने बड़े बड़े बनने लगे हैं कि गार्डन भी होते वहाँ पर, तो वहाँ जा कर के सभी साथ में भोजन करेंगे। ये बहुत अच्छा है क्योंकि मिलने का एक अच्छा जरिया है। बाकी सभी अपने अपने घर में अकेले अकेले अपनी फैमिली के साथ भोजन करते हैं, और कभी कभार जब इस तरह का माहौल चेंज होता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो इस तरह भी जाते हैं अगर छुट्टी होती है तो। छुट्टी नहीं होती है तो भाई लोग तो चले जाते हैं अपने काम पर, बहनें भी आजकल काम कर रही है वो भी चली जाती है, लेकिन एक समय ऐसा था कि इस दिन की स्पेशल छुट्टी भले गवर्नमेंट की तरफ से हो ना हो, परिवार छुट्टी रखता था, भाई लोग पहले से ही छुट्टी रख देते थे, भाई हरियाली अमावस्या है हम नहीं आएंगे, एक दिन पहले ही बता देते थे और छुट्टी रखते थे, और परिवार के परिवार बाहर जाते थे खाना खाने और सभी साथ में मिलकर खाते, तो क्या है कि इससे आपसी व्यवहार भी अच्छा मजबूत होता है, एक दूसरे के चीज़ों का आदान प्रदान भी होता है। चलो मैंने गुलाब जामुन बनाया, आपने मालपुआ बनाया, फिर उन्होंने खीर बनाई, फिर उन्होंने रबड़ी बनाई, तो थोड़ा थोड़ा सबको एक दूसरे को देना लेना, कोई नमकीन आइटम बनाते हैं तो भी एक दूसरे को देना लेना, तो इससे प्रेम बना रहता है, व्यवहार बना रहता है, और स्नेह मिलन भी हो जाता है, क्योंकि इस व्यस्त जीवन में अड़ोस पड़ोस भी आजकल मिलना मुश्किल हो गया। कितने ही जने कहते हैं कि अरे उनको तो देखे हुए बहुत टाइम हो गया, तो ऐसा हो रहा है, तो ऐसे भागते दौड़ में मतलब थोड़ा सा समय अपने आप के लिए निकाले और आपस में मिलजुल करके चर्चा करके एक दिन पहले ही सभी सलाह करके कहीं ना कहीं का प्लान बनाना चाहिए। और बहुत सारी जगह पर तो समाज में भोजन रखा जाता है, पूरे समाज का चंदा ले लिया जाता है घर घर से, पर पर्सन जितने भी फिक्स करते हैं भाई 51 रुपये पर पर्सन या 100 रुपये जो भी है, तो जितने मेंबर उतने पैसे ले करके फिर समाज में भोजन बनाया जाता है तो समाज वाले सब इकट्ठा होकर के इस त्योहार को ऐसे मनाते हैं, सभी साथ में भोजन करते हैं तो उससे भी व्यवहार बनता है और सभी का मिलन हो जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा है। कुछ न कुछ कारण से वो कहते ना मनोरंजन होना चाहिए। और बाकी तो सावन महीने के हर सोमवार बहनें तो मिल करके जाती ही है बाहर टिफिन लेकर के, तो ये भी है। फिर शाम के समय माताएं बहनें घर में भजन कीर्तन भी करते हैं, सब इकट्ठे होकर के भजन रखते हैं मोहल्ले में एक ही जगह पर। और मतलब कहने का भाव है कि सुबह से भक्ति की शुरुआत होती है, रात को सोते तक भक्ति ही रहती है। और अच्छा है जितना ईश्वर भजन करेंगे उससे मन प्रसन्न चित रहेगा, नेगेटिव थॉट्स सारे खत्म हो जाएंगे, पॉजिटिव थॉट्स बने रहेंगे, तो वो भी एक खुशी का ही बात है। तो इस तरह इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। बाकी तो जितनी चर्चा करो उतनी कम है, क्योंकि समय का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तो इस विषय को यही समाप्त करते हैं और आइए आज के प्रश्न की तरफ फिर से बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, हरियाली अमावस्या पूरे भारत देश में कहाँ कहाँ मनाई जाती है और अन्य राज्यों में इस त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि अलग अलग नाम मनाते सभी है लेकिन नाम चेंज हो जाता है, तो आपको बताना है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन का है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब भी दे सकते हैं। आप चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं। तो आइए फिर से सुन लेते हैं गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में पधारिएगा। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ रबड़ी के मालपुआ, जो खास आज के दिन बनाए जाते हैं। सिंपल मालपुआ तो बनाते ही है, लेकिन रबड़ी के मालपुआ ज़्यादातर बनाते हैं। और सिंपल मालपुआ तो फिर भी जल्दी बन जाता है, रबड़ी के मालपुआ में बहुत समय लगता है। तो चलिए आप सीख लीजिए, ताकि आप भी, अभी बहुत सारे त्यौहार आ रहे हैं, तब आप बना करके इसका आनंद ले सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको रबड़ी के मालपुआ के लिए पहले आपको ऐसी सामग्री बता रही हूँ। मालपुआ के लिए आप ले लीजिए मैदा 1 कप, सूजी 2 बड़े चम्मच, दूध लगभग 1 कप ले लीजिए, और आधा छोटा चम्मच सौंफ लेना है। इलायची पाउडर भी आधा छोटा चम्मच ले लीजिए। 1 बड़ा चम्मच चीनी लेना है, और तलने के लिए घी लीजिएगा। तो ये हो गए मालपुए की सामग्री। 1 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच सूजी, दूध 1 कप, आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 1 बड़ा चम्मच चीनी, और तलने के लिए घी। अब चाशनी के लिए सामग्री लिखवा रही हूँ। 1 कप चीनी, आधा कप पानी, इलायची 2, केसर थोड़ा सा, ठीक है। तो 1 कप चीनी, आधा कप पानी, 2 इलायची और केसर के 2-3 धागे, ये चाशनी के लिए। अब रबड़ी के लिए ले लीजिए फुल क्रीम दूध 1 लीटर, चीनी ले लीजिए 3-4 बड़े चम्मच, इलायची पाउडर फिर से लेना है स्वाद के अनुसार, और कटे हुए बादाम पिस्ता भी आप आवश्यकता के अनुसार लीजिएगा, और थोड़ा सा लीजिए केसर। रबड़ी के लिए फिर से सामग्री, इस चीज़ को दोहरा रही हूँ, फुल क्रीम दूध 1 लीटर, 3-4 बड़े चम्मच चीनी और इलायची पाउडर, कटे हुए बादाम, केसर, ये सब अपनी आवश्यकता के अनुसार लीजिएगा। अब बनाने की विधि भी साथ ही साथ सिखा रही हूँ। रबड़ी बना दीजिए। दूध को भारी तले की कढ़ाई में उबालना है, ठीक है, जिसके कढ़ाई का पेंदा हो, भारी हो अच्छा सा, उसमें दूध को उबालिए, ताकि नीचे से चिपके नहीं, दूध जले नहीं, ठीक है। फिर धीमी आंच पर पकाते रहिए, और किनारे जमने वाली मलाई को वापस दूध में डालते रहिए, या फिर जो मलाई आती है ना, उसका आप दूसरे बर्तन में भी ले सकते हैं। तो इस तरह आपको बनाना है। लगभग आधा रह जाए तो चीनी, इलायची और केसर डाल दीजिए, जो आपने अलग निकाले हैं मलाई वो भी डाल दीजिए, और 5 मिनट गैस पर पका करके गैस बंद कर दीजिए। मालपुए का घोल कैसे तैयार करेंगे? मैदा, सूजी, इन सबको छान करके आप चीनी, सौंफ और इलायची, ये सब पानी में मिला करके घोल तैयार कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आप दूध ले सकते हैं, और पानी कम लेना है, दूध ज़्यादा लेना है। दूध में इस घोल को तैयार करना है, थोड़ा सा पानी आप ले सकते हैं, और घोल को ऐसा रखना है, ना पतला ना ही ज़्यादा गाढ़ा, और 20-30 मिनट तक ये घोल तैयार करने के बाद ढक के रख दीजिए। अब मालपुआ बनाइएगा। कढ़ाई में घी गरम करिए, 1 कलछी घोल डाल करके, मतलब घी गरम हो जाए तो 1 चम्मच घोल डालिएगा, ठीक है। घोल डालने के बाद ये अपने आप ही घोल हो जाएगा, मालपुए का आकार अपने आप ही हो जाएगा। अब धीमी मध्यम आंच पर इनको तलिएगा, सुनहरा दोनों तरफ हो जाए उसके बाद निकाल दीजिए, ठीक है। फिर चाशनी में आप क्या करेंगे? चाशनी बनाना तो कितनी बार आपको सिखा चुकी हूँ। पानी में शक्कर डाल करके आपको गरम करना है, और जब एक तार की चाशनी आपको देखनी है, ठीक है, इसमें 1 तार की चाशनी चाहिए, और आपको लगे कि हाँ 1 तार की चाशनी तैयार हो गई है, इसमें मेल निकालने के लिए ठंडा दूध डालना है, ताकि वो काला काला ऊपर जो मेल आएगा उसको निकाल देना है, और इस तरह चाशनी को एकदम उजली रखनी है, ठीक है, 1 तार की रखनी है। और अब आएगा असली मज़ा। कैसे? गरम या हल्के गुनगुने मालपुए पर ठंडी या हल्की गरम रबड़ी आप डाल सकते हैं, ऊपर से बादाम पिस्ता और केसर डाल दीजिए, बादाम पिस्ता की कतरन और केसर डाल दीजिए, फिर आप खाइएगा। बहुत ही स्वादिष्ट ये मालपुआ तैयार हो चुका है, रबड़ी का मालपुआ, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। मालपुआ तल करके हमने निकाल रखे हैं, अब इसके ऊपर आपको रबड़ी डाल करके इस तरह सजा करके अपने इष्ट देव को भोग लगा करके ही खाना है, ठीक है। तो इस तरह मालपुआ तैयार हो चुका है हमारा, और अब देखिए समय भी हो चला है आप सभी से इजाज़त लेने का, इसलिए मैं अल्पविराम भी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि
रेडियो मधुबन की घड़ी में बज चुके हैं 11:21:29 हो चुके हैं, ठीक है, इसलिए ब्रेक नहीं लेंगे। तो आज का कार्यक्रम आपने सुना है, काफ़ी अच्छा रहा है, सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर ज़रूर गौर करेंगे कि ईश्वर कभी भी किसी के संकल्प को अधूरा नहीं छोड़ता है, पूरा ज़रूर करता है। और नुस्खे में भी जीव जंतुओं से कैसे बचना है आपने जाना है, खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, और जो रेसिपी में आपको रबड़ी का मालपुआ बनाना सिखाया है ज़रूर बना करके खाइएगा, ठीक है। और ज़्यादा बन जाए चिंता मत करिएगा, आजकल तो सभी के फ्रिज रहता ही है, फ्रिज में रख दीजिए, दूसरे दिन खाने के कम से कम 1-1.5 घंटा पहले निकाल दीजिए तो आप खा सकते हैं, ठीक है। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था, पूरे भारत देश में हरियाली अमावस्या कौन कौन से राज्य में मनाई जाती है, और जहाँ हरियाली अमावस्या नहीं मनाई जाती उन राज्यों में किस नाम से जाना जाता है, यह अमावस्या को क्या कहा जाता है। तो जवाब दिया है सुरेश भाई झोटाना से, आपका जवाब सही है तो आपके लिए ढेर सारी तालियां। तो जवाब आप जान लीजिए, देखिए हरियाली अमावस्या कौन कौन से राज्य में कहते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यहाँ सब जगह हरियाली अमावस्या ही कहा जाता है। गुजरात में भी हरियाली अमावस या फिर हरियाली अमास इस नाम से जाना जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, इधर आषाढ़ अमावस्या के नाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है, ठीक है। तो आषाढ़ अमावस्या, तो ये आज का जवाब है, ठीक है। और बाकी विषय में जुड़े हैं हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु जुड़े हैं, सभी का नाम लेना चाहूँगी कि इन्होंने मतलब शुभकामनाएं दी है, तो कोई विषय में भी चर्चा की है, दयाराम जी रामपुरा से, सुरेश भाई जोटाना से, कंचन भाई मंडाली से, दयाराम जी इकबालगढ़ से, फिरोज भाई पालनपुर से, सुभाष भाई महाराष्ट्र से, भूराराम जी ओर से, सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, सुरेश भाई धानेराव से, आप सभी जुड़े हैं, विषय को भी स्पष्ट किया है और किसी किसी ने शुभकामनाएं भी दी है, आप सभी के लिए ढेर सारी। और पुनः आप सभी को हरियाली अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। वो कहते हैं ना, हरियाली अमावस्या सावन के महीने की अमावस्या है, तो वो तो हम सभी जानते ही है, और इस दिन का खास आप सभी ने किया है, आज आप सभी जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा। हरियाली रहे, खुशहाली रहे, हर आंगन में पेड़ पौधों की लाली रहे, धरती मुस्कुराए, प्रकृति गुनगुनाए, हरियाली अमावस्या सबके जीवन में सुख शांति लाए। तो पुनः आप सभी को हरियाली अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आज का मीठा मोती भी आपको सुनाना चाहूंगी जो बहुत ही सुंदर है। दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल आत्मा और परमात्मा की है, परमात्मा से दोस्ती आत्मा को भव सागर से पार करा देती है। अब मैं आपको एक प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भाव भजन है, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक बहुत ही सुंदर प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। हरि को नाम लिया जीव कैया अटकी, बाता मत करे खोट कपट की, प्रभु को नाम लिया जीव किया अटकी, बाता मत

बाता मत करे खोट कपट की। राम नाम का साचा मोती हंसा कोई चुगली जो, लूकी सुकी खाकर बाया ठंडो पानी पी ली जो। थारो सांवरियो जाने ला थारे घट की, बाता मत करे खोट कपट की। ओम नमो शिवाय की तो माला फेर लीजो, थाने फायदो हो तो भाया औराने भी की जो। थारे नोटा सु भरेगा बाबा मटकी, बाता मत करे खोट कपट की। हरि को नाम लिया जीव किया अटकी, बाता मत करे

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: दूसरों के साथ हम चूज कर सकते हैं, हम अपने रिश्तों में कितना चूज करते हैं, मुझे इनसे बात करनी इनसे नहीं करनी, मैं इनसे 5 मिनट ही कर सकती हूँ, इनसे 5 घंटा कर सकती हूँ, इनके साथ मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ मैं नहीं काम कर सकती, आई हैव सो मच चॉइस। लेकिन अपने आप के साथ
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन सुनने वालों को सुरेश ओबेरॉय का नमस्कार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: भारत को आजादी दिलाने में सैकड़ों गुमनाम क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है। उन्होंने ना अपने मौत की परवाह की, ना देश से निकाले जाने की, ना वो जेल जाने से डरे और ना ही संपत्ति जब्त होने से। कमाल की बात ये भी रही कि आजादी की ये लड़ाई भारत के साथ साथ विदेशों में भी समान रूप से लड़ी गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर, मैडम भिकाजी कामा, बैरिस्टर सरदार सिंह राणा, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, सरदार अजीत सिंह, लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप और चंपक रमन पिल्लई जैसे लोगों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। वंदे मातरम वो स्वर था जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आत्मा दी। ये गीत प्रत्येक भारतीय के भीतर ये भावना जगाता रहा कि हमारी धरती केवल भूमि नहीं बल्कि हमारी माँ है। माँ भारती, यानी जिनके चरणों की रज भी हमारे लिए पवित्र है। इस गीत की गूंज ने क्रांतिकारियों को अपना सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा दी। यही कारण है कि गीत को सुनते ही हर भारतीय के भीतर गर्व, उत्साह और समर्पण की लहर दौड़ जाती है। वंदे मातरम के स्वर ने भारत को एक शक्ति दी जिससे वो अपने स्वाभिमान, अपनी अस्मिता और आजादी के लिए एकजुट होकर संघर्ष कर सके। देशवासियों को विश्वास दिलाया कि भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा हुआ एक जीवंत राष्ट्र है। कालांतर में ये गीत उस चेतना का प्रतीक बना जिसने जाति, भाषा और प्रांत की सीमाओं से परे जाकर सभी को एक ध्वज तले एकत्र किया।
2: दीदी, मैंने सुना है एक क्रांतिकारी ऐसे भी थे जो महज 25 साल की आयु में देश की खातिर फांसी पर झूल गए थे।
3: हाँ बन्नो, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। वे एक जोशीले देशभक्त थे जिनमें अदम्य साहस था। उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कैसे भूल सकती हूं मैं वो तारीख, 17 अगस्त 1909, जब लंदन के पेंटन विले जेल में उस 25 वर्षीय क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। फांसी पर चढ़ने से पहले उनके अंतिम शब्द थे, वंदे मातरम। वे महान क्रांतिकारी और कोई नहीं, मदन लाल ढींगरा थे। उनके लिए वंदे मातरम सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति का सर्वोच्च मंत्र था।
2: दीदी, आपने ये तो बताया नहीं कि उन्हें फांसी दी क्यों गई थी।
3: बन्नो, मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी।
1: दरअसल साल 1908 के उस दौर में हिंदुस्तान की धरती पर स्वतंत्रता की चिंगारी धधक रही थी। शूरवीर क्रांतिकारी अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रण ले चुके थे। उसी दौर में मदन लाल ढींगरा ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया। उन्होंने खुलेआम अंग्रेज अफसर कर्जन वाइली को गोली मार दी ताकि ये संदेश दे सके कि भारतवासी अब गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस घटना से पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया और मदन लाल को सिर्फ 46 दिनों में फांसी पर चढ़ा दिया गया। मगर उनकी शहादत ने हिंदुस्तानी युवाओं के दिलों में आजादी की आग और भड़का दी।
2: मुझे एक बात बताओ दीदी, आखिर इतनी छोटी उम्र में मदन लाल के भीतर इतना देश प्रेम पनपा कैसे?
3: लोग बताते हैं कि वे शुरू से इतने देशभक्त नहीं थे, लेकिन लंदन में पढ़ाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उनकी राह बदल गई। लंबी कद काठी और हंसी ठिठोली करने वाले इस नौजवान को उनके जीवन का एक उद्देश्य मिल गया।
1: दरअसल मदन लाल का जन्म पंजाब के अमृतसर के एक संपन्न परिवार में हुआ था। पिता नेत्र चिकित्सक थे। पढ़ाई में काफी तेज होने के कारण मदन लाल का लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज के सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला हो गया। रहने की व्यवस्था इंडिया हाउस में हुई, वही इंडिया हाउस जिसे श्याम जी वर्मा ने साल 1905 में खरीदा था, जिसके एक हिस्से में यूथ हॉस्टल था और जहां देश की आजादी की योजनाएं बना करती थी। तमाम छोटे बड़े क्रांतिकारी वहां बैठक करते थे। बताते हैं कि 1907 में ग्रेट ब्रिटेन में करीब 700 भारतीय स्टूडेंट्स थे, जिनमें अकेले लंदन में 380 स्टूडेंट्स थे।
2: ओ, समझ गई, मदन लाल को देशभक्ति की प्रेरणा कहां से मिली? इंडिया हाउस में आने वाले क्रांतिकारियों से? ठीक सोच रही हो ना?
3: अरे जरा ठहरो, ये प्रेरणा से कुछ अधिक थी।
2: क्या कह रही हो दीदी, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा।
3: मदन लाल का आकर्षक व्यक्तित्व था। कम समय में ही वे इंडिया हाउस में युवक युवतियों के आकर्षण का केंद्र बन गए थे। उनके दोस्त बड़े शोर शराबे वाले थे, अक्सर प्रेम गीत गाया करते थे। उन दिनों मदन लाल के मन में मातृभूमि की आजादी का विचार खास तौर पर नहीं था। एक दिन इंडिया हाउस में रविवार की बैठक चल रही थी, उसमें वीर सावरकर भारत की आजादी पर एक जोशीला भाषण दे रहे थे। वही दूसरी ओर मदन लाल और उनके दोस्त बगल वाले कमरे में खूब शोर शराबा मचा रहे थे। इससे सावरकर को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। वे बगल वाले कमरे में गए, जहां मदन लाल और उनके दोस्त मौज मस्ती कर रहे थे। सावरकर ने उन्हें टोका और एक तरह से डांटते हुए बोले,
4: क्या बात है मदन, तुम काम और बहादुरी की बातें तो करते हो, लेकिन हमारी साप्ताहिक बैठकों में आने से कतराते हो। क्या यही वह बहादुरी है जिसकी तुम हमेशा बातें करते रहते हो?
1: सावरकर के शब्दों ने मदन लाल धींगरा को अंदर से हिला दिया। उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो चुपचाप इंडिया हाउस से निकल गए। फिर कई दिनों तक सावरकर को अपना चेहरा नहीं दिखाया। समय गुजरा, उन्होंने हिम्मत जुटाई और दोबारा इंडिया हाउस लौटे। मन में कई विचार चल रहे थे।
5: मैं लौट तो आया हूं, लेकिन पता नहीं सावरकर जी अभी भी मुझसे नाराज है या नहीं।
1: मदन लाल अपने ख्यालों में खोए हुए थे कि अचानक उनका सावरकर से सामना होता है।
4: अरे ढिंगरा, कहाँ थे इतने दिनों से, दिखाई नहीं दिए। मैंने कुछ लोगों से पूछा भी, किसी ने कुछ बताया नहीं। सब ठीक तो है ना घर परिवार में? पढ़ाई कैसी चल रही है?
1: मदन लाल को उम्मीद नहीं थी कि सावरकर उनसे इतने स्नेह से बात करेंगे, मानो उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। इससे हिम्मत पाकर ढींगरा ने सावरकर से पूछा,
5: क्या शहादत का समय आ गया है?
4: अगर कोई शहीद अपना मन बना चुका हो और तैयार हो, तो आम तौर पर यही समझा जाता है कि शहादत का समय आ गया है।
1: ढींगरा ने अब मन बना लिया था। ये जुलाई 1908 की बात होगी। उन्होंने जानबूझकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन में शामिल होने का फैसला किया। ये एसोसिएशन भारतीय छात्रों को उग्रवादी रास्ते से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। इस एसोसिएशन के कार्यक्रमों में ब्रिटेन के कई बड़े बड़े लोग शामिल होते थे। ढींगरा ने उनकी मौजूदगी में सावरकर और दूसरे क्रांतिकारियों की बुराई की। जल्द ही उन्हें नेशनल इंडियन एसोसिएशन की सेक्रेटरी मिस एमा जोसेफिन बेक का भरोसा जीत लिया। इस प्रकार उन्हें अलग अलग कार्यक्रमों में आने वाले खास अंग्रेजी मेहमानों के आने जाने के समय के बारे में पता चलने लगा। ढींगरा ने अपना मिशन तय करने के बाद इंडिया हाउस छोड़ दिया। दरअसल उन्हें दिखाना था कि वो सावरकर से सहमति नहीं रखते। इस तरह साल 1909 में ईस्टर के बाद मदन लाल मिसेस हैरिस के घर रहने लगे।
2: दीदी, जब मदन लाल सावरकर से अलग सोच रखते थे तो उन्होंने अंग्रेज अफसर को गोली कैसे मारी?
3: यही तो उनका मिशन था। इसके लिए हमें जानना होगा कि आखिर कर्जन वाइली थे कौन।
1: कर्जन वाइली एक बहुत ऊंचे औहदे के अफसर थे जो 1866 में ब्रिटिश सेना और 1879 में भारतीय राजनीतिक विभाग में शामिल हुए थे। उन्होंने 1879 से 80 के अफगान युद्ध, अवध, नेपाल, मध्य भारत और सबसे बढ़कर राजपुताना में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया था। 1901 में उन्हें भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पॉलिटिकल एडी कैंप चुना गया था। वो गुप्त पुलिस के मुखिया भी थे। बताते हैं कि कर्जन सावरकर और क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इंडिया हाउस में एक मुखबिर भी लगा रखा था।
6: मुझे सावरकर और उसके सभी क्रांतिकारी साथियों की पूरी खबर चाहिए कि वो क्या योजना बना रहे हैं।
7: जी सर, आपको सारी इन्फॉर्मेशन समय पर मिल जाएगी।
6: तुम थोड़ा जल्दी काम करो, वो इंडियंस कुछ ना कुछ जरूर प्लान कर रहे होंगे।
7: मैं जल्द से जल्द बताता हूँ।
1: कर्जन निश्चिंत था कि उसके मुखबिर की खबर क्रांतिकारियों को नहीं है, लेकिन सावरकर से कहाँ कुछ छुपने वाला था। उन्हें भनक लग चुकी थी कि इंडिया हाउस में कोई गुप्तचर है।
4: हमें थोड़ा खबरदार रहना है, हमारे बीच में कोई है जो अंग्रेजों तक सारी सूचनाएं पहुंचा रहा है।
8: आप ये क्या कह रहे हैं, हमारे बीच में कोई गद्दार है?
9: कौन है वो गद्दार? आप नाम बताइए उसका, छोड़ेंगे नहीं उसको।
4: धीरज रखो, जल्द ही पता चल जाएगा सबको।
1: इंडिया हाउस में एक आक्रोश सा फैल गया था। हर कोई सोचने लगा था कि आखिर वो गुप्तचर है कौन। तरह तरह की बातें होने लगी थी, लेकिन वहाँ एक शख्स था जिसके चेहरे के हाव भाव कुछ बदल से गए थे। वो एक मेडिकल का स्टूडेंट था।
10: कहीं सावरकर जी को मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पता चलता तो वो मुझे छोड़ते क्या?
1: अभी वो छात्र ये सब सोच ही रहा था कि उसे सावरकर ने आवाज लगाई। कीर्तिकर, जरा बैठना मेरे साथ। भाव विहीन होने की कोशिश करता हुआ कीर्तिकर सावरकर के पास पहुंचता है।
10: जी बताइए, क्या सेवा है मेरे लिए?
4: बहुत बड़ी, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्यों कर रहे हो ये सब और किसके कहने पर कर रहे हो?
10: मैंने क्या किया? कुछ समझा नहीं मैं।
4: अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी पोल खुल चुकी है।
1: फिर क्या था, अपनी जान पर खतरा पैदा होता देख कीर्तिकर ने ब्रिटिश पुलिस के ऑपरेशंस के बारे में उसके पास मौजूद सारी जानकारी सावरकर को दे दी। उधर ढींगरा कर्जन वाइली से व्यक्तिगत रूप से परिचित थे। 13 अप्रैल 1909 को मदन लाल के पास वाइली का लिखा एक पत्र पहुंचा, जिसमें उन्होंने मिलने की बात कही थी। कहानी में यही एक जबरदस्त ट्विस्ट आया जब मदन लाल ढींगरा ने अपनी योजनाओं के बारे में सावरकर से चर्चा की। इसके पश्चात सावरकर ने ज्ञान चंद वर्मा को बुलाया और उनसे कहा,
4: आप लंदन छोड़कर न जाएं और इंपीरियल इंस्टीट्यूट में होने वाले कार्यक्रम में जरूर शामिल हो।
1: ढींगरा अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने लगे थे। उसी दौरान वो बिपिन चंद्र पाल के घर पर सावरकर से मिले। उस बैठक में निरंजन पाल भी मौजूद थे। मदन लाल काफी अच्छे मूड में थे। उन्होंने सावरकर से बड़े स्नेह के साथ बातचीत की।
4: आप ये बयान देख ले जो आपको कर्जन वाइली के हत्या करने के बाद देना होगा, निरंजन पाल ने इसे टाइप किया है।
5: ठीक है, मैं इसे याद कर लेता हूँ।
1: सावरकर ने मदन लाल को बेल्जियम में बनी एक ब्राउनिंग पिस्तौल भेंट की और बड़े स्नेह के साथ उनसे विदा ली। ढींगरा भावुक हो उठे। तब सावरकर ने कहा,
4: अगर इस बार तुम असफल रहे तो तो मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना।
5: आप निश्चिंत रहें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
1: एक जुलाई को ढींगरा के सहेली मित्र सैंटियागो उनके आवास पर गए। ढींगरा सामान्य बने रहे। इसके बाद वो गोरे गांवकर से मिलने गए, जिन्हें उनके साथ इंपीरियल इंस्टीट्यूट जाना था। उन्होंने 108 लीडबरी स्ट्रीट स्थित अपने ही घर पर समय से पहले दोपहर का भोजन और शाम की चाय ली। दोपहर 2 बजे वो एक रिवॉल्वर लेकर अपने घर से निकले। उन्होंने चमड़े के खोल वाली एक बिल्कुल नई कटार खरीदी और उसे अपनी जेब में रख लिया। फिर वो फनलैंड गए और 18 फीट की दूरी से 12 राउंड गोलियां चलाई। इनमें से 11 गोलियां निशाने यानी बुलजाई के बिल्कुल करीब लगी। इसके बाद उन्होंने अपनी रिवॉल्वर साफ करवाई। शाम 7 बजे मदन लाल ने लाउंज सूट और नीली पंजाबी पगड़ी पहनी। उन्होंने अपनी कोल्ट रिवॉल्वर लोड की और उसे अपनी कोट की दाईं जेब में रख लिया। उन्होंने एक एक रिवॉल्वर कोट की दूसरी जेब और अपनी वेस्ट में भी रख ली। क्योंकि वो सावरकर द्वारा लिखा गया बयान याद नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उसे पेंसिल से कागज की एक शीट पर लिख लिया। उन्होंने अपनी जेब में 10-12 शिलिंग भी रखी और कार्यक्रम के लिए निकल पड़े।
3: मेरी बन्नो, तुम सुन रही हो ना? हमारे क्रांतिकारी किस कदर योजनाबद्ध तरीके से अपने मिशन पर जुटे थे।
2: हाँ दीदी, मुझे तो डर भी लग रहा है ये सोच सोच कर कि आगे क्या होगा। पकड़े जाने पर ब्रिटिश पुलिस मदन लाल जी के साथ कैसा सलूक करेगी।
3: बन्नो, क्रांतिकारी अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं। तुम डरो मत बन्नो, बस इतना याद रखना कि स्वतंत्रता के इन वीर सेनानियों ने कितना कुछ देश के लिए कुर्बान किया।
2: बिल्कुल याद रखूंगी दीदी, भरोसा रखो।
1: आखिर वो दिन आ ही गया, 1 जुलाई 1909। इंपीरियल इंस्टीट्यूट की पहली मंजिल पर स्थित जहांगीर हॉल में नेशनल इंडियन एसोसिएशन की बैठक चल रही थी, जिसमें कर्जन वाइली समेत कई प्रमुख ब्रिटिश नागरिक और भारतीय शामिल थे। असल में ये एक स्वागत समारोह था, जिसे सर अल्फ्रेड लायल की पत्नी लेडी लायल के सम्मान में आयोजित किया गया था। मदन लाल इस एसोसिएशन के एसोसिएट सदस्य थे, तो वो भी वहां पहुंचे, लेकिन अपना निमंत्रण पत्र लाना भूल गए। हालांकि विजिटर्स बुक में हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें प्रवेश मिल गया। बैठक में कोरेगांवकर भी एक पिस्तौल लेकर पहुंचे थे। जैसे ही मीटिंग खत्म होने वाली थी, कर्जन वाइली वहां से निकलने की तैयारी करते दिखे। तभी कोरेगांवकर ने ढींगरा को उकसाया।
11: अजी जाओ ना, क्या कर रहे हो?
1: ढींगरा बात करने के बहाने कर्जन वाइली के पास पहुंचे। दोनों ने शीशे का दरवाजा खोला और हॉल से बाहर निकल गए। जैसे ही वो सीढ़ियों के चबूतरे पर पहुंचे, ढींगरा ने अपनी आवाज धीमी कर ली, मानो वो कोई गोपनीय बात करना चाहते हों। कर्जन वाइली को ढींगरा के करीब आना पड़ा। मौका भांपते ही ढींगरा ने अपने कोट की जेब से कोल्ट रिवॉल्वर निकाली और बिल्कुल करीब से पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 गोलियां दाग दी। तब रात के 11:20 बजे थे। कर्जन वाइली लड़खड़ाने लगे, तभी ढींगरा ने 2 और गोलियां उन पर दाग दी। वहां मौजूद एक पारसी डॉक्टर कावस लाल काका ने बीच बचाव करने की कोशिश की।
12: ये क्या किया? He is bleeding.

0: आप बीच में ना पड़े वरना।
1: मदन लाल ढींगरा ने उन पारसी डॉक्टर पर भी गोली चला दी, खुद को भी गोली मारने का प्रयास किया जो असफल रहा। आसपास के लोगों से हाथापाई होने लगी। ढींगरा ने एक को जमीन पर गिरा दिया जिससे उसकी पसलियां टूट गई, लेकिन फिर किसी ने उन्हें जोर से पकड़ लिया और उनकी रिवॉल्वर छीन ली। हाथापाई में ढींगरा का चश्मा दूर जा गिरा था। उन्होंने शांत भाव से अपने पकड़ने वालों से कहा,
2: मेरा चश्मा दे दे।
1: घटना के पश्चात डॉक्टरों ने जब ढींगरा की नब्ज जांची तो वो हैरान रह गए। इतनी बड़ी वारदात के बाद भी उनकी नब्ज बिल्कुल सामान्य थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधिकारी ने ढींगरा से पूछा,
3: क्या आप चाहते हैं कि हम आपके किसी दोस्त को आपकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करें?
0: इसकी कोई जरूरत नहीं है, उन्हें कल के अखबारों में मेरी गिरफ्तारी के बारे में पता चल ही जाएगा।
3: ये तो बड़ा सयाना है, मुंह नहीं खोलेगा।
4: आगे क्या हुआ गीत दीदी, क्या पुलिस ने उनसे मारपीट की?
5: असल में ढींगरा को एहसास था कि पुलिस उनके दोस्तों को भी इस मामले में फंसाने की कोशिश कर सकती है, इसलिए उन्होंने चतुराई से जवाब दिया। बाद में पुलिस उन्हें वॉल्टन स्ट्रीट पुलिस स्टेशन लेकर गई।
1: आप सभी को बता दें कि कर्जन वायली की हत्या करने से कुछ हफ्ते पहले मदन लाल ढींगरा ने लॉर्ड कर्जन को भी मारने की कोशिश की थी। वो सभी वायसरायों में से सबसे ज्यादा अहंकारी माने जाते थे, लेकिन किस्मत ने कर्जन को दो बार बचा लिया। इनके अलावा मदन लाल ने बंगाल के पूर्व गवर्नर ब्रैमफील्ड फुलर की हत्या की भी योजना बनाई थी। हालांकि वो उस मीटिंग में देर से पहुंचे जहां इन दोनों को मौजूद रहना था, इसलिए मदन लाल अपनी योजना को अंजाम नहीं दे पाए। ये सब होने के बाद ढींगरा ने कर्जन वायली को मारने का फैसला किया। सावरकर थोड़ा सशंकित थे कि पता नहीं इस बार ढींगरा सफल रहेंगे या नहीं। ये सिर्फ ढींगरा को ही मालूम था कि उन्हें हारना नहीं है। गिरफ्तारी के बाद का घटनाक्रम भी कम रोमांचकारी नहीं रहा। मामला अदालत में पहुंचा। वहां क्या क्या हुआ ये जानने के लिए आप श्रोताओं को करना पड़ेगा अगले एपिसोड का इंतजार। तब तक सुनते रहिए एक गीत एक नारा, राष्ट्रगीत हमारा, वंदे मातरम।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में कार्यक्रम का नाम ही अपना गाँव और अपना अंचल। जिस गाँव और जिस अंचल में रहते हैं पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे वो गांव और अंचल कभी नहीं भूल पाते। तो सरकार का जो मंशा है जो रेडियो स्टेशन दिया है आसपास में जो गतिविधि हो रही सब तक पहुंचाने के लिए एक मंच आज राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय चंडला में और बच्चों का बारी बारी हुनर और प्रतिभा सुनने को मिलेगा। पहला प्रस्तुति हम सुनने जा रहे हैं एक प्रार्थना के रूप में और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ 6 छात्राएं हैं तो वो भी अपना बात को रखेंगे नाम का साथ अपना नाम और वो कौन सा गांव से आते हैं और कौन सा क्लास।
1: मेरा नाम सुपना कुमारी है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ, मैं अंबावेली से आती हूँ।
2: मेरा नाम अंजू कुमारी है, मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ, मैं बघेरी से आती हूँ। मेरी स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंडीगढ़।
0: तो चलिए बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए हम आज आपका पास खास रहे हैं खासकर ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय का सहयोग से। तो जैसे बच्चे अपना प्रस्तुतियाँ देंगे, सुगना रेडी?

ना पाऊं।

0: कार्यक्रम का पहला गीत में ही बच्चे अपने के रूप में अपना दिल का था अपना भाव और भावना को माँ सरस्वती तक पहुँचा दिए और इस तरह कार्यक्रम जब होता है बच्चे पढ़कर भाग लेते हैं और अपना भाव और भावना को देते हैं अर्पण करते हैं तो समर्पित रूप में अपना जीवन को जब क्या करते हैं तब भगवान भी खुश हो जाते हैं बच्चों का गीत को देख कर उनका सुर ताल का साथ लय का साथ भावना भी है भाव भी है जैसे घर में अगरबत्ती करते हैं नमस्ते करते हैं पूजा पाठ करते हैं तो हमारा छह छात्र जो सुकुना एंड अंजू सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं पहला प्रस्तुति के लिए और छोटे बच्चे भी हमारे साथ इस कार्यक्रम को जोड़ेंगे लेकिन और कोई विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर तो खास कर अंजू बड़े होकर क्या बनेगी
1: टीचर
0: क्यों टीचर क्यों क्योंकि पढ़ाते हैं तो बच्चा मिट्टी को जैसे रूप देंगे उस तरह बनता है जैसे कारीगर क्या करता है कारीगर अच्छा से सुंदर देते हैं लकड़ी हो चाहे मिट्टी हो उसको सुंदर रूप दे देते हैं तो शिक्षक भी बच्चों को सुंदर रूप में रूप देकर डॉक्टर इंजीनियर टीचर बना देते हैं तो इसलिए टीचर शिक्षक का महत्व ज़्यादा है सैनिक टीचर और किसान ये तीनों देश का ज़्यादा पूरा मेन रोल करते हैं पूरा पिलर है उनका बिना हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा सैनिक जो कि बॉर्डर में सैनिक काम क्या करता है जो फौजी में देश को रक्षा करते हैं हाँ और किसान हमको अन्न देते हैं और शिक्षक हमें अच्छा शिक्षित कराते हैं बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं छोटा सा

0: सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अपना पारी में बस उसका सुन लिया क्या पहले और अच्छा गीत सुने प्रार्थना के रूप में और हमारे रेडियो मधुबन तरफ से भी गीत सुने। तत्पश्चात और एक प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए गोड्डा गुड़िया दोनों आए हैं, तो सुनते हैं उनका आवाज से क्या बोलना चाहेंगे। अपना नाम बताएंगे। हेलो, नाम बताइए। कौन सा क्लास? चलने का प्रस्तुत सुनेंगे। सभी बच्चे साथ दे रहे हैं हमारा कार्यक्रम को सुनकर अपने को कंट्रोल करके बैठे हैं चुपचाप, और हमारा तीन छात्र और छात्रा दोनों मिलकर गीत गाएंगे। सुना
2: चंडीगढ़ से

भी नहीं गए, सब घूम कर आकर अपना घर में पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कार्यक्रम के लिए हम लोग और छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको भी स्वागत करेंगे कि बच्चे सच्चे होते हैं, मन के सच्चे, दिल के सच्चे, प्यारे प्यारे लगते हैं। और बच्चे भी आए, हम भी कभी बच्चे थे लेकिन आप तो बड़े हो गए, हमारा बच्चे कम नहीं है। आपने अपना नाम बताएंगे प्लीज, अपना नाम बताओ। हेलो जी, हाँ यशोदा, चेतना, आत्मा तो चेतना है कि नहीं? अरे यशोदा बिना हमारा कुशला अस्तित्व नहीं है। मधु वाह, मधुबन, रेडियो मधुबन से हम आए और मधु हमारा इस कार्यक्रम को सजा रहे। और एक गुड़िया किंजल, बस सभी के लिए ताली बजा दो भाई, ये तीनों बच्चे के लिए। सुना कौन सा गीत सुनाएंगे? कविता हाथी राजा, वाह हाथी तो राजा है, जंगल का राजा हाथी है, जंगल का राजा हाथी है। हाथी कभी देखा है चित्र में? नहीं, फोटो में नहीं। हाथी देखा है?

कितना पैर है उसके हाथी का? चार। कितना पैर है? सभी बच्चे हाथी देखें? असली असली असली देखें? कब? जंगल में ना गांव में? गांव में हाथी आता है? अरे वाह, क्योंकि जंगल का बाजू में तो बड़ा बड़ा पहाड़ है, जंगल है, हो सकता आ सकता है, लेकिन कोई भी पालतू हाथी भी आता है। चलिए हाथी राजा के बारे में सुनेंगे, सभी सुनेंगे बच्चे? चलिए सुनते हैं हाथी राजा।

0: वाह, तुम्हारा नाम बताओ?
1: राजकुमार।
0: अरे वाह राजकुमार, राजकुमार हमारा होबनहार बच्चा है और राजा बनेगा। बड़े होकर क्या बनेगा? राजा बनेगा ना? डॉक्टर बनेगा? क्या बनेगा?
1: डॉक्टर।
0: हाँ, राजकुमार हमारा राजा बनेगा और डॉक्टर भी बनेगा। डॉक्टर का काम क्या होती है?
1: सुई लगाता।
0: अरे बाप रे, सुई। बहुत होशियार बच्चा हमारा राजकुमार। अरे बैठ जाता है सिर्फ, राजा तो बैठता नहीं है, राजा तो पूरा शासन करता है ना। तुम्हारा अच्छा मैम कौन है?
1: ममता मैडम।
0: अच्छा, क्या बात है, ममता मैम उनका अच्छा मैम है। क्या ममता मैम क्या सिखाते हैं?
1: गिनती
0: सिखाते हैं। और राजा बनने के लिए तरीका बताते, डॉक्टर बनने के लिए तरीका बताते है ना। बहुत अच्छा है। राजकुमार के लिए क्या करेंगे? जोर से ताली बजाएंगे। राजकुमार हमारा खुशी लग रहा है? तुमको सब ताली बजाकर खुशी करा दिए। ताली बजाने से कोई पैसा नहीं लगता है, एक्सरसाइज हो जाता है और चेहरा में गोलाप फूल जैसे खिलता है। सबका चेहरा देखो कितना खिलखिला रहा है ना, जैसे कमल फूल खिलता है ना। कमल फूल कैसे खिलता है देखो बच्चे, ऐसे करो हाथ। अरे वाह, कमल फूल दो दो हाथ अंगुली से इशारा से कर, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। कमल फूल ऐसे खिलता है, कमल फूल जैसे हमको भी बनना है। कैसे बनना है? कमल फूल जैसे
1: बनना है।
0: हाँ, देखो बच्चे आज कितना खुशी से बोले, कमल फूल जैसे सब सहन करता है, कीचड़ पानी सब उनके साथ रहकर पूरा उपराम, सबसे अलग। तो हमारा राजकुमार भी सबसे अलग है। सभी मैम उनको याद करते, सभी सर उनको याद करते ना
1: जी।
0: क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास गुण है, विशेषता है। बहुत अच्छा बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और दो बच्चे है, तीन बच्चे, वो भी सुनाएंगे। लेकिन आओ, और बच्चे सुनाएंगे कुछ।
2: हसीना
0: सुनाएंगे कुछ इस कार्यक्रम को। अगला कड़ी में सुनाएंगे हसीना हमारा साथ। कौन सा क्लास में हसीना है?
3: फाइव,
0: फिफ्थ क्लास। तो सुनाओ।

0: क्या बात, प्यार प्यार मतलब कितना खुशी का बात, ताली बजा प्यार के लिए। प्यार में सब कुछ समय होता है, जब प्यार से कोई काम करेंगे, प्यार से याद करेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, प्यार से बुलाएंगे, चुटकी में सब काम हो जाता है। और हमारा गुड़िया, हमारा परी आज प्यार सबको लुटा रहा है, गीता माध्यम से, कविता का माध्यम से। कौन सा फलिपा, कौन सा गांव से आती गुड़िया, तुम कहाँ से आती?
1: गिरवर बोर्ड से।
0: अरे बाप रे, गिरवर बोर्ड से आती, इतने दूर से आती है, वाह, गिरवर बोर्ड से। और बड़े होकर क्या बनेगी गुड़िया तुम?
1: डॉक्टर।
0: हाँ डॉक्टर, डॉक्टर का काम सुई लगाना होता है, इंजेक्शन देना होता है। और इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाए, और प्यार प्यार भरा, दिल भरा कविता का माध्यम सबका मन मुग्ध कर दिया। हमारा श्रोता सुन रहे इस कार्यक्रम को, और ये तो चंडला का आवाज, विद्यालय के भुवनहार बच्चे ममता मैम और एक मैम हमारा साथ इस कार्यक्रम आए हैं, तो उनको भी हालो करेंगे। मैम आप अपना परिचय देंगे?
2: मेरा नाम संगीता शर्मा है और मैं इसी विद्यालय में अध्यापिका हूँ, पहली से पांचों को हिंदी पढ़ाती हूँ। और ये बच्चे अच्छे अच्छे कविता बोल रहे हैं, इनको सिखाई है मैंने, और मुझे पढ़ाने का बहुत ही शौक है। मुझे पढ़ाना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चों से पढ़ाना है, इनको नॉलेज देना, और इनको, मैं से सांस्कृतिक प्रभारी भी हूँ, तो नाच गाने वगैरह करवाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद भी गायिका हूँ, गाती हूँ गाना।
0: बच्चों का आवाज को सुनकर मैम भी अपने आवाज को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं और बड़े भी तो सच्चे बना देते हैं। और इस कविता का माध्यम से प्यार कितना सीमेंट का काम करता है, जोड़ना है प्यार, जैसे ईंट और रेती को सीमेंट दे देंगे तो दोनों को पूरा बराबर जोड़ देता है, कभी टूटता। तो इस कविता का माध्यम से सभी बच्चे भाग लिए, और मैम इस कविता का माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे। मैम एक जो कविता सुनाई बच्ची, प्यार वाला कविता, वो कविता का महत्व थोड़ा बताइए, आपका, आप तो बच्चों को सिखाते हैं।
2: ये कक्षा 5 का पहला ही पाठ है, तो मैं इनको, मैंने पढ़ाया और रोज ही प्रार्थना के जस्ट बाद ये कविता मैं बुलवाती हूँ। तो ये बच्चे क्या है, इन कविताओं को बोलते हैं और इनको सबको करीब करीब याद हो चुकी है। तो इसमें नानी का जो प्यार वो बताया है, नानी दादी हमें पहले कैसे कहानी सुनाती थी, प्यार करती थी, है ना, तो उससे बच्चों का क्या होता था, संस्कार के विकास होते थे, है ना। जैसे उन्होंने, नानी हमें प्यार से बताती थी कि ये संसार पूरा किसने बनाया, ईश्वर ने, ईश्वर ने बनाया ना, और ईश्वर, तो ईश्वर को हमको ध्यान रख करना चाहिए, ईश्वर ही हमको सबसे जुड़ने का और इस संसार से जुड़ने का प्रेम सिखाता है ना। तो इसलिए नानी का और दादी का बच्चों के संस्कार निर्माण में बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। और इसी में दो लाइन मैं बच्चों के ऊपर गाना गा देती हूँ, क्योंकि बच्चे मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं बच्चों के लिए ही गाना गा रही हूँ।

0: के सच्चे धन्यवाद।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चे का शुरुआत कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम को भी धन्यवाद और हमारा ममता मैम को भी धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। ममता बहन का आवाज भी लेंगे अंतिम समय में।
2: लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक बाद पुनः मिलेंगे सुंदर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: This is Aditya Raj Kapoor and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: नमस्ते। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और एक बोलते बोलते फिर और एक प्रस्तुति करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें खुशी मिल रहा है। बच्चे सच्चे होते हैं और बढ़ चढ़ कर अपना भाव और भावना को देते हैं, क्योंकि उनको मौका मिलता नहीं। आज मौका मिला है रेडियो मधुबन उनका बात को रखने के लिए एक मंच दे रही है, जिस मंच का माध्यम से, जिस स्टेज का माध्यम से अपना भाव को जन जन तक पहुँचाते हैं। और आदिवासी गाँव में रहते हैं बच्चे, इस तरह आकाशवाणी में आने के लिए उनको कोई पूछता नहीं था, तो रेडियो मधुबन ब्रह्मा कुमारी आज उनका बात को रखने के लिए उनको मंच दे रहे, माइक दे रहे, तो पुनः और एक प्रस्तुति के लिए रेडी है। हमारा सभी गुड़िया आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सभी? अपना नाम क्या बताया था?
2: अंजू
1: शुभना। चलिए सभी मिलकर एक प्रस्तुति करेंगे। ओके।

वाह वाह बोल रहे से बच्चे, बहुत अच्छा सुंदर प्रस्तुति के धन्यवाद देते हैं। इस तरह बच्चे को जब मान के मिलते हैं आगे आकर अपना बात करते हैं, कोई बने अपना मकसद रखते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पुलिस बनेंगे सभी बड़े होकर, लेकिन लेकिन मेहनत जरूरी है। विद्यार्थी जीवन में मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बिना मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है। इसमें पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई तब तक विद्यार्थी पढ़ाई का जीवन में पढ़ाई करना है और बड़ों का बात मानना चाहिए, है ना। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रश्न सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन।
2: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चल रहे हैं और आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन पर राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय चंडला का आवाज। अंतिम प्रस्तुति में पुनः उनको स्वागत करते हैं, शुरू करेंगे।
3: चंडा पड़ा अंबर में।

करूँगा सुंदर ठाकुर जी के लिए, और आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और इसी बात को लेकर। बहुत खुशी लगा सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। सब बच्चे बोलो रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो और मुस्कुराते रहो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: दूसरों के साथ हम चूज कर सकते हैं, हम अपने रिश्तों में कितना चूज करते हैं, मुझे इनसे बात करनी इनसे नहीं करनी, मैं इनसे 5 मिनट ही कर सकती हूँ, इनसे 5 घंटा कर सकती हूँ, इनके साथ मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ मैं नहीं काम कर सकती, आई हैव सो मच चॉइस। लेकिन अपने आप के साथ
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, आज मैं हाजिर हूँ आप सबका अपना

0: पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के जिसका नाम है हमराही। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सब जानते हैं हम नई नई कहानियों को सुनते हैं, नए नए संघर्ष से रूबरू होते हैं और समाज में जो कुछ मान्यताएं फैली हुई हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। और हमारे मेहमान इस कार्यक्रम में जो भी आते हैं वो अपने तरीके से हमारे सभी साथियों को, चाहे वो मुख्य धारा के लोग हों या फिर हमारे दिव्यांग समाज के साथी हों, उन्हें प्रोत्साहित और प्रेरित करने का काम करते हैं। अलग अलग राज्यों में घूमते हुए, कई बार राजस्थान के दूर दराज ग्रामीण अंचलों में यात्रा करते हुए, आज एक बार फिर हमारी ये हमराही एक्सप्रेस या हमराही का ये कारवां जा पहुंचा है गुजरात। और गुजरात का एक बहुत ही पुराना शहर है जिसका नाम है अहमदाबाद। आप और हम सब परिचित हैं अहमदाबाद शहर से। तो आज के हमारे दोनों मेहमान अहमदाबाद से ही जुड़ रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं महेंद्र भाई चुड़ासमा और उनकी श्रीमती जी अल्पा बेन का आज के हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में जिसका नाम है हमराही। तो महेंद्र जी और अल्पा जी, आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है।
1: जी नमस्कार।
2: जी शुक्रिया।
0: जी महेंद्र भाई, आप हमारे सुनने वालों को अपने बारे में बताएं, आपकी दिव्यांगता के बारे में बताएं, आपकी शुरुआत कहां से हुई, आजकल क्या कर रहे हैं आप, जरा ये सब हमारे सुनने वालों को कृपया बताइए।
1: सबसे पहले सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: क्या
1: तो हमारी खुशनसीबी है कि आज के दिन हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों के सामने पेश आ रहे हैं।
0: बहुत बढ़िया।
1: इसलिए मैं आपका संदीप जी आपका जी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ
0: जी। धन्यवाद।
1: सुनने वालों को मैं बताऊँ, मेरा नाम महेंद्र चुड़ासमा है
0: जी।
1: मैं बाई बर्थ VI म्यूजिक हूँ। 1975 में मेरा बर्थ है। तभी का एक ऐसा दौर था, रेडियो का दौर था
0: जी जी जी।
1: टेलीविजन 1980 के बाद आया
0: जी।
1: 75 से 80 तक भी टेलीविजन थे
0: जी,
1: लेकिन बहुत बड़े बड़े लोगों के पास और बहुत सीमित, और कार्यक्रम की श्रृंखला भी बहुत लिमिटेशन हुआ करती थी
0: जी, जी।
1: तो उन रेडियो के दौर में तब जो भी गाने बजते थे, सुनते सुनते मुझे भी ऐसा हुआ कि चलो मैं भी गाना गाऊं
0: जी।
1: और बहुत सारी चीजों को जानने का, परखने का मुझे पहले से बचपन से ही शौक रहा है। कोई नई नई, जैसे खिलौने में कोई नया खिलौना है सब वगैरह, यानी कि मैं आज के दौर की बात करूंगा एज ए टेक्नोलॉजी, मुझे पहले से बहुत पसंद थी। इस तरह शुरुआत हुई। फिर मैंने हमारे अहमदाबाद में टाइम्स ऑफ इंडिया के सामने बहरा मुंगा की शाला है के अंदर ब्लाइंड स्कूल भी है।
0: अच्छा।
1: वहां पे मैंने 10th तक पढ़ाई की
0: जी।
1: वहां से मुझे पूरा एजुकेशन मिला, साथ में म्यूजिक विशारद की डिग्री भी वहां से मैंने हासिल कर ली
0: जी।
1: फिर आगे बढ़ते हुए हम एडल्ट एजुकेशन में आए, यानी कि वस्त्रापुर, BPA अभी नाम है, पहले BMA नाम था, ब्लाइंड मैन एसोसिएशन, अभी ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन नाम है वस्त्रापुर। वहां पे हमारे एक टीचर कहें या तो फिर जो भी ऑर्गेनाइजर कहें तो भी कोई गलत बात नहीं होगी, तारक लुहार सर
0: जी,
1: कि हर एक को स्टेज पर लाने का काम भी कर रहे थे
0: जी,
1: वहां ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करते थे।
0: अच्छा।
1: तब भी मेरी एक खुशनसीबी, वहां से मुझे 1994 में
0: जी
1: RD बर्मन साहब की जब डेथ हुई थी
0: जी जी,
1: 4 जनवरी को
0: जी,
1: और हमारे लुई ब्रेल का जन्मदिन था
0: जी जी जी,
1: जन्मदिन हुआ करता है, उसी दिन को एक शो का आयोजन किया गया। हमारे गुजरात के बहुत ही प्रसिद्ध गायक कलाकार बंकिम पाठक जी एवं खांडेकर ऑर्केस्ट्रा के साथ, तब मैंने 2 गाने गाए। तब से मुझे वो स्टेज की दुनिया भाने लगी, ऐसी भाई कि मैंने उसके अंदर जो मेरा काम शुरू किया एज ए प्रोफेशन 1997 से, तो वो मुझे लंदन भी ले गया, मुझे अमेरिका भी ले गया
0: जी,
1: और आज बस वही सिलसिला चल रहा है।
0: क्या
1: मगर बीच में एक ऐसा दौर आया
0: जी
1: कि लंदन में काम करने वाले प्रमोटर्स के लाइसेंस कुछ बैंड हो गए
0: जी,
1: जो 2006 में।
0: अच्छा।
1: तो उसके बाद फिर मैं कंफ्यूजन में आ गया कि अभी मुझे क्या करना क्या चाहिए
0: जी।
1: तो एक्सीडेंटली वहां पर यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बीपीएम एनजीओ में कंप्यूटर ट्रेनिंग शुरू हुई
0: जी।
1: तो वो कंप्यूटर ट्रेनिंग शुरू हुई तो उसमें मैंने कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली
0: जी।
1: तो मुझे वैसे पहले से ही मुझे टेक्नोलॉजी में तो इंटरेस्ट बहुत था
0: जी।
1: तो फिर मैंने कंप्यूटर की ट्रेनिंग करने के बाद मैंने ऐसा काम किया कि हमारे सर ने ही यानी कि हमारे आरपी सर रणछोड़ भाई सोनी
0: जी,
1: उन्होंने मुझे एक वॉलंटियर बेस पर लेकिन स्टाइफन के दौर पर वहां पे जॉब दे दी।
0: अच्छा
1: हाँ, तो वो 2009 में
0: जी जी,
1: वो 2010 से शुरू हुई है सर। दो साल मैंने वहां पे काम किया और मैं बहुत सीखा।
0: अच्छा,
1: फिर कहते हैं ना कि भाई माता सरस्वती हर एक रास्ता बंद हो जाए तो एक रास्ता खोलती है
0: जी।
1: कलाकारों के लिए खास ये बात कही जाती है
0: बिल्कुल,
1: कि कलाकारों का एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता अपने आप खुल जाता है
0: जी।
1: तो जैसे ही लंदन बंद हुआ तो 2-3 साल में अमेरिका की शुरुआत हो गई हमारे लिए। तो फिर मैं अमेरिका का काम मैंने संभालने लगा एज ए स्टेज सिंगर
0: जी।
1: और मैंने 20 साल तक पहले से 1994 से
0: जी
1: आज तक नॉर्मल लोगों के साथ काम किया। हाँ, मैंने वीआई पर्सन्स के साथ काम किया है, लोकल काम बहुत किया है, बाकी लोकल एवं इंटरनेशनल लेवल पर मैंने नॉर्मल के साथ काम किया है। बाद में फिर एक ऐसा दौर आया कि जिसमें मुझे अल्पा जी मिल गए। एक ट्रेनिंग के लिए मैं कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी करता था जब जब मेरी टूर नहीं होती थी, तो यहाँ इंडिया में मैं बचे हुए वक्त का सही उपयोग करके सही यूज कर मैं एक ट्रेनिंग में गया था। वहां मुझे अल्पा जी मिली
0: जी।
1: फिर हमारी बात हुई, हमारी जान पहचान हुई, फिर ये रिश्ता आगे बढ़ा और आगे बढ़ते बढ़ते फिर ये परमानेंट रिश्ते में तब्दील हो गया। बस यहाँ तक तो अभी है। और भी बहुत कुछ मेरे मुझे कहना है लेकिन अगर मैं कहूंगा तो इनकी बारी नहीं आएगी तो ये रखते फिर आगे फिर मैं ब्रेक में उनको ब्रेक देने के लिए फिर मैं मेरी बात जो कुछ एक दो बात बतानी है हालांकि पॉजिटिव है मेरे करियर के बारे में है वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ तक तो मेरा ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे
0: दिया। कुल मिलाकर के आप पूरी तरह से संगीत के प्रति समर्पित हैं ये कहना चाहिए जी।
1: मैंने मेरी लाइफ में जैसे हम दो पांव पे खड़े रहते हैं ऐसे मेरी लाइफ दो पहिए पर खड़ी है, एक म्यूजिक और दूसरी टेक्नोलॉजी।
0: क्या
1: बस इन दोनों की साधना मैंने की है और करता रहूंगा।
0: बहुत खूब बहुत खूब। और
1: टेक्नोलॉजी की बात मैं आगे बताऊंगा जी।
0: और हमारे लिए भी ये सौभाग्य का विषय कि आज एक अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत से हमें रूबरू होने का मौका मिल रहा है।
1: ये तो आप सब लोगों का प्यार और हमारी पूरी जनता के आशीर्वाद से होता है, फिर हमारी मेहनत, ये सब कुछ काम करता है। एक किसी एक चीज से कुछ भी काम नहीं होता।
0: बहुत खूब। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते। और आप अभी महेंद्र जी को सुन रहे हैं जो कि दृष्टि बाधित हैं और उनकी पूरी यात्रा के बारे में उन्होंने बताया, आगे भी बातें बहुत सारी होंगी। तो अब बात करते हैं जरा अल्पा जी से। हमने महेंद्र जी को सुना, अभी अल्पा जी को सुनने की बारी है। तो जी अल्पा जी, तो हमारे सुनने वालों को जरा अपनी आवाज में, अपने बारे में और आप की कोई दिव्यांगता है या नहीं है जरा वो भी बताएं अल्पा जी।
2: सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार
0: जी,
2: मेरा नाम अल्पा मेहता, मैं अभी अहमदाबाद में रहती हूँ और मेरे पेरेंट्स बड़ौदा में हैं। वैसे मैं बड़ौदा बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ और बड़ौदा में मेरे पेरेंट्स है, तो मेरी पढ़ाई आधी अहमदाबाद में हुई है, आधी बड़ौदा में भी हुई है
0: जी।
2: और म्यूजिक का शौक तो मुझे बचपन से ही है
0: जी।
2: और मैंने म्यूजिक विशारद किया है और मैंने बोला ना आधी पढ़ाई अहमदाबाद में और बड़ौदा में, वैसे कुल मिला के 12th तक पढ़ाई की है। लाइट म्यूजिक मुझे ज्यादा पसंद है, जैसे बोलते हैं गुजराती सुगम संगीत
0: जी जी जी,
2: वो मेरा प्रिय है और उसमें मैं लाइव शोज भी करती हूँ। बड़ौदा में थी तब गरबे का करती थी नवरात्रि में
0: जी।
2: और बाकी ऑर्केस्ट्रा में ये सब भी मैं इसमें भी पार्ट करती हूँ। और मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ, फिर मेरे पेरेंट्स बड़ौदा में हैं और मेरी दो बहनें हैं, उनके साथ मैं रहती थी। और ये इन हमारे हम दोनों की मुलाकात एक कंप्यूटर ट्रेनिंग में हुई थी, तो वैसे हम मिले और अच्छी जान पहचान बनी और बताया कि ऐसे आगे शादी में परिवर्तित हो गई।
0: क्या बात, बहुत बढ़िया।
1: संदीप जी, इनको तो गुजरात में बेस्ट टीचर्स का अवार्ड भी मिला।
2: और मेरा सौभाग्य है, मैं जो बड़ौदा में जो स्कूल में मैंने पढ़ाई की है वही पे मैंने
1: जॉब
2: भी की है और मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है, राज्य पारितोषिक
0: अवार्ड
2: टीचर के लिए।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। तो अल्पा जी, कभी गवर्नमेंट जॉब के बारे में नहीं सोचा आपने?
2: किए है, चालू है अभी प्रयास।
0: अच्छा, कोशिश चल रही है, बहुत बढ़िया।
2: जी जी,
0: बहुत खूब। नहीं, मुझे लगा जैसे स्टेज शोज से आप जुड़े हुए हैं तो शायद पूरी तरह से ध्यान।
2: यहाँ अहमदाबाद में भी अभी भी जॉब चालू है
0: जी।
1: हम दोनों एक ही स्कूल में जॉब करते हैं अभी।
0: अच्छा।
1: और लेकिन फर्क ये है कि दो बिल्डिंग अलग अलग है, मैं हाई स्कूल में हूँ
0: जी
1: और ये डे में है।
2: मैं इंग्लिश मीडियम डे चिल्ड्रन छोटे बच्चों के साथ हूँ, ये गुजराती मीडियम है।
1: वो
2: स्कूल के दो बिल्डिंग
0: है। वो स्पेशल स्कूल है या
1: त्रिपदा? शायद श्रोताओं में से किसी ने इनका नाम त्रिपदा इंटरनेशनल स्कूल।
0: जी जी जी, बहुत खूब।
1: हाँ, ये प्राइवेट है लेकिन।
0: जी जी जी, चलिए तो महेंद्र जी, अब जरा कहानी बताएं आप दोनों के मिलने की थोड़ा विस्तार से, बाकी परिचय तो हो गया आप दोनों से।
1: बस यही बात है कि एक ट्रेनिंग हुई थी कंप्यूटर की
0: जी,
1: वो कंप्यूटर की ट्रेनिंग में इनका भी आना हुआ और उससे पहले मुझे इनके बारे में एक मेरे दोस्त ने बताया था कि आप जिस ट्रेनिंग कंडक्ट करने जा रहे हो वहां पे आपको आपकी ही फील्ड की आर्टिस्ट मिलने वाली
0: जी।
1: मैंने बोला कि कौन हो सकता है, फिर उन्होंने नाम बताया था। मैंने बोला मैं नहीं पहचानता इनको, कोई बात नहीं, ये ऐसा गाती है वैसा गाती है सब मुझे बताया था। मैंने बोला ठीक है, जाएंगे तो कुछ परिचय हो जाएगा। फिर वहां पे गए तो वहां पे तो कुछ ऐसा हमारा मेरा पर्सनल कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे गए वहां पे सब कुछ। फिर मैं वहां से निकला, फिर उनसे मेरी बात हुई, फिर पर्सनल बात हुई, फिर म्यूजिक रिलेटेड बात हुई, तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके फिर हम एक दूसरे के करीब आ गए। फिर हमने तय किया कि चलो अभी अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग भी है, इनका नेचर ऐसा है कि एकदम फॉलोअर नेचर है। और मैंने आपको बताया था और मैं सबको बताता हूँ कि आदमी को डिमांड रखनी चाहिए, लेकिन ऐसी डिमांड ना रखे कि जो सामने वाले के ऊपर हावी हो जाए, यानी कि हमको गुलाम नहीं चाहिए। कई लोग ऐसा होता है, कई लोग ऐसा सोचते हैं, खासतौर पर जनरल लोग में ऐसा होता है कि भाई हमारी वाइफ है तो हम कहें ऐसा ही होना चाहिए, हम कहें इस प्रकार से खाना बनना चाहिए, हम कहें इस प्रकार से उन्हें पहनना चाहिए, ऐसा में ऐसा नहीं। ये सब फॉलो पर जाता है
0: जी।
1: एक दूसरे को फॉलो करो, बस यही। आज मैं चाहूं कि भाई ये आज मुझे ये खाना है, अगर वो बोलते हैं कि आज एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो फिर मुझे फिर मैं उसे प्रेशर नहीं कर सकता
0: जी।
1: ये किसी का भी अधिकार नहीं, जोर जबरदस्ती तो मैं मानता नहीं लाइफ की किसी भी चीज में, जोर जबरदस्ती में मानता ही नहीं हूँ। देखिए, जोर जबरदस्ती से अगर काम होगा तो काम तो हो जाएगा
0: जी,
1: लेकिन वो फीलिंग्स नहीं आएगी जो अपनी मर्जी से काम कर रहे थे, उसमें सब कुछ आ जाता है।
0: बहुत सही,
1: सब चीज आ जाती है।
0: बहुत सही,
1: मैं ये मानता हूँ। और जो प्यार से काम होगा वो जोर जबरदस्ती से नहीं होगा। तो इस हिसाब से हम दोनों मिले। और देखिए, कोई भी है तकलीफ तो आने वाली है, प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होने वाले ही है।
0: वो तो हर
1: जगह है। घर से बाहर निकलते हैं तो भी प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है, कई प्रॉब्लम नजर आते हैं, कई प्रॉब्लम नजर नहीं आते।
0: ठीक बात।
1: ये बीआई के लिए नहीं, हर के लिए बात,
0: सभी के लिए। जी जी,
1: हाँ सभी। अभी मान लो कि कोई घर से निकला और वो जल्दी में उतरते उतरते उसका पैर फिसला और दो तीन सीढ़ियां मिस कर गया, वो गिर गया, वही प्रॉब्लम भी है ना उसके लिए।
0: ठीक बात है।
1: ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड कि वीआई कोई भी घर से बाहर निकला तो वो गिरेगा। मैंने तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े नॉर्मल को गिरते हुए देखा है।
0: जी जी जी जी,
1: दिल से गिरते हुए भी देखा है, दिमाग से गिरते हुए भी देखा है।
0: जी जी जी जी। तो महेंद्र जी, एक बात बताएं
1: जी,
0: जब आपको दोस्तों ने बताया कि वहां पे आपकी मुलाकात आपके ही फील्ड के किसी व्यक्ति से होने वाली है,
1: जी।
0: तो तभी तय कर लिया था कि उनको प्रपोज करना है या उनको मतलब प्रभावित
2: नहीं,
0: करना है?
2: हम दोनों तो वैसे एक दूसरे का नाम सुन रखा था लेकिन एक दूसरे को वैसे पहचानते नहीं थे।
1: नहीं, इसमें ऐसा था कि वो बात तो नहीं, वो बात आप संदीप जी जो पूछ रहे हैं उसका उसका आंसर मैं इस तरह से दूंगा।
0: जी जी,
1: तब मैंने तय नहीं किया था।
0: अच्छा,
1: मैं किसी भी, देखिए किसी भी चीज को पहले जांचो परखो बाद में उसे अपनाओ। जांचो परखो का मतलब ये नहीं है,
0: समझना जरूरी है,
1: हम उसे एग्जाम करें ऐसा नहीं है,
0: अंडरस्टैंडिंग।
1: हाँ बस, वो अंडरस्टैंडिंग किस तरह से है, उनकी रहने का तरीका कैसा है, हमको मैच खाता है। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो हमें कोई लड़की नहीं मिलती है तो जो मिला गया, तो कोई लड़का नहीं मिलता है तो जो मिला उसके साथ करके फिर आगे का जीवन भगवान भरोसे छोड़ देना, ऐसा नहीं। सब कुछ भले हो तो हो ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार अगर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो जाए ना, फिर तो हमने बहुत सारी फोन पे बात की। कम से कम मैं आपको परफेक्ट बताऊं तो अप्रैल महीने 2015 में
0: जी,
1: एक साल तक तो हमने बात नहीं की।
0: अच्छा, अप्रैल 2015 से अप्रैल 16 तक। ओके ओके जी जी जी,
1: क्योंकि 2015 अप्रैल महीने की पहली तारीख को तो मेरी ट्रेनिंग लगी थी वहां पे, क्योंकि 15 दिन की थी, आप जानते हो कि 15-20 दिन की कंप्यूटर की ट्रेनिंग रहती है।
0: जी जी,
1: तो वो ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद मैंने मेरा सिलसिला शुरू किया। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एमजीओ के ऊपर इसका कोई खराब रिएक्शन ना
0: जी,
1: और मेरे कैरेक्टर कर्व पर भी, क्योंकि लोग क्या करते हैं वहां पे जाते हैं उनको कोई मिलता है तो फिर वो दिखावा करते हैं, ऐसा मुझे पसंद नहीं है
0: जी।
1: वहां पे हम काम करने के लिए गए हैं तो हमें काम ही करना है, हमारी नजर काम पे होनी चाहिए।
0: एक बात है, फोकस हमारा पहले, फोकस पूरा हमारे काम पर होना चाहिए।
1: बस वो काम पूरा हो जाए, बाहर कुछ भी करो, कुछ भी नहीं, गलत नहीं करना।
0: वही मेरा पूछने का मतलब था कि भाई कहीं, लेकिन दिल के किसी कोने में फोकस थोड़ा दूसरी तरफ भी हुआ कि नहीं हुआ, यही मैं पूछना चाह रहा था।
1: नहीं, हुआ हुआ, वो मैं वही बता रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे ही ट्रेनिंग पूरी होने को हुई, यानी कि ट्रेनिंग पूरे होने के 3-4 दिन बाकी थे, एक दूसरे को जानते हैं, धीरे धीरे करीब आते हैं, उनके प्रॉब्लम हमें पता चलते हैं, हमारे प्रॉब्लम उनको पता चलते, तब जाके ये बात बनती है ना, ऐसा तो कैसे
0: बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं,
1: किसी दिल के कोने में फीलिंग्स कब पैदा होती है, हम उनको हर रोज मिले, उनके कार्य क्षेत्र का हमें मुनावजा हो, फिर हम उन्हें देखे, वो हमें देखे, हम बात करें, वो बात करें, ऐसे धीरे धीरे करके फिर दिल में जगह बनती है ना, ऐसे डायरेक्ट तो जगह कैसे बनेगी। ट्रेनिंग पूरी होने से पहले ऐसी फीलिंग्स हो गई कि कम से कम दोस्ती का रिश्ता तो रखना है।
0: जी जी, वाह,
1: मान लो कि अगर मना कर दिया उन्होंने
0: जी,
1: तो वो भी तैयारी रखनी चाहिए।
0: जी जी जी,
1: क्योंकि हमें देवदास नहीं बना है।
0: सही, ठीक बात है, ठीक बात है।
1: तो मैंने बोला चलो उनको नहीं पसंद आएगा तो कोई बात नहीं, दोस्ती रखेंगे, इसमें क्या है,
0: इसमें क्या दिक्कत है। तो महेंद्र जी, फिर पहले प्रपोज किसने किया?
1: मैंने, वैसे तो हम दोनों मिलके इसके बारे में अल्पा जी बताएगी, चलो
0: कोई कहानी, इसमें भी कोई कहानी छुपी हो तो बता दीजिए।
1: हाँ, अल्पा जी बताएगी, मैं उनको थोड़ा उनको गाइड करता रहूंगा।
0: नहीं नहीं, वो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन चलता रहना चाहिए। जी जी, अल्पा जी बताएं।
2: जी, ट्रेनिंग के बाद हमारी फोन पे बातें होती रहती थी, स्टार्टिंग में तो म्यूजिक की बातें होती थी, फिर कंप्यूटर ट्रेनिंग के रिलेटेड बात, फिर धीरे धीरे बातें ज्यादा होने लगी
0: जी,
2: और दोस्ती भी आगे बढ़ती रही। फिर हम एक दूसरे के फैमिली के बारे में जाना, क्या है उनके फैमिली में, क्या है, उन्होंने मेरे बारे में जाना, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करीब आ गए,
1: फिर लास्ट में हमने फीलिंग्स पे ध्यान दिया कि चलो एक दूसरे की तकलीफ क्या है।
2: हाँ,
1: हाँ, आपको क्या प्रॉब्लम है, अभी करंट प्रॉब्लम आपको क्या है, उनका प्रॉब्लम जाना, फिर मैंने मेरा प्रॉब्लम भी, भाई हमारा करंट प्रॉब्लम ये है, मेरा कर्म प्रॉब्लम ये है, कुछ भी सोशल प्रॉब्लम हो सकता है, फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, एक दूसरे के दर्द को, दुख को समझने की कोशिश की। फिर जाके फिर ये बात जो आप पूछ रहे हैं वो भी अभी बताओ आप।
2: ऐसे दोस्ती आगे बढ़ती रही और एक दिन आया कि मुझे भी इनकी बातें पसंद थी, इनके मेरे प्रति जो विचार थे वो अच्छे लगे, हम एक दूसरे के विचार मतलब मैच करते ही थे, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हुए से।
0: क्या बात है।
2: तो एक दिन इन्होंने मुझे प्रपोज किया था थोड़ी देर, तो वैसे मुझे भी फीलिंग तो थी इनके लिए, लेकिन मैं मतलब सामने से बोल नहीं पा रही थी।
0: इंतजार था आपको कि भाई कोई पहल करे। अच्छा अलबा जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ आपसे
2: जी,
0: कि आपको ये डिसीजन लेने में किस बात ने मदद की? मतलब इनका आप ही के प्रोफेशन से होना आपको अच्छा लगा? मतलब बाकी सब बातें तो चलिए अपनी जगह है, सोच अच्छी होना, दौर एक दूसरे के लिए बने रहना, ये सारी बातें, लेकिन एक जो होता है ना कि भाई यार ये भी अच्छी बात है कि हम दोनों एक ही प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, या ऐसा कुछ आपने सोचा नहीं?
2: ना ना, मुझे था कि एक ही प्रोफेशनल से हो तो अच्छा है, ऐसा सोचा था।
0: अच्छा,
2: तो फिर जानते हो कि सबके आगे प्रपोज तो किया, लेकिन अभी इस डिसीजन को आगे बढ़ाने के लिए पेरेंट्स का भी तो सपोर्ट चाहिए।
0: राइट, बिल्कुल सही।
2: वो तो ऑब्वियसली सबका पहले बड़ा माइनस प्लस होता है, हमारी फैमिली में भी हुआ।
1: देखिए अल्पा जी, ये मैं इनका कहने का तरीका, ये इनका पूछने का मतलब ये है कि हम जो मिले वो किस प्रकार से मिले, किस प्रोफेशन की वजह से एक दूसरे से मिलना है, तो एक दूसरे के प्रोफेशन का ख्याल रखते हुए मिलना है या फिर और किसी चीज से मिलना है। तो एक बात यहाँ पे संदीप जी मैं बताऊंगा, हर एक को हर एक से कोई ना कोई उम्मीद तो रहती है।
0: जी जी।
1: फॉर एग्जाम्पल अगर अल्पा जी है तो मेरा कैरियर के बारे में मैंने उनसे बात की तो उन्हें भी थोड़ा अंदर से ऐसा एहसास हुआ कि अगर इनके साथ रहे तो थोड़ा बहुत हमें किसी भी प्रकार से गाइडेंस मिलेगा, एज ए प्रोफेशन गाइडेंस मिलेगा, ऐसे आगे कुछ करने को मिलेगा, क्योंकि वो जहाँ पे थे वहां से उन्हें अपॉर्चुनिटी कम थी, इतनी ज्यादा नहीं थी, फिर भी थी। लेकिन लोग तो क्या होता है कि जितनी अपॉर्चुनिटी होती है उससे ज्यादा चाहते हैं। आज मैं भी हूँ या आप भी हो, तो आप भी अपनी अपॉर्चुनिटी से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले ऐसा आप सोचते होंगे, तो इस प्रकार से हर सोचता है
0: जी।
1: तो इसके हिसाब से उन्होंने ये तय किया, लेकिन उनके इरादे गलत नहीं थे।
0: ठीक बात है।
1: मान लो कि मैरिज हो जाने के बाद,
0: सवाल सिर्फ इतना होता है महेंद्र जी कि क्या जी? होता है कि जब सेम प्रोफेशन भी मिल जाता है ना तो निर्णय लेना आसान हो जाता है।
1: आसान होता है। हाँ जी। उनका इरादा गलत ऐसा नहीं था कि चलो आफ्टर मैरिज मान लो कि प्रोफेशन में वो चले ना चले, प्रोफेशन में आगे कुछ डेवलप हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इनकी बात अच्छी लगी मुझे
0: जी।
1: और इनका बिहेव आफ्टर मैरिज, इनका बिहेव ऐसा ही बिहेव रहा जो कि बिफोर मैरिज था।
0: बहुत बढ़िया। तो अभी थोड़ा सा अल्पा जी ने बताया कि कुछ परिवार वाले नाखुश, मतलब थोड़ा सा चिंतित थे, तो वो आपकी तरफ से थे कि इनके यहाँ से थे?
1: देखिए एक काम करो, पहले उनको बोलने का मौका दे, बार-बार मैं तो बोलते रहूं।
0: जी जी जी
2: जी जी। मेरे पेरेंट्स की ना नहीं थी, मतलब हाँ भी नहीं थी और ना भी नहीं थी, डिसीजन वैसे मुझे लेना था। थोड़ा बहुत उनको थी तकलीफ कि प्रोफेशनल इतना कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कि इतनी आमदनी नहीं है, तो फिर आगे जाके आप दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए पेरेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम था।
0: जी,
2: लेकिन पेरेंट्स को समझाया तो वो लोग एग्री हो गए थे। और मेरी मम्मी पापा के साथ मेरे दो सिस्टर है मेरे से बड़ी है, उन लोगों का भी बहुत सपोर्ट मुझे था।
0: जी जी।
2: और मेरे दोनों जिया जी भी बहुत अच्छे हैं, वो लोग का भी सपोर्ट था
0: जी।
2: और इनका तो था ही।
0: बहुत खूब। तो ये एक वजह थी कि मतलब जॉब परमानेंट जॉब नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता होती है, सभी माँ बाप को होती है।
1: हाँ, सेफ्टी तो चाहते हैं।
2: हाँ। और फिर आगे जाके हुआ भी ऐसा कि जॉब तो मिल गई, लेकिन फिर ये कोरोना काल आ गया तो हमारी जॉब चली गई।
1: दूसरी बात एक ये भी थी कि मेरा तो अभी तो ना जाने जो भी तकदीर की बात है, मेरा एक्चुअली में मेरा बाहर रहना बहुत ज्यादा होता
0: जी।
1: जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे उसका ड्यूरेशन लिमिटेशन कम होता गया
0: जी।
1: पहले जब हम लंदन की टूर करते थे ना तो 6-7 महीने हमें आउट ऑफ इंडिया रहना पड़ता था, फिर बात अमेरिका के ऊपर आई तो 2-3 महीने से ज्यादा नहीं होता था। तो ये भी उन्हें ऐसा था कि भाई ये जाएंगे तो ये अकेले ही है तो कहाँ रहेंगे। हालांकि मेरे मम्मी पापा की सोच भी कुछ अलग है, ये लोग मेरे मम्मी पापा ये चाहते हैं कि हमारे गांव में आके रहो।
0: अच्छा।
1: तो मैंने मना इसलिए किया क्योंकि एज ए VI पर्सन
0: जी
1: मेरा डेवलपमेंट अहमदाबाद में हुआ।
0: ठीक बात है।
1: HP मैंने बहुत सारे यहाँ पे किए, बराबर
0: जी।
1: अभी मैं वहां पे, अभी मेरे मम्मी पापा जो है वो भी कच्छ भुज, सुना होगा गांधीधाम।
0: जी जी जी।
1: हमारे गुजरात का कच्छ जो रणोत्सव होता है दिसंबर के बाद, दिसंबर जनवरी को होता है
0: जी जी जी जी,
1: तो वहाँ पे गांधीधाम उनकी प्रॉपर्टीज मकान वगैरह जो भी
0: जी
1: वहाँ पे रहने का उन्होंने मुझे कहा, तो मुझे वो चीज क्योंकि एज ए वीआई पर्सन वहाँ
0: थोड़ा सा लाइफ जो है ग्रामीण परिवेश में मुश्किल हो जाती है ब्लाइंड व्यक्ति की ना,
1: ग्रामीण परिवेश से भी ज्यादा एक्सेसिबिलिटी का इश्यू,
0: एक्सेसिबिलिटी का इश्यू राइट,
1: क्योंकि वहां से घर पे बाहर निकलना फिर जाना आना, और यहाँ पे जो सोर्सेज है वो तो सोर्सेज वहाँ पे थे नहीं और अभी भी नहीं है।
0: अच्छा महेंद्र जी, आप और अल्पा जी कभी विदेश गए साथ कार्यक्रम करने?
2: नहीं,
0: अभी तक नहीं हुआ जाना।
2: लोकल प्रोग्राम बहुत किए हैं, विदेश साथ में नहीं गए, लेकिन मेरा एक सपना तो है वही, वो बाकी है।
0: तो मतलब आप
2: विदेश जाने का ही।
0: आप दोनों अलग अलग गए मतलब?
2: नहीं, मैं विदेश नहीं गई हूँ, मैं यहाँ लोकल प्रोग्राम।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: मैं वीआई का ग्रुप भी तैयार करता हूँ। मेरी आपके वहाँ पे जयपुर में अजीत जैन है ना?
0: हाँ हाँ,
1: शायद आप वो क्या बोलते हैं उनका म्यूजिक 25-26 सालों से उनका म्यूजिक एकेडमी चलता है,
0: अनुराग संगीत तो, संस्थान के नाम से जी।
1: हाँ, अनुराग संगीत। हाँ हाँ, वही तो वहाँ पे मेरा आना जाना, ये अल्पा जी भी वहाँ पे होके आई है। अल्पा जी वहाँ पे साथ में नहीं थे, 2013 में गई थी, 2014
2: स्कूल के साथ गई थी, ये अलग, तब तो नहीं पहचान थी,
1: तब नहीं, हमारी पहचान नहीं थी।
0: अच्छा,
1: लेकिन बात जरूर होती है अनुराग संगीत को लेकर।
0: चलिए, वो तो अच्छी बात है भाई।
1: वहाँ से कलाकार बहुत अच्छे थे, तो वहां से मैंने ग्रुप भी तैयार कर लिया था
0: जी,
1: लेकिन फिर कुछ ऐसी दिक्कत आई, तो फिर अभी वो ऐसे ही पड़ा है।
0: जी जी जी जी जी। तो महेंद्र जी, थोड़ा सा अपन ये बढ़े, उससे पहले मैं चाहूंगा कि दो लाइनें आप दोनों साथ में गुनगुनाएं हमारे श्रोताओं के लिए, क्योंकि अब आप दोनों संगीत से जुड़े हुए हैं, तो आपको
1: गाने की बात है
0: जी,
1: गाने की बात है। हम एक्चुअली में जो बस वही पॉइंट पे मैं धीरे धीरे आने वाला था
0: जी, जी
1: गाने
0: जी,
1: की बात तो आप तो हमारे गाने सुनते रहोगे
0: जी,
1: इन फ्यूचर भी सुनते रहोगे और पास्ट में भी आपने सुने होंगे
0: जी जी जी,
1: फिर भी हम आपका दिल तोड़ेंगे नहीं
0: जी जी जी,
1: लेकिन गाना जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ, अगर म्यूजिक के साथ, साउंड के साथ अगर है
0: जी
1: तो बढ़िया रहता है
0: जी,
1: ऐसा मैं मानता हूँ
0: जी जी जी।
1: तो पहले आपकी जो बात है,
0: हाँ दो लाइन जरा आप जो आप दोनों का पसंद का कोई भी गीत।
1: हाँ, नहीं, वो अपना गाएगी और मैं अपना गाऊंगा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए जी जी जी। तो पहले
1: अल्पा
0: जी जी सुनाइए प्लीज
2: जी, एक लता जी का सॉन्ग सुनाती हूँ, दो लाइन
0: जी जी जी। अल्पा जी, स्वागत है।

हर एक तमन्ना के बदले मैं आज हसरत करता हूँ।

0: तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बहुजो हवास दीवाना।
1: क्या बात है, वाह वाह महेंद्र जी, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त आप दोनों
0: क्योंकि मैं
1: जी।
0: अल्पा जी तो मेरे पास आई तब से ये हिंदी बॉलीवुड के गाने, वैसे पहले गाते थे ऐसा कुछ नहीं, लेकिन
1: जी
0: अभी थोड़ा ज्यादा हो गया है। आगे इनका ट्रेडिशन गुजराती सुगम संगीत है, गुजराती
1: वो
0: सुगम संगीत इनका।
1: उन्होंने कहा भी कि गुजराती लाइट म्यूजिक उनको बहुत पसंद है। जी, बहुत खूब बहुत खूब। तो आप कहीं ये तो नहीं कह रहे कि दो लाइन गुजराती की भी हम सुन लें अल्पा जी से?
0: कुछ भी नहीं, वो मैंने पहले कहा ना, मैं कोई अंडर प्रेशर या तो आउट ऑफ प्रेशर काम नहीं करूंगा। हाँ, रेकमेंड कर सकता हूँ कि भी ये ऐसा काम करते हैं, ऐसा चाहते हैं, ऐसा वैसा करते हैं।
1: जी, अल्पा जी तो सुनेंगे आपसे गुजराती में भी हम दो लाइनें, लेकिन अभी नहीं, जब तक आप सोच करके रखिए। महेंद्र भाई, मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि मेरे पास मतलब कई सारे ऐसे दोस्तों से बातचीत होती रहती है, और कई बार कार्यक्रमों के माध्यम से कई सारे साथियों के प्रश्न भी आते हैं। अभी देखिए, आप दोनों संगीत से जुड़े हुए हैं और एक तरह से स्टेज परफॉर्मर हैं आप दोनों, गवर्नमेंट जॉब नहीं है आप दोनों की, और आप दोनों सबसे महत्वपूर्ण बात कि दोनों ही दृष्टिबाधित भी। अभी होता क्या है कि दृष्टिबाधित जो लड़का है उनकी थोड़ी सी इच्छा होती है कि थोड़ी सी लड़की या तो लो विजन हो या फिर दृष्टिवान हो, और जो दृष्टि बाधित लड़कियां हैं कई बार वहां से भी ऐसा होता है कि थोड़ा सा लो विजन हो। तो आपको क्या लगता है कि लाइफ आपकी क्या मुश्किल लगती है क्या कहीं किसी मामले में आपको इन वजहों से, या नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों को ये सोच बदलनी चाहिए, आपको क्या लगता है?
0: सर, एक्चुअली मैं देखिए,
1: जी
0: आज से जब लुई ब्रेल नहीं थे तो
1: जी
0: ब्लाइंड लोग तभी नहीं थे, ऐसा तो नहीं है ना।
1: जी
0: लुई
1: बिल्कुल
0: ब्रेल
1: है।
0: ने ब्रेल की खोज की तब जाके हम जैसे लोग पढ़े और यहां तक पहुंचे, आप और मैं सभी लोग। ऐसे दूसरे भगवान कौन है ये तो कोई अभी नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, टेक्नोलॉजी
2: जी
0: एक ऐसा भगवान है। पहले तो इसने हमें दृष्टिवान लोगों से जोड़ा, और जोड़ा नहीं चिपकाया, मैं तो चिपकाया बोलता हूँ, एक ऐसा गुंदर लगा के चिपकाया कि कभी भी हम उखड़ नहीं सकते। जैसे कि मैसेज की शुरुआत हुई एसएमएस से, मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, तो एसएमएस से लेकर जूम तक बात पहुंच, जूम है, गूगल मीट तक, फेसबुक तक। सर, साइटेड लोगों के साथ हम सब लोग फेसबुक पे चैटिंग करते हैं ना, तो वो लोग की आंखें चार हो जाती है कि यार तुम लोग इतना काम कर सकते हो। अभी तो हमारे कलाकार लोग फोटो पढ़ते हैं, हम लोग फोटो को पढ़ते हैं,
1: जी जी जी
0: तो
1: जी
0: वो लोग हैरत हो जाते हैं, अरे यार तुम लोग ये सब कैसे कर लेते हो यार, ये वो है। फिर हम समझाते हैं। फिर और दूसरी बात, कि मैंने जब 9-10 में जब बीपीए में ट्रेनिंग की ना, कंप्यूटर की लैब असिस्टेंट था,
1: जी
0: तब विजिटर्स लोग आते, तब मैं समझाता था कि भाई इसमें हमारे सॉफ्टवेयर है, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह करके, ये बोलता है, ये करता है, वो करता है। फिर एक डेमो, और डेमो मेरा दिखाने का तरीका अलग है। मैं किसी को, किसी विजिटर्स को डेमो दिखाता हूँ तो सीधा कंट्रोल पैनल खोलता हूँ
1: जी
0: कंप्यूटर की,
1: जी
0: और दूसरा फॉर्मेटिंग करता हूँ। पहले ना, पहले ऊपर लिखता हूँ माई सेल्फ, एंटर, फिर लिखता हूँ माई नेम इज सो एंड सो, फिर उसको फॉर्मेट करता हूँ, उसे आड़ा टेढ़ा सीधा ऊपर नीचे बीच में सब इटैलिक बोल्ड ये सब
1: जी
0: करता हूँ।
1: जी
0: तो इस तरह से मैं विजिटर्स को डेमो देता हूँ। तो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से अभी हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि हम दोनों दृष्टि बाधित लोग इस दुनिया में नहीं रह सकते, आराम से रह सकते हैं। हमें कहीं जाना है तो ओला उबेर
2: तो है,
0: ऑटो है,
2: और शॉपिंग करने में भी तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं होती, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं,
1: जी
2: तो दिक्कत है घर चलाने के लिए तो,
0: और खाना बनाने में भी दिक्कत नहीं होती है।
2: अब तो कोई भी पैकेट लेके आओ तो वो
0: कोई भी इनविजन आई है, हम तो इनविजन आई यूज करते हैं,
2: वो पढ़ देता है।
1: नहीं तो अल्पा जी कहते हैं कि जैसे चपाती बनाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, आपको लगता है ऐसा?
2: थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन खाना तो हमको ही है,
1: जैसे मुझे कोई कह
2: तो
1: रहा था
2: थोड़ी
1: कि
2: भावन नहीं बनती, बात नहीं, लेकिन
1: अच्छा
2: बनती तो है, खाने में अच्छी लगनी चाहिए,
0: बस
2: कच्ची नहीं होनी
1: कच्ची
2: चाहिए,
1: नहीं होनी
2: ये
1: चाहिए।
2: शेप में कोई बात नहीं, अच्छी आती है
1: जी
2: मतलब
1: जी
2: आनी चाहिए, लेकिन
1: जी
2: अच्छी तरह से
0: देखिए सर,
2: प्रैक्टिस
0: इसमें
2: करें
0: ना
2: तो आ भी
0: प्रैक्टिस,
2: जाती है, वो भी ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये चलाते हैं तो चल जाता है ऐसा है।
0: नहीं नहीं ऐसा नहीं, देखिए हस्बैंड वाइफ में इन सभी चीजों को लेकर नोकझोंक कभी भी नहीं होनी चाहिए।
1: नहीं
0: सुनने वालों से मेरी ये दरख्वास्त है कि आपकी वाइफ, ये तो नॉर्मल में भी होता है,
1: जी जी जी,
0: आज नमक क्यों कम पड़ा, आज मिर्ची ज्यादा क्यों पड़ी, आज ये बराबर नहीं बना, मैं नहीं खाऊंगा, तुझे बनाना नहीं आता, तू क्या करती इतना दिन, ये सब चीजें गलत है।
1: जी जी,
0: अभी कॉम्प्रोमाइज को कोई जहर तो नहीं देता है ना, ये मुझे बताओ। चल
1: सही बात है,
0: आज खाना अच्छा नहीं, आज खाना अच्छा नहीं बना
1: जी,
0: तो किस जहर डाल दिया,
1: नहीं
0: आपको बुखार आया, आपके पाँव में दर्द हुआ, आपके पेट में दर्द हुआ, बस तो फिर खाना खा लिया। देखिए भगवान हमें खाना देता है
1: जी।
0: मैं तो इनको ये बोलता हूँ कि अपने ये हमारी गाय माता है, हमारे बाहर डॉग्स है, उनको खाना खिलाओ बार, लेकिन खाना फेंको मत।
1: सही बात,
0: कोई बात नहीं, अगर पड़ा रहा तो मैं दूसरे दिन खा लूंगा, क्योंकि कितनी मुश्किल से खाना मिलता है साहब, ये तो जिनको मिल जो करता है ना उनको पता चलता है,
1: उनको पता चलता है। ठीक बात,
0: हाँ तो अपने आदमी के साथ ऐसा थोड़ी कोई करता है। हाँ उनसे रोटियां कच्ची नहीं बनती है, अभी शेफ कोई भी हो, उनका स्वाद जो है वो प्रॉपर आता है, बस खत्म हो गई बात,
1: खत्म हो गई।
0: और देखिए हर एक चीज में हर एक लोग को हर एक प्रकार का कॉम्प्रोमाइज तो करना मस्ट भी।
1: महेंद्र भाई आपको कौन सी डिश सबसे अच्छी लगती है अल्पा जी की बनाई हुई?
0: देखिए बहुत पंजाबी खाने बहुत अच्छा बनाती है, पंजाबी बनाती है।
1: क्या
0: फिर
1: बात
0: है। और देखिए सर मेरा कैसा है बताए, बचपन में मैंने इतना सारा गलती से बहुत खा लिया है तो अभी मुझे खाने में इतनी खास रुचि नहीं है। नहीं हमारे हमारे दादा दादी नाना नानी मेरे फूफा फूफी वगैरह वो लोग मुझे बहुत प्यार करते थे, हालांकि आज इस दुनिया में इनमें से कोई नहीं है। मैं एक बार से मेरे पेरेंट्स से ज्यादा इन लोगों ने मुझे संभाला है, मेरे अंकल आंटी सब, लेकिन अभी कोई नहीं है, सब भगवान के पास, तो इन्होंने मुझे सही में इतना खिलाया है, इतना खिलाया कि अभी मुझे किसी भी खाने की वो भूख नहीं रही। हाँ मैं खाता हूँ लेकिन वो बस खाने के खाता हूँ, मुझे ऐसी भूख, अरे यार ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, मुझे बस अच्छा सब्जी रोटी मिल जाए मेरे लिए वो फिस्ट के बराबर।
1: महेंद्र जी एक बात बताएं, जब से आप समझदार हुए हैं तो शादी के बारे में, मतलब ऐसा तो नहीं है कि भाई पहले से आपको भी ये पता था कि भाई कहीं पे अल्पा जी मिल जाएंगी किसी मोड़ पर और प्यार हो जाएगा, शादी हो जाएगी, लेकिन कुछ तो सोचा होगा आपने भी कि यार मैं स्टेज परफॉर्मर हूँ, जैसे आप कलाकारों को हम देखते हैं।
0: बहुत अच्छा सवाल है
1: जी,
0: मैंने शादी के बारे में मैं जब 10th में पढ़ता था तब से सोच लिया था
1: जी जी,
0: लेकिन मैंने सोचा एक ही चीज था
1: जी
0: कि लाइफ पार्टनर अंडरस्टैंडिंग वाली होनी चाहिए बस।
1: आपने ब्लाइंड साइटेड वगैरह ऐसा कुछ नहीं सोचा था?
0: वो बात की बात है,
1: नहीं
0: वो बात नहीं, तब पहले था टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब थोड़ा था कि भाई थोड़ा बहुत कोई देख सके, तो क्या है कि अपना थोड़ा काम, क्योंकि अपना काम ऐसा है सर, अपना काम कैसा है, स्टेज के ऊपर जाना, अच्छे कपड़े पहना, अभी कपड़े संभाल लो कि एक सूट पहना है बराबर है, अभी कल के प्रोग्राम में गलती से कोई चीज सूट के ऊपर गिर गई और वही सूट आज पहनना है
1: जी।
0: तो अगर कोई थोड़ा बहुत दृष्टिवान होगा तो हमें, अगर नहीं होगा तो हमारे ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हमारा माइनस पॉइंट हो जाएगा
1: जी, जी।
0: तो पहले मुझे ये सब थोड़ा बहुत था, लेकिन वक्त के जाते जाते जाते जाते फिर टेक्नोलॉजी जब आई तब फिर मेरा ये सब कुछ हट गया।
1: मेरा प्रश्न ये था दरअसल कि जैसे आप तो स्टेज पर प्रोग्राम देना और यही सब आपका काम था, है ना, तो एक होता है ना यार जैसे हमारे बाकी कलाकारों को होता है कि कभी कोई उनको मिल रहा है, कभी कोई उनसे प्रभावित हो रहा है, कभी उनको पसंद कर रहा है, कभी ऐसा सोचा होगा आपने भी या नहीं सोचा पता नहीं, आप ही बता सकते हैं कि भैया मुझे भी यार कोई मेरे कार्यक्रम को देख करके, मेरी प्रस्तुतियों को देख करके कोई लाइक करे, पसंद करे और सामने से कोई मेरे को प्रपोज करे।
0: अभी ये टॉपिक थोड़ा ऐसा है, बचपन से मुझे एक चीज का शौक था
1: जी जी,
0: म्यूजिक कंपोज करने का
1: जी,
0: हालांकि वो इंटरेस्ट मेरा अभी पूरा होने जा रहा है
1: जी।
0: तब मैं सोचता था कि मेरी लाइफ पार्टनर ऐसी हो कि उनको मैं गाना सिखाऊं, फिर उसका रिकॉर्डिंग हो और रिकॉर्डिंग करूं और उनका गाना रिलीज हो
1: जी।
0: मेरी सोच थोड़ी अलग है, ऐसा मैंने नहीं सोचा कि मेरे शो में कोई मुझे देखकर मुझे पसंद करे
1: जी, जी, जी।
0: लेकिन मैं ऐसा चाहता था कि मैं ऐसी कोई लड़की या कोई भी को पसंद करूं लड़की को कि मेरे म्यूजिक के ऊपर मुझे कॉपरेट करे
1: जी। बहुत
2: गलत बात नहीं है,
1: क्योंकि आपकी जो वास्तविक क्रिएटिविटी थी वो मुझे लगता है बाहर आई। क्यों अल्पा जी आपको क्या लगता है?
2: जी जी जी वही टाइम हम दोनों की जब जॉब नहीं रही तब हम दोनों ने म्यूजिक पे बहुत वर्क किया दोनों ने एक साथ.
0: पहले तो हम दोनों बहुत सोच में पड़ गए कि अभी स्टेज शो भी नहीं है, स्कूल की जॉब भी बंद हो गई है, अभी आने वाले के टाइम का कोई ठिकाना नहीं, अब हम क्या करेंगे. क्योंकि जॉब देखिए मैंने भी 12th पास किया है, इन्होंने भी 12th पास किया है, मैंने भी शरद किया, इन्होंने भी शरद किया, लेकिन अभी ये सब चीज कोई काम की थोड़ी देर के लिए नहीं है ऐसा हमें लग गया. फिर सोचते सोचते फिर एक मेरा दोस्त है अयास कुरैशी करके
1: जी,
0: उनसे मेरी बात हुई है. वो भी ब्लाइंड है, हमारे नवरंगपुरा स्कूल में पढ़ते हैं, हालांकि मुझसे छोटा है. तो उन्होंने मुझे एक ग्रुप से पहचान कराई जो कि ऑस्ट्रेलिया से फुरकान सर ऑपरेट कर रहे हैं. वो भी ब्लाइंड है और वो वेब डिजाइनर हैं, ऑस्ट्रेलिया में है. हालांकि वो पाकिस्तान से है लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो चुके हैं. उनका एक ग्रुप चलता है एक्सेसिबल म्यूजिक प्रोडक्शन, उसमें मैं ज्वाइंट हुआ और आज की तारीख में मेरा 6 महीना हुआ, आज उस ग्रुप में सबसे फर्स्ट मेरा नंबर है. जब भी कोई प्रस्तुति करता हूँ तो मेरी प्रस्तुति में वो बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि सबसे अच्छी प्रस्तुति आपकी होती है.
1: बहुत cool. जी.
0: तो बस वही मैं एक्सेसिबल म्यूजिक जो कि रिपर से मैं काम करता हूँ.
1: महेंद्र भाई आपने बार बार, मैं वही पूछने वाला हूँ, अब बार बार आपने टेक्नोलॉजी पर बहुत जोर दिया आपकी पूरी बातचीत में.
0: हाँ जी.
1: तो अब थोड़ा सा उस बारे में आप बताएं कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा है आपके जीवन में. और
0: हाँ मैं बताऊंगा, पहले अल्पा जी से आप कुछ पूछ लो कि वाक्या कि सुनने वालों को ऐसा ना लगे कि ये अकेला ही बोले जा रहा है, उनको बोलने नहीं देता है.
1: सुनने वाले कहेंगे कि वो अगर उनसे हम कुछ पूछेंगे भी तो आपकी आवाज बीच में जरूर आएगी. और यही यही मजा है महेंद्र जी, यही मजा है लाइव का. दरअसल यही आप उनको समझते हैं, वो आपको समझती हैं, ये मुझे लगता है कि जिंदगी की असली जो है ना प्यार यही है.
0: 90 का जब दौर था
1: जी,
0: तब उदित नारायण जी, कुमार सानू जी, सोनू निगम जी, अनुराधा पौडवाल जी, अलका याग्निक जी के गाने आते थे.
1: बिल्कुल आते थे जी.
0: उन्हें सुनता था तब मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग जो गाने बनाते हैं ऐसा गाना मैं क्यों नहीं बना सकता.
1: क्या बात है.
0: फिर मैंने जब मैं प्रोफेशन में आया तब मैंने सोचा और मैंने लोगों से बात भी की तो लोगों ने मुझे गाइड किया कि भाई इसमें तो इतने म्यूजिशियंस चाहिए, इतना पैसा चाहिए. तो मैंने बोला यार इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है. फिर मैंने धीरे धीरे जाके 2003 में कीबोर्ड परचेस किया, N364 करके, 50,000 का कीबोर्ड था.
1: अच्छा.
0: उसमें मुझे सीक्वेंस मिला एक दोस्त के गाइड के. अच्छा वो उसमें कुछ टॉकबॉक नहीं था उसमें, तो पहले जैसे कि कैसे 3315 मोबाइल ऑपरेट करते थे, 3310 अपने कीपैड वाले फोन,
1: बिल्कुल बिल्कुल पुराने जमाने में.
0: ये की को इतनी बार दबाओ तो मैसेज खुलेगा
1: जी.
0: ये की को इतनी बार बजाओ दबाओ तो कॉन्टेक्ट खुलेगा
1: जी, जी,
0: ये
1: जी.
0: सब मैंने N364 पे पूरा उसका की मैप माइंड में कर लिया
1: जी.
0: तो मैंने साइटेड को मेरे साथ बिठा कर मैंने पूरा मैप तैयार किया माइंड में कि ये इतनी की है, उसमें से ये की को इतनी बार प्रेस करने से ये होता है वो होता है करके 6 महीना तक मैंने वर्क किया. एक छोटा गुजराती एल्बम भी बनाया हमारे गुजरात के एक कलाकार हैं बाबू सोलंकी करके
1: जी, जी, जी.
0: हालांकि वो एल्बम का तो अभी कुछ नहीं है मेरे पास, वो मेरी बदनसीब भी कहूंगा.
1: अच्छा, अच्छा.
0: मैंने बनाया फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक एल्बम गरबे का एल्बम किया था जिसमें 25 गरबे थे और नॉनस्टॉप 2-2 मिनट के
1: जी, जी.
0: तो इस तरह से मेरा जो शौक है
1: जी
0: वो इस तरह से सेटिस्फाइज हुआ, मैं इससे सेटिस्फाइज हुआ
1: जी.
0: फिर धीरे धीरे जाते जाते फिर ये तो यार फिर देखिए हर एक चीज में प्लस माइनस तो होते हैं
1: जी.
0: तो इसमें इतना थ्रो नहीं आता था जितना स्टूडियो क्वालिटी में थ्रो आता है
1: जी.
0: तो उसके लिए मुझे बहुत इंतजार करना पड़ा, बहुत यानी कि बहुत इंतजार करना पड़ा. और वो इंतजार अभी मैंने 2019 में 2020 में
1: जी
0: वो इंतजार पूरा. तो अभी मैं जो भी काम करता हूँ, अभी तो मेरे पास एक सिंगर है अल्पा
1: जी,
0: उसको मैं गाना गवाता हूँ
1: जी.
0: आगे तो क्या होगा वो हमारा ऑनलाइन स्टूडियो टेक्नोलॉजी का, उसमें हम किसी को जूम पे या फोन पे यहाँ से रिदम देंगे
1: जी,
0: लूप देंगे उसके ऊपर, लूप यानी कि रिदम हाँ
1: जी,
0: उसके ऊपर उनको गाना सिखाएंगे
1: जी.
0: उनके पास एक मोबाइल रखना है उनका
1: जी,
0: और रिकॉर्डिंग बंद नहीं करना है, रिकॉर्डिंग चालू करना है, चाहे वो 25 बार 100 बार क्यों नहीं गाता है, उन्हें रिकॉर्डिंग बंद नहीं करना है
1: जी.
0: फिर जब वो गाना कंप्लीट हो जाए तो उसी फॉर्मेट में सीधा हमें सेंड करें. फिर यहाँ पे कंप्यूटर में यहाँ पर मैं उसे फिल्टरिंग भी करूंगा, एडिट भी करूंगा, इफेक्ट भी डालूंगा, सब कुछ करूंगा. तो टेक्नोलॉजी का मेरे जीवन में सबसे बड़ा रोल तो ये कि मैं अपने आप रह सकता हूँ
1: जी जी
0: अपने आप आत्मनिर्भर, जो भी मोदी साहब का ऐलान है
1: जी जी जी,
0: आत्मनिर्भर मैं हूँ टेक्नोलॉजी के कारण। अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम हैंडीकैप तो है ही ज्यादा हो जाएंगे।
1: बहुत खूब।
0: हाँ, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, वो मैं मानता हूँ, लेकिन क्या करें, अभी उसके अलावा कोई गुजारा भी नहीं है,
1: कोई विकल्प भी नहीं है। ठीक बात,
0: विकल्प नहीं है। यस हाँ,
1: और आप तो बहुत सारे जो साइटेड लोग हैं उन्हें भी मुझे लगता है कि उनका भी काम करते होंगे, हेल्प करते होंगे, तो ये एक तरह से समावेशी जो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट है वो भी डेवलप करने में मदद मिलती है इस सब।
0: हमारे सभी आर्ट, मोस्ट ऑफ अहमदाबाद के आर्टिस्ट जो कि ऑक्टोपेड प्लेयर है ना
1: जी,
0: उनको किसी भी गाने के लूप चाहिए, लूप नॉट ट्रैक, लूप, और लूप मैं उन्हें प्रोवाइड करता हूँ।
1: क्या बात,
0: एज ए वीआई पर्सन।
1: वाह, बहुत खूब जी। तो अल्पा जी,
2: जी
1: अभी वैसे तो आपने बताया कि कोई मुश्किल है नहीं जीवन में, फिर भी अहमदाबाद जैसे शहर में आप लोग रहते हैं, तो आती है कोई कठिनाई कभी, और अगर आती है तो फिर कैसे मदद मिलती है, कौन मदद करते हैं, क्या होता है?
2: देखिए, हम जहाँ अभी रहते हैं वो मैं जब छोटी थी तब मैंने बताया ना, मैं अहमदाबाद में भी पढ़ी हूँ, यहाँ की एक बैंक गर्ल्स स्कूल है नगर
1: जी,
2: वहाँ मैं पढ़ी हूँ। तो मुझे ना पहले से फैमिली ज्यादा है, तो मैं हॉस्टल में रहती नहीं थी। तो हम जहाँ पे अभी रह रहे हैं हम दोनों, वो मेरे मामा जी का घर, मतलब मेरे मामा भी नहीं है, मेरे मम्मी के मामा का घर।
1: ओके ओके ओके।
2: तो मैं छोटी थी तब उनके पास ही रहती थी, फिर वो लोगों का भी दूसरा मकान है अभी, वो लोग वहाँ पे रहते, और हम दोनों तो यहाँ पे वो उनका पुराना मकान जो है वो मकान में हम दोनों रहते।
1: जी।
2: तो मैं छोटी थी तब यहाँ रहती थी, तो आजू बाजू वाले हमारे जो नेबर्स है वो भी मुझे पहचानते हैं
1: जी,
2: तो उनका भी बहुत सपोर्ट मिल जाता है। हालांकि हम तो बाहर से अपने आप भी ये बाहर जाते हैं, कभी घर के लिए शॉपिंग करके लाते, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी कोरोना काल है, लॉकडाउन चल रहा है, तो मेरे नेबर्स भी बहुत हेल्पफुल है
1: जी,
2: तो वो अभी चीजें सब प्रोवाइड कर देते हैं ऐसा।
0: और संदीप जी, आपने बताया कि आपको किस कठिनाई का सामना पड़ा, जब से हम हमारी जॉब बंद हो गई तब मैंने जैसे आपको बताया,
2: हाँ, हम दूसरी जगह पे रहते हाँ, थे,
0: तो वहाँ पे रेंट ज्यादा था, हाँ, काम नहीं था, और वहाँ पे हमको कोई जानता नहीं था, तो हमको रेंट देना,
2: मकान भी बहुत छोटा था, हाँ, तो हमारा एक काम था कि हमें ऑन रिकॉर्डिंग स्टूडियो स्टार्ट करना है, तो फिर उसके लिए भी सब जगह कम पड़ती थी वहाँ पे,
0: बिल्कुल।
2: और ये मामा जी का मकान है तो ये बड़ा है, तो उन्होंने बोला कि हमारा मकान वैसे भी ऐसे खाली पड़ा है, तो आप लोग आ जाओ अभी,
0: हालांकि उन्होंने पहले ही बताया था लेकिन हमने मना किया,
2: हाँ।
0: जब हमारी जॉब लगी ना यहाँ पे त्रिपदा स्कूल में
1: जी जी,
0: पिछले 1.5 साल के पहले, तब जब जॉब लगी तो इनके पापा, मेरे फादर इन लॉ, आए थे सब कुछ सेटअप करने के लिए, तब हमारे ये मामा जी जो है निरंजन भाई मेहता जो है, उनके घर ही आना जाना ज्यादा रहता था, तो उन्होंने तभी, निरंजन मामा ने तभी भी कहा था हमें कि भाई हमारा एक मकान है अगर आप चाहो तो, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, और हर ब्लाइंड का प्रॉब्लम ये होता है कि नीचे का मकान
2: ग्राउंड फ्लोर नहीं चाहिए, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे वो तो अच्छा है
1: जी जी जी जी जी,
2: ये सोच हमारी थी,
0: आज भी है
1: इसकी कोई खास, इसकी कोई खास वजह,
0: ये अल्पा जी कहेंगी, मैं तो कहूंगा लेकिन मैं बहुत बोल चुका
1: हूँ, इसकी कोई खास वजह,
2: खास वजह ये होती है कि जब मौसम का टाइम होता है तो ऐसा रहता है कि पानी कहीं से आ जाएगा घर में, और बाहर जो होता है तो डॉग वॉग आ जाते हैं भाई, छोटा मोटा प्रॉब्लम,
1: मॉस्किटोस वगैरह भी वो ग्राउंड फ्लोर पे थोड़े ज्यादा
2: है, ग्राउंड फ्लोर पे ज्यादा रहता है, डर लगता है, ऊपर का मकान हो तो क्या, एक डोर बंद कर लो तो पूरा घर बंद हो जाता है, सेफ रहते हम, सेफ मानते हैं ऊपर के मकान।
1: ठीक बात है।
0: दूसरा, खिड़कियों में जाली लगा देते हैं हम लोग, और हर ब्लाइंड को ये करना चाहिए संदीप जी, जो भी वीआई पर्सन है, अकेले रहते हैं विदाउट साइटेड
1: जी,
0: तो उन्हें अपनी खिड़की में एक ऐसी छोटी जाली आती है नेट, वो लगा देनी चाहिए, ताकि बाहर की रोशनी भी आए
1: जी,
0: और हवा की भी आउट इन हो रहे, और अच्छा भी लगे और सेफ रहे, तो बिल्ली है भी, छोटा कोई ऐसा मॉस्किटोस है, कोई अंदर आ ना पाए
1: जी।
0: ये हर एक वीआई को रखना चाहिए,
1: हालांकि
0: हम तो रखते ही
2: हमने
0: लगा दिया यहाँ पे।
1: बहुत बहुत जबरदस्त। तो
0: हमारी खिड़कियां भी, हमारी खिड़कियां भी अच्छी तरह से खुली रहती है और दरवाजे पे भी कोई इश्यू नहीं है और आराम से रहते हैं हम लोग।
1: तो अब लगभग कार्यक्रम के बिल्कुल आखिर में हम लोग आ गए हैं। महेंद्र भाई एक बात चलते चलते मैं पूछना चाहूंगा, पूरी बातचीत में आपने आपके माता पिता और आपकी जो फैमिली है उसका जिक्र थोड़ा कम किया है, तो खास वजह?
0: नहीं, वजह कुछ नहीं है। वो लोग जो चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते और हम चाहते हैं वो लोग नहीं कर पाते। तो
1: अभी अल्पा जी से उनका परिचय हुआ या नहीं हुआ?
0: नहीं हुआ ना।
1: आपके मम्मी पापा? अच्छा
0: हुआ हुआ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा। तो
0: साल में एक दो बार आना जाना रहता है बस, ज्यादा नहीं।
2: फोन पे बातचीत हो जाती है,
1: फोन पे बातचीत
2: रहते नहीं है ना, मतलब गांधीधाम में रहते हैं ना, तो साल में एक बार मिलना होता है।
1: बहुत खूब जी। अल्पा जी तो चलते चलते गुजराती लाइट म्यूजिक हो जाए।
2: जी ओके, तो एक गुजराती सुगम गीत सुना देती हूँ, दो लाइन। वैसे तो विदाउट म्यूजिक गाने की ज्यादा हैबिट
1: नहीं है,
0: रिकॉर्डिंग क्लब में इन फ्यूचर इनके बहुत सारे सारे गाने आने वाले हैं।
1: क्या बात है, वाह बहुत खूब बहुत खूब।
0: इनके भी आएंगे, मेरे भी आएंगे, सबके आएंगे,
2: के साथ में भी आएंगे।
1: और हम तो सोचते हैं कि कभी एक लाइव ऑनलाइन शो करें आप दोनों के साथ। जी
0: हाँ, करो करो, हम तैयार हैं।
1: जी जी जी जी।
2: एक गुजराती सुगम गीत
1: जी।

0: जा तक कहे छे मारू चौमासु क्यों आस पास छे।
1: बहुत खूब। तो
2: ये गाना आपको फुल म्यूजिक अरेंजमेंट के साथ इन फ्यूचर जरूर।
1: क्या इसका अर्थ अगर हम
0: ये गाने से ही ज्यादा हम दोनों एक दूसरे के करीब आए थे।
1: अरे क्या बात है। तो इसका अर्थ क्या है इस गाने का अगर
0: इस गाने का अर्थ आंखों में बैठेला चातक,
2: जो चातक होते हैं ना
1: आंखों में बैठे हुए
2: चातक, आप चातक को तो जानते हैं कि वो पानी की बूंद को तरसते हैं।
1: यानी
2: बारिश में पानी, बारिश होती है तभी वो पानी पीते, बाकी नहीं पीते।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: वो कहते हैं कि मेरी बारिश कहीं आसपास है,
0: मतलब मानसून अभी आने वाला है।
1: आने वाला है बिल्कुल। मानसून की वैसे भविष्यवाणी भी हो गई है।
2: और
0: मौसम भी है वैसे, मौसम भी अहमदाबाद में थोड़ा ऐसा ही है।
1: ऐसा ही है।
2: ये जो गाना है ना, ये गाना है वो एक जो पोएट है कवि जिसे बोलते हैं बराबर, उसकी ये कल्पना है कि आंखों में जो आंसू होते हैं ना उन्हें वो एक चातक की नजर से उन्होंने देखा है। आंखों में बैठे हुए चातक कहते हैं कि मेरी बारिश आसपास है। वो चातक जो आंख में से पानी निकलने का इंतजार करती है।
1: अच्छा,
2: वो कवि की कल्पना है।
1: जी बहुत खूब। अच्छा, एक हमारी पसंद से भी आप सुना सकते हैं दो लाइनें गुजराती।
2: बोलो
0: बोलो।
2: ओ बाप रे। बोलो
0: दिकरी।
2: बोलो।
0: जानते होंगे तो सुना देंगे एक दो लाइन।
1: दिकरी तो पार की थापण कहवाए।
0: ओके,
1: ये मेरा बड़ा फेवरेट मेरा।
2: हाँ हाँ हाँ।
0: ओके ओके
1: जी।

0: संदीप जी, ये गाना मैं आपको इन फ्यूचर पूरा म्यूजिक के साथ इनकी आवाज में,
1: क्या बात,
0: और बतौर फीलिंग्स,
1: जी जी जी,
0: पूरी फीलिंग्स के साथ,
1: बहुत मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा।
0: मैं आपको रिकॉर्डिंग क्लब में इस गाने को

0: दिक्कत हुई है, उनको नुकसान हुआ है, तो कभी आपको भी अवसर मिले तो वैसे आप करते होंगे मैं ये मान करके चलता हूँ, लेकिन हमारे दृष्टिबाधित साथियों को मंच जरूर आप दिलवाइएगा ताकि आपकी आपके संपर्क की बदौलत उन लोगों का भी कुछ उनकी भी मदद हो जाए।
1: सर जरूर ये बात है, लेकिन मैं एक ही अपील करूंगा हर लोगों से।
0: जी जी जी,
1: फॉलो क्राइटेरिया।
0: बिल्कुल निश्चित रूप से
1: फॉलो क्राइटेरिया, बस
0: निश्चित रूप से।
1: ये आप देखिए हमारे, सुनिए हमारे वीआई का एक जो दिक्कत है थोड़ी, हम ऐसा नहीं बोल रहे माइनस पॉइंट नहीं कहेंगे, लेकिन कम समझ है कि वो सामने वाले के क्राइटेरिया को नहीं समझते हैं।
0: जी जी जी,
1: अब अभी देखो मैं, हम जहाँ पे काम करते हैं
0: जी,
1: उनको क्या चाहिए वो पहले हमें समझना पड़ेगा। हम अपना ही चलाएंगे तो नहीं चलेगा
0: जी,
1: हम अपना ही गाना गाएंगे तो नहीं चले। हाँ आप गाना गाओ, लेकिन उनके क्राइटेरिया को फॉलो करो।
0: दोनों तरफा, दो तरफा काम होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए जो हाँ, कहना चाह रहे हैं राइट।
1: दोनों तरफा तो होते हैं, जैसे कि मैं मेरी बात करूं तो मैं कई ऑर्केस्ट्रा में जब नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल में गाना गाने के लिए जाता हूँ तो पहले मैं वो देखता हूँ कि वो कैसे कलाकारों को वो गवाना है, वो मुझे देखना पड़े, फिर उस प्रकार से हमारी गायकी होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं, एटीट्यूड वाली बात नहीं है, ये समझदारी वाली बात है
0: बहुत,
1: कि मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि क्राइटेरिया अगर फॉलो करोगे तो कोई ब्लाइंड भी नहीं है, कोई साइटेड भी नहीं, सब एक सरीखे है, लेकिन क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़े बस। वो करते हैं जो लोग करते हैं, फिर भी मैं जरूर कोशिश करूंगा।
0: क्या बात है, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हम
0: बहुत
1: रिकॉर्डिंग क्लब में भी कोई कलाकार होगा तो हम उन्हें चांस भी देंगे।
0: अल्पा जी चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सभी सुनने वालों के लिए?
2: मेरा संदेश यही है कि जो भी काम करो तो अच्छे से करो, मेहनत से करो और हिम्मत मत हारो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
0: और महेंद्र भाई आप भी हमारे सुनने वालों को क्या संदेश देंगे?
1: बस मैं तो हर एक जगह पे हर एक लोगों को एक ही बात कहता हूँ, अगर आपके दिल में विश्वास होगा तो आप कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा।
0: जी जी जी,
1: आज तक मैं विश्वास की उम्मीद से ही आगे बढ़ा हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ।
0: बहुत बढ़िया, तो महेंद्र जी अल्पा जी आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी हमारे साथ बातें करने के लिए।
1: इट्स ऑल ड्यूटी।
0: जी जी जी,
1: और रेडियो मधुबन का बहुत बहुत शुक्रिया, हम रेडियो मधुबन को भी फॉलो करने की कोशिश करेंगे आज से, आपकी चैनल भी अगर होगी तो सब्सक्राइब करेंगे
0: निश्चित रूप से,
1: उसमें कैसे कैसे कार्यक्रम आते हैं वो भी देखेंगे, कमेंट्स करेंगे, रिव्यूज देंगे, फीडबैक्स देंगे,
0: जी जी
1: सब कुछ करेंगे।
0: तो श्रोताओं ये आज का हमारा ही कार्यक्रम, उम्मीद है आप सबको जरूर पसंद आएगा और आपकी प्रतिक्रियाएं 9414-1415 पर जरूर दीजिएगा। info@radiomadhuban.in पर आप मेल करें और गूगल प्ले स्टोर से आप रेडियो मधुबन ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं श्रोताओं अगले रविवार फिर किसी और नई हमराही जोड़ी के साथ।
3: ओम शांति। वेलकम टू मास्टर्स ऑफ चेंज। द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ ऑल टाइम इज दैट अ पर्सन कैन चेंज हिज फ्यूचर बाय मियरली चेंजिंग हिज एटीट्यूड। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, Brother Matthias from Switzerland. He has been a headmaster and is now a practicing stress and resilience coach. He has also been a spiritual teacher and has been meditating for over 20 years now. We will hear from Brother now. Thank you so much for being here. We welcome you on the show.
4: Thank you.
3: So Brother Matthias, I understand from your bio that you've had a couple of roles in life as a headmaster, a coach, a spiritual teacher. But how did this begin? How did your journey start? How did you get on to this path of spirituality?
4: Yes. Yeah, so there was a special day in my life where my life took a completely different course. I just finished my university, I had my first jobs, and actually everything seemed to be very well. Good job, many friends, and Switzerland anyway is a very nice country. But I noticed for quite some time, maybe a year or two, that my happiness was slowly fading away. But I had no idea what the reason could be for that. And also I would not even talk with others about it.
3: Okay.
4: So others noticed a bit of a change. But I was a little bit hopeless.

ओम शांति। आज 13 अगस्त 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तकदीर कैसे जगती है? तकदीर जगती है जब हम पतित पावन बाप को याद कर पावन बनते हैं। बाबा कहते, जब तुम पावन बनते हो तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। इसलिए सतयुग में भी देवी देवताओं के गृहस्थ आश्रम कहते हैं, परंतु जब पतित बनते हैं तो गृहस्थ धर्म कहा जाता है, गृहस्थ आश्रम नहीं कहेंगे। आश्रम पवित्रता की धारणा के आधार से कहा जाता, लेकिन पतित बनने पर गृहस्थ धर्म निभा रहे। तो इसीलिए यह सूक्ष्म बात आज बाबा ने बहुत सुंदर बताई है। दूसरा, बाबा कहते हैं कि जब तुम तकदीरवान बनते हो तो तुम्हारी बुद्धि पलटने लगती है। ज्ञान सागर बाप आकर के जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को धारण करने से बुद्धि पारस बुद्धि बनने लगती है। तो जिसकी पारस बुद्धि है, ऐसे पारसनाथ पारसनाथिनी का भी यादगार है, उसको तकदीरवान कहेंगे। साथ ही साथ बाबा कहते हैं कि जो तकदीरवान है वो सबको सुख देते हैं। तुम व्यास के बच्चे सच्चे सच्चे सुखदेव हो, तो तुम सबको सुख देना आरंभ करते हो। कभी किसी को मन वचन कर्म से दुख नहीं देते, उसको कहते हैं तकदीरवान बच्चे। ऐसे बाबा ने आज की मुरली में अनेक ऐसी सुंदर निशानियां बताई हैं, जिससे हम स्वयं को भी देख सकते हैं हम कहां तक तकदीरवान बने। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारे तकदीर जगाने। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। आज की मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे सुख के देवता होंगे। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे, कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वह है व्यास के बच्चे सच्चे सच्चे सुखदेव। दूसरी निशानी, वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी राज ऋषि कहलाते हैं। और तीसरी निशानी, उनकी अवस्था एक रस रहती है, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता, उनके लिए ही कहते हैं मोह जीत। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। गीत की एक लाइन सुन करके भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में तकदीर जगी हुई रहती है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है, बच्चा जन्मा और उनको ये पता चल जाता है कि हम वारिस है। हूबहू ये बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं
कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और सो जाती है, कल्प कल्प जगती है फिर सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। तो पहला आधार तकदीर जगाने का पावन बनना यानी पवित्रता। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम, उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे। बहुत सूक्ष्म बात यहां बाबा समझाते हैं कि जब पवित्र है तो गृहस्थ आश्रम है, जब पतित है अपवित्र है तो गृहस्थ धर्म कहा जाता है। तो बाबा कहते आश्रम नहीं कहेंगे, गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवरों का भी है। बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे, उनकी महिमा भी गाते हैं, सर्व गुण संपन्न सोले कला संपूर्ण। तुम खुद भी गाते थे बाबा के, तुम खुद भी तो गाते थे। अभी समझते हो हम मनुष्य से सो देवता फिर से बन रहे हैं, देवी देवताओं का धर्म है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं, ब्रह्मा देवताएं नमः, विष्णु देवताएं नमः, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माएं नमः। तो फर्क हुआ ना, शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते, पत्थर बुद्धि थे अब पारस बुद्धि बन रहे हैं, देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। बाबा कहते देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य होने से उन्होंने को भी सीढ़ी उतरनी है, देवताओं को भी सीढ़ी उतरनी, पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिमान बनाने वाला तो एक ही बाप है, तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं, तुम यहां आते हो पारस बुद्धि बनने। तो पारस बुद्धि माना तकदीर जगी हुई। पारसनाथ के भी मंदिर है, वहां मेला लगता है, परंतु ये किसको भी पता नहीं है पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है, वह है बुद्धिवानों की बुद्धि, यह है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। बुद्धि कितना पलटती है, ज्ञान है बुद्धि के लिए खुराक, और जिस ज्ञान के माध्यम से हमारी बुद्धि पलटती है तो तकदीर जगती है। जैसे गाया जाता है सीनो इविल हियर नो इविल टॉक नो इविल, अब बंदरों की तो बात नहीं है, मनुष्य ही जैसे बंदर मिसल बन जाते हैं। एप्स अर्थात वन मानुष की मनुष्य से भेंट की जाती है, वन मानव कहते हैं ना उसको अंग्रेजी में कहते एप्स, तो वन मानुष के मनुष्य से भेंट की जाती है, इसलिए कहते बंदर हमारे पूर्वज थे, एप्स के एप्स से हम मनुष्य की बिरादरी आई है। इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। बाबा कहते वास्तव में हम तो देवताओं की वंशज है, कोई बंदरों की वंशज नहीं है। कितना एक दो को दुख देते रहते हैं, अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहा है। ये पढ़ाई है, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। ज्ञान अमृत से ही हमारी तकदीर जगती है, कोई जल आदि नहीं, ज्ञान अमृत कोई जल आदि नहीं। आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं, गंगा जल को भी अमृत कहते हैं, देवताओं के पैर धोकर पीते हैं पानी रखते हैं उनको भी अमृत की अंजलि समझते हैं। अंजलि जो लेते हैं उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि ये पतितों को पावन बनाने वाला है, गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है।
कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया, तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए। एक गांव है भारत में कहीं, एक गांव है जहां बाणों से लड़ाई करते हैं, वहां के राजा को ईश्वर का अवतार मानते हैं। बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग के गुरु है, सच्चा सच्चा सदगुरु एक ही है, सर्व का सदगति दाता एक है जो सबको साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापस कोई ले नहीं जा सकता, ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात नहीं। ये नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाना है, ये नाटक बना हुआ है जो चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये अभी तुम जानते हो। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचता को भी नहीं जानते हैं, जिसको याद भी करते हैं ओ गॉड फादर, हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्सर बहुत अदब से यानी इज्जत से कहते हैं, उनके लिए ही कहते हैं कि वह पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है, और फिर कोई दुख होता है वह बच्चा आदि मर जाता है तो कह देते ईश्वर ही सुख दुख देता है, ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, ये क्या किया। ईश्वर को फिर गाली देते हैं, कहते भी है ईश्वर ने बच्चा दिया है फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो, ईश्वर के पास गया ना, सतयुग में कब कोई रोते नहीं है। बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार नहीं, आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर पाठ बजाना है। ज्ञान न होने कारण मनुष्य कितना रोते हैं, ज्ञान यानी समझ न होने कारण कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहां तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बाप मरे तो भी हलवा खाना, नष्ट हो मोहा होना है। हलवा खाना माना कोई सचमुच में हलवा बनाकर खाने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल नष्ट मोहा होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा ना कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना, सतयुग में कभी दुख की बात नहीं होती है, वहां मृत्यु भी एक महोत्सव होता है, जाने से पहले साक्षात्कार होता है कि अब यह शरीर बहुत पुराना हो गया, अब जाना है और कहां जाना है वो भी साक्षात्कार होता, तो सारे परिवार को बुला करके छुट्टी लेते हैं और बड़ा उत्सव मनाते हैं कि खुशी खुशी से उसको अगले जन्म के लिए भेज रहे हैं, तो इसीलिए वहां मृत्यु भी एक महोत्सव बन जाता है। बाबा कहते सतयुग में कभी दुख की बात नहीं होती, न कभी अकाले मृत्यु होती है, बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं, कालों का काल, तुमको काल पर जीत पानी है, अर्थात काल कब खाता नहीं। काल न आत्मा को न शरीर को खा सकता, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है उसको कहते हैं काल खा गया, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती तो कहते काल खा गया, बाकी काल कोई चीज नहीं है जो आकर के खा लेवे। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं समझते कुछ नहीं, अच्युतम केशवम, बाप समझाते हैं ये पांच विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। इस समय कोई भी बाप को नहीं जानते, बाबा कहते इस समय कोई भी बाप को नहीं जानते हैं, इसीलिए इनको ऑर्फन्स की दुनिया कहा जाता है। ऑर्फन्स माना अनाथों की दुनिया है। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं,
अनाथ होने के कारण ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी हैं, राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। वह फिर अधर्म की बात हो कैसे सकती। कहते भी है वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, इतनी अहिंसा है। फिर वहां रावण आदि कहां से आए, समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। बाप आकर ज्ञान देते हैं। ये पतित दुनिया है ना, अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूं, तो मैं आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाने। बाप को ही सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे। तो यह व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुखदेव, व्यास के बच्चे सुखदेव, तुम अभी सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो। व्यास शिवाचार्य से। सुख का वर्षा ले रहे हो किससे? व्यास शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंझ न जाए इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे हैं। उनका असल नाम है शिव। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। कहते हैं अंगुष्ठे मिसल है। परमात्मा कैसे हैं? अंगुष्ठे मिसल है। इतना बड़ा तो यहां ठहर भी न सके, इतना बड़ा लिंग तो ब्रुकुटी के बीच में ठहर भी न सके। वह तो बहुत सूक्ष्म है शिव बाबा, बहुत सूक्ष्म है। डॉक्टर लोग भी माथा मारते हैं आत्मा को देखने के लिए, परंतु देख नहीं सकते। आत्मा को रियलाइज किया जाता है। बाप पूछते हैं अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया है? इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है, जैसे कि एक रिकॉर्ड है। पहले तुम देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बने हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती रहती है, उनको एंड नहीं होता। बाबा कहते कैसे हम आत्मा 84 जन्म लेती है, उनका एंड नहीं होता, पार्ट का एंड नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु यह तो अनादि है, यह कभी विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। वर्ल्ड को भी तुम जानते हो, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, ऐसे बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है। यह है पत्थर बुद्धि के लिए फूर, भोजन। बाबा कहते हैं आत्मा जो पढ़ाई पढ़ रही है, ये पढ़ाई ही पत्थर बुद्धि के लिए भोजन है। बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए ही बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव एक दो के ऊपर रख देते हैं, ब्रह्मा को त्रिमूर्ति कह दिया, माना तीनों मूर्तियों का रचयिता। फिर देव देव महादेव कह दिया, तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया। अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता, जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, तो सूक्ष्म वतन में वह देवता कैसे हो सकता? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहां होना चाहिए। यह बातें कोई भी शास्त्र में है नहीं। बाप कहते मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूं, इनको अपना रथ बनाता हूं।
इनके बहुत जन्म के अंत में मैं आता हूं। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम हो राज ऋषि। तुम प्रतिज्ञा करते हो, वह सन्यासी लोग तो घबराकर छोड़ चले जाते हैं। यहां तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, कहते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की। तुम जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सत चित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना पालना विनाश कैसे करते हैं ये बाप ही जानते हैं। इन बातों को मनुष्य तो जानते नहीं। तुम बच्चे अभी इन सब बातों को जानते हो, इसलिए सबको समझा सकते हो। बाबा कहते तुम जानते हो इसीलिए समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है, इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है। पूरा नष्टो मोहा बनना है। बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा न कोई। दूसरी पॉइंट, 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की कैर करने वाले। मर्यादा पुरुषोत्तम भव, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की कैर करने वाले। मर्यादा पुरुषोत्तम भव, केयर करना माना संभाल करना। तो मर्यादा की लकीर के अंदर रहने की, स्वयं की संभाल करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, अर्थात ये केयर करते हैं, ये संभाल करते हैं, वह केयरफुल सो चीयरफुल। जो संभाल करते हैं वही सदा हर्षित रह सकता है। तो वह केयरफुल सो चीयरफुल स्वतः रहते हैं। तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई है उनके स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा की लकीर के अंदर रहेंगे तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। आज का स्लोगन है, सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्वपुरुषार्थ का बैलेंस रखो। सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्वपुरुषार्थ का बैलेंस रखो। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, टाइटल है अखंड ज्योति तत्व साइलेंस लॉज और साकारी दुनिया प्लेग्राउंड है। अखंड ज्योति महातत्व वह है साइलेंस लॉज और साकारी दुनिया यह है प्लेग्राउंड। आत्माओं का निवास स्थान है अखंड ज्योति महातत्व, जहां इस शरीर के पार्ट से मुक्त है अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में है, जिसको साइलेंस लॉज भी कहते हैं। लॉज होती है होटल, तो साइलेंस के जगह स्थान जिसको साइलेंस लॉज भी कहते हैं, और आत्माओं का शरीर सहित पार्ट बजाने का स्थान उसको प्लेग्राउंड कहते हैं।
खेल का मैदान कहते हैं। तो बाबा कहते हैं शरीर सहित पाठ बजाने का स्थान प्लेग्राउंड यानी खेल का मैदान ये साकारी दुनिया है। तो मुख्य दो दुनिया है, एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है साकारी दुनिया। दुनिया वाले तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा रचता पालना करता है, संहार करता है, खिलाता है, मारता है, जलवाता भी वही है, तो दुख सुख देने वाला भी वही है। जब कोई को दुख आता है तो कहते हे प्रभु तेरा भाना मीठा लागे। अब यह है अयथार्थ ज्ञान। एक तरफ कहा दुख सुख वही देता है, अगर दुख सुख वही देता तो कौन उसको याद करेगा। लेकिन जब भी दुख आता है तो याद उसको ही करते हैं कि हे प्रभु तेरा भाना मीठा लागे। अब यह है अयथार्थ ज्ञान, क्योंकि यह कोई परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा दुख हरता है, दुख करता नहीं है। जन्म लेना जन्म छोड़ना सुख दुख भोगना हर एक मनुष्य आत्मा के संस्कार है। शारीरिक जन्म देने वाला माता पिता है, वह भी कर्म बंधन अनुसार बाप बेटे के संबंध में आता है। इसी रीति आत्माओं का पिता फिर परमात्मा बाप है। वो कैसे बेहद रचना की स्थापना पालना करता है, कैसे वो अपने तीन रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है, फिर इन आकारी रूपों द्वारा दैवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश

पवित्रता अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी न हो। ज्ञान गुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति में सदा संपन्न, सर्व प्राप्तियों के लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई दे, स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप में अनुभव करे, कर्म में भी अपने को लाइट हल्का महसूस करे, कर्म में भी अपने को हल्का महसूस करे। अच्छा ओ